सुप्रभात। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 30 जुलाई 2026। इस समय प्रातः के 5:58 और 38 सेकंड में हैं। अब हमारी आज की प्रथम सभा आरंभ होती है। अपनी सभा में अपने सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। सुबह के 6 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में 10 वर्ष तक के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने तथा त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है। डॉ. सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का भी गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस विधेयक के पारित होने पर विद्यार्थियों और युवा अभ्यर्थियों को बधाई दी है। श्री वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये विधेयक परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और अनुचित गतिविधियों पर अंकुश लगाएगा। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल इंडिया के साथ एक गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य सार्वजनिक खरीद और बाजार से जुड़े उद्यम विकास के माध्यम से महिला नेतृत्व वाले उद्यमों, विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह के नेतृत्व वाले उद्यमियों को सशक्त बनाना है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, उन्नत प्रौद्योगिकियां, स्टार्टअप, लघु और मध्यम उद्यम भारत के आर्थिक विकास के अगले चरण को गति प्रदान करेंगे। नई दिल्ली में आयोजित 22वें जेआरडी टाटा स्मृति व्याख्यान में श्री गोयल ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कई पहलों का उल्लेख किया, जिनमें 1,00,000 करोड़ रूपये का अनुसंधान, विकास और नवाचार कोष, इंडिया एआई मिशन और दूसरे चरण के सेमी कंडक्टर मिशन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि ये पहल देश के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करेंगी और उभरती प्रौद्योगिकी

0: के विकास में तेजी लाएंगी। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने सतत विमानन ईंधन का उपयोग करने और अंतर्राष्ट्रीय विमानन के लिए कार्बन ऑफसेटिंग और न्यूनीकरण योजना के कार्यान्वयन के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा की। कल नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री नायडू ने अगले वर्ष 1 जनवरी से इस योजना के अनिवार्य चरण से पहले सतत विमानन ईंधन के उत्पादन, मिश्रण, कार्बन अकाउंटिंग और आपूर्ति श्रृंखला विकास के लिए देश की कार्य योजना की समीक्षा की। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सतत विमानन ईंधन नीति का मसौदा अपने अंतिम चरण में है और हितधारकों के साथ परामर्श के माध्यम से इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर चालू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कल पटना में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार खेल नीति 2026 को भी मंजूरी दी है। बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को लागू करने की भी स्वीकृति दी गई है। वहीं शहरी विकास क्षेत्र में अमृत योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना के लिए 53 करोड़ 71 लाख रुपए और लखीसराय जलापूर्ति परियोजना के लिए 1 अरब 50 करोड़ 96 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ रही है। अब तक 40 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय ने प्रदर्शनकारियों की मौत पर चिंता व्यक्त की है। उच्चायुक्त के प्रवक्ता जेरेमी लॉरेंस ने कहा कि एक नागरिक समाज संगठन को अपराधी घोषित करना और सभाओं पर कड़े प्रतिबंध लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा और संगठन के अधिकारों के उल्लंघन के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा करता है। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

सांसों की माला जो ईश्वर ने हमें प्रदान की है, उस माला के हर मोती को भगवान नाम से सजाना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि एक भी श्वास व्यर्थ ना होने पाए, हर श्वास प्रभु नाम को ही समर्पित हो जाए।

तेरा मेरा के चक्कर में हम अपने इस जीवन को नष्ट कर देते हैं, लेकिन जब अंत समय आता है तो हमारे पास सिवाय पछताने के कुछ नहीं होता। इसलिए समय रहते चेत जाना चाहिए और अपने जीवन को प्रभु कार्यों में समर्पित कर देना चाहिए और प्रभु से प्रार्थना करें।

वंदना कार्यक्रम की इन भक्ति रचनाओं में आपने जो आवाज़ें सुनी वो थी MS सुब्बलक्ष्मी, DV पलुस्कर, अनुराधा पौडवाल और ओम व्यास। आइए अब आपको सुनवाते हैं संवेत स्वरों में ये देश का अन्न।

0: FM 102.2 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन बिंदु। विषय है उपयोगिता और मानसिकता। आलेख है डॉक्टर शैलेंद्र नाथ पांडे का। वाचन है राखी कटारा का।
1: वैसे तो ये मनुष्य का सहज स्वभाव है कि वो कुछ करने से पहले हमेशा ये जानने को उत्सुक रहता है कि उस कार्य का उपयोग क्या है अथवा उससे लाभ हमें क्या हो रहा है। किंतु युग के प्रभाव से आजकल ये प्रवृत्ति बड़ी बलवती हो गई है। आज का व्यक्ति तो बिना लाभ के कुछ करने सोचने को तैयार ही नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि व्यावसायिकता की मानसिकता लाभ हानि की सौदेबाजी मनुष्य के सिर पर चढ़कर बोल रही है। यही कारण है कि आज का मनुष्य बड़ा मतलबी, स्वार्थी और आत्म केंद्रित होता जा रहा है। हम समाज में एक घुटन, अकेलापन और यांत्रिकता के नीरस वातावरण को झेल रहे हैं। यद्यपि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं, रोटी, कपड़ा और आवास इत्यादि की चिंता सर्वप्रथम रहती है, किंतु केवल खाने पहनने तथा आमोद प्रमोद की सतह तक सीमित जीवन उन श्रेष्ठ उपलब्धियों और ऊंचाइयों से वंचित रह जाता है जिनके कारण महाभारत में कहा गया है कि धरती पर मनुष्य से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। वास्तव में मनुष्य की महिमा आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि के कारण ही नहीं अपितु उन एवं अलौकिक मूल्यों के कारण मानी गई है जिनकी वो साधना करता है तथा जिन्हें वो अपनी साधना के द्वारा साकार करता है। साहित्य, संगीत, कला, धर्म इत्यादि इसी लोकोत्तर श्रेणी की वस्तुएं हैं जो मनुष्य को उच्चता जीवन से जोड़ती हैं। टैगोर ने लिखा है कि विभिन्न कलाएं जैसे संगीत, नृत्य, काव्य आदि मनुष्य की अतिरिक्त ऊर्जा यानी सरप्लस एनर्जी के परिणाम हैं। जो ऊर्जा केवल कमाने खाने में खर्च हो जाती है, चुक जाती है, उससे सृजन नहीं होता। वो जीवन यापन के लिए भले ही सार्थक हो, उसमें सच्चा आनंद नहीं सृजन में, सौंदर्य में, प्रेम में, जो दिव्य रस होता है, उसकी कोई परिभाषा नहीं है। वो मात्र अनुभव की वस्तु है। धर्म और अध्यात्म यदि कोई शिक्षा देते हैं तो संक्षेप में वो केवल इतनी ही है कि मनुष्य शरीर का साधन अवश्य है, परंतु वह उसका साध्य अथवा सर्वस्व कभी नहीं हो सकता। उसकी वास्तविक पूंजी उसकी आत्मा है। उपनिषद कहती है कि आत्मा

0: के लिए सब कुछ प्रिय है। अतः आत्म तत्व की उपेक्षा कर केवल दैहिक कर लेना आत्म हनन है। अपने सच्चे स्वरूप के साथ खिलवाड़ है। केवल लाभ अथवा केवल उपयोगिता की सीमाओं में बंधे हम अपने को सृजन के विराट सुख से वंचित कर रहे हैं। आज की सभ्यता हमारा संपूर्ण जीवन बिजली पर आधारित है। हीटर, कूलर, लाइट, पंखा, रेल, एसी, टीवी, फ्रिज और अन्य अन्य उपकरण बिजली से चलते हैं। कम लोगों को बिजली के आविष्कारक भौतिकविद को अपनी खोज के आरंभिक प्रदर्शन में कितने कटु अनुभव से गुजरना पड़ा था। उस महान वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने अपने विद्युत निर्माण का प्रदर्शन किया। एक तार से विद्युत धारा का प्रवाह किया गया और उसके इर्द गिर्द कागज के टुकड़े उड़ने लगे। प्रयोग समाप्त होने पर दर्शकों में से एक महिला ने टिप्पणी की, ये सब तो ठीक है महोदय, किंतु इसका उपयोग क्या है? एक बार को अवाक रह गई और फिर बाद में संयत होकर उत्तर दिया, मैडम जब बच्चा पैदा होता है तो उस आनंद में क्या हम पूछते हैं कि बच्चे के जन्म से हमें क्या लाभ है? उस समय तो शिशु केवल सेवा सहायता चाहने वाला एक भार सदृश ही है। तात्पर्य यह है कि तात्कालिक दृष्टि से जो वस्तुएं हमें उपयोगी अथवा लाभप्रद नहीं भी प्रतीत होती उनका भी जीवन में अत्यंत महत्व का स्थान है और फूल का सौंदर्य ही उसका परम मूल्य है।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन बिंदु।

आइए अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरित मानस गान। स्वर है रविंद्र साठे का, संगीत है सतीश भाटिया का।

शिव के धनुष भंग और उसके ऊपर लक्ष्मण के कौतुक भरे वचन सुनकर परशुराम जी का क्रोध सीमा पार कर रहा है। उसके ऊपर लक्ष्मण का ये वचन सुनकर कि शूरवीर तो युद्ध में करनी कर दिखाते हैं, मात्र कहकर डींग नहीं मारते, ऋषिवर ने अपना फरसा संभाल लिया। बोले, अब लोग उन्हें दोष ना दें, ये मूर्ख बालक मारे जाने के ही योग्य है। बात बढ़ते देख मुनि विश्वामित्र ने अपने शिष्य के अपराध की क्षमा याचना की। कहा, बालकों के दोष गुण को साधुजन नहीं गिनते। मन ही मन वो हंसे कि परशुराम जी को हरा ही हरा सूझ रहा है। सर्वत्र विजयी होने के कारण वो राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। उन्हें कदाचित ये नहीं मालूम कि ये दो कुमार फौलाद की खांड हैं, ईख की खांड नहीं जो मुंह में लेते ही गल जाए। परशुराम की धमकियों के प्रत्युत्तर में लक्ष्मण ने एक बार फिर कटाक्ष किया कि माता पिता के ऋण तो मुनिवर चुका ही चुके हैं, अब गुरु के ऋण से भी उऋण हो जाएं, ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब हिसाब करने के लिए यदि किसी को बुला लें तो वो थैली खोल दें। मुनि की क्रोधाग्नि में लक्ष्मण के वचन को आहुति समान जानकर श्री राम ने अनुज को शांत होने का इंगित किया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, स्वर था रविंद्र साठे का और संगीत था सतीश भाटिया का। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से, प्रस्तुत है संक्षिप्त रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 6:50 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती की बातें। विषय होगा बरसात में पशुओं के चर्म रोग एवं उपचार। वार्ताकार होंगे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। पुराने फिल्मी गाने सुनिएगा भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में सुबह 7:00।

ब्रज माधुरी कार्यक्रम का समय होगा सुबह 7:31 का, जिसमें आज आपको सुनवाएंगे ब्रज वार्ता सखी सहेलिन को महीना सावन मास। वार्ता करूंगी लक्ष्मी शर्मा, साथ ही सुनेगा कुछ ब्रज लोकगीत। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि आपको सुनवाएंगे सुबह 8:30 पर। 9:00 रेखा चित्र माऊ, आलेख और वाचन होगा अंजीव कुमार रावत का, ये आप सुन पाएंगे। सुबह 9:25 पर कार्यक्रम आबोहवा, विषय होगा वेदों में पर्यावरण, आलेख और वाचन डॉक्टर सुदेश आहूजा का होगा। सुबह 9:30 पर विशेष बातचीत सुनेगा, विषय होगा गजल के विविध आयाम, विशेषज्ञ होंगे नवीन सी चतुर्वेदी और इनसे बातचीत करेंगे ओपी सिंह। कार्यक्रम विविधा ये आप सुनेंगे सुबह 10:00। आलेख स्वर एवं प्रस्तुति सहयोग होगा चंद्रिका कुमार का, संयोजन एवं प्रस्तुति होगी ओम प्रकाश सिंह की। फिल्म संगीत सुनेगा सुबह 10:30 से। दिन 11:00 कार्यक्रम होगा हेलो आकाशवाणी, प्रस्तुति होगी रश्मि शर्मा की। 11:30 पर

मेरी पसंद कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे। मध्याह्न 12 बजे प्रायोजित कार्यक्रम सिम्स हेलो डॉक्टर, ये कार्यक्रम होगा। इसमें आज का विषय है किडनी रोग, कारण, लक्षण और निवारण। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर आशीष शर्मा, वरिष्ठ किडनी रोग विशेषज्ञ, आकाश सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हॉस्पिटल मथुरा। ब्रज लोकगीत कार्यक्रम सुनेगा दोपहर 12:30 पर। कलाकार होंगे खेम चंद यदवंशी। वनिता लोग ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे दोपहर 1:15 पर, जिसमें चर्चा होगी मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस विषय पर, और दूसरा विषय होगा विकसित भारत में महिलाओं की भूमिका। साथ ही सुनिएगा खान पान वार्ता, सावन के व्रत में बनाए फलाहारी व्यंजन। वार्ता करूंगी आरती सेठ। अपराह 2:30 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। शाम 4 बजे कार्यक्रम होगा संदेश टू सोल्जर्स।

शाम 5:30 पर कार्यक्रम सुनिएगा युवावाणी। इसमें आज की बात में विषय होगा मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस, ये विषय होगा। और साथ ही सुनिएगा युवा वार्ता, तकनीकी और नवाचार का युवाओं के जीवन पर प्रभाव, वार्ताकार होंगे आदित्य। चूड़ामणि। शाम 6:15 पर किसानवाणी कार्यक्रम में चर्चा होगी किसान क्रेडिट कार्ड के विषय में। और भेंटवार्ता सुनेगा कृषि आदान खरीदते समय सावधानियां, वार्ता करेंगे विजय सिंह, विजय कुमार रावत। और भेंट करेंगे विजय सिंह नौलखा। संध्या वंदन कार्यक्रम शाम 6:45 पर, 7:05 पर ब्रज साहित्य कार्यक्रम देश हमारों में पर्यटन स्थल हरिद्वार की जानकारी दी जाएगी, वार्ता करेंगे नरेंद्र कुमार शर्मा। शाम सुहानी कार्यक्रम शाम 7:31 पर, एक ही फिल्म से कार्यक्रम रात 8:30 पर। सुहाने तराने रात 9:15 पर सुनिएगा। रात 10:00 संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का अनुप्रसारण किया जाएगा। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा, जिसमें आप सुनेंगे विदुषी गिरिजा देवी का ठुमरी और दादरा गायन। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

0: आइए अब आपको सुनवाते हैं खेती की बातें कार्यक्रम। विषय है बरसात में पशुओं के चर्म रोग एवं उपचार। वार्ताकार हैं डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत।
1: किसान भाइयों, बरसात में जहां एक ओर गर्मी की अधिकता होती है, वहीं दूसरी ओर बात

वातावरण में नमी की मात्रा भी अधिक होती है। यह स्थिति मक्खी मच्छर और विभिन्न प्रकार के रोगाणुओं के विकास के लिए सर्वदा उपयुक्त होती है। भीषण गर्मी के प्रकोप से बचने में पशुओं की पर्याप्त ऊर्जा पहले ही खर्च हो चुकी होती है, इसलिए प्रतिरोध क्षमता इस समय कम हो जाने के कारण बरसात के मौसम में वे शीघ्र ही विभिन्न रोगों के शिकार हो जाते हैं। बरसात के मौसम में पशुओं में एक रोग हो जाता है चर्म से संबंधित, उनकी चमड़ी से संबंधित। बरसात के दिनों में पशु के बार बार भीगने और सूखने के कारण विभिन्न प्रकार की फफूंदी जनित चर्म रोग तेजी से उनमें फैलते हैं, जिनमें दांत,

0: तेजी से उनमें फैलते हैं, जिनमें दाद, खाज, खुजली, फोड़े, फुंसियाँ प्रमुख हैं। ये रोग पशु की त्वचा को खराब कर देते हैं तथा इनसे परेशान होकर पशु चारा दाना खाना छोड़कर केवल खुजलाता रहता है, जिससे उसका उत्पादन काफ़ी कम हो जाता है। चर्म रोगों में पेस्टोवेन और हेमेवेक्स मलहम का प्रयोग करके रोगों से बचा जा सकता है। जहाँ तक चर्म रोग से बचाव के लिए जो और उपाय हैं उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, सबसे पहली बात तो ये है, पशु के शरीर पर मैल की पपड़ी आप न जमने दें, उसको नियमित रूप से नहलाएं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें, विषय था बरसात में पशुओं के चर्म रोग एवं उपचार। वार्ताकार थे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः जतिन शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी रविवासरे इत्युक्ते अगस्त मासस्य द्वितीय दिनांके मादक मुक्त युव विकसित भारत संकल्पाभियानस्य शुभारम्भो विधास्यति। वस्तुतस्तु एतत् मादक पदार्थान् विरुध्य शत सप्ताहात्मकः राष्ट्रव्यापी जनसहभागितान्दोलनं वर्तते। एतस्याभियानस्य नेतृत्वं माई भारत मञ्चः करिष्यति, यश्च यूनां नेतृत्वक्षमतायाः अथ च सामाजिक सहभागितायाः संवर्धनाय कार्यं करोति। अस्य पदक्षेपस्य उद्देश्यं जागरूकतायाः, सामाजिक सहभागितायाः, सतत जनसहयोगस्य च माध्यमेन यूनां संघटनं कृत्वा मादकमुक्त भारतस्य निर्माणम् इत्यस्ति। लोकसभायां लोकपरीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयकः 26,2000 पारितः। अस्योद्देश्यं तावत् परीक्षा प्रकरणेषु वञ्चनायाः निरोधाय कठोरदण्डविधानं सहैव द्रुतगति न्यायालयानां स्थापनम् इत्यस्ति। अनेन लोकपरीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियमे 24,2000 संशोधनं विधीयते। अस्मिन् विधेयके 10 वर्षात्मकः कारावासः, 10 कोटिरूप्यकाणां दण्डः, सहैव सिद्धापराधिनां सम्पत्तेः अधिग्रहणम् इत्यादीनि प्रावधानानि सन्ति। विधेयकानुसारं प्रत्येकं राज्यम् अथ च केन्द्रशासितप्रदेशः दैनन्दिनवादश्रवणाय विशेषद्रुतगतिन्यायालयानां स्थापनं करिष्यति। चर्चायाः उत्तरं प्रददन् कार्मिकराज्यमन्त्री डॉ. जितेन्द्रसिंहः न्यगादीत् यत् नियमस्य सुदृढीकरणाय सहैव पत्रगोप्यताभङ्गप्रकरणेषु शीघ्रन्यायार्थम् एतत् संशोधनम् आनीतम्।
1: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया है और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
0: राज्यसभायां 26,2000 राष्ट्रिय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयकं पारितम्। एतत् विधेयकं राष्ट्रिय गौरव अपमान निवारण अधिनियमे 171 संशोधनं करोति। अस्य विधेयकस्योद्देश्यं वन्दे मातरम् इत्यस्मै राष्ट्रगीताय अपि राष्ट्रगानेन समं वैधानिक सुरक्षा प्रदानम् इत्यस्ति। एतादृशेषु अपराधेषु 3 वर्षात्मकः कारावासः, द्रव्यदण्डः उत

0: वा उभयमपि भवितुमर्हतः। उत्तरप्रदानकाले गृहराज्यमन्त्री नित्यानन्दरायः प्रावोचत् यत् एतत् संशोधनं भारतस्य आत्मने राष्ट्रियचेतनायै सांस्कृतिकन्यासाय सहैव स्वतन्त्रतासङ्ग्रामस्य आदर्शेभ्यश्च सामूहिकप्रतिबद्धतां दर्शयति।
1: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्र प्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
0: ओडिशा राज्ये अतिवृष्ट्या उच्छ्वसित नदीभिश्च विकट जलौघस्थितिः दुरापद्यते। अस्माद् हेतोः 4 जनाः मृत्युमुपगताः, सहैव 4,00,000 जनाः प्रभाविताः अभवन्। श्रावणमासस्य वार्षिकी कावडयात्रा अद्यारभ्य प्रवर्तते। अस्यां यात्रायां भक्ताः गङ्गाजलमानेतुम् उत्तराखण्डस्य हरिद्वार गोमुख गङ्गोत्री इत्यादिषु तीर्थस्थलेषु गच्छन्ति। अस्याः विशालयात्रायाः सुव्यवस्थायै उत्तराखण्ड उत्तरप्रदेश सर्वकाराभ्यां व्यापकप्रबन्धाः प्रकल्पिताः इति वार्ताः।
2: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। अगला कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।

पेइंग गेस्ट फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और आशा भोसले के युगल स्वरों में। गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई थी एसटी बर्मन ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत चलती का नाम गाड़ी फिल्म से।

एसडी बर्मन के संगीत निर्देशन में ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले के युगल सुरों में। गीत रचना थी मजरू सुल्तानपुरी की। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म से। इसे गाया है मोहम्मद रफी और गीता दत्त ने।

उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। उधर तुम हंसी हो

एचडी बर्मन के संगीत निर्देशन में अभी आपने सुना लता मंगेशकर को फिल्म बंदनी में। गीत रचना थी गुलजार की। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये भूले बिसरे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 MHz पर। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा ने पारित किया लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026। पेपर लीक रोधी इस विधेयक में परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट का है प्रावधान। राज्यसभा में पारित हुआ राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण देगा यह विधेयक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत रविदास की 650वीं जयंती पर वाराणसी से भाजपा के राष्ट्रव्यापी समरसता संकल्प अभियान का किया शुभारंभ। भदोही का नाम संत रविदास नगर करने की घोषणा। आज से शुरू हुए श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश भर में किए गए हैं व्यापक इंतजाम। कई जिलों में लागू हुआ ट्रैफिक डायवर्जन, रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेन। और राष्ट्रमंडल खेल में प्रदेश के गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर रचा इतिहास। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने कल लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया।
1: विधेयक के तहत लोक परीक्षाओं में अनुचित साधन का दोषी पाए जाने वालों के लिए अधिकतम 10 वर्ष के कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने और दोष सिद्ध अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए विधेयक में प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का प्रावधान किया गया है, ताकि मामलों के दैनिक आधार पर सुनवाई हो सके। इसके अतिरिक्त पुलिस थाने में मामला दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के भीतर जांच पूरी करना अनिवार्य होगा, जबकि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा करना होगा। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 27 जुलाई को यह विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया था। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि नया विधेयक छात्रों और युवाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
2: सरकार की प्रतिबद्धता का आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर्स की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक फोर्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
0: डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री ने टास्क फोर्स का गठन भी किया है।
2: प्रधानमंत्री जी ने एक टास्क फोर्स का भी ऐलान किया है टू रिकमेंड रिफॉर्म्स टू मेक द एग्जाम सिस्टम्स लीक प्रूफ। उसमें कुछ एक बड़े वरिष्ठ लोग

0: सम्मिलित किए गए और साथ ही साथ जो राधा कृष्ण कमेटी गठित की गई थी 22 जून 2024 में, उसमें से जो 46 की रिकमेंडेशन थी उसमें से भी 35 इम्प्लीमेंट हो चुकी है।
1: इस बीच राज्यसभा ने भी कल राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
2: राष्ट्रीय गीत अपमान पर इस विधेयक के माध्यम से दंडनीय प्रावधान करने का विचार हुआ है। वर्तमान संशोधन का उद्देश्य राष्ट्र गीत वंदे मातरम के जानबूझकर किए गए अपमान को भी उसी प्रकार के दंडनीय बनाया जाए जैसा कि वर्तमान कानून में है। हर भारतवासी के राष्ट्रप्रेम का उद्घोष है वंदे मातरम, विकसित भारत का संकल्प है वंदे मातरम।
1: संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज के 650वें जयंती वर्ष के अवसर पर उनके जन्मस्थली वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर से भारतीय जनता पार्टी द्वारा कल राष्ट्रव्यापी श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान शुरू किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौजूद थे। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक नागरिक संत रविदास के आदर्शों को अपनाकर विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे।
3: इस सामाजिक समरसता अभियान को गांव गांव और घर घर तक पहुंचाने के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी के संकल्पों को लेकर के चल रही है। हर सच्चे भारतीय का दायित्व बनता है जो सद्गुरु रविदास जी महाराज ने आज से 650 वर्ष पहले जो संदेश हम सबको दिया उसको जमीनी धरातल पर उतार करके कर्म की साधना के माध्यम से हम विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें।
1: मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर भदोही जिले का नाम संत रविदास नगर किए जाने की घोषणा की। राष्ट्रव्यापी श्री गुरु रविदास महाराज समरसता संकल्प अभियान के तहत संत रविदास जी की पावन जन्मभूमि की मिट्टी 131 कलशों में भरकर उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों, संगठनात्मक जिलों, मंडलों, गांवों और बस्तियों में जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ स्थित केंद्रीय कमान के कमांड अस्पताल में डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। विशेष रूप से सैन्य चिकित्सा पर केंद्रित यह देश का पहला समर्पित शैक्षणिक और परिचालन विभाग है। रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आर्थिक और सामाजिक विकास राष्ट्र निर्माण के आवश्यक पहलू हैं, लेकिन किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता और प्रगति का मूल आधार उसकी सेना की शक्ति और मनोबल में निहित है।
4: किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता और उसकी प्रगति का मूल आधार उसकी सैन्य शक्ति और उस सैन्य शक्ति का मनोबल हुआ करता है।

0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। आज से पवित्र श्रावण मास की शुरुआत हो गई है। इस दौरान निकलने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश भर में व्यापक प्रबंध किए गए हैं। कई जिलों में ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है। लखनऊ की DCP ट्रैफिक रवीना त्यागी ने बताया कि एक माह के लिए यह व्यवस्था की गई है। वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम के मंदिर ट्रस्ट के CEO विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए वहां विशेष व्यवस्था की गई है।
1: जो हमारा एक मानव संचालन प्रक्रिया हमारे तैयार की गई है, उसी के अंतर्गत सारी व्यवस्था जिगजैग की, छाया की, ग्लूकोज वाटर की, ORS वितरण की इत्यादि व्यवस्थाएं की गई है। श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा प्रातः काल किया जाता है श्रावण सोमवार के दिन और प्रथम दिवस पर इसकी व्यवस्था भी रहेगी। और इसके अंतर्गत जो हमारे श्रद्धालुओं की सुरक्षा सबसे पहले महत्वपूर्ण है, साथ ही सभी प्रकार के विशेष अनुरोध प्रोटोकॉल दर्शन जो काशी द्वारा अलग से संचालित किया गया है, वह सोमवार के दिन और प्रथम सप्ताह में शेष दिनों में भी भीड़ के अनुसार अभी तो प्रतिबंधित किया गया है।

0: श्रावण मास में कांवड़ यात्रा को लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए एनसीआरटीसी ने नमो भारत ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का निर्णय लिया है। वहीं देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर से दो श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों की भी घोषणा की है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल 2026 में प्रदेश के गुरवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वह स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। गुलवीर की सफलता पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सपूत और नायब सूबेदार गुलवीर सिंह की यह ऐतिहासिक उपलब्धि अथक परिश्रम, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण है। प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। लखीमपुर खीरी में शारदा, जबकि बाराबंकी और अयोध्या में घाघरा नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। बदायूं जिले में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस बीच मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा ने पारित किया लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026। पेपर लीक रोधी इस विधेयक में परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए सख्त सजा और फास्ट ट्रैक कोर्ट का है प्रावधान। राज्यसभा में पारित हुआ राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण देगा यह विधेयक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत रविदास की 650वीं जयंती पर वाराणसी से भाजपा के राष्ट्रव्यापी समरसता संकल्प अभियान का किया शुभारंभ। भदोही का नाम संत रविदास नगर करने की घोषणा। आज से शुरू हुए श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश भर में किए गए हैं व्यापक इंतजाम। कई जिलों में लागू हुआ ट्रैफिक डायवर्जन, रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेन। और राष्ट्रमंडल खेल में प्रदेश के गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर रचा इतिहास। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
2: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। श्रोताओं, आपको याद दिला दें, आज मध्याह्न 12 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम सिम्स हेलो डॉक्टर। विषय होगा किडनी रोग, कारण, लक्षण और निवारण। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर आशीष शर्मा, वरिष्ठ किडनी रोग विशेषज्ञ, आकाश सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हॉस्पिटल मथुरा।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: अब आरंभ हुए है आज को ब्रज माधुरी कार्यक्रम।

0: भैया आज से शुरू है गयो है सावन को महीना। यह महीना सबै की खातिर खूब उमंग भरो हुए है। कोयल की कुहू कुहू, मयूरन को नाच, मेंढकन की तान खूब आनंद देवे है। तो चलो यह से संबंधित आपको सुनवाए रहे हैं वार्ता। सखी सहेलिन को महीना सावन मास। वार्ताकार हैं लक्ष्मी शर्मा।
1: सावन को महीना आम ते ब्रज के जनमानस की बानी मुखर है वे लगे। बरसा है चुकी हो जासो चौतरफा हरियाली हरियाली दिखे। बा समय में बरसा सो दुभे भय पेड़ पौधे अपनी अनोखी और मनोरम छटा बेखेरन लगे। और कबहू कबहू कारे कारे बादरन की आकाश में घुमड़ घुमड़ के गर्जना सुन के मोर कूक उठे और दादुरऊ अपनो राग अलापन लगे। भाई के साथ झिमुरऊ झिनकारन लगे हैं। बन नदी ताल तलैया संगीत में धनुषो गूंज उठे। ऐसे सुहावने समय में जगह जगह सखी सहेलिन के झूला वृक्षन पे पर जाएं। घर और बाटिकान में सखी सहेली मधुर कंठ सो मधुर सामन के गीतन को गायन करें। सामन आयो सुगढ़ सुहावनो जी एज कोई आई है अजब बहार। झूला तो झूले सखियां बाग में जी एजी कोई गाँव में गीत मल्हार। पिहू पिहू पपिया देखो करी रहो जी एजी कोई मोरन की किलकार। कारे कारे बदरा बहिना मेरी चढ़ रहे जी एजी कोई डरपे कामनी नार। सामन आयो सुगढ़ सुहावनो जी। पुराने समय में जब यातायात की सुविधा नहीं हती तो चतुर्मास में देश परदेश गए खाएवे कमाएवे वारे पतिन की पत्नी बिन के घर वापस आएवे की बाट जो करती। सामन महीना में बिन ने अपने मायके जाएवे की सुविधा होती। वे अपने भैया के घर जा सके और अपनी सखी सहेली से मिलके आनंद मनाए सके। सावन महीना आते ही माँ बहन और सखी सहेलिन में साक्षात प्रेम को लहर लेने लगे। भूई प्रेम गीतन के रूप में भूमि को रसमें बनाए गए हैं। सावन के गीत तो बहुत हैं बिन्ने केव विभागन में विभाजित कियो जाए सके। विवाहित और वयस्कन के प्रबंध गीत, मुक्तक गीत, मुक्तकन में ऋतु शोभा गीत, झूला गीत, भावात्मक गीत, ऋतु शोभा में वर्णात्मक गीत और भावात्मक कीर्तन में पति संबंधी और भाई संबंधी। ऋतु शोभा और झूला गीतन को अलग अलग नए कियो जा सके। ऋतु शोभा के सब गीतन में झूला को समावेश न मिलेगा पर झूला के सब गीतन में ऋतु शोभा की चर्चा जरूर भई है क्योंकि झूला गीतन में ऋतु पृष्ठभूमि है। ऋतु शोभा में रिमझिम मेह की प्रधानता है। रिमझिम रिमझिम मेहा बरसत और रिमझिम मेह में पावस की प्रवृत्ति कोई परिचय तो है। मेह की फुकार नन्नी नन्नी बूंदे और नन्नी नन्नी फुहारे तो रसों भूमि को रसिक्त कर दे हैं। बेनन्नी नन्नी बुंदरिया कारे कारे बादरन से तो आए रही हैं। बादर उमड़ रहे हैं, मेह के डंग है रहे हैं, घटाए साधन नाए घन घोर है। बिनसो बीजरू चमक रही है, पपिया पिहू पिहू कर रहे हैं, कोयल कूक रही है और मोर शोर मचाए रहे हैं। ऐसो हरियल सामन आए गयो है जाई लिए बागन में बहार छाए गई है।

0: गेंदा हजारी रोशन खिल रहो, चंपा खिली अपार, बेला चमेली फूली मोतिया, फूले हार सिंगार, अजब सुगंधी अली उड़ रही, झुकी एक कदम्बी की डार। सामन के सखी सहेलिन के गीतन को जी बाग चंपा बागई है, काऊ काऊ गीत में चंदन बाग को नाम लियो है, तो काऊ गीत में नौलखा बाग को नाम लावे है। झूला के इन गीतन में गोरी सामरी दीठ नंदिनी कर्ण फूल झुमका हार पहरे भये, सुवा कुसमी रंग की साड़ी पहने है, सौकी और पचरंगी चुंदरी रंगाईवे को सुझाव, धन को पति अपनी मासो करतो मिले, नारंगी चूर को आभाव नाए, यू सज धज के सखी सहेली बाग में झूला झूलन को जाए हैं। बिनकी मधुर कंठ सो मल्हार की ध्वनि सो चंपा चंदन नौलखा बाग गूंज उठे हैं। मनिरा नाम के गीत में मनिहार सो चूरी पहरवे को वर्णन में, मनिहार हरी नीली कारी पीली लाल रंग की चूड़ियां दिखावे है, पर वे रंग पति के जगा घोड़ा केस तोड़ा और होंठ के रंग सो मेल खाए हैं। सो वो इन रंगन सो कऊ अलग रंग की चूरी पहरवे के लाने कहे है, या सो पति प्रेम दर्शायो है कि जी अनोखो ढंग है, जाकू लोक गीतन में रचना कारण ने अपनायो है। सामन को महीना पति सो अधिक भाई की मान्यता को हुए है, सभी के हृदय में भाई को प्रेम जाई ऋतु में सबसे अधिक हुए है। सलूनो रक्षाबंधन तीज और हरतालिका के सुहावने त्योहार सामन में ही आमे हैं, धौरी धौरी सेमई और खीरो इन त्योहारन पे बने हैं। जाई सोमरज के लोक जीवन में सामन और भादों के महीना होरी के बाद सबसे अधिक उमंग उत्साह और आनंद के माने जाए हैं। इन दिनान में यहाँ सब जगह झूला पर जाए हैं, बाग बगीचा और घर आंगन में झूला झूलती वही ब्रज की सखी सहेली सुरीली तानसो मल्हार के गीत गामे हैं। अरे बहिना घटा तो उठी है घन घोर, सामन में चमके बी जुरी जी, कारे कारे कजरारे बदरा झुकी रहे, और बहिना उमड़े उमड़े चहु ओर, झूला तो झूले बहिना डर लगे जी। ब्रज में सामन में जो उत्सव और त्योहार और मेले हुए हैं, बिन में हरियाली मावस हरियाली तीज बलदेव जन्मोत्सव पंच तीर्थ नाग पंचमी पवित्रा एकादशी श्रावणी यानी सलूना सामन शुक्ला पूर्णमासी को मनाया जाए है। जी वैदिक पर्व है जाकू विशेष रूप सो ब्राह्मण धर्म सो संबंधित बताया गया है, जाकू रक्षाबंधन के नाम सो जाने जाए है। ब्रज के लोक जीवन में जी प्राचीन उत्सव सलूनों को त्योहार के रूप में मनाया जाए है। जा दिना ब्रज की नारियां अपने घरन की भीतन पे सलूनों को थापा रखें और बाकी पूजा करें, जा त्योहार पे बहने अपने भाइन के हाथ में राखी रक्षा सूत्र बांधती आई हैं और स्नेह के साथ ही साथ भेंटो प्राप्त करें। राखी बंधन को जी अभिप्राय है कि बहन अपने भाई को स्नेह सूत्र सो आबद्ध करे है और बिनको भाई बहन सो रक्षा करवे को संकल्प करे है। भारतीय इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिले हैं जिनमें आपत्तिग्रस्त नारीन की रक्षा बिनकी राखी के कारण नहीं भई हती, बिन नारीन ने अनजान पुरुष को राखी भेज के अपनो भाई बनायो हतो, बिन ने राखी के सम्मान की रक्षा के ताई अपने कर्तव्य को पालन कियो।
1: भैया अभी आपने सुनी वार्ता सखी सहेलिन को महीना सावन मास, वार्ताकार थी लक्ष्मी शर्मा। और अब आपको सुनवा में यह लोकगीत, स्वर है अलका राजेश को।

FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल तक कारावास का प्रावधान। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान जारी। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से खोलने का निर्णय लिया। लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत के व्यापारिक निर्यात में 15% की वृद्धि। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा का स्वर्ण और रजत पदक जीतकर रचा इतिहास। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषियों को 10 वर्ष तक के कारावास और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त अपराधियों की संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी। मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश को दैनिक सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का आदेश दिया गया है। विधेयक के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तारीख से 2 महीने के भीतर और मुकदमे की सुनवाई आरोप पत्र दाखिल होने की तारीख से 3 महीने के भीतर पूरी होनी चाहिए। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये संशोधन कानून को और अधिक सख्त बनाने और त्वरित न्याय दिलाने के लिए किया गया है।
2: इसी विधेयक के लाने के साथ ही साथ हमारे लॉ मिनिस्टर की ओर से भी एक प्रस्ताव जारी कर दिया गया। स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स है, इनको स्थापित करने का भी क्रम प्रारंभ किया जाए। उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड में पहले ही इन्होंने गठित कर दिया और आने वाले दिनों में बाकी स्थानों पर।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने यह विधेयक पारित होने पर देश के प्रत्येक विद्यार्थी को बधाई दी है। श्री शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह विधेयक लोक परीक्षाओं की शुचिता भंग करने वालों को कड़ी सजा देने वाले पुख्ता प्रावधानों के माध्यम से देश के युवाओं के सपनों और आकांक्षाओं की रक्षा करता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि नरेंद्र मोदी सरकार विद्यार्थियों के भविष्य को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शेगी नहीं और उन्हें कानून के पूर्ण

0: दंड का सामना कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अपने संदेश में शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि इस विधेयक से परीक्षा में होने वाली धांधली से निपटने के लिए सख्त कानूनी ढांचा तैयार हो गया है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के तंत्र को खत्म करना और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और निष्पक्षता को बढ़ाना है। राज्यसभा ने राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने कहा कि वंदे मातरम के अपमान के लिए अब 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। बिहार सरकार ने दरभंगा के रायम और मधुबनी के सकरी में बंद चीनी मिलों को फिर से चालू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कल पटना में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।
1: अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में मंत्रिमंडल ने बिहार खेल नीति 2026 को मंजूरी दी है। बैठक में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 97 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को लागू करने की भी स्वीकृति दी गई। शहरी विकास क्षेत्र में अमृत योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत किशनगंज जलापूर्ति परियोजना के लिए 53 करोड़ 71 लाख रुपए और लखीसराय जलापूर्ति परियोजना के लिए 1 अरब 50 करोड़ 96 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी जिलों में पक्का वर्मी कंपोस्ट, गोबर बायोगैस और वाणिज्यिक वर्मी कंपोस्ट इकाइयां स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा के 3 निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलापुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान आज सवेरे 7 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चलेगा। गुजरात में मंजलापुर विधानसभा सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सतीश पटेल को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस ने भीखा भाई रवारी को खड़ा किया है। मध्य प्रदेश में दतिया सीट राजेंद्र भारती के अयोग्य घोषित होने के कारण रिक्त हुई है। वहीं बिहार के बांकीपुर में उपचुनाव भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा के लिए चुने जाने और ये सीट छोड़ने के बाद कराया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सभी 164 मतदान केंद्रों के 422 बूथों पर सुबह 7 बजे से शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। लंबे समय से भाजपा का गढ़ रही बांकीपुर सीट पर इस बार कुल 25 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जहां कुल 3,79,616 मतदाता सभी उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत का फैसला करेंगे। हालांकि मुख्य मुकाबला भाजपा के नीरज कुमार, जन स्वराज के प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी के बीच माना जा रहा है। उपचुनाव में एक तरफ जहां भाजपा ने अपनी परंपरागत सीट बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत लगाई है, वहीं जनसुराज भी इस चुनाव में जीत के जरिए शहरी मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में है। राजद भी अपने पारंपरिक जनाधार के सहारे मुकाबले को दिलचस्प बना रहा है। सविता पारेख, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि लाल सागर संकट और वैश्विक उथल पुथल के बावजूद चालू वित्त वर्ष में अब तक भारत के माल निर्यात में 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। श्री गोयल ने जेआरडी टाटा स्मारक व्याख्यान देते हुए कहा

0: कि बढ़ते भू राजनैतिक तनाव और वैश्विक व्यापार मार्गों में व्यवधान के बावजूद देश का माल निर्यात मजबूत बना हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत का निर्यात देश की आर्थिक बुनियाद की मजबूती को दर्शाता है, जबकि दुनिया भर के व्यवसाय पश्चिम एशिया में संघर्ष और प्रमुख शिपिंग गलियारों में व्यवधान से पैदा अनिश्चितता से जूझ रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगातार वैश्विक चुनौतियां बनी हुई हैं, जिनमें कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और गैस बाजारों में अस्थिरता, साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास की अनिश्चितता और लाल सागर संकट शामिल हैं। मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग के बीच आज नई दिल्ली में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत भारत का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। अमेरिका में 2022 में सलमान रुश्दी पर हुए चाकू हमले के मामले में एक व्यक्ति को संघीय आतंकवाद के आरोपों में दोषी ठहराया गया है। रुश्दी को उनके उपन्यास द सैटेनिक वर्सेस को लेकर दर्शकों से जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। जूरी ने हादी मटार को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद समेत सभी आरोपों में दोषी पाया। 28 वर्षीय मटार पहले से ही अगस्त 2022 में एक एम्फी थिएटर के मंच पर हुए हमले में हत्या के प्रयास के लिए आरोप में न्यूयॉर्क की जेल में 25 साल के लिए कैद में है। संघीय दोष सिद्धि में आजीवन कारावास की सजा भी शामिल है। लेखकों की सुरक्षा पर बात करने वाले रुश्दी पर दर्शकों के सामने 15 बार चाकू से हमला किया गया। वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उनकी दाहिनी आंख की रोशनी चली गई थी। अमेरिका ने कुछ समय के युद्ध विराम के बाद ईरान पर हवाई हमले फिर से शुरू कर दिए हैं। ये हमले उस समय किए गए हैं जब ईरान ने सप्ताह के शुरुआत में जॉर्डन में एक अमरीकी सैन्य अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो रही है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कांवड़ यात्रा को लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यात्रियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए एनसीआरटीसी ने नमो भारत ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का फैसला किया है। देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे प्रशासन ने गोरखपुर से 2 श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। अयोध्या में प्रशासनिक अधिकारियों ने राम की पैड़ी और नया घाट क्षेत्र का निरीक्षण किया। वहीं वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के ये विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पैरा एथलेटिक्स में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा के फाइनल में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। भारत के दिलीप महादुगावित ने 10.71 सेकंड का समय लेकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि मोहम्मद बासिल मोर सिंगानखत ने 10.83 सेकंड के साथ रजत पदक हासिल किया। भारत 3 स्वर्ण, 9 रजत और 3 कांस्य पदकों सहित कुल 15 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में दिलीप महादुगावित को स्वर्ण पदक और मोहम्मद बैसिल मोर सिंह नाकाटी को रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरलम और माहे, कोंकण और गोवा, कर्नाटक, पंजाब, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, उत्तराखंड और विदर्भ के कुछ हिस्सों में भी आज मूसलाधार बारिश की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर संसद में पारित और प्रस्तुत विधेयकों की चर्चा सुर्खियों में है। अमर उजाला ने अपनी पहली खबर को शीर्षक दिया है, परीक्षा में गड़बड़ी पर 10 साल तक जेल, विधेयक लोकसभा में पास। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, लोकसभा राज्यसभा में एक एक बिल पास, जन्म मृत्यु पंजीकरण में संशोधन बिल पेश। लोकसत्ता ने लोकसभा में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर शीर्षक दिया है। गृहमंत्री पर राहुल की टिप्पणी से लोकसभा में जमकर हंगामा। दैनिक ट्रिब्यून ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के चित्र सहित उनकी उपलब्धियों को सबसे ऊपर प्रकाशित किया है, जबकि पंजाब केसरी ने शेयर बाजार में आई तेजी को मुख्य पृष्ठ पर दिया है। राजस्थान पत्रिका ने सड़क सुरक्षा को लेकर संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है, सिर्फ तेज रफ्तार नहीं, हमें सुरक्षित सड़कें भी चाहिए। लेख में

0: A ground inspection suggests the problem in Delhi remains unresolved, writes the Tribune. And with that, it's back to you, Sunil.
1: Thank you, Sarabjit. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Lok Sabha passes anti-paper leak amendment bill with stricter punishment of up to 10 years in jail. Polling begins for by-elections to three assembly constituencies in Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh. Bihar government decides to reopen closed sugar mills at Rayam in Darbhanga and Sakri in Madhubani. India's merchandise exports rise 15% despite Red Sea crisis and global turmoil. Annual Kamar Yatra for Shravan month to begin today. And para-athlete Dilip Kavit wins gold while Mohammad Basil bags silver in men's 100-meter race at Commonwealth Games. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर. फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद.
3: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं. इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें.
4: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें.
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी.
2: कार्यक्रम संबंधी एक सूचना है. श्रोताओं, स्वास्थ्य जागरूकता के नियमित कार्यक्रम सिम्स हेलो डॉक्टर में आज गुरुवार 30 जुलाई 2026 को मध्याह्न 12 बजे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है किडनी संबंधी रोग कारण और निवारण. इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर आशीष शर्मा, वरिष्ठ किडनी रोग विशेषज्ञ, नेफोलॉजी एवं डायलिसिस विभाग, सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हॉस्पिटल मथुरा. आप हमारे टेलीफोन नंबर 2530135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में किडनी संबंधी रोग कारण और निवारण संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं. मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं. ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है किडनी संबंधी रोग कारण और निवारण. श्रोताओं, यदि आप किसी भी प्रकार के किडनी संबंधी समस्या जैसे किडनी में बार बार संक्रमण, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, किडनी में पथरी या मूत्र मार्ग में रुकावट, मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि के समाधान के लिए प्रश्न और पूछ सकते हैं डॉक्टर आशीष शर्मा से, वरिष्ठ किडनी रोग विशेषज्ञ, नेफोलॉजी एवं डायलिसिस विभाग, सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस हॉस्पिटल मथुरा. श्रोताओं, ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा आज गुरुवार 30 जुलाई 2026, समय हो रहेगा मध्याह्न 12 बजे का. सूचना समाप्त हुई. आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि.

0: पुलिस?
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

नरेंद्र शर्मा के इस गीत को संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, आवाजें थी लता मंगेशकर और साथियों की, फिल्म का नाम था सत्यम शिवम सुंदरम। अगला गीत पिया का घर फिल्म से, आवाज लता मंगेशकर की।

रविन्द्र जैन के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार को। फिल्म का नाम था सौदागर। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं सदमा फिल्म से, गाया है यशोदास ने।

गुलजार के इन बोलों को संगीत से संवारा था इलैया राजा ने। आवाज थी यसुदास की, फिल्म का नाम था सदमा। आइए सुनते हैं ये अगला गीत सफर फिल्म से, आवाज है मन्ना डे की।

0: travel, Noida International Airport, where dreams take off.
1: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 9 बजे हैं और आइए अब आपको सुनवाते हैं रेखा चित्र माऊ। आलेख और वाचन है अंजीव कुमार रावत का।
2: अतीत की पगडंडियों पर जब भी मन विचलित होकर घूमने निकल पड़ता है, तब तब आंखों के आगे वही गांव के खेत खलियान, मंगा काछी, सत्तो, घुरन के भल्ले, मंटोली सेठ की दुकान के चिरवा दालमोट और साबोनी के साथ साथ पुठरा के बाग बगीचे झूमने लगते हैं। रिंगस की उन तंग गलियों और उनके सहारे बनी हवेलियों के नजारे, मित्रों के साथ खेलकूद और पतंग उड़ाने का आनंद आज भी मन को आनंद से सराबोर कर देता है। इससे भी पूर्व शैशव का वह खिलंदरता से भरा मस्ती और चपलता का समय, जहां माँ का हाथ पकड़कर नहर और कस्सी तक जाने के अलावा लड्ढा जी के मंदिर और जट्टूडा की दुकान के आगे मेरा मुख्य आश्रय होता था माऊ का घर। माऊ मतलब मेरी धर्म की ताई, या कहूँ तो मेरी दूसरी माँ। माऊ महज नाम भर की माँ नहीं थी, बल्कि सभी बच्चों के प्रति उनका स्नेह, ममता, प्यार, लाड़ दुलार उन्हें माँ की पदवी पर बैठा जाता था। माऊ का इकहरा लंबा धनुषाकार बदन, माथे पर श्वेत शाम मिश्रित वेणी की श्रेणी में अनुशासन के दायरे में बंधे केश, उन केशों की राशि को दो भागों में समान रूप से बांटती मांग पर मोती और सितारों से सजा बोरला, उस सिर पर एक मुकुट की भांति माऊ का श्रृंगार करता। माऊ के चौड़े माथे पर लाल रंग की एक बड़ी बिंदी, जिसके अधोतल को स्पर्श करती पतली तिरछी कटारी नुमा भौं, उन भौं के तल के मैं मत प्रेम और ममता के बिंदुओं से संपृक्त स्नेहसिक्त आँखें, जिनमें अपनेपन के भाव की अमृत वर्षा में हम सभी नित्य डूब जाते। उन आँखों के मध्य घड़ी के पेंडुलम सी सुंदरता में रची पगी सुहासारी नासिका माऊ के चेहरे को चुंबकीय बना देती। उस नासिका के दोनों ओर पतले हल्के उभरे गालों के मध्य एक रेखांकित मुस्कुराते लाल होठ, जिनमें सुसज्जित श्वेत दंतावलियां और प्रेम, दया और आत्मीयता से भरपूर देवीय तत्वों से सजा गौरवर्ण चेहरा एक लंबी और पतली गर्दन पर टिका रहता। माऊ की वेशभूषा गंगानगर की पारंपरिक वेशभूषा थी। कमर पर फूल पत्तियों से सजा कलीदार घाघरा, जो घुटनों तक व्यापक फैली एक लंबी सफेद कमीज से ढका रहता। यह कमीज मर्दों द्वारा पहने गए कुर्ते के समान थी, जिसमें मर्दों के कुर्ते की तरह जेबें भी थीं। माऊ पांवों में काली पंजाबी जूतियां ही पहनती थीं। उनके सिर पर सजे बोरले और उस अपूर्व मुख की सुंदरता को ढके एक लाल बंदेज की चुनरी उनके संस्कारों और रीति रिवाजों का सूचक होती। गले में पंचकोणीय पत्तों की स्वर्ण माला तो हाथों में चूड़ी और लाख के रंग बिरंगे नगों से सुसज्जित चूड़े, कान में बड़े बड़े कुंडल और नाक में एक फूलदार बाली के साथ साथ उनके पांवों में भारी भरकम चांदी के मोटे कड़ों के अपार कोश को सजाए माऊ का सिंगार होता। माऊ अपनी लोक परंपराओं को जीती थी, आधुनिकता से दूर प्रकृति और लोक रीतियों की अनुगामी माऊ सुबह से ही गाय और भैंसों के काम में लग जाती। घर का सारा काम चूल्हे पर तो दही मक्खन का काम हाथों से ही होता था। माऊ के इन सभी कार्यों में जो मुझे सर्वाधिक रुचता था, वह था उनके घर का लाल लाल दूध। भूमि को खोदकर उसमें कंडों को जलाकर एक हांडी में दूध उबलता रहता था। एक समय के बाद वह लाल रंग का दिखाई देता था, बस वही लाल दूध मेरे लिए रखा जाता था। जब मैं माऊ की गोद में पहुंचता तो वही लाल लाल दूध की बाटकी को माऊ मेरे मुंह से लगा देती। उस दूध की मिठास का स्वाद माऊ की गोद और प्यार से लाखों गुना बढ़ जाता। उस समय मुझे जहां मम्मी में कौशल्या का रूप दिखाई देता था, तो वही माऊ में यशोदा का स्वरूप समर उठता। मम्मी के लाड़ प्यार को पाकर घर से नहा धोकर और सच समझ कर जब मैं माऊ की गोदी में पहुंचता, तो उस कच्चे लेकिन एक बड़े घर में लाल लाल दूध, मक्खन, दही पर मेरा पहला अधिकार होता। यह अधिकार होता भी क्यों नहीं, उस समय वहां आसपास के सभी बच्चों में मैं ही सबसे छोटा था। सभी भाइयों और बहनों के स्कूल जाने के बाद मेरा ताऊजी और माऊ के साथ उस घर पर एकाधिकार हो जाता। सारे दिन प्रश्नों की बौछारों से बचने के लिए मम्मी मुझे माऊ के पास भिजवा देती, तो मेरे सवालों का जवाब देने के लिए मानो माऊ को भगवान ने ही मेरे लिए ही बनाया हो। माऊ की गोदी में उनके आंचल की छाँव में मैं सारा दिन गुजार देता। उनके साथ उनके काम में हाथ तो शायद मैं क्या बटा पाता, लेकिन हाँ, कभी बछड़ों के साथ खेलना तो कभी ऊँट के बच्चे मतलब टोड़ियों के साथ मस्ती करना, कभी रुई को इकट्ठा करना, मैं मेरा सारा समय माऊ के साथ कब गुजर जाता यह पता ही नहीं चलता। यही मेरी दिनचर्या थी। अक्सर कर दोपहर के समय माऊ चरखे से सूत भी काटती थीं और रुई को पकड़ने का मेरा प्रयास अवश्य रहता, लेकिन हर बार रुई की डोर टूट जाती थी और माऊ का उस असफलता पर भी नेह बरस उठता। बार बार उस रुई से तकुए पर डोर बनवाने का उनका प्रयास रहता। माऊ के घर पर खेल खिलौनों के नाम पर बस मिट्टी के घुड़ले ही रहते थे। कच्ची मिट्टी के घुड़लों अर्थात घोड़े और ऊँटों को

0: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट. बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ. नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ. भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है.
1: आराम से मैडम.
0: क्या
1: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है. नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
2: इजी एक्सेस एंड सीमलेस.

शाह की पूजा के बाद आलों में रख दिया जाता और वे सभी सिर्फ मेरे लिए ही होते थे। उन पर मेरा सर्वाधिकार सुरक्षित था। मैं उन मिट्टी के घुड़ियों से घंटों खेलता। मिर्जेवाला तो मेरे लिए बस खेल का जीवन था। वहां मुझे न पढ़ने से मतलब था, न किसी अन्य जिम्मेदारी से। बस मेरा काम था तो माऊ के घर जाकर समय काटना। कुछ वर्षों के बाद पिताजी का तबादला रिंगस हो गया। मिर्जेवाला से आना हुआ वह जीवन की डोर जैसे किसी ने तोड़ दी हो। जीवन के आनंद में मानो किसी ने खलल डाल दी हो। 8-10 वर्षों में हम मिर्जेवाला नहीं जा सके, लेकिन स्मृतियों की प्रगाढ़ता देने के लिए माऊ और ताऊजी प्रतिवर्ष बेनागा हमसे मिलने आते थे। अक्सर कर माऊ व ताऊजी का सुबह ही आना होता था। उनके साथ लाए उपहारों में मिठाई कपड़ों के साथ होते थे 1 या 2 मिट्टी के घुड़ले। माऊ की उन कच्ची मिट्टी के घुड़लों को बस या ट्रेन में कितनी सावधानी से लेकर आती थीं, यह देखकर पिताजी ही नहीं अड़ोसी पड़ोसी भी आश्चर्य करते। आते और जाते समय माऊ अपनी परंपरा के अनुसार मेरे हाथों को अनेक बार चूमती, हथेली को सहलाती और सिर पर अनेक बार हाथ फिराते हुए पढ़ने और जल्दी बड़े होने का आशीर्वाद देती। सच, माऊ का यह आशीर्वाद बहुत जल्दी फलित हो गया। 11 वर्ष के रिंगस के प्रवास के पश्चात जब दौसा आए तो एक ओर जहां माऊ की उम्र बढ़ने लगी तो वहीं मैं भी किशोर से युवा होने लगा। अब माऊ कम आ पाती थी, संबंध सिर्फ पत्रों तक ही रह गया और धीरे धीरे पढ़ाई के बोझ ने वह भी कम कर दिया। भैया की शादी पर माऊ जब आई तब वे बहुत थकी हुई थीं। उम्र का असर उनके चेहरे पर ही दिखाई देने लगा था। उस थकान में उस दिन उन्होंने कहा था, अब तो आना मुश्किल हो गया, अब शायद अंतिम बार आना है। मैंने तुरंत ही माऊ को टोक दिया, आना तो मेरी शादी में ही पड़ेगा माऊ। मेरी आंखें एक नम सी हो गई थीं। माऊ ने मुझे अपनी बाहों में ले लिया और बोली, मेरे गुड्डू की शादी में तो मैं जरूर आऊंगी। उनके चेहरे पर एक आत्मविश्वास की आभा चमक उठी और यही हुआ। माऊ अपने वादे के अनुसार मेरे विवाह उत्सव में मुझ पर अपना आशीर्वाद लुटाने ही नहीं, अपना समस्त प्यार और ममता उड़ेलने के लिए आई थी। कुछ लंबी यात्रा की थकावट और कुछ बुढ़ापे की कमजोरी उस समय उनके चेहरे पर सलवटों के रूप में उभरी थी। शायद माऊ की उम्र उस समय 80 के आसपास थी। हाथ पांव पहले से कमजोर दिखाई दे रहे थे, लेकिन बोली की मिठास और आंखों से प्रेम का अमृत कलश अब भी झलक उठता था। सभी के साथ लिए माऊ एक विशेष थी। माऊ पलंग पर ही बैठी रहीं, लेकिन पुरानी कहानियों और मधुर स्मृतियों की पोटली को माऊ ने ऋचा के समक्ष खोल दिया। ऋचा के लिए माऊ की भाषा और बोलने का अंदाज सभी कुछ नया था, जिसे समझने में वह शायद असफल ही रही थी, लेकिन माऊ के प्यार को वह बहुत जल्दी समझ गई। ऋचा के साथ आने के समय माऊ ने सबसे पहले मेरे मस्तक को चूमा था। मेरी अंगुलियों और हथेली को उन्होंने खूब चूमा, सिर पर खूब हाथ फिराया और वही पुराने तरीके से कहा, खूब बड़ा आदमी बन। उस दिन मैंने मजाक में कहा, माऊ आदमी तो मैं बन गया। माऊ ने एक थके लहजे में कहा था, मेरे लिए तो तू अभी नानकिया ही रहेगा। उसके बाद माऊ ने ऋचा पर भी बराबर ही लाड़ लड़ाया था, जिसे पाकर ऋचा अभिभूत हो उठी थी। उस दिन माऊ ने मुझे छोड़कर ऋचा पर अपना प्रेम और ममता ऐसी बरसा की कि माऊ और ताऊजी के जाने के बाद से ही ऋचा बार बार मिर्जेवाला जाने की इच्छा का अपने हृदय में एक इच्छा पाले बैठी रही। 2 साल बाद ही मुझे गंगानगर एक साहित्य कार्यक्रम में जाने का मौका मिला। कार्यक्रम को तो एक बहाना था, लेकिन मेरे मन में तो बस माऊ से ही मिलने की इच्छा थी। कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर मैं सीधा मिर्जेवाला के लिए रवाना हो गया। घर पहुंचा, माऊ अपनी पीढ़े पर बैठी थीं। मैंने माऊ को कभी खाट पर बैठे हुए नहीं देखा था। सच, आज भी बुढ़ापे में माऊ अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों का पूरा अनुसरण कर रही थीं। माऊ ने अपनी आदतों के अनुरूप मेरे माथे और हथेलियों को चूमा और ढेरों आशीर्वाद दिए। फिर माऊ बोली, क्या लेगा, तेरा लाल दूध तो अब है नहीं। वे थके स्वर में बोली, अब मैं गाय भैंसों को नहीं कर पाती हूँ। मैंने खुशी में चहकते हुए कहा, कोई बात नहीं, कुछ भी दे दो। उस दिन मैंने माऊ को देखा। माऊ थोड़ी कमजोर तो दिखाई दे रही थीं, लेकिन उनके मन में प्रेम के पल्लव पल पल फूट रहे थे। उनकी वही अपनी पारंपरिक वेशभूषा थी, वही बंदेज की चुनरी, वही लंबी सफ़ेद कमीज, वही बेल बूटी और बड़े फूल पत्तों वाला घाघरा। माऊ के हाथों में चूड़े और पैरों में वही चांदी के मोटे कड़े। माऊ ने जब दूध का एक बड़ा गिलास मेरे हाथों में टिकाया, तब मैं बोला, माऊ इन 30 सालों में मिर्जेवाला में देखो ना, सब कुछ बदल गया है। देखो ना, पुराने सभी कच्चे मकान पक्के हो गए हैं, कच्ची गलियों पर डामर की परत चढ़ गई है। पीरसा का मंदिर तो ऐसा लगता है जैसे बहुत छोटा हो गया हो। चौड़ी सी लगने वाली नहर अब पतली सी लगने लगी है, और कस्सी तो ऐसी लग रही है जैसे कोई पतला सा नाला हो। माऊ, अब तो यहाँ खान पान, पहनाव, ओढ़ाव और रहन सहन में भी काफी अंतर आ गया है, लेकिन जहाँ बदलाव नहीं दिखा वह है माऊ का दुलार, माऊ की ममता और प्रेम, माऊ के वात्सल्य का भाव आज भी वैसा ही है। उस दिन माऊ के साथ खूब बातें की,
समय कब बीत गया यह पता ही नहीं चला। शाम

0: को वापस लौटना था। लौटते समय माऊ ने मेरी उंगुलियों और हथेली को बार बार चूमा। मेरे सिर पर अनेक प्रकार से हाथ फिराया। मैं चलने लगा तो माऊ ने एक डिब्बा मेरे हाथों में रख दिया। मैंने माऊ से पूछा, इसमें क्या है माऊ? माऊ ने कहा, घर जाकर देख लेना। उस डिब्बे को हाथों में लिए मैं ट्रेन में आ बैठा। ट्रेन में बैठकर मैंने डिब्बे को खोलकर देखा तो आश्चर्य से आंखें फटी की फटी रह गईं। उस डिब्बे में दो मिट्टी के घुड़ले रखे थे। पहली बार माऊ के प्यार को पाकर मैं उन मिट्टी के घुड़लों को माऊ से मांगना भूल गया था। लेकिन उस समय मुझे इतना महसूस हो रहा था कि रिश्तों की इस डोर को माऊ ने मेरी इच्छाओं से सदैव ही प्रगाढ़ बनाने का प्रयास किया। एक दिन फोन पर बातें करते हुए माऊ ने कहा, ऋचा को मिर्जेवाला घुमा ले जाओ, बहुत याद आ रही है। शायद माऊ की ये इच्छा भगवान ने सुन ली। कुछ दिनों बाद डॉक्टर कृष्ण कुमार आसू जी के आमंत्रण पर मुझे पुरस्कार के लिए गंगानगर जाना था। माऊ की इच्छा या आदेश का पालन करते हुए ऋचा मेरी सहयात्री थी। दिन भर कार्यक्रम में सहभागिता के बाद मिर्जेवाला जाना हुआ। बड़े भाई साहब और भाभी अब सेवानिवृत्त हो चुके थे। बच्चे सभी अपने अपने काम से बाहर ही रह रहे थे। मैं और ऋचा जब घर पहुंचे तो घर सब अलग अलग बंटवारे की शक्ल ले चुका था। बड़े अशोक भाई जी मिर्जेवाला निवास कर रहे थे। माऊ और ताऊ जी उन्हीं के साथ थे। उस दिन माऊ को देखा, माऊ के चेहरे पर एक थकावट का बोझ उभरा हुआ था। आंखें सजल दिखाई दे रही थीं। चेहरे पर झुर्रियों का आधिपत्य था। गोरे रंग पर अब एक पीलापन उभरा हुआ था। सांसों में गति ज्यादा थी। माऊ ने आज पहले ऋचा की उंगलियों और हथेलियों को चूमा, सिर पर हाथ फिराया, फिर यही क्रिया मेरे साथ भी की। मुझे देखकर उनकी आंखें सजल हो गई थीं। अनेक तरह की बातों के अलावा माऊ के साथ ऋचा और मैंने अनेक फोटो खिंचवाई। मिर्जेवाला भी घूम कर आए, लेकिन समय इच्छाओं का सदैव बैर रहा है। मन में अभी न जाने कितनी इच्छाएं थीं, लेकिन समय की चाल ने हमें रोक दिया। शाम को स्टेशन पहुंचना था, इसी कारण अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधकर हम चलने को तैयार हुए। तब माऊ ने ऋचा को रोका, एक बक्से में से गंगानगर का वह पारंपरिक पहनावा, कुर्ता, घाघरा और चुनरी दिया। फिर उन्होंने एक सुंदर सा बोरला निकाला, वही मोतियों और कुंदन से सजा हुआ। माऊ ने ऋचा के हाथों में रखकर कहा, गुड्डू जब छोटा था तब इसने एक बार मुझसे मेरा बोरला मांगा था। तब मैंने इससे कहा था, तेरी बीननी को दूंगी। देख गुड्डू, तेरा बोरला बीननी को दे दिया है। इस बार मैं ज़्यादा चतुराई दिखाते हुए बोला, माऊ मेरे घुड़ले। माऊ ने एक डिब्बा मेरे हाथ में रख दिया और बोली, इस बार ऐसा घुड़लिया है जो कभी नहीं टूटेगा, संभाल के रखना मेरी निशानियों को। उस लौटती यात्रा में माऊ का वह चेहरा बार बार मुझे उनकी स्मृतियों की याद दिलाता रहा। मथुरा आने के बाद मैं अपने काम धंधे में लग गया। करीब 2 माह बाद मंजू भाभी का फोन आया। माऊ बातें करना चाहती हैं। माऊ की आवाज़ आज ज़्यादा सही नहीं लग रही थी। जिस अनहोनी का डर था वह 8वें दिन धर्मपाल भैया के एक मैसेज के रूप में फ़ोन पर पाया। माऊ नहीं रहीं। एकाएक आँखों के आगे माऊ का चेहरा घूम गया। कभी लाल दूध के कटोरे को मुँह से लगाते हुए, तो कभी डिब्बे को हाथों में थमाते हुए, कभी उंगुलियों, हथेली और सिर पर प्यार उड़ेलते हुए, तो कभी अंत समय में दरवाजे के सहारे असहज भाव से हमें विदा करते हुए। आंखों से बूंदें झर गईं। एक रिश्ता अनंत में विलीन हो गया। माऊ ने बचपन से आज तक की मेरी सारी इच्छाओं को पूरा किया था, लेकिन मैं माऊ की इस इच्छा को पूरा नहीं कर पाया। माऊ ने मेरे साथ बचपन से ही मुझे एक पुत्रवत माना। माऊ से मेरा खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन जो रिश्ता था वह खून के रिश्ते से अधिक प्रगाढ़ था। माँ के दूध के साथ माऊ के लाल दूध ने मुझे चलना ही नहीं, आगे बढ़ना और प्रेम के पथ पर चलना सिखाया। माऊ के प्रेम को पाकर अक्सर मुझे लगता है जैसे ईश्वर ने मुझे एक यशोदा मैया को मेरे लिए ही भेजा है। सच मुझ में कृष्ण का अंश मात्र भी नहीं है, लेकिन मैंने माऊ में यशोदा मैया के पूर्ण रूप को पाया। आज माऊ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे शोकेस में रखे मिट्टी के घुड़ले और वह ऊँट आज भी माऊ की याद दिलाते हैं। आज भी उस प्रेम और वात्सल्य की बदली की याद दिलाते हैं जो अब बरस कर दूर जा चुकी है।
1: अभी आप सुन रहे थे रेखा चित्र माऊ। आलेख और वचन था अंजीव कुमार रावत का।

FM 102.2 MHz पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से। कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: जिले की हलचल। जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए महोबा और गोरखपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं महोबा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित श्रोतिय का।
1: कारगिल विजय दिवस पर पूर्व सैनिकों ने महोबा तहसील के पचपहरा गांव पहुंचकर अमर सपूत जगदीश यादव की समाधि स्थल पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर मातृभूमि के लिए प्राणों की बाजी लगाने वाले अमर सपूतों के जीवन से जुड़े रोचक प्रसंग पूर्व सैनिकों के द्वारा सुनाए गए। बुंदेलखंड पूर्व सैनिक कल्याण संघ के उपाध्यक्ष कैप्टन देवीदीन यादव ने बताया कि 60 दिन तक चले कारगिल युद्ध में देश के 527 अमर सपूत शहीद हुए थे। कारगिल युद्ध में वीरभूमि से बालेंद्र सिंह और जगदीश यादव ने शहादत दी। वहीं गंजगांव के बलदानी बालेंद्र के बड़े भाई रणविजय सिंह ने कहा कि भाई ने देश की रक्षा के लिए शहादत। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने समाधि स्थल पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तहत महोबा जिले के पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज कनकुआ में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्राओं को संचारी रोगों के लक्षण, बचाव एवं स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रीति सिंह ने कहा कि डेंगू, मलेरिया और संचारी रोगों से बचाव के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि घर और आसपास पानी जमा न होने दें, स्वच्छ वातावरण बनाए रखना तथा व्यक्तिगत स्वच्छता अपनाना इन बीमारियों से बचने का सबसे प्रभावी उपाय है। उन्होंने छात्राओं को औषधीय पौधों के महत्व, संतुलित एवं पौष्टिक आहार तथा नियमित दिनचर्या अपनाने के लाभों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर कई बीमारियों से बचा जा सकता है। कार्यक्रम की नोडल अधिकारी डॉक्टर सुनैना ने कहा कि जागरूकता ही संचारी रोगों की रोकथाम का सबसे बड़ा माध्यम है। यदि लोग समय रहते सावधानी बरतें और स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करें तो डेंगू, मलेरिया सहित अन्य संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकता है। लगातार हो रही बारिश और ऊपरी क्षेत्र से पानी की आवक बढ़ने के कारण यूपी मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित लहचूरा बांध का जलस्तर अधिकतम भंडारण क्षमता तक पहुंच गया। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए सिंचाई विभाग ने एहतियातन बांध के दो फाटक करीब 1.5 फीट तक खोलकर 4100 क्यूसेक पानी धसान नदी में छोड़ा। पानी छोड़े जाने के बाद महोबा और झांसी जनपद के नदी के किनारे बसे 15 गाँव में काशी धवार, लिलवा, कोटरा, रिपनौर, बीहट, नगारा घाट, सेवड़ी और सिलैया गांव के साथ साथ झांसी जनपद के लहचूरा, बरौड़ा, असपुरा, झारखंड और सुजातपुर गांव में अलर्ट जारी कर दिया गया। ग्राम प्रधानों, लेखपालों तथा संबंधित अधिकारियों को ग्रामीणों को सचेत करने और नदी के तटों पर अनावश्यक आवाजाही रोकने के निर्देश दिए गए। लोगों से अपील की गई कि वे नदी में स्नान, मवेशियों को पानी पिलाने तथा अन्य किसी कार्य के लिए नदी के निकट न जाएं तथा प्रशासन की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। अभर अभियंता रामाश्री ने बताया कि लहचूरा बांध की न्यूनतम भंडारण क्षमता 179.83 मीटर तथा अधिकतम भंडारण क्षमता 182.30 मीटर निर्धारित है। लहचूरा बांध पूर्ण क्षमता से भर गया है। अर्जुन नहर के जरिए बांध से करीब 1500 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है जो अर्जुन बांध, चंद्रावल बांध, कबरई बांध में पहुँच रहा है। इन बांधों का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। वहीं प्रशासन ने धसान नदी के किनारे बसे गाँव में तत्काल सतर्कता बढ़ा दी है। 69वीं उत्तर प्रदेश पुलिस वार्षिक वैज्ञानिक अनुसंधान, पुलिस फोटोग्राफी, डॉग स्क्वाड, कंप्यूटर एवं सबोटाज चेक प्रतियोगिता में महोबा पुलिस ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जिले का नाम रोशन किया है। प्रतियोगिता में महोबा टीम के निरीक्षक विनोद कुमार सिंह ने अपने पेशेवर कौशल का शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 रजत पदक अपने नाम किए। पुलिस अधीक्षक शशांक सिंह ने बताया कि प्रयागराज जोन में आयोजित इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में निरीक्षक विनोद कुमार सिंह ने महोबा पुलिस के लिए गौरव बढ़ाया है। उनकी सफलता पूरे महोबा पुलिस परिवार के लिए गर्व का विषय है। इससे अन्य पुलिसकर्मी भी प्रेरणा लेकर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। महोबा जिले में 900 करोड़ रुपए की लागत से जल जीवन मिशन के अंतर्गत व्यापक कार्य कराए गए। जिले के 416 गांव में से 343 गांवों को इस योजना से जोड़ा गया। योजना के सभी ओवरहेड जलाशयों का निर्माण पूरा हो चुका है। इन गांवों में 3213 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने के लक्ष्य के मुकाबले 3206 किलोमीटर से अधिक पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है। घरेलू नल कनेक्शन का कार्य 99.83% पूरा हो चुका है, जबकि सड़क मरम्मत का कार्य भी अधिकांश गांव में पूरा किया जा चुका है। स्थानीय निवासी सुमन देवी बताती हैं कि वे कई किलोमीटर दूर से पानी लाती थीं, लेकिन आज घरों में पानी साफ आ रहा है। बम्होरी काजी

0: आदिवासी मोतीलाल कुशवाहा बताते हैं कि वे पहले कुओं से पानी भरते थे, पानी के लिए लंबी लाइन में लगना पड़ता था। आज जल जीवन मिशन योजना से अब उनके परिवार में स्वच्छ पानी आता है।
1: पहले हम लोग कुआं से पानी भरते थे, बड़ी परेशानी होती थी। अब जल जीवन मिशन के तहत हम लोग टोंटी वाले पानी से पानी भरते हैं, पानी रोज आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे दर्द को समझा और हमारी हालात बदल गई, पानी मिल रहा है।
2: महोबा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गोरखपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है जीएन चौबे का।
3: 6 जुलाई को गोरखपुर के नगरीय और व्यावसायिक विकास को और ऊंचाई देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात दी। लखनऊ में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में गोरखपुर नगर निगम के 80 करोड़ रुपए के म्युनिसिपल बांड लाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई। नगर निगम इस बांड से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल मल्टी स्टोरी कमर्शियल कम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाने में करेगा। यह अत्याधुनिक और बहुआयामी कॉम्प्लेक्स गोलघर स्थित जलकल परिसर में बनाया जाएगा। योगी सरकार ने स्थानीय निकायों को वित्तीय रूप से स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के अपने संकल्प के अंतर्गत नगर निगम गोरखपुर द्वारा म्युनिसिपल बांड के क्रियान्वयन से जुड़े 80 करोड़ रुपए की धनराशि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस स्वीकृत प्रस्ताव के माध्यम से नगर निगम जलकल परिसर में एक अत्याधुनिक और विशाल मल्टी स्टोरी कमर्शियल कम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को धरातल पर उतारने से पहले स्थानीय प्रशासन द्वारा सभी स्टेक होल्डर्स, बिल्डर्स और ट्रस्टियों के साथ व्यापक स्तर पर विचार विमर्श कर सर्वसम्मति से सुनिश्चित की गई थी, जिसके बाद इस लोक कल्याणकारी और राजस्व जनित प्रस्ताव को कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। 11 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भटहट बांस स्थान फोर लेन सड़क सहित करीब 758 करोड़ रुपए की लागत वाले 24 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की राजनीति पर जोरदार शाब्दिक प्रहार करते हुए कहा कि जब भी मौका मिला कांग्रेस और सपा ने भारतीय मान बिंदियों पर कुठाराघात किया है। सपा का इतिहास राम भक्तों के खून से सना हुआ है, जबकि कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार थी तब उसने सुप्रीम कोर्ट का हलफनामा देकर भगवान श्री राम को मिथक और काल्पनिक साबित करने का कुत्सित प्रयास किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सपा जाति के नाम पर समाज को बांटने की साजिश रचकर विकास प्रक्रिया को बाधित करती है, इससे आमजन को सतर्क रहना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता है।
4: ये विकास इसलिए हो पाया है क्योंकि सुरक्षा का माहौल है, डबल इंजन की सरकार है। बिना भेदभाव के विकास की योजना का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान, हर महिला तक पहुंचाने के लिए संकल्पित ये सरकार है। और उस कार्य के साथ जब सभी लोग मिलकर के कार्य करते हैं, ये सब चुनने का परिणाम क्या है, विकास इतनी तेजी के साथ हो रहा है।
3: सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस शुरुआत से ही हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करती रही है। भगवान सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जब तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को बुलाया गया तब भी इसका विरोध कांग्रेस ने ही किया था। 23 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 लेन फ्लाईओवर सहित गोरखपुर को 995 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उपहार दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 813.52 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का लोकार्पण और 181.77 करोड़ रुपए की 10 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर की विकास परक उपलब्धियों को नई ऊंचाई देने के लिए आयोजित जिले के पहले 6 लेन फ्लाईओवर सहित 995 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 के पहले इंसेफ्लाइटिस को लेकर सरकारी उदासीनता, सुरक्षा और निवेश के बदतर हालात को लेकर भी कांग्रेस और सपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले इंसेफ्लाइटिस बीमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए नियति बन चुकी थी, इसकी चपेट में आकर हजारों बच्चों की मौत हो गई, पर तब की सरकारों के कान में जूं तक नहीं रेंगता था। सरकारें कान में रुई डालकर सोती रहती थीं। उन्होंने जनता की पीड़ा महसूस करने की फुर्सत नहीं थी। उन्होंने कहा कि बच्चों, किशोरों और नौजवानों के साथ कांग्रेस और सपा ने जितना शोषण और अत्याचार किया, उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। जिले में श्रावण मास को लेकर तैयारियां व्यापक स्तर पर चल रही है। भगवान

0: शिव के मंदिरों में साफ सफाई की जा रही है। आगामी 30 जुलाई से सावन की शुरुआत होगी, जिसमें भगवान शिव के मंदिरों पर श्रद्धालुओं की ओर से जलाभिषेक किया जाएगा, जिसको लेकर नगर निगम की ओर से भी साफ सफाई को लेकर तैयारी की जा रही है। भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक हर हर महादेव व ओम नमः शिवाय के जयकारों के साथ होगा।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम आबोहवा। विषय है वेदों में पर्यावरण, आलेख और वाचन है डॉक्टर सुदेश आहूजा का।
3: वेदों में पर्यावरण के महत्व व उसकी रक्षा हेतु गहन चिंतन किया गया है। ऋग्वेद में सभी प्राकृतिक शक्तियों की उपासना है, अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, वनस्पति, अंतरिक्ष, आकाश आदि सभी के प्रति असीम श्रद्धा व्यक्त की गई है। वेदों में जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वायु आदि सभी को देवीय शक्ति के रूप में माना गया है। यदि हम अपने तत्वदर्शी ऋषियों के बताए रास्ते पर चलते तो हमारे सामने जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इलेक्ट्रॉनिक व रेडियोधर्मी प्रदूषण की समस्याएं पैदा ही नहीं होती। श्रोताओं, वेदों में ऋषियों ने सैकड़ों मंत्रों में पर्यावरण के प्रति चेतना उत्पन्न की है, किंतु अथर्ववेद में विशेष रूप से पर्यावरण चेतना दिखाई देती है। अथर्ववेद का भूमि सूत्र और उसके 63 मंत्र पर्यावरण के प्रति जागरूकता वे चेतना के महत्वपूर्ण निर्देश देते हैं। भूमि सूक्त का एक मंत्र वृक्ष की ओर से चेतावनी देता है कि हे मानव, तू मुझे मत काट, अन्यथा मैं तुझे काट दूंगा। भूमि के अनावश्यक खनन का वेद में बार बार निषेध किया गया है। ऋषि ने भूमि सूक्त में भूमि की माँ के रूप में वंदना की है। भूमि पर मूल्यवान वनस्पतियां वे विशाल वृक्ष हमें शुद्ध प्राणवायु प्रदान करते हैं, अतः उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। वैदिक ऋषि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के प्रति जागरूक है। वे कहते हैं कि पृथ्वी के जिस भाग को खोदें उसे शीघ्र भरा जाए तथा पृथ्वी के गर्भ को हानि न पहुंचाई जाए। वेद में क्षेत्रपति सूक्त में कृषि कर्म की महत्ता, पौधों व वनस्पतियों का मधु से परिपूर्ण होना तथा इंद्र का उर्वरापति के रूप में वर्णन है। अरण्यानि सूक्त में वनों के संरक्षण, संवर्धन व विनाश से बचाने के लिए वन देवी से प्रार्थना की गई है। हे वन देवी, तू ऐसा उपाय कर या हम सबको मिलकर ऐसा कोई उपाय सोचना होगा कि वनों का रक्षण हो। यह वानस्पतिक चेतना का सूक्त है। अथर्ववेद में एक जगह वर्णन मिलता है कि आर्य हिंसा न करते हुए सावधानी से शाप के पर्वों को काटते थे, जिससे औषधियां क्रोध रहित होती थी और भली भांति पुष्पित व पल्लवित होती थी। अथर्ववेद में पर्यावरण का विध्वंस करने वालों को मृत्युदंड का विधान था तथा प्राणी व पशु की हिंसा करने वाली जातियों को सीसे की रोली से मार दिया जाता था। श्रोताओं, वेद में जल को शुद्ध रखने के भी अनेक निर्देश दिए गए हैं। ऋग्वेद व अथर्ववेद के अनेक सूत्र वर्षा एवं जल के महत्व को दर्शाते हैं। जल के अनेक औषधीय गुण विद्यमान हैं, अतः मानव जीवन, कृषि, वनस्पति व खाद्यान्न सभी का अस्तित्व जल पर निर्भर करता है। वेदों में वातावरण को शुद्ध बनाए रखने व वृष्टि के लिए यज्ञ पर भी बल दिया गया है। यज्ञ का वायुमंडल व मानव मन पर चिकित्सकीय प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार वेदों में पर्यावरण चेतना के अनेक मंत्र हैं जो मनुष्य को स्वस्थ व शुद्ध जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। श्रोता हूँ, यदि हम वेदों में दी गई उपासना पद्धति को अपने जीवन में उतार लें तो हम अपने पर्यावरण को भी संरक्षित कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आबो हवा, विषय था वेदों में पर्यावरण। आलेख और वाचन था डॉक्टर सुदेश आहूजा का। आइए अब आपको सुनाते हैं विशेष बातचीत, जिसका विषय है गजल के विविध आयाम। विशेषज्ञ नवीन सी चतुर्वेदी से बातचीत कर रहे हैं ओपी सिंह।
1: श्रोताओं नमस्कार, आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं नवीन सिंह चतुर्वेदी जी। आप यूँ तो ब्रजवासी हैं लेकिन अभी महाराष्ट्र बॉम्बे में विराजे हैं। बहुभाषी गजलकार हैं, साहित्यकार हैं, लेकिन अगर धंधे की बात करें तो व्यापार से जुड़े हुए हैं। व्यापार और टेक्नोलॉजी से जुड़ करके साहित्य की बात करना अपने आप में थोड़ा सा विरोधाभासी हो जाता है, लेकिन गजल कहना, हिंदी में कहना, ब्रजभाषा में कहना, क्योंकि गज़ल को अगर हम देखते हैं तो उर्दू भाषा की मुख्यतः विधा है, लेकिन इस विधा को पहले ब्रजभाषा में लेके आना, फिर हिंदी में लेके आना और गुजराती और मराठी तक लेकर के जाना अपने आप में एक ऐसा व्यक्तित्व तो खड़ा करता है जो निश्चित तौर पे मेहनत तो मांगता है। वो सोच, वो जज्बा और वो काम जिसको वो अपने जीवन यापन के साथ किए हुए काम के साथ आगे लेकर के जा रहे हैं, निश्चित तौर पे थोड़ा सा लीक से हट कर के हो जाता है, थोड़ा मेहनत मांगता है और एक अलग सोच तो है ही। तो ऐसे नवीन सिंह चतुर्वेदी जी आज हमारे साथ हैं। सर, मैं आपका अपने इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। नमस्कार।
2: नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत आभार, बड़ा आनंद आ रहा है आपसे मिलकर।
1: जी जी, तो गज़ल कहना और उर्दू से हट कर के कहना सुनने में अच्छा भी लग रहा है, और किसी भी चीज़ को जब हम बहुआयामी बना देते हैं तो निश्चित तौर पे हमारा जो प्रयास है वो सार्थक भी होने लगता है जी। तो ब्रजभाषी होकर के ब्रजभाषा तक लेके आएगा गजल, ये तो अच्छा है, लेकिन और भी आपने विस्तार दिया, तो हम जानना चाहेंगे कि ये जो आपको शौक है गजल कहने का और गजल को आगे ले जाने का, ये कहाँ से और कब लगा आपको?
2: किसी भी आम इंसान की तरह जो ओल्डी गोल्डी होती है ना, पुराने गाने उनको सुन सुन के तो रुचि जागृत होती है, और जब आप कॉलेज में होते हैं, विद्यार्थी जीवन होता है, तो कहीं ना कहीं वो दुष्यंत की शायरी भी आप तक आ जाती है। नाम पता नहीं होता है ये दुष्यंत का शेर है, दुष्यंत आप तक आ जाता है, और भी कई बड़े बड़े शायर आप तक आ जाते हैं, फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हैं, और कालांतर में अगर ईश्वर की कृपा होती है, माँ वीणा पाणी की कृपा होती है, तो आप खुद भी शायर बन जाते हैं। बस वही कृपा मुझ पर हुई।
1: तो गजल लोग कहते हैं, गजल वैसे तो जहनी चीज है, अपने दिल से निकलती है, तो आपने जिन चीज़ों को कहा तो वो स्वाभाविक जीवन से जुड़ी हुई थी या कहीं से कुछ विशेष चीज़ें निकल करके आई?
2: अदब में यानी साहित्य में, विशेषकर उर्दू शायरी में जी, शायरी को मवाद कहा जाता है, कि ये हमारा जहनी मवाद है। जैसे हमारे शरीर में मवाद हो जाता है, निकलता है तब आराम मिलता है, तो विचार जब इतने उद्वेलित हो जाते हैं तो वो कैसे निकलेंगे? किसी न किसी फाइन आर्ट्स के जरिए ही निकलेंगे। नाचने वाला नाचेगा, गाने वाला गाएगा, क्राफ्ट वाला क्राफ्ट बनाएगा, जो भी क्रिएटिव आदमी है कुछ न कुछ क्रिएचर वो आपको देगा, संसार को देगा।
1: जी जी,
2: ईश्वर की जिस दिन कृपा होती है आप वो देना आरंभ कर देते हैं, और ये आपका मवाद निकलना आरंभ होता है। यहाँ मवाद को अच्छे अर्थ में लेना,
1: अच्छे लेना चाहिए, मतलब जो जो जो सोच है हमारे अंदर, जिस चीज़ को हम साहित्यकार के लिए कहते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति किसी चीज़ को देख करके ऐसे ही छोड़ के चला जाता है, लेकिन साहित्यकार होता है, जो इतिहासकार होता है, वो चीज़ों को चूँकि अलग नज़रिए से देखता है तो वहाँ से वो कुछ चीज़ें उठा लेता है। साहित्यकार अपनी कृति के लिए कोई एक पायदान ले लेता है जहाँ से शुरुआत होती है, गजलकार वहाँ से गजल उठा लेता है उसमें। तो जो जैसे हिंदी में कहा जाता है कि प्रसव पीड़ा है,
2: बिल्कुल
1: है, बिल्कुल, तो वहाँ आप गजल कहने के लिए एक पीड़ा तो कहीं से आप उठाते हैं, तो वो आपका जो मुख्य प्लॉट है आप कहाँ से लेते हैं?
2: घूमते फिरते कहीं से भी विचार आपके पास आ जाता है
1: जी,
2: कहीं से भी आ सकता है। जैसे मतलब कहीं आप मंच पर कोई खड़ा हुआ है, कोई बोलना चाह रहा है और कोई उसको रोक रहा है बोलने के लिए, तो वहीं से प्लॉट मिलता है कि कोई जब रोके तुम्हें तो रुक न जाना,
1: क्या बात है,
2: कोई जब रोके तुम्हें

0: तो रुक ना जाना, अरे वर्जना तो सड़जना की गर्जना है,
1: क्या बात है।
0: तो प्लॉट यूं निकल कर आ जाता है कि कोई जब रोके तुम्हें तो रुक ना जाना, वर्जना तो सड़जना की गर्जना है,
1: वहां से
0: प्लॉट कहीं से
1: है।
0: भी आ सकता है। और ये हिंदी गजल है।
1: बहुत सही कहा आपने। तो आपकी जो पहली, जिसे अगर मैं उम्र जानना चाहूँ, विद्यार्थी जीवन की आप बात कर रहे हैं उसमें, तो कहाँ से वो उम्र कितनी रही होगी जब आपने इस उसको शुरुआत
0: मैं
1: की?
0: हाई स्कूल कर चुका था, 11वीं में आया था। मेरे पिताजी भी, पूज्य पिताजी भी छुटपुट जो पुरातन छंद होते हैं लिखा करते थे, तो यमाता राजभान का सलगा जो है गण का, वो पिताजी ने पहले सिखाया था, वहीं कहीं स्टार्ट हो गया था। और उस समय सरोज जी थे हमारे गली सेठ भीकचंद में,
1: जी जी जी
0: सुमन जी या सरोज, सुमन जी थे शायद, उन्होंने एक संग्रह निकाला था। और जो मुझे याद आता है, मेरी पहली कविता उसमें छपी थी, खुद ही बढ़ते रहते हैं निज शाखों को फैलाते हैं, खुद ही बढ़ते रहते हैं निज शाखों को फैलाते हैं, बरगद इतने बढ़े नए पौधे फल फूल ना पाते हैं।
1: क्या बात है, क्या
0: ये उस समय छपी थी,
1: बात है।
0: शायद 85-86 की बात होनी चाहिए, मगर मंचों पर और गोष्ठियों में उससे पहले में पूज्य गुरुदेव यमुना प्रसाद चतुर्वेदी पीतम जी के साथ जाना आरंभ कर चुका
1: कर
0: था।
1: चुके
0: उसमें नटवर नागर जी थे, उस समय के जो कवि लोग हुआ करते थे उन सबका
1: जी
0: सान्निध्य
1: जी
0: मिला था
1: इस पे
0: उनका।
1: आपने जो बरगद की बात कही है, आदरणीय विद्यानिवास मिश्र जी ने बड़ा अच्छा एक वो
0: बिल्कुल,
1: लिखा है, और ये बरगद
0: बहुत
1: की
0: बढ़िया
1: बड़ी
0: आर्टिकल है
1: आलोचना भी है
0: जी।
1: कि बरगद यूं तो पूज्य है, विशालतम है, और इसको हम सब कुछ उसमें
0: जी
1: हिंदी उसमें
0: जी
1: लेते हैं,
0: जी
1: लेकिन ये उसका दुर्गुण भी
0: ये
1: है
0: दुर्गुण भी
1: कि बहुत
0: है, पनपने
1: सारे
0: नहीं देता,
1: पनपने नहीं देता अपने
0: प्रोजेक्ट
1: अंदर।
0: ऐसे ही मिलते हैं, थॉट
1: हाँ
0: ऐसे ही आ जाते हैं।
1: हाँ लौट के वहीं आता हूँ कि भाई गज़ल जब हम कह रहे हैं तो उर्दू के साथ गज़ल कर आता है,
0: जी
1: लेकिन आप हिंदी की बात कर रहे हैं, ब्रजभाषा की बात कर रहे हैं,
0: जी
1: तो आपने हिंदी में कहा, लेकिन ब्रजभाषा में जब हम इसको लेकर के आते
0: जी
1: हैं तो फिर वो कैसे गज़ल बनती है, उसमें थोड़ा सा कह के बताइए श्रोताओं को।
0: एक्चुअली मैं जब उर्दू में गजलें कहता था तो उसमें बहुत बार हिंदी की छाया आ जाती थी, बहुत बार ब्रज की छाया आ जाती थी।
1: जी जी
0: तो जो हमारे मित्र वर्ग हैं, गुरु आचार्य लोग हैं, वो कहते थे, अगर इतना ही शौक है तो यार ब्रजभाषा में गजल क्यों नहीं कह देता है तू, किसी ने नहीं किया, तू शुरुआत कर।
1: तुम
0: तो
1: हाँ शुरुआत नहीं।
0: ऐसे एक तरह ही चल रही थी, वर्कशॉप जिसको जो होते हैं, उसमें मिश्रा आया कि अच्छा ये आप समझे हैं, अच्छा यही सही, ये वाक्य था, पंक्ति थी। तो मैंने अपने गुरुवर तुफिल चतुर्वेदी जी से पूछा कि दादा आप हमेशा कहते हो ब्रजभाषा ब्रजभाषा, आप कहो तो मैं इसमें गजल कह दूं। तो बोला कह दे। यूं पहली गजल ब्रजभाषा की उसमें आई थी,
1: गुरु आज्ञा हो गई कि
0: गुरु
1: आप
0: आज्ञा से। अब
1: इसको।
0: तो ठाकुर जी की कृपा से 50 लोग इस क्षेत्र में जुड़ चुके हैं, और अनेक थॉट ऐसे होते हैं कि भैया आप कुछ भी कर लो वो ब्रजभाषा में ही अच्छे लगते हैं। जैसे कि कृष्ण के माध्यम से मैं आपको एक दो चीज सुनाता
1: स्वागत है,
0: हूं,
1: स्वागत है जी।
0: कि कृष्ण का जो जीवन है ना, जन्म से लेकर सिधारे तब तक संघर्ष ही संघर्ष
1: संघर्ष।
0: है, कि जन्म सो मृत्यु तक झमेले हैं, जन्म सो मृत्यु तक झमेले हैं, कृष्ण ने कम कलेश झेले हैं। अब ये बात आप जो है उर्दू में ना कह सको,
1: सही बात
0: हिंदी
1: है।
0: में भी ना कह सको, ये जो टोन है, कृष्ण ने कम कलेश झेले हैं, और मधुपुरी में जो बच गए पापर, मधुपुरी में जो बच गए पापर जाए घे द्वारका में बेले हैं।
1: बेले हैं।
0: तो ये हर भाषा का एक टोन होता है, कि कोई बात ब्रजभाषा में ही अच्छी लगेगी, कोई बात उर्दू में ही अच्छी लगेगी, कुछ हिंदी में ही अच्छी लगेगी। तो वो जो है ना, ठाकुर जी की कृपा थे। और मेरा उर्दू में एक शेर है, उर्दू में मेरा एक शेर है, बीच बीच
1: जी
0: में ब्रजभाषा आ जाती
1: नहीं
0: है
1: नहीं
0: यार,
1: स्वागत है, इसीलिए मिला
0: कि
1: जुला संवाद है
0: उर्दू
1: जी।
0: में एक शेर है, मेरा ही है शेर, कि मेरे अंदर का बशर, बशर यानी व्यक्ति, मनुष्य,
1: व्यक्ति।
0: मेरे अंदर का बशर रोज बदल जाता है,
1: क्या बात है,
0: मेरे
1: अंदर
0: अंदर का
1: का
0: बशर रोज बदल जाता है, मुख्तलिफ लहजे न अपनाऊं तो गूंगा हो जाऊं।
1: क्या बात
0: अलग अलग विचार आते हैं, अलग अलग भाषाएं आती हैं, अलग अलग थॉट आते हैं। अब कुछ बातें हिंदी में ही अच्छी लगती हैं, उर्दू में नहीं अच्छी लगती।
1: शायद इसीलिए कहा है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, तो चीज़ें बदलती हैं, व्यक्ति भी बदलता है, परिस्थितियाँ भी बदलती हैं, तो चीज़ें भी बदलेंगी उसमें। तो सुंदर लग रहा है कि गज़ल को जो हम ब्रजभाषा में
0: आप मो
1: सुन रहे हैं।
0: ब्रजभाषा को एक उदाहरण और
1: जी
0: दूं मैं,
1: स्वागत है जी।
0: कि यों ही मारी नहीं

0: गुलाटी है, यों ही मारी नहीं गुलाटी है, ढील दे के पतंग काटी है।
1: काटी है, क्या बात
0: यों ही मारी नहीं गुलाटी है, ढील दे के पतंग काटी है, और हेकड़ी टांग देओ खूंटा पे, हेकड़ी
1: है।
0: टांग देओ खूंटा पे, हर सिकंदर ने धूर चाटी है।
1: अब ये जो ब्रजभाषा के जो शब्द हैं, चूंकि आपने उर्दू के उसके साथ जोड़ दिए गजल के साथ, तो अच्छे लग रहे हैं,
0: अच्छे
1: लेकिन
0: लग रहे हैं
1: ठाठी ब्रजभाषा आप उपयोग कर रहे हैं
0: जी
1: तो ये अच्छा लग रहा है कि हाँ गजल ब्रजभाषा में कही जा सकती है, इसको
0: जी
1: कोई प्रमाण की आवश्यकता
0: अब तो
1: नहीं।
0: संभव हो गया। अब तो और ब्रजभाषा के कई एक्सेंट हैं, मतलब कई फ्लेवर्स हैं। एक फ्लेवर और आपको दिखलाता हूं मैं कि सब कुछ अगर कंट्रोल में है तो परेशानी है चो, सब कुछ अगर कंट्रोल में है तो परेशानी है चो, और शहरन में इतनी भीड़ और गामन में बीरानी है चो, सगरो सरोवर सोख के बस बूंद भर बरसात है, सगरो सरोवर सोख के बस बूंद भर बरसात है, बच्चन की मैया बाप पे इतनी मेहरबानी है चो, बच्चन की मैया बाप पे इतनी मेहरबानी है चो। और शायद इसकी जोड़ का शेर आपने नहीं सुना होगा कि धरती पे तारे लाए बे की जिद्द हमने चो करी, विकास अपनी कीमत लिखता है,
1: बिल्कुल
0: विकास आता है तो अपनी बुराइयों के साथ आता है, कि धरती पे तारे लाए बे की जिद्द हमने चो करी, और जब कर दई तो रात की सत्ता पे हैरानी है चो,
1: सही बात है। फिर क्यों शिकायत करते हो,
0: जब तारे चाहिए तो रात भी आएगी।
1: रात भी आएगी।
0: अब ब्रजभाषा का तीसरा देखिए आप, कि नाम को सिद्ध करती रही रात भर, एकदम पुरातन फ्लेवर है ये। एक फ्लेवर वो आया, दूसरा वो आया, तीसरा ये है कि नाम को सिद्ध करती रही रात भर, रात रानी महकती रही रात भर,
1: रात भर
0: नाम को सिद्ध करती रही रात भर, रात रानी महकती रही रात भर, केस अदालत में वो जीत आई भले। हमारी मातृशक्तियां लड़ नहीं पाती हैं, लेकिन कुछ लड़ती हैं, अदालत तक पहुंच भी जाती हैं, जीत भी
1: जीत भी
0: जाती
1: जाती
0: हैं,
1: हैं।
0: मगर उसके बाद भी केस अदालत में वो जीत आई भले, हार को स्वाद चखती रही रात भर,
1: क्या बात है।
0: हार को स्वाद चखती रही रात भर। और फिर ब्रजभाषा ने एक नया शेर दिया है साहब, कि अश्रु धारण सो सिगरो महल भर दियो, ऐसा शेर अभी तक हुआ नहीं है साहब। अश्रु धारण सो सिगरो महल भर दियो, जल महल में टहलती रही रात भर,
1: क्या बात
0: जल महल में टहलती रही रात भर। तो ब्रजभाषा के भी अनेक फ्लेवर हैं, और
1: वो
0: मैं
1: वही
0: सबको
1: वही
0: एंजॉय
1: से
0: करता हूं।
1: हाँ वहीं से निकल के
0: हाँ
1: आते हैं, अपने आसपास
0: जी
1: से
0: जी
1: निकल के रहे। तो पहला जो आपका गजल संग्रह अगर हम देखें तो वो कौन सा निकल करके आ रहा है
0: सबसे
1: उसमें?
0: पहला जो मेरा ब्रजभाषा का गजल संग्रह आया उसका नाम है पुखराज हवा में उड़ रही है, और यह 2015 में आया था, और हमारे हिंदी उर्दू के प्रकांड शायर आदरणीय विज्ञानव्रत एवं अन्य साथियों ने भी कहा है कि ये दुनिया का पहला ऐसा संग्रह है कि जिसमें एक ही गजल को दो जबानों में कहा गया है और सेम मीटर पर कहा गया है। उल्टे हाथ पर जो ब्रजभाषा की गजल है, सीधे हाथ पर वही
1: उर्दू
0: उर्दू
1: में गजल
0: देव
1: थी।
0: लिपि देवनागरी है,
1: हाँ
0: मगर जबान उसकी उर्दू है,
1: उर्दू है।
0: और वही बहर है, वे ही रदीफ काफिये हैं, वही सब्जेक्ट है।
1: तो एक गजल गजल कही जाए इसके लिए कुछ पैरामीटर तो होते होंगे, जैसे आप मीटर की बात कर रहे हैं, बहर की बात
0: जी
1: कर रहे
0: जी
1: हैं ना,
0: जी
1: तो ये मतलब तभी गजल होगी, चाहे वो उर्दू में हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे वो ब्रजभाषा में हो, आप तो उसे गुजराती और मराठी में भी लेकर के जा रहे हैं, तो कुछ ऐसे होंगे कि ये चीज़ें तो होनी चाहिए, तभी तो गजल होगी।
0: सबसे पहली बात तो एक मीटर यानी छंद यानी बहर होना ही चाहिए, तो
1: हाँ
0: जानकार लोग पहचान जाते हैं कि भैया
1: ये गजल है।
0: ये गजल है। एक शेर और मुझे याद आ रहा है इसी समय, भूल के भी कभी पैजनिया को पाजेब न बोल, भूल के भी कभी पैजनिया को पाजेब न बोल, किसकी झनकार है फनकार समझ लेते हैं। तो जो जानकार
1: जो जो
0: होते
1: गुणी है
0: हैं
1: वो जान जाते हैं
0: वो पकड़
1: कि
0: लेता है कि ये गजल है, तो सबसे पहले तो उसमें बहर होनी चाहिए यानी छंद यानी मीटर होना चाहिए, फिर उसके दूसरे तुरंत जो होना है कि उसका एक विधान है कि उसमें रदीफ और काफिया होंगे।
1: काफी होनी चाहिए। तो वो फिर
0: है ना, तो
1: गजल
0: वो होना चाहिए। फिर इसके दूसरे और अनेक कायदे कानून हैं, वो एक एक करके मानने पड़ते हैं हमको।
1: सारे लोग जो साहित्य में है काम कर रहे हैं अपने तरीके से कर रहे हैं, सजल करके एक नई विधा का भी जिक्र करते हैं,
0: हाँ
1: हमने भी देखा है वो, और सुनने में हालांकि अच्छा भी लगता है।

0: है, लेकिन अब हम जैसे लोग तो मान लेते हैं ठीक है सजल भी हो सकती है, लेकिन गजल का, गजल उर्दू में है तो हिंदी में उसको सजल कह लेने में क्या परेशानी है। लेकिन इस पर थोड़ा सा आपकी टिप्पणी
1: जी,
0: आलोचनात्मक नहीं लेकिन संज्ञात्मक, हाँ ये
1: बिल्कुल
0: तथ्यात्मक
1: बिल्कुल।
0: जो बात हो सकती
1: देखो,
0: है।
1: सबसे पहले तो एक बात हम इसमें स्वीकार कर लें कि हर वह व्यक्ति जो कुछ सृजन कर रहा है वह सम्मान योग्य
0: जी
1: है।
0: जी हाँ वो आदरणीय
1: वो
0: हमारे।
1: किसी भी फॉर्मेट में कर रहा हो, किसी
0: हाँ
1: भी तरह का कर रहा हो, कुछ गलत काम नहीं कर रहा है ना, कुछ भी
0: साहित्य सेवा तो
1: आप
0: कर ही
1: समझ
0: रहे।
1: गए ना, कुछ
0: हाँ
1: सब बुराइयों से बचा हुआ है,
0: हाँ
1: कुछ क्रिएट कर रहा है, तो उसका सम्मान है। अब आता है कि सजल ही क्यों, ठीक है उनको अच्छा लग रहा है वो कह रहे हैं। आप शंकर महादेवन को लीजिए, आपको उदाहरण देता हूं, वो क्लासिकल भी करता है, वो लाइट भी करता है, वो पॉप भी करता है, वो रैप भी करता है, ही नोज व्हाट इज गजल एंड व्हाट इज सजल।
0: मतलब वो उसका आयाम है, वो ठीक
1: तो
0: है,
1: जिसको गजल
0: साहित्य
1: आता
0: सेवा
1: है,
0: हो रही है
1: जो गजल
0: वो
1: को जानता है वो गजल कहता है,
0: गजल
1: जिसको
0: कहता
1: सजल सुविधाजनक लगती है वो
0: है।
1: सजल कहता है।
0: गजल का जैसे आपने कहा कि भाई मीटर है, बहर है, वो है इसमें, लेकिन एक गजल हुई जैसे आपने आदरणीय दुष्यंत जी का कहा, उन्हीं के
1: जी
0: माध्यम से अगर आप समझा पाए एक आम व्यक्ति को कि गजल में सामान्यतः हम दो लाइनें एक साथ देखते हैं, तो पहली लाइन और दूसरी लाइन बिल्कुल मुख्तलिफ होती है।
1: जी
0: पहली लाइन बिल्कुल है उसका अर्थ निकलना है, वो एक भी कही
1: जी
0: जाए
1: जी
0: तो ठीक है, दूसरी कह देते हैं तो वो भी मुख्तलिफ है, लेकिन
1: जी
0: दोनों साथ आती हैं तो शायद सौंदर्य और बढ़ जाता
1: जी
0: है।
1: जी
0: तो ये गजल के साथ
1: बिल्कुल,
0: ऐसा,
1: मैं
0: इसको
1: कहता
0: थोड़ा सा
1: हूं
0: मैं श्रोताओं को बताएं
1: केवल
0: कि
1: गजल
0: ये
1: ही
0: गजल का
1: नहीं,
0: सौंदर्य।
1: काव्य बिल्कुल है। काव्य में जब भी आप कुछ भी, इवन फ्री वर्सेस भी लिख रहे हैं, तो एक जो बेसिक रूल है, जो भी हमारे मित्र, चाहे वो भजन भी लिख रहे हों, वो कीर्तन भी लिख रहे हों, या कोई रसिया भी लिख रहा हो, या वो हाइकू लिख रहा हो, या कुछ भी लिख रहा हो, उसको इस बात को गांठ बांध लेना चाहिए कि अगर वो कह रहा है कि कुत्ते ने आदमी को काटा, तो ये अखबार की खबर है, ये कविता नहीं हुई।
0: कविता नहीं हो सकती है। हाँ उसी मायने
1: आदमी
0: उसको।
1: ने कुत्ते को काटा
0: हाँ
1: तो कुछ
0: हाँ
1: नई बात हुई,
0: कुछ नहीं
1: तो
0: बात।
1: उसमें कुछ अर्थ विस्फोट होना चाहिए। हमें रियाज करनी चाहिए, हमें तपस्या करनी
0: शायद
1: चाहिए,
0: जिंदगी शॉर्टकट है नहीं।
1: शॉर्टकट में नहीं जाना चाहिए।
0: आपने कृष्ण के माध्यम से कहा
1: देखो, जन्म से
0: कि
1: मृत्यु
0: जंग।
1: तक जिसको पूरी दुनिया पूछती है, उसका पूरा जीवन संघर्ष में ही चला गया। नेक्सी घाम सहन पामे हम, भाई साहब, नेक्सी घाम सहन पामे हम, कृष्ण धावा नलन सो खेले हैं, जीवन भर आग से उलझे हैं, तब वो कृष्ण बने हैं।
0: फिर भी ये जो जीवन का सौंदर्य आनंद है उसको जाने नहीं दिया, उसमें
1: जाने नहीं
0: कभी
1: दिया,
0: थके नहीं, हारे
1: थके
0: नहीं,
1: नहीं।
0: निराश नहीं। तो ये हम ब्रजवासियों के लिए बहुत बड़ा
1: जी
0: मैसेज है।
1: जी जी
0: अब इस पर थोड़ा सा आगे चलते हैं कि इसमें भाई गुजराती में भी आप कह रहे हैं, तो गुजरात कब पहुंच गए आप? अभी बॉम्बे में तो चलो मराठी में तो हमें
1: जी
0: लगता
1: जी
0: है
1: जी
0: कि भाई बॉम्बे में रह रहे तो मराठी में भी गजल आप कह
1: देखो
0: रहे
1: भैया, हम
0: होंगे।
1: मथुरा के चौगी हैं, तो हम पंडिताई करें, हमारे गुजराती जजमान आम है, तो बचपन दी गुजराती बुलबे की सुनबे की आदत पड़ी भैया, समन को यात्रा करामे, दर्शन धाम करामे, तो वो गुजराती आधी तो यहीं सीख गए हम। फिर एक वर्ष हमने गुजरात में नौकरी की, और जिसके यहाँ नौकरी की वहाँ गुजराती वातावरण था, तो यूँ गुजराती हम सीखते चले गए। और कालांतर में जब गुजराती मित्रों के साथ भी उठक बैठक हुई, साहित्यकार जो गुजराती थे, तो
0: तो
1: मन
0: फिर
1: में आया चलो यार गुजराती भाषा आती है, कोशिश करो, तो
0: तो
1: कोशिश
0: कोई
1: की तो हो
0: कोई
1: गया।
0: एक सुनाना चाहे श्रोताओं को।
1: बिल्कुल, मैं आपको ऐसी गुजराती की गजल सुनाता हूँ जो बॉलीवुड की गुजराती है, जिसको सब समझ लेते हैं। काम आ थाशेज थाशे, काम आ थाशेज थाशे, पण समय तो लागशे, ये काम निश्चित ही होगा लेकिन असमय लगेगा। काम आ थाशेज थाशे, पण समय तो लागशे, हाँ तने भूली जवाशे, पण समय तो लागशे, हाँ तुझे भूल जाऊंगा मगर थोड़ा समय तो
0: समय
1: लगेगा।
0: लगेगा।
1: काम आ थाशेज थाशे, पण समय तो लागशे, हाँ तने भूली जवाशे, पण समय तो लागशे। अने आज महफिलमां भले गुणगान तारा थई रह्या, आज महफिलमां भले गुणगान तारा थई रह्या, गीत मारा पण गवाशे, पण समय तो लागशे, गीत मारा पण गवाशे, पण समय तो लागशे। आज किस्मत छो रमे छे, टेस्ट मैचो नहीं रमत, जिंदगी भले ही आज टेस्ट मैच खेल रही है, आज किस्मत छो रमे छे, टेस्ट टेस्ट मैचों नहीं।

0: રમત 2020 પણ રમાશે, પણ સમય તો લાગશે. તો એ હમારી ગુજરાતી ગઝલ હે.
1: અબ થોડા ભાષાગત ઉસમે મેં યે જાનના ચાહુંગા, આપ દેખે બ્રજવાસી હૈ, બ્રજવાસી થે ભી, મરાઠી મેં હૈ, યે જો ભાષાગત વો હૈ, કઈ વાર હમ ઉસ પે વિરોધ મેં આ જાતે હૈ, કઈ વાર સંઘર્ષ મેં આ જાતે હૈ, લેકિન હૈ તો સબ યે હિન્દુ વાણી, હિન્દુ વોઈ, તો
0: આર્ય ભાષા,
1: હા આર્ય ભાષા હૈ, તો ઇસમે સંઘર્ષ જૈસી બાત નહીં હોની ચાહીએ.
0: બિલકુલ નહીં હોની ચાહીએ.
1: આપ તો દેખ રહે હોંગે.
0: બિલકુલ નહીં હોની ચાહીએ.
1: આપને તો અબ દેખો ભૈયા પાંચ ભાષાએ તો મેરે કોઈ બતા દે.
0: દેખો રાજનીતિ, મેં એક મરાઠી કા શેર કહેતા હું આપસે, પહેલે બોલતા હું ફિર અર્થ સમજાઉંગા, કે જ્યા કથે ચો ક મલા માહિત નહીં, કે જિસ કથા કા ક મુજે પતા નહીં હૈ, જ્યા કથે ચો ક મલા માહિત નહીં, ત્યાં કહાણી વર ફુકટ બોલું કશાલા, મેં ઉસ કહાની પર વ્યર્થ મેં બાત હી ક્યું કરું, રાજનીતિ મેરા વિષય નહીં હૈ, મેં ભાષાઓ સે પ્રેમ કરતા હું, ઓર મેરે જૈસે અસંખ્ય લોગ ભાષાઓ સે પ્રેમ કરતે
1: નહીં, કરતે તો શાયદ સીખતે ભી નહીં.
0: और बाकी जिसका काम वो कर रहा है भाई,
1: जब संवाद की ही चीज है भाषा, और हम काम के निमित्त कहीं भी चले जाएं तो संवाद की जरूरत तो पड़ती है, तो भाषा भी हम सीख लेते हैं शायद इसमें संग...
0: कुछ हट धर्मता होती है, और हट धर्मता छोड़ देनी चाहिए दोनों पक्षों को. अब हमारे ब्रज में कोई आवे और ब्रज भाषा बोले तो अच्छा लगे ना,
1: अच्छा लगता है.
0: हम अमेरिका जाएंगे और सोचेंगे कि भैया तू हमसे जो है तेलुगु में बात कर, तो वो उचित भी नहीं है. हमको, हम जब इंग्लैंड में जाते हैं, हम जब स्पेन में जाते हैं, हम जब इटली में जाते हैं, हम चाइना में जाते हैं, तो उन भाषाओं को सीखते हैं ना, भले ही 1% 2%
1: भी लगता है कि भले ही कहीं से आया हो
0: भैया. हम मराठी हम कैसे सीखे,
1: जवान तो
0: हमने नौकरी की, जब हम बैंक में जाते थे, इनकम टैक्स सेल टैक्स में जाते थे, तो हमारा काम लेट होता था, और जो मराठी बोलते थे उनका काम पहले होता था. इस स्वार्थ ने हमको मराठी सिखला दी, और मराठी सीख गए तो हम मराठी गजलकार भी बन गए. हम जो सीखते हैं अल्टीमेटली उससे हमारा फायदा होता है, नुकसान नहीं होता है.
1: सही बात है.
0: विद्या तो सर, विद्या तो हमको समृद्ध करती है. हट धर्मता छोड़ देनी चाहिए.
1: एक थोड़ा सा दर्द वाले चीज पे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप, अच्छा है नवीन जी इतने दिनों बाद मथुरा में आए हैं, ब्रजभाषा बोल रहे हैं, हमें भी अच्छा लग रहा है, लेकिन ब्रजभाषा ब्रज में ही, ब्रज के घरों से, ब्रज की जुबान, ब्रज के मतलब जो यहाँ का जनमानस है, वहाँ से कहीं अब गायब हो रही.
0: अमृत की धारा बरसे, अमृत की धारा बरसे और चैन हिये में आवे है, अमृत की धारा बरसे और चैन हिये में आवे है, जैसे ही अपनी बानी बोले मोह मीठो है जाए. केवल ब्रजभाषा ही नहीं, हर व्यक्ति अगर अपनी भाषा बोलता है, मेरे तो हर तरफ मित्र हैं, मेरे उर्दू वाले भी मित्र हैं, गुजराती वाले, मारवाड़ी वाले, मराठी वाले, यह तकलीफ केवल हम ब्रजवासियों की नहीं,
1: सबकी है,
0: सबकी है. आज गुजराती घरों में गुजराती नहीं बोली जाती, बंगाली जो बच्चे नए आ रहे हैं अंग्रेजी बोल रहे हैं, नहीं बोलते. ये हमारी अकेले की समस्या नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है.
1: इस पर लेकिन चिंतन तो बनता है, इस पर
0: चिंतन हो रहा है और नवाचार हो रहा है सब जगह. हर व्यक्ति जो अपनी भाषा से प्रेम करता है, ये न के न प्रकारेण अपनी भाषा के उन्नयन पर काम में लग चुका है,
1: और लगना भी
0: लग चुका है. तो हम तो देख रहे हैं ना, काम होता हुआ देख रहे हैं. भाई अगर कोई व्यक्ति अपनी आंखों के आगे हाथ रख के कहे सूरज नहीं उगा है, तो उसका कोई कुछ उपचार हो नहीं सकता.
1: लेकिन इस पर चिंता भी है और चिंतन भी है, हो रहा है.
0: हमको दिख रहा है कि उस पर काम होने लगा है, क्योंकि मैं कविता कोश जो साहित्य की वेबसाइट है उसमें मैं देख रहा हूँ, जो भाषाएं हमने सुनी भी नहीं है बोली हैं, उन पर भी काम हो रहा है. आपको स्नेह अपनी भाषा से, तो आप जैसे ही ब्रजभाषा सुनते हैं तो झूम जाते हैं, वो आनंद बढ़ता चला जाता
1: है. जी जी जी जी. तो अब चलते चलते गजल से हम शुरू हुए, भाषा पे आए, संस्कृति पे आए. अब मैं थोड़ा सा आज के उससे जोड़ूंगा संदर्भों से, कि आप काम की वजह से महाराष्ट्र गए. ये जो आजकल के बच्चे सीए में जा रहे हैं, तो इसमें आपका दखल कैसे हो गया, और कैसे आधिपत्य हो गया, और कैसे आज भी अगर हम सीए का जब रिजल्ट देखते हैं तो आपके घर परिवारों से लोग ज़्यादा दिखते हैं.
0: हमारे जो पूर्वजों का प्रताप है वह हम तक आया है हमारे डीएनए के माध्यम से. हमारे पूर्वज चतुर्वेदी नाम हमारा क्यों है, क्योंकि

0: समाज के जो बड़े हुए हैं, आचार्य हुए हैं, उन्होंने वेदों का अध्ययन किया और तब से किया जब कागज नहीं था। कब से किया?
1: श्रुति से।
0: श्रुति से। तो यानी उनकी मेधा कहाँ है? पूरे के पूरे
1: समझ
0: वेद को याद करना और पीढ़ी दर पीढ़ी याद करते हुए चलना, तो मेधा कहाँ है? इंटेलेक्चुअल कहाँ है साहब? और फिर उसके ऊपर विवेचनाएं देना, उनके भाष्य करना, उनकी टीकाएं करना,
1: वर्तमान से जोड़ना।
0: तो वह मेधा जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों की है, वह हम तक आई है। आदरणीय, परम आदरणीय अमरनाथ चतुर्वेदी जी प्रथम चार्टर्ड अकाउंटेंट है हमारी समाज के। और जब कोई एक बड़ा व्यक्ति बड़ा काम कर देता है तो उसको अनुसरण करने वाले अनुसरण करते हैं। आप आज सीए की बात करते हैं, जिस कालखंड में हम लोगों ने पहलवानी की,

0: बेचनाएं देना, उनके भाष्य करना, उनकी टीकाएं करना,
1: वर्तमान से जोड़ना।
0: तो वह मेधा जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों की है वह हम तक आई है। आदरणीय, परम आदरणीय अमरनाथ चतुर्वेदी जी प्रथम चार्टर्ड अकाउंटेंट है हमारी समाज के। और जब कोई एक बड़ा व्यक्ति बड़ा काम कर देता है तो उसको अनुसरण करने वाले अनुसरण करते हैं। आप आज सीए की बात करते हैं, जिस कालखंड में हम लोगों ने पहलवानी की उस समय हिंदुस्तान में हमारी पहलवानी का डंका था। जब हमने पुरोहिताई की तो सब जगह हमारी पुरोहिताई का डंका हुआ करता था। तो ठाकुर जी की कृपा से, जमुना मैया की कृपा से माथुर मुनीस तो जब जो काम करते रहे हैं अच्छाई करते रहे हैं।
1: जिस चैनल में उसको बहादुर योग्यता है, प्रतिभा है,
0: पूर्ववर्ती आचार्यों की कृपा है, वह डीएनए में आ रही है। और मैं तो अपनी समाज के लिए जो कहता हूँ, अब यहाँ से अगर मैं अनुमति हो तो वह पंक्तियां भी पढ़ दूं।
1: स्वागत है
0: कि भैया छाने घोटे माल बना में हम मथुरा के चौबे हैं।
1: क्या बात है,
0: छाने घोटे माल बना में हम मथुरा के चौबे हैं, और जहां भी जहां में रंग जमावे हम मथुरा के चौबे हैं। ये ठाकुर जी की कृपा है कि जहूं जावे हमारो रंग भैया दिखे।
1: लेकिन वो समाज से, संस्थाओं से और जो पूर्वजों से मिला है उसको जब हम लेके चलते हैं और अनुशासन साथ में होता है और कुछ करने का जज्बा, तो फिर नए नए फील्ड भी कोई भी आ जाए वहाँ
0: हो जाए
1: सफलता मिल जाती है।
0: भाई साहब केवल सीए नहीं, आज हम लोग फाइनेंस हो, टेक हो, नवाचार की कोई भी आप फील्ड उठा लीजिए, कोई ना कोई चतुर्वेदी बालक आपको मिल जाएगा।
1: तो आप लोगों को और आपके समाज को मेरी शुभकामनाएं आकाशवाणी के माध्यम से,
0: मैं भी समाज के माध्यम से उनकी तरफ से आपका आभार व्यक्त करता
1: जी। चलते चलते कुछ, चूंकि बात हमने गजल से शुरू की थी और गजल को आप हिंदी में लेके आए, उर्दू से, ब्रजभाषा में, गुजराती में, मराठी में कह रहे, आगे भी आपके और लोगों से जुड़ने और विन्यास पाने के सपने रहे होंगे, लेकिन इस भाषागत उसमें, इस नवाचार में कुछ चलते चलते और ऐसी चीज़ जो कहना चाहें, श्रोताओं के साथ बांटना चाहें।
0: देखो, काम जो भी हम करें उसकी आत्मा तक हम पहुँचें और उसे अपनी आत्मा तक लेकर आएं, शॉर्टकट नहीं पकड़ें, पहली बात तो ये।
1: जी जी।
0: दूसरी बात कि भाई किसी भी, कोई भी जैसे पुराना लें कि भूली हुई यादों हमें इतना न सताओ, अब चैन से रहने दो मेरे पास ना आओ। अगर इसी बात को हम बार बार कहेंगे तो कौन सुनेगा,
1: कौन सुनेगा। सही।
0: अच्छा, हर बात कही जा चुकी है भाई साहब।
1: हाँ,
0: ऐसा बट तो उसमें हमें अपना रंग डालना होता है। कृष्ण ने संघर्ष किया, ये कोई नई बात मैंने नहीं कही, लेकिन उसमें मैंने अपना फ्लेवर डाला। मधुपुरी में जो बच गए पापर, जाए के द्वारका में बेले हैं, तो एक मुहावरा डाल दिया।
1: तो द्वारका दीस होके भी चैन वहां,
0: उनको वहां जाकर भी पापड़ बेलने पड़े।
1: सही बात है, सही बात।
0: तो ये नवाचार होता है कि हम उसमें कुछ अपना कलर डालें, उन बातों को नए तरीके से हम कहें, तो लोग, सुनने वालों को भी मजा आता है।
1: जी जी जी। तो श्रोताओं, आप थे नवीन सिंह चतुर्वेदी जी, बहुभाषी गजलकार, साहित्यकार और बहुत सारी चीज़ें जो आपने उनके मुंह से ही सुनी। नवाचार के धनी हैं, टेक्नोक्रेट हैं, और जो जीवन का गणित है उसको तो अच्छी तरीके से समझते ही हैं। तो जाना आपने, लेकिन एक बात जो उनके उसमें मुझे अपील की वो यही है कि जीवन का कोई शॉर्टकट नहीं है। जीवन हमेशा संघर्षशील है, लेकिन जीवन परिवर्तनशील भी है। जीवन अवसर देता है आगे बढ़ने का भी और कुछ करके गुजरने का भी। और जब ऐसा हम कर जाते हैं तो समाज भी याद रखता है, समय भी याद रखता है। नवीन जी, आप आए हमसे जुड़े विचारवाणी से हमारे श्रोताओं के साथ, आपने कुछ अपने संस्मरण बांटे गजल को लेकर, भाषा को लेकर और अपनी जो संस्कृति है ब्रज की उसको लेकर के। एक बार पुनः आपका धन्यवाद और साधुवाद के ये जो नवाचार है आपके जीवन का, ये यूँ ही चलता रहे।
0: थैंक यू वेरी मच। आपके माध्यम से मैं भी श्रोताओं का, आपकी टीम का आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।
1: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे विशेष बातचीत, विषय था गजल के विविध आयाम। विशेषज्ञ थे नवीन सी चतुर्वेदी और इनसे बातचीत कर रहे थे ओपी सिंह। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 MHz पर। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। श्रोताओं, स्वास्थ्य जा

जागरूकता के नियमित कार्यक्रम सिम्स हेलो डॉक्टर में आज गुरुवार 30 जुलाई 2026 मध्याह्न 12 बजे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है किडनी संबंधी रोग कारण और निवारण। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर आशीष शर्मा, वरिष्ठ किडनी रोग विशेषज्ञ, नेफ्रोलॉजी एवं डायलिसिस विभाग, सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 2530135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में किडनी संबंधी रोग कारण और निवारण से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं। ध्यान रहे कार्यक्रम का विषय है किडनी संबंधी रोग कारण और निवारण। श्रोताओं, यदि आप किसी भी प्रकार के किडनी संबंधी समस्या जैसे किडनी में बार बार संक्रमण, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, किडनी में पथरी या मूत्र मार्ग में रुकावट, मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि समस्या से ग्रस्त हैं तो इसके समाधान के लिए प्रश्न पूछिए डॉक्टर आशीष शर्मा, वरिष्ठ किडनी रोग विशेषज्ञ, नेफ्रोलॉजी एवं डायलिसिस विभाग, सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा से। श्रोताओं, ध्यान रहे कार्यक्रम का दिन आज रहेगा गुरुवार 30 जुलाई 2026 और समय होगा मध्याह्न 12 बजे का। सूचना समाप्त हुई।

0: आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम विविधा। विषय है स्वस्थ जीवन शैली, बेहतर प्रतिरक्षा और बेहतर जीवन। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर चिरदीप अग्रवाल, फिजिशियन मथुरा। आलेख स्वर एवं प्रस्तुति सहयोग है चंद्रिका कुमार का, संयोजन एवं प्रस्तुति है ओम प्रकाश सिंह की।
1: विविधा विविधा विविधा।

मनुष्य के जीवन की अनेक विशेषताओं में से एक सर्वश्रेष्ठ विशेषता है उसका स्वस्थ शरीर। मानव स्वास्थ्य का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है उसका खान पान, रहन सहन। मनुष्य क्या खाता है, क्या पीता है, क्या उसका रहन सहन है, इसका सीधा संबंध उसके स्वास्थ्य से है। मनुष्य के खान पान व रहन सहन में कुछ अंतर अथवा कुछ भी परिवर्तन होने से स्वास्थ्य संबंधी कई प्रभाव दिखाई देने लगते हैं। मानव का स्वास्थ्य ठीक होने पर उसकी शारीरिक क्षमताएं भी प्रभावित होती हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जहां पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण जैसे पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहते हैं, तो वहीं इन सभी पोषक तत्वों से युक्त मनुष्य के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी रोगों से लड़ने की शक्ति भी पर्याप्त मात्रा में बनी रहती है। और जैसे ही शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी प्रभावित हो जाती है और हमारा शरीर आसानी से जीवाणुओं व विषाणुओं के संपर्क में आने से रोगी बन जाता है, जिसका उपचार करने पर कई बार मानव शरीर अन्य रोगों की भी गिरफ्त में आ जाता है, जैसे बुखार, सर दर्द, पेट दर्द, जुकाम, खांसी आदि की दवाइयां लेते रहने पर हमारे लीवर, हृदय, त्वचा, फेफड़े आदि अन्य महत्वपूर्ण आंतरिक अंग प्रभावित होते हैं, जिनके बचाव व उनकी सुरक्षा के लिए सबसे उचित माध्यम मानव के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास अच्छे स्तर पर होना बेहद जरूरी बन जाता है। तो आइए जानते हैं कि इन उपचारों अथवा जीवन शैली को अपनाकर हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं। मनुष्य के जीवन की अनेक विशेषताओं में से एक सर्वश्रेष्ठ विशेषता है उसका स्वस्थ शरीर। मानव स्वास्थ्य का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है उसका खान पान, रहन सहन। मनुष्य क्या खाता है, क्या पीता है, क्या उसका रहन सहन है, इसका सीधा संबंध उसके स्वास्थ्य से है। मनुष्य के खान

0: पान व रहन सहन में कुछ अंतर अथवा कुछ भी परिवर्तन होने से स्वास्थ्य संबंधी कई प्रभाव दिखाई देने लगते हैं। मानव का स्वास्थ्य ठीक होने पर उसकी शारीरिक क्षमताएं भी प्रभावित होती हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जहां पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण जैसे पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहते हैं, तो वहीं इन सभी पोषक तत्वों से युक्त मनुष्य के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी रोगों से लड़ने की शक्ति भी पर्याप्त मात्रा में बनी रहती है। और जैसे ही शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी प्रभावित हो जाती है और हमारा शरीर आसानी से जीवाणुओं व विषाणुओं के संपर्क में आने से रोगी बन जाता है, जिसका उपचार करने पर कई बार मानव शरीर अन्य रोगों की भी गिरफ्त में आ जाता है, जैसे बुखार, सर दर्द, पेट दर्द, जुकाम, खांसी आदि की दवाइयां लेते रहने पर हमारे लीवर, हृदय, त्वचा, फेफड़े आदि अन्य महत्वपूर्ण आंतरिक अंग प्रभावित होते हैं, जिनके बचाव व उनकी सुरक्षा के लिए सबसे उचित माध्यम मानव के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास अच्छे स्तर पर होना बेहद जरूरी बन जाता है। तो आइए जानते हैं कि इन उपचारों अथवा जीवन शैली को अपनाकर हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने भोजन में विटामिन्स जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी सिक्स, विटामिन बी ट्वेल्व, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, कॉपर, फॉलेट, आयरन और जिंक पोषक तत्वों से बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करें। अपने भोजन में इन सभी को शामिल करने के लिए हरे पत्तेदार सब्जियां, सूखे मेवे, गाजर, मौसमी फल, दूध, दही से बने पदार्थ, खट्टे फल, साबुत अनाज आदि अपने आहार में जरूर शामिल करें। सप्ताह में कई दिन मध्यम तीव्रता से व्यायाम करें, जैसे कि तेजी से चलना या जॉगिंग। व्यायाम हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करता है। 7 से 8 घंटे की पर्याप्त नींद भी रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास में कारगर सिद्ध होती है। हर छोटी बड़ी बात को लेकर परेशान होने से मनुष्य आसानी से तनाव की गिरफ्त में आ जाता है, जो मानव की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है। इसके लिए बेहद जरूरी है कि अपने तनाव को प्रतिबंधित करने के लिए योग व ध्यान जैसे माध्यम अपनाएं। धूम्रपान व शराब का सेवन भी मानव की प्रतिरोधक क्षमता पर प्रभाव डालता है, अतः इसके सेवन से स्वयं को दूर ही रखें। पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर, अपने घर व ऑफिस को साफ सुथरा रखकर, हाथों को नियमित रूप से धोकर एवं भीड़ वाली जगहों पर मास्क का प्रयोग करके हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करने के लिए हमें अपनी दिनचर्या में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये जानने के लिए हमने बात की मथुरा के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर चिरदीप अग्रवाल जी से। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है कार्यक्रम में आपका सबसे पहले तो, और हम धन्यवाद देना चाहेंगे कीमती समय देने के लिए।
1: धन्यवाद मैम।
0: तो हम बात करना चाहेंगे डॉक्टर साहब आपसे कि जो बदलता हुआ मौसम है, मौसम बदल रहा है, जब ऋतु आती है तो एक खुशियां लेकर आती है, लेकिन बार बार ऋतु में उस मौसम का परिवर्तन, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कहाँ तक नुकसानदायक है और कहाँ तक लाभकारी है?
1: अभी मौसम में तेजी से परिवर्तन हो रहा है, जैसे कि पिछले कुछ दिनों में बारिश भी हुई तो कुछ समय से कभी टेम्परेचर बढ़ जाता है, घट जाता है, तो उस तरीके से अगर टेम्परेचर की दिक्कत अगर रहेगी तो ये बीमारियों को कहीं ना कहीं न्योता देता है। तो इस मौसम में सबसे ज्यादा हमें अपने आप को बचाना है, क्योंकि थोड़ा सा ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से हमें पसीना आता है, वहीं हम तुरंत ठंडा पानी वगैरह लेते, तो कोशिश करनी चाहिए कि टेम्परेचर को एक नॉर्मल में आने के बाद में थोड़ा ठंडा पानी लें। बहुत तेजी से गर्मी और सर्दी, ठंडे मौसम का चेंज ना करें, जैसे एसी से बहुत ज्यादा गर्मी है, गर्मी से बहुत ज्यादा तुरंत से एसी में, तो इस तरीके के कुछ बचाव रखें तो हम कुछ बीमारियों का कंट्रोल कर सकते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जब मौसम बदलता है तो हमें कंट्रोल करना चाहिए अपनी आदतों को लेकर, लेकिन हम देखते हैं कि हमारा जो शरीर है उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी प्रभावित होती है, तो उसको हम कैसे बढ़ाएं? जब मान लीजिए कोई रोग घेर ले तो उसे कैसे हम अपनी इस प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं?
1: रोग प्रतिरोधक क्षमता एक या दो दिन में बदलने वाली चीज नहीं है, पहले तो हमें ये समझना चाहिए, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता एक लंबा प्रोसेस है, इम्यूनिटी को बिल्ड करना एक लंबा प्रोसेस है, तो उसके लिए कोई दवा या उस तरीके से हमें कुछ जरूरत नहीं होती, बल्कि हमें अपने जीवन शैली में परिवर्तन की जरूरत है। हमें रूटीन में खान पीन में जैसे कि कुछ हरी सब्जियाँ, फल, सलाद वगैरह का उपयोग एक प्रचुर मात्रा में करना चाहिए, लिक्विड की इनटेक हमें अच्छे से लेनी चाहिए, तरल पदार्थों का सेवन ज़्यादा करना चाहिए और एक स्ट्रेस फ्री लाइफ में रहने की कोशिश करनी चाहिए। ये कुछ चीज़ें अगर हम करते हैं, कुछ रूटीन एक्सरसाइज रहनी चाहिए, अगर ये सब चीज़ें करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी डेफिनेटली बिल्ड होती है, इम्यूनिटी थोड़ी अच्छी होती है। लेकिन ये हमको

0: एक निरंतर रूप में कुछ समय तक, लंबे समय तक करना होता है, तब हमें इसका कुछ रिजल्ट दिखता है।
1: डॉक्टर साहब, आपने ये बताया कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो थोड़े समय में ही नहीं बदल जाती है, तो जैसे कि हमारा खान पान है, रहन सहन है, इससे भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है, तो हम अपने भोजन में या अपने खान पान में किन ऐसी चीजों को शामिल करें जिनके माध्यम से हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को और बढ़ा सकें?
0: जैसे मैंने कहा, हरी सब्जियां, उसका सेवन थोड़ा ज्यादा रखें। सैलेड जो है, जैसे मौसम के हिसाब से सैलेड का कंटेंट बदल सकता है, लेकिन सलाद का इस्तेमाल ज्यादा करें। ताजे फल बहुत अच्छी मात्रा से हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। लिक्विड इंटेक, हमेशा लिक्विड इंटेक थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखें। जैसे गर्मियों का मौसम है, तो इस मौसम में भी हम लिक्विड ज्यादा मात्रा में ले सकते हैं, नींबू पानी वगैरह हमारा। और कम से कम जो एरेटेड ड्रिंक्स होते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, हाई शुगर ड्रिंक्स होते हैं, इन सब का सेवन कम से कम रखें, तो हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं।
1: अच्छा, एक चीज ड्रिंक का आपने नाम लिया, तो यहाँ पर एक जीवन रक्षक घोल मैं कहना चाहूंगी, तो क्या उसके माध्यम से भी हम अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा सकते हैं?
0: जी नहीं, वो जीवन रक्षक घोल यानी ORS जो एक कॉमन भाषा में इस्तेमाल करते हैं, इससे इम्यूनिटी पर कोई असर नहीं होगा, बल्कि ये एक ऐसा घोल है जो जब किसी को लूज मोशन हो रहे होते हैं, दस्त हो रहे होते हैं, तब वहाँ पे हम पानी के रिप्लेसमेंट के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो एक जीवनदायक घोल है, ना कि इम्यूनिटी को बढ़ाने।
2: आज के समय में मानव के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का मजबूत होना अत्यंत ही आवश्यक है, क्योंकि जल्दी जल्दी बदलता मौसम व जलवायु परिवर्तन के दौर में मानव का स्वास्थ्य ही सर्वाधिक प्रभावित होता है। ऐसे में तापमान से बचाव हेतु चिकित्सीय सलाह क्या कहती है, जानते हैं गर्मी के संदर्भ में रहन सहन, खान पान, जीवन शैली आदि को लेकर।
1: डॉक्टर साहब, आप हमें एक बात और जानना चाहेंगे कि इस समय गर्मी के मौसम में गर्म हवाएं चलती हैं और वो लू का रूप धारण कर लेती हैं। अब टीचर्स हो गए या बच्चे हो गए, उन्हें धूप में निकलना ही पड़ता है, तो वो अपने आप को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकती हैं?
0: शरीर को अच्छे से कवर करके, सर को ढक के, थोड़ा सा जितना हो सके गर्म मौसम में कम से कम बाहर निकल के धूप के कॉन्टेक्ट में कम से कम आके हम इस तरीके से बचाव कर सकते हैं। कुछ जरूरी चीजें जैसे आपने कहा, टीचर्स हैं, बच्चे हैं, निकलेंगे, लेकिन फिर भी पानी लिक्विड का इंटेक ज़्यादा रखें, सर को ढक के घूमें, हाथ पैरों को कवर करके चलें, तो धूप से डायरेक्ट कांटेक्ट से बच सके, तो इस तरीके से हम थोड़ा सा गर्मी से बच सकें।
1: अच्छा, लू में कहा जाता है कि आम का पना, पुदीना वगैरह, इस टाइप के कुछ दो चार घरेलू नुक्स जो हमारे श्रोता साथी सुन रहे हैं और उन्हें अपना कर लू से बच सकते हैं?
0: बिल्कुल, चूंकि ये भी अगेन वही एक हमारे तरल पदार्थों का ही एक रूप है, जहाँ पे हम अच्छे से, जैसे अगर हम बात करें आम पना वगैरह, वहाँ हम हल्का सा नमक भी रखते हैं, और जो आम पने के अंदर भी थोड़े से तत्व होते हैं, जो एक जैसे मैंने अभी कहा कि ताजे फल, वो भी आम का ही एक रूप है, तो वो हमें कहीं ना कहीं इम्यूनिटी भी बढ़ाता है और हमें इन चीज़ों से भी बचाते हैं।
1: अच्छा, ये तो रही की बात, हम क्या यूज करके, क्या इस्तेमाल करके अपने भोजन में लू से बच सकते हैं, लेकिन किन ऐसी चीजों को हम अवॉइड करें, ना खाएं या ना पिए, जिनसे हम लू से बच सकते हैं, तापमान के बदलते स्वरूप से बच सकते हैं?
0: तापमान से बचने के लिए तो खाने पीने में बहुत ज्यादा ऐसे कुछ नहीं, बट लेकिन हाँ, ये तो हम अवश्य कर सकते हैं कि तला हुआ खाना जो होता है, फ्राइड फूड जो होता है, वो चीजें हमें इस मौसम में थोड़ा अवॉइड ही करनी चाहिए। तो बाकी के तो किसी से हमें गर्मी, तो हमें तापमान से ही बचना पड़ेगा, ठंडे प्लेस पर रहने की कोशिश करनी है, बस इतना ही हम कर सकते हैं उसमें। तो
2: संतुलन चाहे स्वास्थ्य का हो अथवा आसपास के पर्यावरण का, सभी में संतुलन का होना सुचारू प्रक्रियाओं का सूचक है, तो वही थोड़ा सा भी असंतुलन कोविड जैसी महामारी को भी जन्म दे देता है। मौसम का बदलता मिजाज और कोविड की वापसी हम सभी के लिए खतरे की घंटी बजाना शुरू कर रहा है। गर्मी के मौसम में बरसात, तो बरसात में सर्दी और सर्दी के मौसम में गर्मी का अनुभव कराने वाला साल दर साल मौसम का बदलता हुआ ये तेवर हम सभी के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। मौसम का बदलता ये मिजाज अगर इसी तरह बना रहा तो हम गर्मी, सर्दी, बरसात के मुख्य आयामों को बिसरा बैठेंगे। मौसम का जरा सा परिवर्तित रूप हमारा स्वास्थ्य तो प्रभावित करता ही है, साथ ही साथ फसलों पर भी मौसम के बदलते मिजाज का असर साफ दिखाई देता है। बदलते मौसम का रुख हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र पर पड़ता है। मौसम के बदलने के कारण तापमान परिवर्तन, हवा की नमी और प्रदूषण का स्तर बढ़ने से ही हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है, जिसके कारण कुछ लोग बदलते मौसम से प्रभावित होकर SAD यानी सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर जैसी मानसिक विकृति का भी शिकार बन जाते हैं, जिससे उनमें उदासी, चिड़चिड़ापन और थकान जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं।

0: बदलते मौसम के कारण ही जगह जगह बाढ़, सूखा, भूस्खलन, भूकंप, ओलावृष्टि जैसी अन्य प्राकृतिक आपदाएं भी अपने पैर पसारती नजर आती हैं। मौसम का बदलता मिजाज इतनी सारी समस्याओं के साथ साथ आर्थिक समस्या को भी जन्म देने में मूल कारण बन जाता है। मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए हमें अपने स्वास्थ्य व पर्यावरण संबंधी कई सावधानियां अपनाने की जरूरत है, वरना वो दिन दूर नहीं जब कोरोना जैसी बीमारियां आए दिन अपना विकराल मुंह खोले समस्त संसार को काल के मुंह में ही धकेल दें। दिसंबर 2019 में आया कोरोना का वायरस, जिसके जहरीले फनों को एक बार कुचला जा चुका है, मगर वही कोरोना के फन दोबारा फुंकार मारने लगे हैं, जिसके चलते भारत के केरल राज्य में अब तक 273 मामले सामने उजागर हो चुके हैं। खांसी, गले में खराश या सांस लेने में समस्या होने वाले मरीजों को कोविड की बीमारी का वायरस शीघ्रता से अपनी चपेट में ले लेता है। ऐसी समस्याओं से ग्रस्त व्यक्तियों को चाहिए कि वे भीड़ व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर मास्क लगाकर ही जाएं, ताकि खुद को व दूसरों को भी कोरोना आदि संक्रामक बीमारियों से बचाया जा सके। बेंगलुरु में 9 महीने का एक बच्चा भी कोविड-19 से संक्रमित पाया गया। देश की राजधानी दिल्ली में ही अब तक 23 मामले सामने आए। संक्रमण की ऐसी वापसी की रफ्तार हम सभी को चौंका देने वाली है। शोधकर्ताओं ने बताया कि कोविड के असर से भारतीयों की औसत उम्र घट गई है। भारत सरकार ने हाल ही में 2021 के लिए नमूना पंजीकरण प्रणाली का डेटा जारी किया, जो 3 साल बाद आया। रिपोर्ट में लोगों की औसत उम्र के अलावा दिल की बीमारियों में वृद्धि के बारे में भी बताया गया। 5 दशकों में पहली बार भारत में जन्म के समय औसत जीवन प्रत्याशा में गिरावट दर्ज की गई। ये गिरावट 2017 से 2021 के औसत आधार पर हुई। कुल जीवन प्रत्याशा 2016 से 2020 के 70 वर्ष से घटकर 2017 से 2021 में 69.8 वर्ष की हो गई। पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 2016 से 2020 में 68.6 वर्ष से घटकर 2017 से 2021 में 68.2 वर्ष रह गई। भारत जीवन प्रत्याशा में अभी चीन, मलेशिया, ब्राजील और थाईलैंड से पीछे है। कोविड ने 2019 से 2021 में संक्रमण के कारण होने वाली मौतों में दुर्लभ वृद्धि की है, लेकिन दिल की बीमारियां देश में मौतों का सबसे बड़ा कारण बनी है। कोविड की वापसी का ये असर हमारे स्वास्थ्य को हानि न पहुंचाए, आइए इसके लिए मिलकर अपनी स्वास्थ्य सुरक्षा का खुद से कदम उठाएं। महसूस हो जब भी खांसी, बुखार या खराशों की गले में परेशानी, तुरंत डॉक्टर से ले सलाह, ना करें अपनी मनमानी।
1: इन दिनों हम देख रहे हैं कि राजधानी दिल्ली में भी और कर्नाटक के साइड में भी कोविड के मामले भी हमने देखे हैं, तो कोविड के बचाव, फिर से हम कोविड की तरफ कहीं चले ना जाए, कोविड आकर कहीं हमें ना घेर ले, इसके लिए क्या हम बचाव कर सकते हैं?
2: कोविड से बचाव के लिए मैं नई जानकारी तो क्या ही दूंगा, हमें सबसे पहले वही पुराने उसमें रखना पड़ेगा कि किसी को कफ, कोल्ड जैसे जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, तो खांसी करने के समय पे हमें डायरेक्ट किसी के ऊपर नहीं खांसना है, छींकना है तो हमें जैसे वो कॉमन चीज या तो हैंकी जैसे रूमाल रख के छींके या खांसे, या हम अगर वो भी नहीं है हमारे पास उस पर्टिकुलर समय पे, तो हम अपनी कोहनी का इस्तेमाल करके और छींकना या खांसना कर सकते हैं, जिससे कि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ना जाए। घर में एक सदस्य को सर्दी, जुकाम, खांसी, कुछ भी ऐसे सिम्टम दिखते हैं, बुखार आता है, गले में दर्द होता है, तो एटलीस्ट घर में प्रिकॉशन के रूप में ये चीजें जरूर करें। डॉक्टर के पास में आप जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये प्रिकॉशन लेना शुरू करें, ताकि फैमिली के अंदर एक सदस्य से दूसरे सदस्य के ये बीमारी ना जाए, भले ही वो कोविड ना हो, बट लेकिन फिर भी हमें प्रिकॉशन जरूर लेके चलना चाहिए।
1: अच्छा, हमने देखा कि जो कोविड के लक्षण है वो कहीं ना कहीं निमोनिया से मिलते जुलते लगते हैं, तो निमोनिया और कोविड में क्या अंतर है, और अगर अंतर है तो क्या अंतर है?
2: निमोनिया एक बीमारी के ग्रुप का नाम है, जहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरियल और वायरस इन्फेक्शन करके लंग के अंदर इन्फेक्शन करते हैं और वो एक निमोनिया का रूप धारण कराते हैं। उसमें से कोविड एक कारण है जिससे निमोनिया बनता है। निमोनिया के इसके अलावा भी बहुत सारे कारण है, बट कोविड भी एक निमोनिया का कारण है।
1: तो कोविड फिर से कहीं आकर हमें घेर रहा है क्या, ऐसे आपको एज अ डॉक्टर लगता है?
2: देखिए, अभी भारत से बाहर तो काफी सारे केसेस दिखने को मिल रहे हैं, दिल्ली के अंदर भी मिले, मथुरा, अपने यूपी में गाजियाबाद वगैरह में भी कुछ केसेस देखने को मिले हैं। हालांकि जांचें थोड़ा सा हमें बढ़ाएंगे तो हो सकता है देखने को मिले, बट उसके लिए जरूरी यही है कि हम प्रिकॉशंस लें, क्योंकि अभी जितने भी केसेस दिख रहे हैं वो माइल्ड है, तो डरने की जरूरत नहीं है। कुछ प्रिकॉशंस, कुछ सावधानी लेने की जरूरत है, मास्क का इस्तेमाल करें अगर दिक्कत हो रही है तो, कुछ छींकने खांसने की वजह से लोगों को बिछाव करना हो तो वहां हमें छींकने और खांसने के लिए भी दूसरों से बचाव करने

0: जी, कोविड को लेकर तो आपने बहुत सारी बातें बता दी, और एक छोटा सा सवाल और मेरे मन में आ रहा है कोविड को लेकर के, कि जो कोविड का वायरस है क्या वो छुआछूत से भी फैलता है, या कितने टाइम तक वो जीवित रहता है?
1: नहीं, कोविड का वायरस कभी भी छुआछूत से नहीं फैलता है। वो केवल अगर हम छींकते हैं, खांसते हैं, तो हमारे जो मुंह से निकलने वाले एरोसोल्स होते हैं वो दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे और वो उसको इनहेल करेगा, यानी सांस के साथ में उसके फेफड़े में जाएंगे, तो ये दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज छूने से, साथ खाने से, बैठने से, बात करने से, किसी के साथ रहने से ये वायरस नहीं फैल सकता, लेकिन क्लोज कॉन्टैक्ट रहेगा, और अगर वो छींकेगा, खांसेगा मरीज दूसरे स्वस्थ मनुष्य के ऊपर, तो वहां से उसको फैल सकता है।
0: यानी कि जैसे खांसी के संक्रमण फैलते हैं, वैसे ही कोविड के भी संक्रमण फैल सकते हैं, तो इसके लिए हम जरूरी है कि इख्तियार बरतें और सावधानी रखें। डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत सारी जानकारी साझा की हमसे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बेशकीमती समय आपने दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: थैंक यू, धन्यवाद।
2: इन दिनों हर शहर का तापमान अपने नए ही आयाम छू रहा है। मौसम आजकल नासाज है, कहीं बहुत अधिक गर्मी और लू का प्रकोप है, तो कहीं आंधी बारिश ओले का कहर देखने को मिल रहा है। देश के अनेक स्थानों पर मौसम की ये टेढ़ी निगाहें सबके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं। कई दिनों तक तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक का पहुंचकर अपना तांडव दिखा रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार तापमान का विकराल रूप तब नजर आया जब मौसम में हुए अचानक बदलाव से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अत्यधिक गर्मी और उमस भरी स्थिति बन गई, जिसमें उच्च आर्द्रता और तेज धूप के संयोजन से तापमान 50 डिग्री सेल्सियस जैसा महसूस हुआ। तापमान का इतना अधिक बढ़ता हुआ स्तर मानव के जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करता नजर आया। तापमान से अपने स्वास्थ्य को बचाने के लिए जरूरत आन पड़ी है कि अब घरेलू उपचार के साथ साथ चिकित्सीय सलाह का भी पालन किया जाए। नौतपा, जिसका आगमन 25 मई 2025 से हो चुका है, जो अगले 9 दिन 2 जून 2025 तक रहने वाला है, ऐसे में चिकित्सकों का कहना है कि खूब पानी पिए, खासकर यदि आप बाहर हैं या शारीरिक गतिविधि कर रहे हैं। ठंडे और ताजे पानी से ही नहाएं। इन दिनों रखा हुआ बासी खाना अथवा जंक फूड से खुद को बचाए रखें। उल्टी, चक्कर, बुखार होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। ढीले व सूती वस्त्र ही पहने, दिखावे के चक्कर में ज्यादा तंग वस्त्र त्वचा पर खुजली, घमोरिया आदि का भी कारण बन सकते हैं। सुबह की ताजी हवा ग्रहण करने हेतु पास के बाग बगीचे में जरूर टहलें। व्यायाम और ध्यान के माध्यम से भी हम अपने शरीर का तापमान बाहरी तापमान के अनुकूल बना सकते हैं। इन दिनों तला भुना भोजन खाने से परहेज करें। सादा खाना अथवा सत्तू का सेवन सप्ताह में एक बार जरूर करें। तापमान के बढ़ते हुए इस स्तर को देखकर चिकित्सक मटके का पानी पीने की भी सलाह देते हैं। फ्रिज की जगह यदि मटके का पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इससे न केवल हमारी प्यास बुझती है, बल्कि मिट्टी से बने होने के कारण मटके में उपलब्ध मिट्टी के तत्व भी हमारे स्वास्थ्य को उत्तम लाभ पहुंचाते हैं। मानव के स्वास्थ्य पर बढ़ते तापमान का असर ना के बराबर हो, इससे संबंधित इन घरेलू उपचारों को अपनाकर हम तापमान में खुद को संतुलित कर सकते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि कैसे करें, इस संबंध में जानकारी दी डॉक्टर अंकुर अग्रवाल ने, जिनसे बातचीत की ओम प्रकाश सिंह ने, आइए सुनते हैं।
3: मैं बात कर रहा हूँ अपने स्वास्थ्य को लेकर के, जानकारी का विषय रहेगा कि रोगों से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको कैसे बढ़ाएं, कैसा हमारा जीवन हो, कैसी हमारी जीवन शैली हो, कैसा हमारा खान पान हो, क्या कुछ बचाव के तरीके हों, क्योंकि एक कहावत कही जाती है कि इलाज से बचाव बेहतर होता है। तो ये बचाव में क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये एक विशेषज्ञ ही बता सकते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अंकुर अग्रवाल साहब। आप आयुर्वेदाचार्य हैं, SKS आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में आप एक प्रोफेसर के तौर पे बच्चों से पढ़ाते हैं, समझाते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत, नमस्कार।
4: नमस्ते सर
3: जी। बहुत सारे शब्द, इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता, शरीर की एक हष्टपुष्ट बनाए रखने की क्षमता, कुल मिलाकर उद्देश्य यही होता है कि हम निरोग रहें, स्वस्थ रहें। तो इस निरोग रहने को, स्वस्थ बने रहने को हम कहाँ से शुरुआत कर सकते हैं?
4: बिल्कुल सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो इम्यूनिटी है
3: जी,
4: जो इम्यूनिटी शब्द है, ये 2 दिन में नहीं आ सकता है
3: जी।
4: इसके लिए काफी समय की जरूरत होती है। मतलब हम यदि बोले कि आप ये वाला काढ़ा लीजिए या

0: ये दवाई लीजिए आप इम्यूनिटी पा लेंगे, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है।
1: जी
0: यदि आपको इम्यूनिटी बनानी है तो इसके लिए एक समय चाहिए, एक लंबे समय तक आपको उस तरीके को अपनाना पड़ेगा, तब जाके वो इम्यूनिटी आपकी ग्रोथ करेगी। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं कि कोई भी इमारत है तो वो धीरे धीरे धीरे धीरे करके ही कमजोर होती है। हम सोचें कि उसको एक बार में ही मजबूत कर लें, 20 साल पुरानी कोई इमारत है तो वो किस वे से रही है वो इम्पोर्टेंट होता है। ज़्यादा उसमें पानी की सीलन से चलते खराब हो सकती है, या फिर कुछ ऐसा एनवायरनमेंट जो वहाँ का क्लाइमेट नमी वाला है तो खराब हो सकती है, तो हम उसको एकदम से उसको मजबूत नहीं कर सकते हैं। इसके लिए उसका रख रखाव बहुत ज़रूरी होता है। यदि हम आज की डेट में बात करें लोगों की इम्यूनिटी की, तो कहीं ना कहीं रहन सहन और खान पीन इसके लिए बहुत जिम्मेदार है, बहुत मतलब बहुत।
1: जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जैसे शरीर एक दो दिन में तैयार नहीं होता, हम पैदा होते हैं, बड़े
0: हाँ
1: होते हैं, हमारा एक पारिवारिक वातावरण होता है, घर का
0: हाँ
1: एक रहन सहन का स्तर होता है, हमारी अपनी कुछ लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है, जीवन की एक जीने की शैली होती है, भाग दौड़ भी उसमें
0: बिल्कुल।
1: शामिल है, तो ये सारी चीज़ें मिलाकर के हमारा जो वातावरण बनता है वो इम्यूनिटी को
0: वो
1: निर्धारित करता है
0: एग्जैक्टली
1: उसमें।
0: सर,
1: तो उसमें आपने कहा कि भाई देखभाल बहुत जरूरी, एक शब्द जो आया कि भाई मकान की
0: हाँ
1: देखभाल करनी है, ऐसी आपका मतलब है कि आपको अपने शरीर की भी देखभाल करनी है,
0: देखभाल
1: तो
0: करनी
1: ये
0: सर।
1: कहाँ से शुरू हो देखभाल?
0: जैसे कि अभी आपने बताया कि देखभाल कैसे स्टार्ट की जाए, तो देखभाल करने के लिए जैसे कि हम इसमें दिनचर्या आती है, ऋतुचर्या आती है। दिनचर्या में हम जब सुबह सोकर उठते हैं तो उठकर क्या क्या एक्टिविटीज़ हमारी होनी चाहिए, जैसे कि सोकर उठने के बाद पूरे शरीर पे मालिश करनी है तेल की, फिर नहाना है, फिर कई इश्यूज रहते हैं जैसे कि हमारे नशे भी, नाक में चार चार बूंदें नारियल तेल की भी डाल सकते हैं जिससे सिर को ताकत मिले, इंद्रियों को बल मिले, और दंत धावन जो रहता है वो ऐसी चीज़ों का करें जो कड़वी हो या फिर तो थोड़ी तीखी हो, जैसे नीम है थोड़ा कड़वा है तो वो क्या करता है, कड़वा जो कफ रुका हुआ है रात भर का उसे निकाल के बाहर फेंक देता है जिससे कि कफ कलेक्ट नहीं होता है, फ्यूचर में कोई भी कफ संबंधी बीमारी नहीं आती है। ये तो हो गया एक सुबह का रूटीन हो गया। फिर
1: जी
0: इसके बाद टाइमिंग जो रहती है वो अभी प्रेजेंट में काल के हिसाब से 3 टाइमिंग बन चुकी है हमारी, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर, ये 3 टाइमिंग ही रखनी चाहिए। हम जो भी खा रहे हैं जैसा भी खा रहे हैं मिनिमम टाइमिंग हमारी जो है वो 3 रहे, ब्रेकफास्ट रहे, लंच रहे, डिनर रहे। मतलब कोशिश ये करनी है कि आप इन 3 टाइमिंग के अलावा और कुछ ना खाएं
1: जी,
0: पिएं।
1: मतलब एक भोजन का एक समय होना चाहिए, उठने का एक
0: हाँ
1: समय,
0: सर
1: खाने पीने का एक समय, तो उसमें आप कम से कम, आपका मतलब है अगर 3 भोजन का आपने निर्धारित किए तो उनके बीच का एक गैप होना चाहिए,
0: गैप
1: पांच
0: होना
1: घंटे
0: चाहिए,
1: का,
0: कम से
1: छह
0: कम छः
1: घंटे
0: से
1: का,
0: सात घंटे गैप होना
1: हाँ
0: चाहिए
1: उसमें,
0: जिससे कि वो आसानी से पच पाए
1: जी
0: जो
1: जी
0: पहले खाया हुआ है।
1: हाँ
0: इस केस में यदि हम बीच में कुछ और खा लेते
1: हाँ
0: हैं तो वो
1: हाँ
0: पहला का पचा हुआ नहीं है और फिर दूसरा चला जाता है, तो फिर
1: हाँ
0: वो भविष्य में बीमारियां लाता
1: जी
0: है,
1: जी जी तो अब वो मतलब एक तरह से नुकसान कर देता है उसमें,
0: नुकसान कर
1: अब कोई
0: देता
1: ऑफर कर देता है, अब
0: है।
1: हम
0: और
1: घर से खा के आए, किसी ने कहा चाय पी लीजिए,
0: कोई दिक्कत नहीं, पी लीजिए। फिर जब
1: अच्छा
0: आप नेक्स्ट डाइट ले रहे हैं
1: हाँ
0: उसमें थोड़ा याद रखिएगा कि आपके
1: हाँ
0: अंदर चाय जा चुकी है
1: हाँ
0: तो अपनी भूख के हिसाब से थोड़ा कम ही लेके चलिएगा।
2: तो अभी आपने सुनी डॉक्टर अंकुर अग्रवाल से ओपी सिंह की बातचीत, और अब लीजिए सुनिए विज्ञान समाचार। भारत लंबे वक्त से सोलर सेल से बिजली उत्पादन की तकनीक के लिए चीन और दूसरे देशों पर निर्भर था, पर जल्द ही ये निर्भरता समाप्त हो जाएगी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए उच्च दक्षता वाली सिलिकॉन हेटरो जंक्शन सोलर सेल विकसित की है, जिसकी विद्युत उत्पादन की क्षमता 23% से अधिक है। ये उपलब्धि IIT दिल्ली के एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग के सोलर फोटोवोल्टेक ग्रुप ने हासिल की है। GLA विश्वविद्यालय के बायोटेक विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर आलोक भारद्वाज को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से जय गोपाल कैचुए के स्ट्रेन का उपयोग करके वर्मी कंपोस्ट तैयार करने पर एक शोध परियोजना मिली है। किसानों को जैविक खेती अपनाने तथा उससे संबंधित जागरूक करने के लिए डॉक्टर आलोक को भारत सरकार ने 5 लाख रुपए का अनुदान दिया है। इस अनुदान के माध्यम से वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार कर किसानों को प्रेरित किया जाएगा। जीन में है पुरुषों से ज्यादा लंबे होने का राज। आमतौर पर पुरुष महिलाओं से लंबे होते हैं, औसत पुरुष महिलाओं से करीब 5 इंच ज्यादा लंबे होते हैं। वैज्ञानिकों को पहले से संदेह था पुरुषों और महिलाओं की लंबाई में अंतर का कारण सिर्फ हार्मोन नहीं बल्कि आनुवांशिक भी हो सकते हैं। शोधकर्ताओं ने करीब 1,00,000 लोगों के डाटा का अध्ययन किया। इससे पता चला कि लंबाई वाली सेल्स जीन महिलाओं और पुरुषों दोनों के पास होते हैं, लेकिन ये पुरुषों में

0: ज्यादा होते हैं। कोविड के असर से भारतीयों की औसत उम्र घटी। अधिकांश भारतीय 3 या इससे अधिक वर्षों का अंतराल रखकर कोविड के असर से भारतीयों की औसत उम्र घट गई है। भारत सरकार ने हाल ही में 2021 के लिए नमूना पंजीकरण प्रणाली तैयार की, जो कि 3 साल बाद सामने आई। रिपोर्ट में लोगों की औसत आयु घट गई है और साथ ही दिल की बीमारियों की भी परेशानी सामने आई है। साथ ही लोग अब अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में प्रशिक्षित डॉक्टरों से ही बच्चे का जन्म कराने को लेकर प्राथमिकता दे रहे हैं। 5 दशकों से पहली बार भारत में जन्म के समय औसत जीवन प्रत्याशा में भी गिरावट देखी गई है। विविधा के आज के अंक में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को आपकी सेवा में आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र की ओर से प्रस्तुत किया ओम प्रकाश सिंह ने। अगले अंक में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए मुझे यानी चंद्रिका कुमार को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: विविधा।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। आलेख, स्वर एवं प्रस्तुति सहयोग था चंद्रिका कुमार का। संयोजन और प्रस्तुति थी ओम प्रकाश सिंह की। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना है श्रोताओं, स्वास्थ्य जागरूकता के नियमित कार्यक्रम सिम्स हेलो डॉक्टर में आज गुरुवार 30 जुलाई 2026 मध्याह्न 12 बजे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है किडनी संबंधी रोग, कारण और निवारण। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर आशीष शर्मा, वरिष्ठ किडनी रोग विशेषज्ञ, नेफ्रोलॉजी एवं डायलिसिस विभाग, सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। आप हमारे टेलीफोन नंबर 2530135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में किडनी संबंधी रोग, कारण और निवारण से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं। ध्यान रहे कार्यक्रम का विषय है किडनी संबंधी रोग, कारण और निवारण। श्रोताओं, यदि आप किसी भी प्रकार के किडनी संबंधी समस्या जैसे किडनी में बार बार संक्रमण, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, किडनी में पथरी या मूत्र मार्ग में रुकावट, मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि से ग्रस्त है तो इस समस्या के समाधान के लिए प्रश्न पूछिए डॉक्टर आशीष शर्मा, वरिष्ठ किडनी रोग विशेषज्ञ, नेफ्रोलॉजी एवं डायलिसिस विभाग, सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा से। श्रोताओं, ध्यान रहे कार्यक्रम का दिन रहेगा आज गुरुवार 30 जुलाई 2026 और समय होगा दोपहर 12 बजे का। सूचना समाप्त हुई।

शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म दो झूठ में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

एंड इवनिंग इन पेरिस। इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत का संगीत तैयार किया था शंकर जयकिशन ने।

कश्मीर की कली फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत को लिखा था SH बिहारी ने और संगीत दिया था OP नैयर ने। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे पत्थर के सनम फिल्म का ये गीत। और आइए अब आपको सुनवाते हैं ये कार्यक्रम का अंतिम गीत।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में अभी आपने सुना मोहम्मद रफी और सुलक्षणा पंडित को। फिल्म का नाम था फांसी। इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: किसी और की होने के डर से तेरा दिल भी धड़कता
1: है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए श्रोताओं। स्वास्थ्य जागरूकता के नियमित कार्यक्रम सिम्स हेलो डॉक्टर में आज गुरुवार 30 जुलाई 2026 दोपहर 12 बजे प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है किडनी संबंधी रोग कारण और निवारण। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर आशीष शर्मा, वरिष्ठ किडनी रोग विशेषज्ञ, नेफ्रोलॉजी एवं डायलिसिस विभाग, सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। आप हमारा टेलीफोन नंबर 2530135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में किडनी

संबंधी रोग कारण और निवारण संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं। ध्यान रहे कार्यक्रम का विषय है किडनी संबंधी रोग कारण और निवारण। श्रोताओं यदि आप किसी भी प्रकार की किडनी संबंधी समस्या जैसे किडनी में बार बार संक्रमण, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, किडनी में पथरी या मूत्र मार्ग में रुकावट, मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि समस्या से ग्रस्त है तो समाधान के लिए प्रश्न पूछिए डॉक्टर आशीष शर्मा, वरिष्ठ किडनी रोग विशेषज्ञ, नेफ्रोलॉजी एवं डायलिसिस विभाग, सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सिम्स हॉस्पिटल मथुरा। इनसे श्रोताओं ध्यान रहे कार्यक्रम का दिन रहेगा आज गुरुवार 30 जुलाई 2026, समय रहेगा दोपहर 12 बजे। सूचना समाप्त हुई। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी, प्रस्तुति है रश्मि शर्मा की।

0: तो आखिर आप भी आ ही गए।
1: आइए, आपका इंतजार था।
0: तो जनाब, जब हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम ने आपके दिल की धड़कनें बढ़ा ही दी हैं, तो फिर सोचना कैसा।

0: अरे अरे घबराइए मत, मैं बीमार नहीं आपका इलाज करने आई हूँ, क्योंकि अब आपका इलाज होगा आप ही के पसंदीदा गीतों के साथ और हमारे साथ की गई प्यारी प्यारी बातों के साथ। तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन श्रोता हमसे इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। हेलो आकाशवाणी,
1: रश्मि दीदी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, परिचय दे दीजिए।
1: दीदी आपका नियमित श्रोता, ब्रजी रेडियो श्रोता मित्र चौधरी महेंद्र सिंह, ग्राम नगला राणा सिहोरा मथुरा उत्तर प्रदेश से आपसे बात कर रहा हूँ।
0: स्वागत है आपका कार्यक्रम में, कैसे हैं महेंद्र जी?
1: दीदी हम लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं।
0: जी यही कामना हमारी भी रहेगी हमारे सभी श्रोताओं के लिए। और आज क्या पसंद रहेगी आपकी?
1: सबसे पहले तो दीदी मैं आपको धन्यवाद दे दूं कि आकाशवाणी मथुरा से प्रसारित फोन इन हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम इतना लोकप्रिय होता जा रहा है कि बस जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है।
0: जी बहुत बहुत आभार आपका।
1: जब जिस कार्यक्रम का निर्माण करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, तब कहीं जाके ये कार्यक्रम हम श्रोताओं तक जा पाता है, पहुंचता है। एक बार पुनः आपको धन्यवाद।
0: जी जी पुनः पुनः आभार महेंद्र जी।
1: दीदी आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और आज के दिन हम रिकॉर्डिंग करा रहे हैं कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि हमारे जो भी गुरुजन हैं, हम उनके चरण छूकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। और आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है। गुरु किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे ज्ञान देने वाले गुरु हो, गुरु बिन ज्ञान नहीं मिलता। इसलिए आज के दिन के लिए हम आपको और समस्त आकाशवाणी टीम को इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं।
0: जी जी जी आपको भी बहुत बहुत बधाई। और आप पसंद बता दीजिए।
1: दीदी फिल्म का नाम है आया सावन झूम, लता और रफी साहब का गाया हुआ बहुत ही खूबसूरत गीत है, जिसके बोल हैं बदरा छाए कि झूले पड़ गए हैं।
0: हेलो आकाशवाणी,
2: आरणी दीदी शारदा सप्रेम प्यार का नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं, परिचय दे दीजिए।
2: जी दीदी मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ।

0: आप कैसे हैं?
1: बिल्कुल बढ़िया, और आपका स्वागत है कार्यक्रम में प्रजापति जी। और आज क्या सुनना चाहेंगे, क्या पसंद रहेगी आपकी?
0: हृदय से धन्यवाद करते हुए सर्वप्रथम मैं आपको, आकाशवाणी परिवार को, सभी श्रोताओं को गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, मुड़िया पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। और देवों के देव महादेव का बहुत ही पसंद महीना श्रावण आने वाला है, आ चुका है, और उन सब की मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं।
1: जी, आपको भी, सभी को ये शुभकामनाएं गुरु पूर्णिमा की और श्रावण मास की भी। तो आज अब आपसे जानना चाहेंगे कि इसी के साथ कौन सा गीत आज आपकी पसंद बनने वाला है?
0: जी निसंदेह श्रावण का महीना है, तो आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है आया श्रावण झूम के, रफी लता जी ने गीत को गाया है। आया श्रावण झूम के, आया श्रावण, ये टाइटल सॉन्ग सुना दीजिए।
1: ठीक है।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, परिचय दे दीजिए, कौन बोल रहे हैं?
1: जबलपुर एमपी से आपका श्रोता अशोक सिंह रश्मि शर्मा जी है।
0: हाँ जी,
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपकी आवाज बहुत अच्छी है, प्रोग्राम भी अच्छे रहते हैं। मैं जबलपुर एमपी अशोक सिंह बात कर रहा।
0: जी स्वागत है कार्यक्रम में अशोक जी, और आपको कार्यक्रम पसंद आ रहा है इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: मौसम कैसा है यहाँ? तो झड़ी लगी है
0: जी, मौसम अभी लगता है कि बारिश होगी लेकिन अभी हो नहीं रही है, उम्मीद की
1: जी।
0: किरण दिख रही है।
1: मैडम, मैं तो मंजिल पिक्चर का सुनवा दीजिए, रिमझिम गिरी सावन।

0: कहाँ से बोल रहे हैं उपाध्याय जी?
1: मैं यहाँ जिला फिरोजाबाद में पड़ता है, हाट पशोपरा टूला के पास में।
0: अच्छा जी जी जी जी, तो आप फोन करते रहते हैं कार्यक्रम में या आज पहली बार फोन किया है?
1: नहीं मैम, आपसे पहली बार हो रही है बात। आपसे पहले एक दो बार दीक्षित जी से हो चुकी है और सारस्वती से हो चुकी है, लेकिन आपसे पहली बार ही हो रही है।
0: चलिए, तो हमारे लिए आप आज नए श्रोता है। हाँ
1: जी जी जी मैम
0: जी, तो आज क्या पसंद रहेगी आपकी, और अपने बारे में भी कुछ बताइए, क्या करते हैं आप?
1: मैं ब्लाइंड हूँ।
0: आपकी जो भी जीवन चल रहा है, जो भी दैनिक कार्य हैं, वो आप स्वयं कर लेते हैं या किसी की मदद लेनी पड़ती है?
1: नहीं नहीं, कुछ कर तो ऐसे हैं जिन्हें हम कर भी लेते हैं। अभी क्या है कि घर में फैमिली में मम्मी पापा हैं और भाई भी हैं।
0: अच्छा,
1: तो अभी तक तो ठीक चल रहा है, जीवन यापन सही हो रहा है। आगे ठाकुर जी देखते हैं क्या होगा।
0: चलिए, आगे भी बहुत अच्छा ही होगा। और देखिए, ऐसा है कि सूरदास जी थे, वो आपने उनके बारे में सुना ही होगा।
1: हाँ, सुना है, सुना
0: है ना? तो उनके अंतर्मन की आंखें खुली हुई थी और उसी का ऐसा प्रभाव प्रताप था कि भगवान श्री कृष्ण उनको अक्सर आके दर्शन दिए हैं, और इवन उनके जो पद थे जो अधूरे छूट गए वो भगवान ने स्वयं लिखे। तो ये अनुग्रह भी बड़े भाग्यशाली लोगों को मिलता है। हमारी बाह्य आंखें खुली हुई हैं, लेकिन अगर हमारे अंतर मन की आंखें नहीं खुली हुई हैं तो कुछ नहीं है, सब बेकार है।
1: ये बात तो सही है आपकी। अब अभी हमारे जो गुरु हैं, गुरु रामभद्राचार्य, काफी अच्छा अनुभव है उनको भी।
0: हाँ
1: अनुभव है।
0: तो देखिए आप कि कैसे वो एक एक रामचरितमानस का, भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ एक एक प्रसंग, और भी जो भी हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई बातें हैं, कितने भावपूर्ण तरीके से और कितने अच्छे तरीके से हम सभी को वो एक ज्ञान का पाठ पढ़ा देते हैं बातों बातों में। तो ये बहुत जरूरी है कि हम बाहरी दुनिया देख पाएं या ना देख पाएं, लेकिन हमारे अंतर मन की आंखें हमेशा खुली रहें।
1: बस बस,
0: है ना? तो आज क्या सुनना चाहेंगे आप?
1: मैम गाना है, ये तो सच है कि भगवान है।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी मैम, राधे राधे।
0: राधे राधे, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं नीरज उपाध्याय बोल रहा हूँ। रश्मि मैम बोल रही है क्या?
0: हाँ जी।
1: सही बेचाना, मैंने भी

थ्री इडियट्स फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना सोनू निगम, स्वानंद किरकिरे और शान की आवाजों में। बोल स्वानंद किरकिरे के थे और संगीत था शांतनु मोहित्रा का। आइए सुनते हैं ये अगला गीत।

अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज को। फिल्म का नाम था आदमी खिलौना है। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। श्रेया घोषाल और स्वरूप खान की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है पद्मावत।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय हमारे श्रोता आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का, और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण को, फिल्म का नाम था वीर जारा। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। फिल्म का नाम है वक्त, सुनिधि चौहान और सोनू निगम की आवाज़ है।

0: इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम सिम्स हेलो डॉक्टर। आज का विषय है किडनी रोग कारण लक्षण और निवारण। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर आशीष शर्मा, वरिष्ठ किडनी रोग विशेषज्ञ, आकाश सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हॉस्पिटल मथुरा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज।
1: सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर वन पैथोलॉजी के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर शिरादा वैली मथुरा।
2: आकाश सिम्स हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है।

0: और आज इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं राजेश, और विशेषज्ञ के तौर पर आज हमारे साथ हैं किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष शर्मा जी। डॉक्टर साहब नमस्कार।
1: नमस्कार सर।
0: जी डॉक्टर साहब, तो जैसा कि आज का विषय हमारा है किडनी रोग विशेषज्ञ
1: जी
0: के रूप में आप हमारे स्टूडियोज़ में आमंत्रित हैं, तो किडनी एक अहम हिस्सा है, तो पहले जान लेते हैं किडनी का अहम रोल यानी भूमिका क्या है।
1: देखिए, आपका शरीर भी एक इंजन है। जैसे आपके पास गाड़ी है, उसका इंजन चलता है, तो हमारा शरीर भी एक इंजन है। उसमें माल या खाने वाने की या चीज़ों की खपत होती है, तो उसके हिसाब से वेस्ट प्रोडक्ट भी बनेंगे और वो बाहर जाने हैं। तो किडनी का काम एक तो ये है कि आपकी बॉडी का फ्लूइड बैलेंस, आपने कितना पानी पिया, कितना शरीर को चाहिए, कितना बाहर जाना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, नमक ठीक है, पोटेशियम ठीक है, कैल्शियम ठीक है, मैग्नीशियम ठीक है, एसिड बेस बैलेंस, जो कि एक आम आदमी नहीं समझ सकता, लेकिन ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो इंसान को ज़िंदा रखने के लिए बहुत आवश्यक है।
0: जी
1: खून का बनते रहना, जैसे हमारे घर में पंखा चलता है बिजली से, अगर वोल्टेज कम हो जाए तो पंखा धीमा हो जाएगा, ऐसे ही खून बनवाने के लिए जो प्रक्रिया होती है वो किडनी के थ्रू होती है। इस तरीके से ये एक आम आदमी के लिए हम मान सकते हैं कि ये कई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसके अलावा शुगर का मैनेजमेंट, हड्डियों का मैनेजमेंट, कैल्शियम का मैनेजमेंट, ये मोटे तौर पे किडनी के काम हैं।
0: जी बेहतर है, लेकिन जैसा हम जानते हैं आजकल काफ़ी इन्फेक्शियस डिसीजेज हो रही हैं, कुछ वायरल संबंधी हो जाती है, आम तौर से जो जनमानस है वो कुछ दवाएं अपने आप लेने लगता है, चाहे अगर हम कहें दर्द निवारक हो या इस तरह की एंटीबायोटिक्स ले लेता है, तो क्या किडनी पे भी इनका कुछ दुष्प्रभाव पड़ सकता है।
1: देखिए, पहली कैटेगरी जो आपने कही, पेन किलर, जिनको हम NSAID कहते हैं, यानी कि नॉन इन्फ्लेमेटरी, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी डिजीज ड्रग्स, जिसमें
0: जी
1: सबसे कॉमन आता है जैसे वोवरॉन, डाइक्लोफिनेक, नेप्रोक्सिन, आइबुप्रोफेन, ये दवाइयाँ आमतौर पर दर्द के लिए, सूजन के लिए ली जाती हैं, और ये डायरेक्ट किडनी के लिए टॉक्सिन है, जहर का काम करती हैं। नंबर दो, एंटीबायोटिक्स में एक आता है अमाइनोग्लाइकोसाइड ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स, जैसे कि मोस्ट कॉमनली एमिकासिन जिसको बोलते हैं, जो कि किडनी के लिए डायरेक्ट टॉक्सिन का काम कर सकता है और ये किडनी को ख़राब कर सकता है। नंबर तीन, जो ये एक मैं जनरलाइज वे में कह रहा हूँ, किसी व्यक्ति विशेष या किसी भी स्पेशलिटी को मद्देनज़र रखते हुए नहीं कह रहा हूँ, जो अनरिसर्च्ड आयुर्वेदिक देसी ट्रीटमेंट्स चलते हैं आजकल, और ज़्यादातर लोग कहते हैं कि इस इलाज का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है,
0: जी
1: तो सर, जिस चीज़ का इफ़ेक्ट है उसका साइड इफ़ेक्ट भी है। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ बनी नहीं आज तक कि अगर वो कहीं पर इफ़ेक्ट डाल रही है तो उसका साइड इफ़ेक्ट ना हो।
0: जी
1: हमें साइड इफ़ेक्ट पता नहीं है क्योंकि उस दवाई पर रिसर्च नहीं हुई।
0: बेहतर है, तो अगर मैं ये कहूँ कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर,
1: जी,
0: तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे।
1: सर, अगर नहीं है, ये तो एक चीज़ ही है। हम गाड़ी चलाते हैं तो सीट बेल्ट इसलिए पहनी जाती है क्योंकि वो प्रिकॉशन है, तो ऐसा ही अपनी सेहत के लिए, अपने शरीर के लिए
0: जी
1: प्रिकॉशन
0: जी जी
1: ही।
0: प्रिकॉशंस की हम बात करेंगे, एक श्रोता का टेलीफोन कॉल आ रहा है, ले
1: जी
0: लेते हैं।
1: जी
0: जी तो उनसे कॉल हमारा संबंध नहीं हुआ कॉल पे, तो प्रिकॉशंस में और हम क्या कर सकते हैं, यानी किस तरह की डाइट हमें लेना चाहिए जिससे हमारी किडनी हेल्दी रहे। हेलो,
1: देखिए, यूजुअली हेलो,
0: जी अपना नाम बताइए।
2: हम जतन कुमार बोल रहे, गांव सावली से। हाँ
0: जी, तो समस्या क्या है आपकी। जी आपकी आवाज़ हमें साफ मिले थोड़ा प्रयास करें।
2: क्या टॉयलेट में जाग आना या कुछ भी मारना, तो ये भी क्या किडनी का लक्षण है क्या?
0: यानी यूरिन में झाग आना।
1: हाँ जी, पेशाब में झाग आना या वहाँ पर खुजली होना, ये लक्षण दो तरीके के हो सकते हैं। या तो आपको शुगर हो सकती है, और या आपको एक और दूसरी बीमारी किडनी की होती है जिसमें छलनियाँ ख़राब होती हैं, जिसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं, वो हो सकता है। तो ये जांच कराने से और उचित विशेषज्ञ को दिखाने से ही इसके आगे की प्रक्रिया हो सकती
0: तो
1: है।
0: इस तरह के झाग आने के और भी कारण हो सकते हैं।
1: हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं, अगर आपका यूरिन बहुत कंसनट्रेटेड है, जैसे कि सारे श्रोता और सब लोग इसको कोरिलेट कर सकते हैं, सुबह उठते ही आपको जो यूरिन आता है

0: वो गाढ़े रंग का होता है, पीले रंग का, और अगर आप उसको कमोड में कर रहे हैं तो वहाँ झाग बनता है,
1: जी,
0: क्योंकि वो कंसंट्रेटेड यूरिन है और उसमें यूरिया की मात्रा भी कंसंट्रेटेड है, इसलिए झाग बनता है।
1: जी एक और श्रोता हमारी लाइन पर है।
2: हेलो,
1: जी नाम बताइए।
2: आदरणीय राजेश सर को नमस्कार।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी।
2: ये डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। राजू लवानिया बोल रहा हूँ, डॉक्टर साहब खंडौली
1: जी
2: आ रहे
1: स्वागत
2: हैं।
1: है, प्रश्न पूछिए।
2: डॉक्टर साहब, जैसे अभी आप बता रहे थे कि ये दवाइयाँ जो हम लेते हैं ये किडनी के लिए बहुत ज्यादा जहर का काम करती हैं,
0: जी
2: तो मैं आपसे जानना चाहूंगा सबसे ज्यादा कम नुकसानदेह एलोपैथिक में कौन सी दवाइयां हैं जो हमें दर्द से राहत भी दें, और किडनी या लिवर या गुर्दे जहां भी हमारे जो इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं उनमें कौन से कम अफेक्ट हो, ऐसी कोई दवाई है?
0: देखिए सर, ऐसा है कि आपका जो सवाल है उसमें मैं आपको जो मैंने दवाइयाँ बताई उसमें तो सर ऐसी कोई दवाई नहीं है जिसका इफ़ेक्ट ज़्यादा या कम हो, चाहे वो डाइक्लोफेनेक हो, आइबुप्रोफेन हो, नेप्रोसिन हो, ये सारी किडनी के लिए नुकसानदायक हैं, और विपरीत परिस्थिति में कितना और कौन किसको नुकसान पहुँचाएगी इसका कोई गणित दुनिया में कहीं नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसी कुछ दवाइयाँ हैं जो दर्द के लिए आप ले सकते हैं और उनका किडनी या लिवर पे या शरीर में कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जिस कैटेगरी में आती हैं ट्रेमेडोल या फिर ट्रेमेडोल के कॉम्बिनेशन में साथ में पैरासीटामोल के, वो है अल्ट्रासेट। पैरासीटामोल अपने आप में एक अच्छा पेन किलर है, यानी कि जैसे क्रोसिन या डोलो। इसके साथ में आजकल कुछ नई दवाइयाँ भी आई हैं जैसे टेपेंडाडोल होती है, वो दर्द में राहत दे सकती है। तो ऐसी कुछ दवाइयाँ अवेलेबल हैं जिनका दर्द निवारक पार्ट अच्छा है, लेकिन वो दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि इस कैटेगरी में आती हैं कि बिना डॉक्टर के लिखित प्रिस्क्रिप्शन के आपको नहीं मिलेंगी। लेकिन ये दवाइयाँ सेफ़ हैं और हम अपने मरीजों को यही दवाइयाँ देते हैं क्योंकि उनको ये चेताना बहुत आवश्यक है कि अगर वो गलती से किडनी की दिक्कत है और कोई भी दर्द का दवाई खा लेंगे तो किडनी के नुकसान और बढ़ सकता है।
1: जी डॉक्टर साहब, इसके साथ ही एक प्रश्न ये भी जहन में आ जाता है कि खाने पीने में किस तरह परहेज रखें, यानी विशेष तौर से नमक कितना लें, प्रोटीन कितना लें, या पोटेशियम कितना लेना चाहिए।
0: देखिए, नॉर्मल आदमी के लिए पहली चीज़ तो ये है कि एक ज़माने में एक गलतफहमी थी कि पानी खूब पियो किडनी ठीक रहेगी।
1: जी
0: देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। पानी और किडनी में और कमोड में अंतर है।
1: अच्छा
0: तो आप खूब पानी पियेंगे तो खूब यूरिन करेंगे, बस और कुछ नहीं होगा। तो
1: जी
0: ऐसा नहीं है कि उससे किडनी हेल्दी है।
1: जी
0: पानी उतना पीने चाहिए जितने आपके शरीर को ज़रूरत है, और एक आम आदमी को 2.5 लीटर पानी तरीके उन लिक्विड्स की आवश्यकता होती है।
1: जी इसी बीच एक और कॉल ले लेते हैं।
0: जी
1: हेलो जी, नाम बताएं,
3: नमस्कार,
1: नाम बताइए।
3: नरेंद्र बोल रहा हूँ। नरेंद्र
1: जी कहाँ से?
3: ब्रजवासी कारखाने से, फैक्ट्री से ब्रजवासी
1: जी
3: फैक्ट्री
1: जी
3: से।
1: प्रश्न बताइए, समस्या क्या है?
3: सर मेरे किडनी में पथरी है,
1: कितने MM?
3: 2.9 mm।
1: जी भैया, 2.9 mm की पथरी कोई ज़्यादा खतरनाक नहीं होती है क्योंकि ये इतनी छोटी है कि ज़्यादातर केसेस में पेशाब के बहाव के साथ ही आपकी पेशाब की नली से निकल जाती है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि दुनिया में पथरी को गलाने की या पथरी निकालने की कोई दवा नहीं आती। जो भी पथरी को गलाने की या निकालने की दवाइयाँ लोग देते हैं वो सब एक भ्रम है, क्योंकि पथरी भी एक पत्थर है, और जी
0: आप कोई एसिड तो पी नहीं लोगे जो पथरी गल जाएगी। लेकिन आपकी पथरी इतनी बड़ी नहीं है जो आपको भविष्य में कुछ भी नुकसान या दिक्कत पहुंचाए।
1: जी बहुत से लोग दावा करते हैं कि हम स्टोन को टुकड़े कर देंगे दवाओं से और इसके बाद वो स्वतः निकल जाएगी, तो ये मिथ है।
0: ये मिथ है। मैं आपको बताऊं कि ज्यादातर लोगों के किडनी में छोटी पथरी होती है, और 5 या 6 mm तक की पथरी जो है वो स्वतः ही पेशाब के रास्ते के फ्लो से थ्रू और निकल जाती है। अब आपने क्या करा कि किसी आदमी ने आपको दवाई दे दी, वो छोटी छोटी पथरी है और टाइम के साथ आपके पेशाब के फ्लो से निकल गई,
1: जी
0: क्रेडिट उसको मिल गया।
1: एक और केस मेरी नज़र में आया था कि 7 mm की पथरी है और वो अभी तक देशी इलाज में लगे
0: हेलो,
1: हैं।
0: नहीं तो मेरे पास तो ऐसे पेशेंट आते हैं जिनकी 20 mm की पथरी, 24 mm की पथरी, 30 mm की पथरी,
1: तो डॉक्टर
0: पचास
1: साहब जल्दी से जान लेते हैं, सर्जरी कितने एमएम तक एक अमूमन व्यक्ति क्या समझे?
0: सर, अगर पथरी आपकी किडनी में पेशाब के फ्लो को रोक रही है
1: जी
0: तो सर्जरी जरूरी है।
1: जी एक
0: बस
1: कॉल ले लेते हैं। जी नाम बताइए। हाँ
4: हेलो,
1: नाम बता दीजिए।
4: ऐसा है कि मैं मानिकचंद बोल रहा हूँ, वृंदावन गेट से।
1: जी समस्या बताएं।

0: तो जी समस्या ये है, समस्या कुछ नहीं है, ये है कि क्या जज है ढंग से लोग खाने में बताते हैं, इनका कोई चार्ट बना हुआ है क्या
1: हाँ, अच्छा जी, ये चर्चा, जी, ये चर्चा हम कर चुके हैं कि खाने में किस तरह हमें डाइट लेनी है। जी एक बार और आपको बता देते हैं। इसको तो हम नहीं कह सकते।
2: बाबू जी देखिए, अल्कोहल की तो कोई मात्रा मैं आपको नहीं बता सकता कि सेफ है ना। खाना आप नॉर्मल, खाने का चार्ट आपको दिया जा सकता है, अगर आप चाहें तो सिम्स हॉस्पिटल, आकाश सिम्स हॉस्पिटल आ सकते हैं, वहाँ आपके आपके हिसाब से आपको डाइटरी चीज़ें बताई जा सकती हैं, अल्कोहल नहीं बता सकता मैं।
1: जी डॉक्टर साहब, एक हमारे पास व्हाट्सएप मैसेज आया है, नासिर शेख हैं श्री रामपुर महाराष्ट्र से, वो पूछते हैं डॉक्टर साहब बार बार पेशाब आना क्या कोई बीमारी का लक्षण है, एक, और दूसरी बात पूछा है कि सुबह उठकर पीला पेशाब आना क्या कोई बीमारी का लक्षण है या नॉर्मल है।
2: नरसिंह साहब, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर आपने ये सवाल अपने लिए या किसी के लिए पूछा है, उसकी उम्र 50 या 60 साल के आसपास होगी, तो अगर आपको बार बार पेशाब आ रहा है तो ये 50 या 60 साल की उम्र में आदमियों में प्रोस्टेट की दिक्कत होती है, प्रोस्टेट बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ये परेशानी हो सकती है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो एक अल्ट्रासाउंड विद PVR यानी कि पहले और बाद अल्ट्रासाउंड के बाद का पेशाब नाप करके एक अल्ट्रासाउंड कराएँ, जिससे ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी। नंबर दो, जो आपने पूछा, सुबह का पहला पेशाब सारी दुनिया को पीला ही आता है, अगर नहीं आ रहा है तो बीमारी का लक्षण है।
1: जी एक कॉल ले लेते हैं। हेलो।
2: हाँ जी।
3: हेलो
1: जी, नाम बताएं।
3: मेरा नाम सरिता है।
1: आप कहाँ से बोल रहे हैं बेटा?
3: मैं दिल से बोल रही हूँ।
1: तो बताइए क्या समस्या है?
3: सर मेरे वो बीच वाली नली है ना।
2: किसकी नली बेटा?
3: जो बोल रहे थे आती है वो बीच वाली नली।
1: तो आप किसी बड़े से बात करा दीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, तो ये बेबी हैं और शायद बुजुर्ग बोल नहीं पा रहे हैं, समस्या उनकी क्या है। तो बहरहाल अगली बात यह है कि
2: आप खाने के लिए पूछ रहे थे।
1: जी जी,
2: तो पहली चीज पानी में बता रहा था, पानी उतना पीजिए जितनी प्यास, आमतौर पर 2.5 लीटर तक का फ्लूइड इंटेक एक दिन में बहुत होता है, क्योंकि आप ज्यादा पानी पियेंगे बस यूरिन करते रहेंगे और कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। मैं थोड़ा सा उदाहरण दे रहा हूँ 2 मिनट में, ये जो ज़्यादा पानी का कंसेप्ट है ये आज से 50-60-100 साल पहले का है। उस ज़माने में 90% से ज़्यादा लोग या तो किसान थे, साइकिल पे चलते थे, पैदल चलते थे। किसान सुबह 4 बजे उठ के जा रहा है
1: जी,
2: पूरे दिन धूप में काम करेगा, पानी चाहिए उसको। आज की तारीख में 90% लोग स्कूटर पे, बाइक पे
1: जी,
2: और गाड़ी वाले तो घर से निकले, गाड़ी में बैठे फिर ऑफिस पहुँच गए, तो ज़्यादा पानी का कोई मतलब नहीं है।
1: जी एक कॉल और ले लेते हैं।
2: जी
1: हेलो।
4: हेलो नमस्कार सर।
1: जी नाम बताइए।
4: सर मेरा नाम दिशा है। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे अगर किडनी में स्टोन हल्के हल्के बनना स्टार्ट हो गए तो उसके लिए हम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं?
2: देखिए,
4: और KAFT टेस्ट करवाएं तो कब करवाएं और किस उम्र में करवाएं?
2: तो आपके दो सवाल हैं। पहली चीज़ तो अगर आपकी पथरी बननी शुरू हो गई तो देखिए, पथरी बनने का ही प्रक्रिया जो है वो ऐसी नहीं होती कि बहुत तेज़ी से होती है
4: जी।
2: और मथुरा और एडजॉइनिंग एरिया का जो पानी है वो इस तरीके का है कि आपके यहाँ पथरी बनती है, नंबर एक। नंबर दो, पथरी कई तरीके की होती है, तो आप अपना यूरिन स्टोन एनालिसिस करा सकते हैं जिससे कि ये पता चल सकता है कि आपके यहाँ पथरी किस तरीके की बन रही है, उस तरीके के हिसाब से डाइट में मॉडिफिकेशंस किए जा सकते हैं। रही बात KFT की, तो मेरे ख्याल से अगर आपकी उम्र 40 साल के ऊपर है तो 6 महीने में एक बार KFT और पेशाब की जांच करा लेनी चाहिए।
1: जी नियमित जांचें बहुत ज़रूरी हैं इसके फैक्टर के हिसाब से। एक और समस्या आ जाती है डॉक्टर साहब, आपने कहा था कि लिक्विड हमको इतना कंट्रोल रखना है, आपसे मैं मिला, मेरे से आप मिले, कहीं ना कहीं सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं, चाय कॉफ़ी लेते हैं, तो ये ड्रिंक की तो क्वांटिटी काफ़ी हो जाती है ना।
2: एग्जैक्टली, तो वही मैं कह रहा हूँ कि पानी हमें उतना ही पीना है। जैसे मैं अपने बारे में बताऊँ, मुझे पसीना बहुत आता है
1: जी,
2: तो मुझे पानी ज़्यादा लगता है, प्यास से लगती
1: जी जी।
2: मेरी वाइफ है उनको पसीना नहीं आता ज़्यादा, तो ये तो इंडिविजुअलाइज्ड हो गया। दूसरा आपका काम, एक मजदूर जो सड़क पे काम कर रहा है या रिक्शा चला रहा है उसको पानी ज़्यादा चाहिए, जो बंदा ऑफिस में बैठ के काम कर रहा है उसे पानी नहीं चाहिए इतना। तो अगर आप ज़्यादा पानी पी रहे हैं तो आप कुछ कर नहीं रहे हैं कि ऐसा किडनी साफ हो रही है, नहीं, वो एक्स्ट्रा पानी है, किडनी ने बाहर फेंक दी है, उसका काम है।
1: जहाँ तक मेरे जहन में आता है, एक और

0: समस्या होती है कि कुछ लोग बार बार टॉयलेट जाते हैं, यानी कुछ जितना इंटरवल उनको चाहिए होता है उससे ज़्यादा चले जाते
1: हाँ,
0: हैं।
1: तो वो मैंने अभी बताया था कि या तो ये ज़्यादातर उन लोगों के साथ होता है जिनकी उम्र 50 या 60 साल की उम्र में हो जाती है, और मेल्स होते हैं तो उनको प्रोस्टेट हो जाता है, प्रोस्टेट की वजह से यूरिनरी ब्लैडर पूरा खाली नहीं होता है और उसकी वजह से ये समस्या आती है, जिसके लिए दवाइयाँ भी हैं और अगर दवाइयाँ काम नहीं करती हैं तो सर्जिकल प्रोसीजर भी है।
0: जी डॉक्टर साहब, अगर ब्लड प्रेशर का एक पेशेंट है, रोगी है, तो उसको किडनी से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं?
1: बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे पास किडनी के मरीजों में 3 साल के बच्चे से लेकर 90 साल तक का पेशेंट है,
0: जी
1: और जो पेशेंट यंग होते हैं अगर उनके अंदर ब्लड प्रेशर आ रहा है तो ये 100% किडनी से रिलेटेड होगा,
0: तो
1: सौ
0: फिर
1: परसेंट
0: जांच कराना बहुत
1: बिल्कुल।
0: जरूरी।
1: अगर आपकी उम्र 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है, अनटिल नेस प्रूवन अदरवाइज ये किडनी का इशू है।
0: डॉक्टर साहब, एक कॉल और ले लेते
1: जी
0: हैं। हेलो,
1: हाँ जी,
0: नाम बताइए। जी, डिस्कनेक्ट हो गए हैं शायद। तो हमारी बात चल रही थी
1: बीपी के
0: ब्लड।
1: ऊपर।
0: जी
1: तो बीपी अगर 40 साल के बाद भी अगर आपका बीपी एबनॉर्मली बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली आपकी किडनी इन्वॉल्व हो सकती है, क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी बताऊं, लोग ज़्यादा सोचते हैं मेरा हार्ट खराब हो रहा है इसलिए बीपी बढ़ रहा है। हार्ट बीपी कम तो कर सकता है खराब होने के बाद, बढ़ा नहीं सकता।
0: जी
1: आपके घर में पंप लग रहा है, मोटर पंप?
0: जी
1: डॉक्टर
0: एक
1: साहब को
0: कॉल है।
1: नमस्कार।
0: हाँ
1: जी
0: जी,
1: हाँ,
0: नमस्कार
1: नमस्कार
0: नमस्कार,
1: जी।
0: नाम बता दीजिए।
1: मैं सुरेंद्र सिंह सिसोदिया, ब्रिज रेडियो, छोटा मित्र, गांव चटिगरा, जिला मथुरा से बोल रहा हूँ।
0: जी,
1: बहुत ही
0: समस्या
1: बेहतरीन
0: बताइए।
1: सर। समस्या यह है सर, जैसे कि आपने अभी बताया कि जैसे पेशाब जाना बार बार, वो 60 से, मतलब 60-70 साल की या 50 साल से उम्र के हल्के होते हैं, जी लेकिन सर यहाँ कुछ विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि जैसे पेशाब आप जा रहे हैं बार बार, तो आप पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए। तो नहीं, बाबूजी देखिए, हम क्या कर रहे हैं ना, हम उल्टी कहानी कर रहे हैं। आपकी तो हाँ जी, बार यही बार
0: तो मैं।
1: पेशाब, बार बार पेशाब जाना और ज़्यादा पेशाब जाना दोनों अलग चीज़ हैं। तो अगर आप बार बार पेशाब जा रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा पेशाब कर रहे हैं, और अगर आप प्रोस्टेट के पेशेंट हैं, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मेरे पास हज़ारों ऐसे पेशेंट्स आ चुके हैं जिनको ये सुझाव दिया गया और वो प्रोस्टेट के पेशेंट थे, और क्या हुआ कि उनकी पेशाब की थैली में इतना प्राणी पेशाब भर गया और नहीं नहीं निकल पा रहा, उससे इन्फेक्शन भी हो गया और दिक्कत भी हो गई। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ किडनी और कमोड में अंतर है सर, किडनी कमोड की तरह नहीं है कि आपने बाल्टी पानी मारा और किडनी साफ़ हो गई।
0: जी, तो ये अक्सर गलतियां समझदार लोग कर जाते हैं।
1: बिल्कुल सर, मेरे पास मतलब मेरे खुद के घर में हो चुका है, मेरे एक थे रिलेटिव जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम थी, पेशाब रुक जाता था, अब रात में उनको यूरिन में दिक्कत आने लगी, उनको किसी ने बता दिया तुम एक काम करो 1-1.5-2 लीटर पानी पी जाओ।
0: बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न एक हमारे पास आया है प्रकाश जैन जी का, नांदेड़ महाराष्ट्र से।
1: जी
0: आप पूछते हैं, हमारी बहन को कुछ दिन पेशाब कम, कुछ दिन पेशाब ज्यादा आता है, मैं जग भर भर कर खाली पेट पानी पीता हूं, क्या ये सही है या नहीं?
1: नहीं, आप अपने बारे में पूछ रहे हैं कि अपनी बहन के बारे में पूछ रहे हैं,
0: बहन
1: दोनों
0: के
1: के बारे।
0: बारे में।
1: देखिए, अगर आपकी बहन को कभी कम ज़्यादा पेशाब आता है तो एक तो मुझे पता होना चाहिए उनकी एज क्या है, या उनको कोई 47, उनको कोई शुगर की बीमारी या कुछ और है कि नहीं, नंबर एक। नंबर दो, पेशाब तो कम ज़्यादा आपके एटमोसफेयर, आपके टेम्परेचर, आपका पानी इनटेक, इसके हिसाब से किडनी बनाती है। ऐसा नहीं है कि किडनी हर बार उतना ही यूरिन बनाएगी या आपको यूरिन उतनी ही ड्यूरेशन में आएगा, आपको यूरिन आएगा जब किडनी को लगेगा कि यूरिन इतना हो जाना चाहिए और जब आपके यूरिन की थैली में उतना यूरिन आ गया। तो ये मेरे ख्याल से कुछ ऐसी बीमारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप एक सिंपल अल्ट्रासाउंड और KFT करा सकते हैं जिससे ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी। नंबर दो, जो आपने पूछा जग भर पानी पियेंगे, तो सर आप जग जग पानी पीते जाओ, आप किडनी यूरिन बनाती जाएगी और कुछ नहीं होगा।
0: डॉक्टर साहब, तो एक चीज़ ये सामने आ रही है कि जो कुछ प्रथाएं, अगर मैं कहूं कुप्रथाएं,
1: नहीं सर, ये कुप्रथा नहीं है, ये उस जमाने के हिसाब से बिल्कुल सही प्रथा थी।
0: जस्टिफाई थी।
1: हाँ, लेकिन आज की तारीख में आप ज़्यादा पानी पियेंगे तो एक ही काम होगा बस, आपने अपनी बॉडी में 3 लीटर यूरिन पानी डाल दिया, बॉडी को चाहिए 1 लीटर, तो 2 लीटर किडनी बाहर फेंक देगी।
0: जी बिल्कुल सही बात है। अगला कॉल ले लेते हैं।
1: जी
0: हेलो,
1: नमस्कार सर।
0: मैं सत्येंद्र कुमार बोल रहा हूँ सर, हाथ रखिए।
1: जी

0: सामने यूरिन झाग बनता है
1: जी।
0: मैंने रात को दवा भी खाया, टेस्ट भी कराया, उसमें
1: जी
0: मैंने टेस्ट कराया, उसमें रामकृष्ण मिशन
1: जी,
0: तो उसमें मैंने अपना बीपी टेस्ट कराया, अपनी किडनी टेस्ट कराया और एक पेशाब शुगर टेस्ट कराया
1: जी,
0: उसमें कुछ नहीं निकला, डॉक्टर साहब ने दवाई नहीं दी। झाग क्यों बनता है?
1: नहीं बाबूजी, अगर झाग बन रहा है तो उसका कारण है, और आपने जो टेस्ट कराए वो कारण जरूरी नहीं है वही हो। हमारे शरीर में कुछ और ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से पेशाब में झाग बनता है, और वो कारण ऐसे टेस्ट में नहीं आते, उसके लिए अलग तरीके की चीज़ और अलग विशेषज्ञ चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि आप सिंपल दवाइयाँ खाते रह जाएंगे और झाग बनता रहेगा, और वो आगे जाके अगर मैं वही समस्या है जो मैं सोच रहा हूँ तो वो किडनी को डैमेज कर सकता है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये झाग बनने वाली समस्या के मेरे पास छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 साल के, 4 साल के, 6 साल के, 10 साल के, 12 साल, 20 साल, जिनकी कोई परिप्रायम नहीं, खाली झाग बनना शुरू हो गया पेशाब में, और बच्चों में क्या होता है सूजना। तो कृपया करके अपना एक प्रॉपर जाँच और एक विशेषज्ञ को दिखाएं जिससे आपकी समस्या का निदान हो जाए, या तो आपको बता दिया जाए कुछ नहीं है, और या आपको बता दिया जाए कि ये है और इसका ये इलाज है। जी हाँ जी,
0: 46 वर्ष का हूँ मैं।
1: हाँ जी
0: हाँ जी, तो उसमें ये डॉक्टर साहब ने मना कर दिया, जांच कराने के बाद भर जाओ कोई बात नहीं, बीपी गोली दे दी मुझे।
1: हाँ, मैंने अभी बताया ना आपको, आपको बीपी की गोली दे दी, बीपी की गोली ने झाग को चलो कंट्रोल करने की, एक बीपी आती है जो कि एक स्पेसिफिक तरीके में दी जाती है, लेकिन क्या डॉक्टर भगवान है जिसको ये पता चल गया कि आपका झाग जो है बिना बात के बन रहा है?
0: नहीं नहीं ऐसा है, जब
1: है ना
0: जी, टेस्ट करने के बाद तो मेरा जो है 40-42
1: नहीं, बीपी कंट्रोल तो हो गया आपका, लेकिन झाग का क्या हुआ?
0: झाग नहीं हुआ, झाग पर
1: नहीं, बस तो फिर इलाज कहाँ हुआ बाबूजी? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप एक उचित विशेषज्ञ को दिखाएं जो किडनी रोग के विशेषज्ञ हों, और वो आपको बताएं कि ये स्पेसिफिक है, नॉन स्पेसिफिक है, या क्या करना है।
2: आपको अपने समस्या का समाधान मिल गया होगा जी डॉक्टर साहब, इन्होंने जैसा कहा उस हिसाब से झाग आने में क्या प्रोटीन की भूमिका भी रहती है?
1: नहीं सर, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। पहली चीज़ तो मैं बता दूं कि जब झाग आपके यूरिन में बन रहा है तो उसकी एक मात्रा नापी जाती है एक यूरिन के 2 टेस्ट के तरीके से, और अगर वो सिग्निफिकेंट है तो उसकी जांच होनी चाहिए
2: जी,
1: और इलाज होना चाहिए, अन्यथा किडनी खराब होगी 100%। आगे सुनिए, मेरे पास सबसे छोटा पेशेंट डायलिसिस पे 8 साल का बच्चा है जिसकी यही स्थिति शुरू हुई और 2 महीने में किडनी खत्म हो गई। स्टार्टिंग से शुरू हुआ कि बच्चे को थोड़ी सूजन आई, पेशाब में झाग दिखा, मात्र 2 महीने में किडनी खत्म। उसके ऊपर मेरा पास बच्चा है डायलिसिस पे, वो है 10 साल का, उसके ऊपर है 12 साल का, उसके पास 16 साल का, 18 साल का, 22 साल के, और ये सारे वही हैं। तो इसको इग्नोर करना खतरनाक है, क्योंकि ये वो बीमारी है जो आपकी किडनी को 2 महीने नहीं 2 हफ्ते में ख़त्म कर सकती है। इलाज बड़ा आसान है, शुरुआत में इतना आसान इलाज है, लेकिन अगर आप लेट हैं तो किडनी खत्म।
2: सारा टारगेट एक समाधान की ओर जाता है कि उम्र के हिसाब से हमें जांच कब कब करानी चाहिए।
1: मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब दे दूं, प्रोटीन, कई लोग मेरे पास आते हैं, डॉक्टर साहब हमारे पेशाब में प्रोटीन जा रहा है इसलिए हमें बोल दिया गया कि प्रोटीन मत खाओ
2: जी।
1: दोनों का कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों का कोई मतलब नहीं है।
2: अच्छा,
1: ना तो ये कंसेप्ट सही है कि किडनी के मरीज में प्रोटीन बंद कर दो, वो भी एक गलत चीज़ है, और ये रोज़ मैं देखता हूँ, और ना ये कंसेप्ट सही है कि अगर आपके पेशाब से प्रोटीन जा रहा है तो उसको प्रोटीन बंद कर दो।
3: हेलो
2: जी, नाम बता दीजिए।
3: जी नाम मेरा है
2: जी,
3: क्या जानकारी दे रहे हैं सर मुझे थोड़ा?
2: आप अपना नाम बताइए।
3: हरिदास।
2: हरिदास जी, हम आज किडनी रोगों के विषय पर बातचीत कर रहे हैं।
3: अच्छा, किडनी
2: बताइए, समस्या क्या है?
3: हेलो
2: जी।
3: हाँ, किडनी के बारे में
2: जी,
3: और कोई विषय नहीं रखा सर है
2: जी। अगले विशेषज्ञ जब हमारे साथ होंगे आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, हमारी चर्चा का जो चल रहा था सार की ओर जाएं तो हमें टेस्ट कब कब कराने चाहिए?
1: तो पहली चीज़ सर, किडनी की बीमारी कभी भी किसी उम्र में भी हो सकती है, इसके लिए एज का फैक्टर कोई ज़रूरी नहीं है। नंबर 2,

0: आम तौर पे अगर कोई दिक्कत नहीं है तो 40 साल की उम्र के बाद साल में एक बार टेस्ट, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है और अगर आप शुगर या बीपी के पेशेंट हैं तो साल में दो बार एक बेसिक सीबीसी, केएफटी और पेशाब की जांच करानी चाहिए। अल्ट्रासाउंड साल में एक बार भी आवश्यक है, जिससे कि आपको प्रोस्टेट या किडनी से रिलेटेड बाकी चीज़ें पता चल सकती हैं।
1: जी
0: अगर आप छोटी उम्र के हैं और आपको अगर सूजन आ रही है या कोई और दिक्कत आ रही है तो आप पेशाब की जाँच या बेसिक चीज़ें करा सकते हैं, जिससे कि वो डायग्नोसिस तुरंत हो जाती है।
1: जी एक प्रश्न हमारे पास आया है, गंज डुंडवारा से मास्टर खिल्लू परवेज हैं, कहते हैं बार बार पेशाब करने में जलन महसूस होती है।
0: हाँ, तो मास्टर परवेज, अगर मैं मान के चलूँ कि आपकी उम्र जो है वो 40-50 से ऊपर होगी तो आपको प्रोस्टेट हो सकता है, और प्रोस्टेट यानी कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, जिसमें प्रोस्टेट बढ़ जाता है और उसकी वजह से पेशाब पेशाब की थैली में रुकना शुरू हो जाता है, और ऐसे मरीजों को पेशाब में रुकावट, जलन होना, रुक रुक के आना, अटकना या टपकना, ये सब की दिक्कतें हो सकती हैं। तो मेरा सुझाव है कि आप अल्ट्रासाउंड कराएं, जिससे कि ये आपका प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा।
1: अगर ऐसी स्थिति आ जाती है, पेशाब में प्रोटीन की मात्रा बड़ी पाई जाती है, सूजन भी थोड़ा महसूस होती है, थकान महसूस होती है, तो क्या एनीमिया का खतरा बढ़ सकता है?
0: मैं देखिए, वही मैं बता रहा हूँ, किडनी, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन बनता है बोन मैरो में, लेकिन उसको बनवाने का काम है किडनी। अगर किडनी इन्वॉल्व होगी तो बोन मैरो पे जो सिग्नल जाता है हीमोग्लोबिन बनाने का, वो कमज़ोर हो जाएगा और बोन मैरो हीमोग्लोबिन नहीं बनाएगा।
1: जी, तो इसके लिए ज़रूरी है
0: तो अगर आपकी
1: कि
0: किडनी कमज़ोर होगी तो हीमोग्लोबिन नीचे जाएगा।
2: हेलो
1: जी, अपना नाम बता दीजिए।
2: डॉक्टर साहब नमस्कार, और राजेश भाई जी आपको नमस्कार।
1: नमस्कार, समस्या बताएं।
0: नमस्कार,
2: मैं जितेंद्र दूसरसिया बोल रहा हूँ।
1: जी
2: मेरा सवाल है, पहला, जैसे सीजर होता है पथरी का या किसी का भी हो, क्या ये आगे भी समस्या करता है सीजर होने के बाद?
0: नहीं सर, देखो, पथरी तो आपकी एक बार निकाल दी जा सकती है, लेकिन पथरी तो दोबारा बन सकती है। पथरी
2: नहीं, जैसे इंजेक्शन लग गया, इसकी एक भ्रांति बोलते हैं लोग कि इंजेक्शन लगाते हैं कि वो आगे समस्या करता है, कि
0: कौन
2: मतलब
0: सा
2: पथरी
0: इंजेक्शन?
2: भी चल जाती। ये कितने दिन तक समस्या कोई रहती है, या
0: आप
2: अगर दर्द
0: नहीं
2: हो
0: नहीं
2: जाता
0: किस
2: है तो
0: इंजेक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि पथरी को निकालने का कोई इंजेक्शन नहीं होता
2: एनेस्थीसिया दिया जाता है सीजर
0: वो बाबूजी।
2: के लिए,
0: एनेस्थीसिया नहीं, वो
2: क्योंकि
0: कमर में आजकल स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है, और अगर
2: हाँ
0: उचित हाथों से दिया जाए तो उसकी कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई परेशानी नहीं होनी। हम तो नहीं देखते किसी मरीज में कोई परेशानी होते हुए।
2: ये एक लोगों की भ्रांति है, मैं भी केस देखता था कि मैं भी वो डॉक्टर था, लोग बताते हैं कि नहीं ऐसा होता है, वो होता है।
0: बाबूजी देखो, ऐसा है कि लोगों का मानना तो ये भी है कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो आप अपशगुन है, कोई मानता है कोई नहीं मानता। लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना।
1: इसलिए आगे की बात आप समझ गए होंगे। फोन करने के लिए धन्यवाद। जानना, जानकारी लेना पैनिक होने के लिए नहीं, बल्कि जानना इसलिए कि समय रहते हम तैयारी कर लें।
0: जी, बहुत से लोग इस डर से अपने टेस्ट नहीं कराते कि कुछ निकल आया तो, और मैं कहता हूँ कुछ हुआ तो,
1: जी
0: जो आज चिंगारी है वो कल बम बन के फट जाएगा। और ज़्यादातर केस जो किडनी के बिगड़ते हैं वो सिर्फ इसीलिए बिगड़ते हैं कि लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते, मानते नहीं हैं कि मेरी किडनी ख़राब हो गई। आप सोचिए, मुझे बताइए, हार्ट अटैक का कोई मरीज कभी कहता है नहीं मैं आयुर्वेदिक इलाज कराने जाऊँगा? कभी नहीं कहता।
1: बिल्कुल सही बात
0: लेकिन
1: है।
0: किडनी का है, मेरे पास 90% मरीज आते हैं जो कि हम आयुर्वेदिक देसी चूरन चटनी सब करा के आते
1: तो इसके लिए तो जागरूकता बेहद ज़रूरी है, और
0: हैं। हाँ
1: शायद हमारे प्रोग्राम का मकसद भी यही है।
0: बिल्कुल, मैं वही आपको बता रहा था कि किडनी रोग किसी भी उम्र में हो सकता है, हजारों तरीके की बीमारियां हैं किडनी में।
1: तो अब आते हैं बात डायलिसिस, एक बड़ा पॉपुलर शब्द सुनने में हो गया है।
0: पॉपुलर भी और समाज में एक उसका भय भी बना हुआ है।
1: जी, क्या है ये?
0: देखिए, डायलिसिस वही कर रही है जो आपकी किडनी नहीं कर पा रही। जैसे अगर किसी की हड्डी टूट गई है और वो नहीं चल पा रहा, तो उसे चलने के लिए बैसाखी चाहिए या
1: जी
0: वॉकर चाहिए, नहीं
1: जी
0: तो नहीं चल पाएगा। ऐसी किडनी जितने भी फंक्शन कर रही है, अगर वो किसी कारण से उस टाइम पे नहीं हो रहे हैं और इस लिमिट तक नहीं हो रहे हैं कि इंसान जिंदा नहीं रह सकता, तो उसमें डायलिसिस की जाती है, जिसमें कि किडनी के कुछ फंक्शंस को करेक्ट कर दिया जाता है। डायलिसिस एक बहुत ही बड़ा डर बना हुआ है हमारे समाज में, और डायलिसिस

0: सबके लिए बताना चाहता हूँ कि डायलिसिस आपकी जान को बचाता है और बचाए रखता है। दिक्कत तब होती है जब आप डॉक्टर की सलाह के खिलाफ उचित डायलिसिस नहीं करते। बस
1: जी डॉक्टर साहब, तो कंक्लूजन यही आता है कि जागरूक होना, प्रिकॉशंस को अप्लाई करना, यानी जो हम कर सकते हैं अपने को स्वस्थ रखने के लिए वो ज़रूर करें, और समय समय पर अपने विशेषज्ञ से जो भी आपके नज़दीक हैं अवश्य परामर्श लें। तो आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। आकाश सिम्स हेलो डॉक्टर के इस कार्यक्रम में हमारे साथ थे आज किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष शर्मा जी। शर्मा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे श्रोताओं से उनके प्रश्नों का समाधान, समस्याओं का समाधान किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत
0: बहुत
1: धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपने मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर वन पैथोलॉजिस्ट के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर शिराधा वैली मथुरा।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम सिम्स हेलो डॉक्टर। विषय था किडनी रोग कारण लक्षण और निवारण। विशेषज्ञ थे डॉक्टर आशीष शर्मा, वरिष्ठ किडनी रोग विशेषज्ञ, आकाश सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हॉस्पिटल मथुरा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस मथुरा। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है ब्रजलोक गीत कार्यक्रम। आज के कलाकार हैं खेमचंद यदुवंशी।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए।
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
8: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं और हमारे श्रोता इस समय आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम ब्रज लोकगीतों का। आज के कलाकार हैं खेमचंद्र यदुवंशी और आइए अब आपको सुनवा देते हैं इन्हीं के स्वर में कार्यक्रम का अगला ब्रज लोकगीत।

0: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
1: आराम से मैडम।
0: क्या?
1: आराम से पहुंचेंगे मैडम, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
2: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
3: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
3: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: कूलर की नियमित सफाई करें और अन उपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1-800-1805-145 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे श्रोता इस समय आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम ब्रज लोकगीतों का। आज के कलाकार हैं खेमचंद्र यदुवंशी, और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का अंतिम ब्रज लोकगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे ब्रज लोकगीत कार्यक्रम। आज के कलाकार थे खेमचंद्र यदुवंशी। आज का ब्रज लोकगीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर।
1: बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राज्यसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज दोपहर इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। सभापति ने बताया कि उन्होंने डॉ. जितेंद्र सिंह की लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को विचार और पारित करने संबंधी सूचना स्वीकार कर ली है। उन्होंने कहा कि विधेयक की प्रतियां सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं, जिससे वे इसमें संशोधन प्रस्तुत कर सकें। लोकसभा ने कल यह विधेयक पारित कर दिया है। शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से इस पर बयान देने की मांग की। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष का पूरा ध्यान सदन की कार्यवाही को बाधित करने पर है।
3: इस संसद के माध्यम से देश को इस बात का संदेश देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष जो है वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, यह ध्यान में रहे।
2: लोकसभा की कार्यवाही नीट परीक्षा मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना

0: संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
1: आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, सदस्यों को सवाल उठाते हैं, सरकार की जवाबदेही होती है। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के गोला बारूद के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और वी मोहन की पीठ ने दिल्ली सरकार को प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन से घायल हुए लोगों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में IASV त्रिवेणी पर समुद्री अभियान में गई महिलाओं की टीम से बातचीत की और उनकी असाधारण उपलब्धि तथा दृढ़ संकल्प की सराहना की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उनका सफल अभियान राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का विषय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने पंजाब के बरनाला में अनुसूचित जाति समुदाय से जुड़े सफाई कर्मचारियों के साथ कथित पुलिस ज्यादती के मामले में पंजाब के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। आयोग ने दोनों अधिकारियों से इस मामले में 7 दिन के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। अमरीकी सेना ने कल रात भर ईरान के खिलाफ व्यापक हवाई हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि ईरान द्वारा जॉर्डन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों और होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर किए गए इसके जवाब में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस बीच ईरान के खुजिस्तान प्रांत के 4 शहरों अहवाज और बंदर अब्बास में कई विस्फोटों की खबरें सामने आई हैं। भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। सेमीफाइनल में भारत का सामना अमेरिका से होगा। उधर भारतीय महिला टीम क्वार्टर फाइनल में अमेरिका से 1-2 से हार गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

अब से थोड़ी ही देर में यानी अपराह्न 1:15 पर आप सुनेंगे महिलाओं का कार्यक्रम वनिता लोक। आज इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय रहेगा मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस विषय पर। इसके अलावा चर्चा होगी विकसित भारत में महिलाओं की भूमिका। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे खानपान वार्ता, सावन के व्रत में बनाए फलहारी व्यंजन। वार्ताकार होंगी आरती सेठ। इसी कार्यक्रम में महिलाएं जानेंगी कुछ घरेलू टिप्स और आनंद ले सकेंगी फिल्म संगीत का।

फिल्म संगीत सुना जा सकेगा अपराह्न 1:45 पर, और प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे अपराह्न 2:30 पर। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी संध्या 4:00 कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स के साथ। संध्या 5:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत। युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी सुना जा सकेगा संध्या 5:30 पर। आज इस कार्यक्रम में आज की बात का विषय होगा मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस पर। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे

0: किसान वाणी कार्यक्रम आप सुन सकेंगे संध्या 6:15 पर। आज इस कार्यक्रम में चर्चा होगी किसान क्रेडिट कार्ड विषय पर। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे ओबी आधारित भेंट वार्ता श्री अभिषेक शुक्ला की दीपक गोस्वामी से बातचीत। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे भेंट वार्ता कृषि आदान खरीदते समय सावधानियां। वार्ताकार होंगे विजय कुमार रावत और इनसे बातचीत करेंगे विजय सिंह नौलखा। फिल्मी भजनों पर आधारित कार्यक्रम संध्या वंदन का समय रहेगा 6:45 पर और ब्रज साहित्यिक कार्यक्रम आप सुनेंगे देश हमारो के अंतर्गत पर्यटन स्थल हरिद्वार। वार्ताकार होंगे नरेंद्र कुमार शर्मा। समय रहेगा 7:05 पर। संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम सुहानी 7:31 पर। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे संसद समीक्षा जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कार्यक्रम एक ही फिल्म से सुना जा सकेगा रात्रि 8:30 पर और कार्यक्रम न्यूज एट 9 का समय रहेगा रात्रि 9:00। चित्रपट संगीत सुहाने तराने आप सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। कार्यक्रम कंट्री वाइड का समय रहेगा रात्रि 9:30 पर और कार्यक्रम इनसाइट्स आप सुनेंगे रात्रि 9:45 पर। ये दोनों ही कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण।
1: भैया जल्दी चलो मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है देशभक्ति परक रचना

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति परक रचना। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम वनिता लोक। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं भावना शर्मा।

अनीता लोक सुन रही सभी बहनों को भावना शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। कैसी हैं बहनों आप लोग? तो बहनों, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और सबसे पहले हम आपसे कुछ बातें करते हैं। तो आज का विषय हम ले रहे हैं महिलाओं के ऊपर ही है। किसी भी राष्ट्र का विकास तभी संभव है जब उसकी आधी आबादी महिला पूरी तरह से राष्ट्र निर्माण में भागीदारी करे। आज भारत विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महिलाओं की शिक्षा, उनकी आत्मनिर्भरता, नेतृत्व क्षमता और सामाजिक सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले महिलाओं की भूमिका में शिक्षा महत्वपूर्ण है। ये सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। वे समय स्वयं के साथ साथ दो घरों को शिक्षित बनाती है। इससे उसमें

जागरूकता तथा अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता और बेहतर निर्माण करने में और निर्णय लेने में उसको मदद मिलती है। दूसरा जो शिक्षा से फ़ायदा होता है वो है आर्थिक विकास। महिलाएं कृषि उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में अपना अपना योगदान दे रही हैं। सामाजिक परिवर्तन होता है महिलाओं की शिक्षा से। महिलाएं सामाजिक कुरीतियों में लैंगिक भेदभाव, बाल विवाह जैसी कुरीतियों से निकल के पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं, बल्कि ये कहें कि उनसे भी ऊपर पदों पर आसीन हैं। तो वे उन महिलाओं के घर जा जा कर भी शिक्षा देती हैं जो कि किसी कारण से अनपढ़ रह गई हैं, पर अब उनकी बच्चियां पढ़ने जरूर जा रही हैं। तो ये जो जागरूकता का कार्य है, शिक्षा सभी का अधिकार है, सभी को अपने शिक्षा के दम पे ही हम देश का भविष्य तय कर सकते हैं, जिसमें हमारी यानी महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़रूरी है और वो उसकी नींव एक बच्ची के रूप में ही शुरू में ही रखी जा सकती है। अब आते हैं अगले क्षेत्र में, राजनीतिक नेतृत्व के रूप में। पंचायतों से लेकर के सांसद तक महिलाओं की बढ़ती भागीदारी लोकतंत्र को और अधिक सबल बनाती है। राजनीतिक क्षेत्र में भी महिलाएं पद पर आसीन हैं, उच्च पदों पर आसीन हैं। अगला है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। आज भारत की महिलाएं कहां कहां अपनी विजय का झंडा नहीं लहला रही हैं। अंतरिक्ष से ले लीजिए, अंतरिक्ष हो, अनुसंधान हो, चिकित्सा हो, इंजीनियरिंग हो, जैसे सभी क्षेत्रों में अपना लोहा ये मनवा रही हैं। भारत की लड़कियां देश को गौरवान्वित कर रही हैं। अगला है जो कि अंतिम है, परिवार और संस्कार। महिलाएं परिवार के लिए, बच्चों के लिए प्रथम शिक्षिकाएं होती हैं, तो वे अपने बच्चों में मूल रूप से नैतिक मूल्यों और अनुशासन को और देशभक्ति के प्रति भाव को डाल सकती हैं बहुत बेहतर तरीके से। हालांकि ये काम शिक्षिकाएं भी करती हैं, लेकिन माँ की जगह तो खैर कोई नहीं ले सकता, तो ये कार्य वो बहुत अच्छे से अपने घर से ही शुरुआत करती हैं। तो बहनों, अब इस चर्चा को हम यहीं रोक देते हैं और सुनते हैं एक बहुत ही बढ़िया सा गीत।

0: तो बहनों, विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब महिलाओं के समान अवसर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भर बनने के पर्याप्त साधन उन्हें मुहैया कराए जाएं। भारत की हर लड़की का शिक्षित होना अत्यंत जरूरी है। नारी शक्ति ही विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत की सच्ची आधारशिला है। तो बहनों, ये थी हमारी बात आपसे पहली चर्चा, और अब हम आपको कुछ सावन से संबंधित बताने जा रहे हैं। सावन का महीना आयो रे, बादल ने राग मचायो रे, मेघों को संग लायो रे, बूंदों ने शोर मचायो रे। बहनों, सावन की तो बात ही अलग है, और सावन का महीना प्रारंभ हो चुका है, सावन के व्रत भी शुरू होने वाले हैं। तो व्रतों के दौरान बहुत सारे ऐसे व्यंजन हैं जो हम खा सकते हैं, व्रत में खा सकते हैं, क्योंकि हमारी बहनें बहुत सारी ये व्रत रखती हैं। बल्कि मैं तो कहूँगी कि सबसे ज़्यादा ये व्रत लोकप्रिय होते हैं जो सभी रखते हैं। तो चलिए ये जानते हैं कि क्या क्या हम उसमें और क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। तो आज हम खान पान के अंतर्गत ये वार्ता रख रहे हैं, और विषय है सावन के व्रत में फलाहारी व्यंजन, और वार्ताकार हैं आरती सेठ।
1: बहनों, भीषण गर्मी का मौसम खत्म हुआ और सुहावने मौसम का प्रारंभ हो चुका है। सावन का महीना आ गया है और अपनी रिमझिम रिमझिम बूंदों से चारों तरफ हरियाली फैला रहा है। बहनों, सावन का महीना आता है तो व्रत और त्योहारों का मौसम भी प्रारंभ हो जाता है। आज मैं आपको सावन के महीने में पड़ने वाले व्रतों में बनाए जाने वाले फलाहारी व्यंजनों के बारे में बताऊंगी। बहनों, सबसे पहले मैं आपको आलू की टिकिया बनाने की विधि बताती हूँ। आलू की टिकिया के लिए हमें चाहिए 5-6 आलू उबले हुए, आधा कप कोटू का आटा, 2 हरी मिर्च, 1 गांठ अदरक, 1 चम्मच काली मिर्च, नमक फलाहारी स्वाद अनुसार। बहनों, आलू की टिकिया बनाने के लिए सबसे पहले आप आलू को उबाल लें, फिर उसे छील कर कद्दूकस कर लें। उन आलू में आधा कप कोटू का आटा, हरी मिर्च, अदरक घिसकर, काली मिर्च और फलाहारी नमक डालकर खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर उनकी टिकिया बनाकर तवे पर घी डालकर धीमी आंच में सेक

लीजिए, अगर चाहें तो घी में तल भी सकती हैं और इमली की चटनी के साथ गर्मा गर्म टिकिया खाइए। बहनों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ फलाहारी पूड़ी, और फिर उसके बाद बताऊंगी पूड़ी के साथ खाने वाली फलाहारी आलू की सब्जी। तो बहनों, पूड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम कोटू का आटा, 6-7 अरबी उबली हुई, फलाहारी नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच काली मिर्च, घी तलने के लिए। सबसे पहले बहनों, कूटू का आटा एक बर्तन में लीजिए, उबली हुई अरबी उसमें छील लीजिए और उसे आटे में डाल दीजिए, और फिर उसमें नमक और काली मिर्च डालकर खूब अच्छे से मिक्स कर लीजिए। उसमें पानी बिल्कुल मत डालिए, वो आटा अरबी से ही मल जाएगा। अगर ठीक से ना मले तो 1 या 2 अरबी और डाल दीजिए, इससे आटा अच्छे से मल जाएगा। बहनों, अब आप उस आटे की लोई बनाकर हल्के बेलन से बेल लीजिए और कढ़ाई में घी गरम करके उसमें पूड़ियाँ तल लीजिए। तो इस तरह फलाहारी पूड़ी तैयार हो जाती है। अब इसी के साथ ही सब्जी बनाने की विधि भी बताती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए 3-4 उबले हुए आलू, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच काली मिर्च, 2 चम्मच घी, 3 या 4 साबुत खटाई, नमक स्वाद अनुसार। बहनों, सब्जी बनाने के लिए पहले आटा उबले सॉरी बहनों सब्जी बनाने के लिए पहले आप उबले हुए आलू छीलकर हाथ से तोड़ लें, फिर एक कढ़ाई में घी डालकर गरम कर लें और उसमें जीरा डालकर चटका लीजिए। इसके पहले बहनों, थोड़े से पानी में 2 चम्मच कोटू का आटा घोलकर अलग रख दीजिए। अब जीरा चटकने के बाद काली मिर्च डाल दीजिए और फिर आलू डालकर भून लीजिए। जब आलू थोड़ा भुन जाए, उसमें घोला हुआ आटा डालकर और 1 गिलास पानी भी डाल दीजिए, और फिर फलाहारी नमक डालकर उसे चलाते रहिए। जब खौल आ जाए, फिर आप गैस धीमी कर दीजिए और उसमें साबुत खटाई डालकर थोड़ी देर पकने दें। ये सब्जी पूड़ी के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी। इसके लिए हमें चाहिए 100 ग्राम साबूदाना, जो बीच वाला होता है, ना बहुत महीन और ना मोटा वाला, आधा कप मूंगफली भुनी हुई, 1 चम्मच काली मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, 1 बड़ा चम्मच घी, 1 गांठ अदरक, 2 हरी मिर्च, थोड़ा हरा धनिया, 1 चम्मच जीरा। सबसे पहले साबूदाना आप 2 या 3 घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए। साबूदाना सारा पानी सोख लेगा, अगर पानी बचा हो तो उसे निकाल दीजिए। अब आप आंच पर कढ़ाई रखिए, उसमें घी डालिए। जब घी गर्म हो जाए, फिर उसमें जीरा डालिए। जीरा चटकने के बाद उसमें साबूदाना डालकर चलाइए, फिर उसमें काली मिर्च, अदरक घिसकर, हरी मिर्च और भुनी हुई मूंगफली और स्वाद अनुसार नमक डालकर अच्छी तरह से भून लीजिए। परोसते समय ऊपर से हरा धनिया डालकर व्रत का आनंद लीजिए। बहनों, आपने दाल के दही बड़े तो बनाए होंगे, लेकिन व्रत में वो नहीं खाए जाते हैं। अब मैं आपको व्रत के लिए बनाने जा रही हूँ आलू के दही बड़े। इसके लिए हमें चाहिए 2-3 उबले हुए आलू, 1 बड़ा चम्मच कोटू का आटा, आधा चम्मच काली मिर्च, नमक स्वाद अनुसार और घी तलने के लिए 250 ग्राम दही। बहनें, पहले तो आप आलू उबाल लें, उन्हें छील लीजिए और आलूओं को कद्दूकस कर लीजिए। फिर उसमें कोटू का आटा, काली मिर्च, नमक मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए, और अब आप घी गरम करने के लिए रख दीजिए, और अब आलू के छोटे छोटे बॉल्स बनाकर तल लीजिए, जब तक कि वह गोल्डन ब्राउन ना हो जाएं। जब सिक जाएं, उन्हें घी से निकाल लीजिए और जब तक ठंडे होने के लिए रख दीजिए। अब आप दही को एक बर्तन में निकाल कर उसे अच्छी तरह से मथ लीजिए, उसमें फलाहारी नमक, काली मिर्च और भुना जीरा डालकर मिक्स कर लीजिए। जब बड़े बिल्कुल ठंडे हो जाएं, तब उसके ऊपर से दही डालकर आधा घंटा रख दीजिए। बड़े अच्छी तरह से भीग जाएंगे, फिर आप परोसते समय ऊपर से नमक, काली मिर्च और जीरा डालिए। तो ये थे आलू के दही बड़े। तो बहनों, फलाहारी नमकीन व्यंजन

0: अभी तक मैंने आपको बताए, अब मैं आपको कुछ मीठे व्यंजन बताने जा रही हूँ। वह लौकी की बर्फी, इसके लिए हमें चाहिए एक लौकी, 100 ग्राम खोआ, आधा कटोरी चीनी, एक चम्मच इलायची पाउडर, कटा हुआ काजू बादाम पिस्ता। बहनों, सबसे पहले लौकी को आप छीलकर कद्दूकस कर लीजिए और एक कढ़ाई में उसे भून लीजिए। इतना भूनिए कि उसका पानी सब सूख जाए। पानी सूखने पर उसमें खोआ डालकर भूनिए और उसमें काजू बादाम और पिस्ता के थोड़े से टुकड़े डालकर मिला लीजिए। अब आप एक बर्तन में चीनी और थोड़ा सा पानी डालकर चाशनी तैयार कर लीजिए। जब चाशनी पक जाए उसमें लौकी डालकर मिक्स कर लीजिए और उसे एक थाली में फैलाकर जमने रख दीजिए। ऊपर से बादाम, पिस्ता और काजू के टुकड़े फैलाकर डाल दीजिए। जमने के बाद बर्फी शेप में काट लीजिए। बहनों, अब मैं आपको दूसरा मीठा व्यंजन बताने जा रही हूँ, भरवा मीठे परवल। इसके लिए हमें चाहिए 8-10 परवल, बड़े साइज़ के और ताजे हरे, 100 ग्राम खोआ, 250 ग्राम चीनी चाशनी वास्ते, 2 चम्मच इलायची पाउडर, थोड़े से काजू बादाम महीन कटे, 20 ग्राम बूरा। सबसे पहले आप परवल को धोकर छील लीजिए और उसे 20 से एक तरफ कट कर दीजिए और अंदर से गूदा व बीज निकाल दीजिए, जिससे अंदर भरावन कर सकें। और अब आप एक बर्तन में चीनी की चाशनी बना लीजिए। थोड़ी देर परवल को चाशनी में पकने दीजिए। अब आप खोए को कढ़ाई में डालकर भून लीजिए। हल्का भूनने के बाद जब खोआ ठंडा हो जाए उसमें बूरा और कटा हुआ बादाम, काजू और इलायची पाउडर डालकर मिक्स कर लीजिए। फिर चाशनी में परवल निकाल कर सभी परवल में खोए का मिश्रण भर दीजिए। तो इस तरह मीठे परवल व्रत में खाने के लिए तैयार है।
1: अभी आपने खान पान के अंतर्गत ये वार्ता सुनी। विषय था सावन की व्रत में फलाहारी व्यंजन और वार्ताकार थी आरती सेठ। तो बहनों, अब आपसे एक और चर्चा हम करेंगे। बहनों, हर साल की तरह साल 30 जुलाई को भी हम मानव तस्करी के खिलाफ यह आज का विशेष दिन मना रहे हैं। इस दिन की आवश्यकता है ताकि जागरूकता फैलाई जा सके कि आखिर क्या है मानव तस्करी। मानव तस्करी जैसी गंभीर और संगठित अपराध के बारे में लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। पीड़ितों की सुरक्षा और उनकी मदद के लिए सरकारों और संस्थाओं को प्रेरित करना, उनके अधिकारों और उनकी सुरक्षा को बढ़ावा देना, महिलाओं और बच्चों पर होने वाले अत्याचार एवं शोषण को रोकना। अब आइए जानते हैं इनके मुख्य कारण क्या हैं। गरीबी और बेरोजगारी को झेल रहे लोग अक्सर अच्छे जीवन की तलाश में ठगों के जाल में फंस जाते हैं। आपसे गुजारिश है कि लोगों की बातों में ना आए, गलत इरादे वालों को जल्दी समझ लें। भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 और अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम के तहत कड़ी कार्यवाही का प्रावधान है। 1956 ITPA व्यावसायिक यौन शोषण के लिए तस्करी की रोकथाम हेतु प्रमुख कानून भी है। मानव तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक संगठित अपराध है जिसमें किसी व्यक्ति या महिला का सोन यौन शोषण का या दबाव या बेचना या खरीदना शामिल है। यह एक तरह का गुलामी या बंधक बनाने का ही एक प्रकार है जो देश भर में किया जाता है। इसमें ज़्यादातर महिलाएं, लड़कियां और लड़के हो सकते हैं और जो कम उम्र के होते हैं उन्हें ज़्यादा लिया जाता है, या तो उन्हें खरीदा जाता है या बेच दिया जाता है या फिर एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता है, कहीं दूर स्थान पर भेज दिया जाता है, या जबरन श्रम भी करवाया जा सकता है, ये भी इसी श्रेणी में आता है, या फिर डरा धमका करके या कम वेतन पर रख लेना भी इसी कैटेगरी में आता है। बच्चों से मजदूरी कराना या बच्चों से

घरेलू काम कराना या उनसे भीख मंगवाने के लिए उन पर प्रेशर देना, ये सभी एक अपराध की ही श्रेणी है। तो हमारा आपसे यही कहना है कि अपने बच्चों का भी ध्यान रखें, जिससे कोई भी ऐसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी चीज़ ना आए। तो बहनों, अब कार्यक्रम में समय है आपको एक गीत सुनवाने का, तो चलिए सुनते हैं बिना देरी किए।

छोड़ दी है। तो बहनों, कार्यक्रम के अंत में हम देते हैं कुछ घरेलू टिप्स, तो जल्दी से आप नोट करिए। इन दिनों कीड़े मकोड़ों का वक्त चल रहा है, अन्य सूक्ष्म खतरनाक जीव घरों में बेखौफ घूमते रहते हैं, तो उन्हीं का आज उपाय बता रही हूँ कि अगर कनखजूरा आ जाए तो कोनों में बेकिंग सोडा छिड़कना चाहिए। बारिश के कीड़ों और मच्छरों को भगाना हो तो दो टिकिया

0: कपूर में लौंग दो जला दीजिए, मच्छर भाग जाएंगे। और अगर बेड में खटमल हो जाए तो पानी में नीम का तेल और पीपरमेंट ऑयल मिला करके बेड के आसपास रख दीजिए। तो बहनों, घरेलू टिप्स अब यहीं संपन्न होते हैं क्योंकि हमारे कार्यक्रम का समय हो रहा है समाप्त करने का।
1: बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ। भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है, नो ट्रैफिक नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: और अगर फर्श पर चींटी आ गई हैं तो पोंछे के पानी में सफेद सिरका और नमक मिला दीजिए तो चींटी नहीं आएंगी। तो यही थे हमारे आज के घरेलू टिप्स, और इसी के साथ भावना शर्मा को कार्यक्रम वनिता लोक का समापन करने की आज्ञा दें। जल्दी ही फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखें। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का कार्यक्रम वनिता लोक। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी भावना शर्मा। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। और आइए अब सुनिएगा फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आप तक पहुंचा रहे हैं आजा सनम फिल्म का। आवाज है अनुराधा पौडवाल की, शब्द रचना इंदिवर की है और इस गीत को धुन से संवारा है अरुण पौडवाल ने।

अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज को। फिल्म का नाम था आपकी यादें। शब्द रचना समीर की थी और इस गीत को धुन से संवारा था नदीम श्रवण ने। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत। अजीत सिंह की आवाज़ है, फिल्म का नाम है क्रिएचर।

अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह को फिल्म क्रिएचर में। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। अपराह्न के 2 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के दोषियों के लिए कानून को और सख्त बनाना। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र सरकार को दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा उपयोग किए गए हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी। महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत विश्व स्क्वॉश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को सदन में पेश किया। श्री सिंह इस समय सदन को संबोधित कर रहे हैं।
1: एंड फाइन अप टू 50 लाख एज फार एज द सर्विस प्रोवाइडर इज कंसर्न्ड। नाउ इफ जयराम जी हैज नॉट रेड दैट आई विल रीड आउट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। क्योंकि आप ही बार बार टोक रहे और कह रहे हैं आपको ज्यादा। सर्विस प्रोवाइडर मींस एनी एजेंसी, एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी बॉडी, एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एनी बिजनेस एंटिटी, एनी कंपनी, एनी पार्टनरशिप और सिंगल प्रोवाइडरशिप, एनी सब एसोसिएट्स, एनी सब कॉन्ट्रैक्टर्स, एनी प्रोवाइडर ऑफ सपोर्ट ऑफ एनी कंप्यूटर रिसोर्स और एनी मटीरियल बाई वट एवर नेम इट मे बी कॉल्ड विच इज एंगेज बाई द पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी फॉर द कंडक्ट ऑफ पब्लिक एग्जामिनेशन।
0: लोकसभा ने कल लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक पारित कर दिया।
2: परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए यह विधेयक संसद में लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में कई सख्त प्रावधान किए गए हैं।

0: दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालत स्थापित करने का प्रावधान है, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। इसके अलावा पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। वहीं आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इससे पहले शून्यकाल के दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह से इस पर बयान देने की मांग की। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री और सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष का पूरा ध्यान सदन की कार्यवाही को बाधित करने पर है।
2: इस संसद के माध्यम से देश को इस बात का संदेश देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। विपक्ष जो है वो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रही है, यह ध्यान में रहे।
1: लोकसभा की कार्यवाही नीट परीक्षा मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर बाद 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस के कथित कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्षी सांसद इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सदन में बयान देने की मांग कर रहे थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल सदस्यों का अधिकार है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान डालना संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है।
3: मैंने कई बार सदन के सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया है, प्रश्नकाल माननीय सदस्य का अधिकार है और प्रश्नकाल के अंदर सरकार की जवाबदेही भी तय होती है। मैंने ये आप सबसे आग्रह किया है कि सदन में प्रश्नकाल के अंदर सदन को बाधित नहीं करें, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के हथियारों के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
4: सर्वोच्च न्यायालय ने कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने दिल्ली सरकार को प्रदर्शन के दौरान पैलेट लगने से घायल हुए लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने पर मेटा ने अफसोस जाहिर किया है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि मेटा ने इस घटना पर अफसोस जताते हुए सरकार को पत्र लिखा है। श्री कृष्णन ने मेटा के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को इस घटना की वजहें बताने को कहा है, साथ ही ऐसी गलतियों को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में भी जानकारी देने को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब में कथित पेपर लीक को लेकर आज नई दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की अगुवाई दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री मल्होत्रा ने आरोप लगाया कि पंजाब में फार्मास्यूटिकल्स परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। उन्होंने मांग की है कि परीक्षा दोबारा कराई जाए, साथ ही पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की भी मांग की गई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। दिन में 1 बजे तक पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट पर लगभग 20% मतदान हो चुका था। गुजरात की मंजलपुर सीट पर 21.66% मतदान की खबर है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं।
5: वडोदरा के मांजलपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। भाजपा ने वडोदरा महानगरपालिका के पूर्व पार्षद सतीश पटेल को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने अपने प्रदेश उपाध्यक्ष भीखाभाई रबारी पर दाव लगाया है। इस चुनाव में 2,19,000 से अधिक मतदाता इन दोनों उम्मीदवारों के भाग्य का

0: फैसला करेंगे। यह सीट भाजपा के वरिष्ठ विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई थी, जिन्होंने कई बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। निर्वाचन आयोग ने भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर दोपहर 1 बजे तक 48.91% वोट डाले जा चुके हैं। एक रिपोर्ट।
2: मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। विधानसभा क्षेत्र के सभी 291 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हर केंद्र पर वेबकास्टिंग के जरिए नजर रखी जा रही है। दतिया विधानसभा क्षेत्र में करीब 2,20,000 मतदाता हैं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह और भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के बीच माना जा रहा है। यह उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद हो रहा है। दतिया उपचुनाव के नतीजे 3 अगस्त को घोषित किए जाएंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में IASV त्रिवेणी पर समुद्री अभियान की महिला टीम से बातचीत की और उनकी असाधारण उपलब्धि तथा दृढ़ संकल्प की सराहना की। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उनका सफल अभियान राष्ट्र के लिए बहुत गर्व का विषय है।
3: आपने इस अभियान से मैं कह सकता हूं कि केवल आपने समुद्र को ही नहीं जीता है, आपने उस सारी रूढ़ियों को भी पराजित किया है जो कभी कहती थी हमारी बेटियां ऐसे कठिन सैन्य अभियानों का हिस्सा नहीं बन सकती। आपने सिद्ध किया है फिजिकल कैपेबिलिटी, मेंटल टफनेस और लीडरशिप क्वालिटी किसी जेंडर की मोहताज नहीं होती।
1: ओडिशा के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और बाढ़ की बदलती स्थिति से निपटने के लिए अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं।
4: लगातार बारिश की सबसे ज्यादा मार 5 जिलों बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, मयूरभंज और केंदुझर पर पड़ी है। लगभग 5,88,000 लोग प्रभावित हुए हैं और 1,76,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि वे प्रभावित परिवारों को जल्द मुआवजा दिलाने के लिए 3 दिनों के भीतर नुकसान का विस्तृत ब्यौरा सौंपे। इस बीच ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में लगातार बारिश से महानदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे नदी बेसिन के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों में चिंता बढ़ गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज अत्यधिक तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, केरल, माहे और राजस्थान में गरज चमक और बिजली गिरने के साथ तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। तटीय और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, कोंकण और गोवा में भी कल तक ऐसे ही हालात बने रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक गरज चमक, तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान लगाया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश होने की संभावना है। भानु प्रताप सिंह के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: श्रावण महीने की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो गई है। झारखंड के देवघर में आज से श्रावणी मेला शुरू हो गया है।
6: सावन के पहले दिन ही देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम और दुमका के बाबा बासुकीनाथ मंदिर में लाखों शिव भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। पूरी बाबा नगरी बोलबम के अटूट विश्वास और केसरिया रंग में रंग गई। सुरक्षा के मोर्चे पर इस बार तीसरी आग के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरों का पहरा है। कांवरियों के पैरों को थकान न मिले इसके लिए नए फुट ओवरब्रिज से लगातार सुगम जलार्पण कराया जा रहा है, जबकि पूरे कांवरिया पथ पर ठंडे पानी की फुहारें, भव्य टेंट सिटी और निःशुल्क चिकित्सा शिविर श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को श्रावण का पवित्र महीना शुरू होने पर शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रकृति, पर्यावरण और संपूर्ण सृष्टि के प्रति सम्मान मानव अस्तित्व का आधार है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत उद्धरण साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों से प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और सेवा की भावना विकसित करने तथा एक स्वस्थ, समृद्ध और मजबूत राष्ट्र के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी सेना ने कल रात भर ईरान के खिलाफ व्यापक हवाई हमले किए। एक रिपोर्ट।
7: अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि ये हमले ईरान द्वारा जॉर्डन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों और होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर किए गए थे। इसके जवाब में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के

0: दर्जनों ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमरीकी कमांड के अनुसार इन हमलों का उद्देश्य ईरान और उसके समर्थित समूहों से अमरीकी सैनिकों, वाणिज्यिक जहाजों तथा खाड़ी क्षेत्र के पड़ोसी देशों को होने वाले खतरों को कम करना है। इस बीच ईरान के खुजेस्तान प्रांत के 4 शहरों अहवाज और बंदर अब्बास में कई विस्फोटों की खबरें सामने आई हैं। अमरीका और ईरान के बीच लगातार संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सशस्त्र बलों का क्रूर हमला जारी है। इसमें 40 से अधिक नागरिक मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी के प्रदर्शनकारी वर्तमान में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की क्रूरता और लक्षित हत्याओं को लेकर रावलकोट के डी चौक पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक मानवाधिकार संस्था ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय से पाकिस्तानी बलों द्वारा घातक गोलीबारी की घटनाओं में हस्तक्षेप करने की अपील की है। भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। कनाडा के ऑन्टेरियो में भारतीय पुरुष टीम ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। सेमीफाइनल में भारत का सामना अमरीका से होगा। राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स के पुरुषों की 100 मीटर T47 स्पर्धा में के फाइनल में भारत के दिलीप महादु गावित ने स्वर्ण और मोहम्मद बासिल मोरसिंगा नाकाथ ने रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में मुरली श्रीशंकर ने रजत पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पदक जीतने पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा। विधेयक का उद्देश्य पेपर लीक के दोषियों के लिए कानून को और सख्त बनाना। लोकसभा की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र सरकार को दिल्ली में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा उपयोग किए गए हथियारों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी। महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और भारत विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।
3: भैया जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
4: आराम से मैडम।
3: क्या
4: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
5: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
6: नए सपने, नई मंजिलें और एक नया एयरपोर्ट एक्सपीरियंस। हर सफर की शुरुआत अब होगी कंफर्ट और कन्वीनियंस के साथ। शुरू हो चुका है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बुक योर टिकट्स नाउ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहां सपने भरे उड़ान।
2: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: संबंध।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार हमेशा की तरह, जिसे हमें भेजा है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतन माला जी ने।
2: वो लिखते हैं, जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान और जीवन में खुशियां लाता है वही सबसे सफल इंसान है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले हमारे श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का।
2: धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल।
3: और भटीपारा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा कवि।

0: दा, पंकज, आयुषी और मीहू लिखते हैं,
1: नमस्कार। खनिज पदार्थों पर केंद्रित ये भी जानिए श्रृंखला बेहद रोचक, दिलचस्प और अद्भुत रही। ऐसी जानकारी जरूर प्रसारित करते रहें।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
1: छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा और वान्या सिंगरौल,
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं लगातार संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। अब एक बार फिर से लघु प्रेरक कथाओं की श्रृंखला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक और रोचक प्रेरक प्रसंग लेकर हम प्रस्तुत हैं।
1: आज हम बात करेंगे भारत के उस महान देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी की जिन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और उनका एक अन्य प्रसिद्ध नारा था, जय हिंद।
0: श्रोताओं आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस की, जिन्हें हम नेताजी के नाम से भी जानते हैं।
1: बचपन से ही वे अत्यंत मेधावी थे। आपको बता दें कि उन दिनों में अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा को इंडियन सिविल सर्विसेज या ICS कहते थे। आज इसी सेवा को भारतीय प्रशासनिक सेवा या IAS कहते हैं।
0: श्रोता उन्होंने इंग्लैंड जाकर भारतीय सिविल सेवा यानी ICS की परीक्षा दी। उस समय ICS को ब्रिटिश शासन की सबसे प्रतिष्ठित और कठिन सेवाओं में से एक माना जाता था।
1: उन्होंने परीक्षा में उच्च स्थान यानी चौथा स्थान प्राप्त किया। उनके सामने एक सुरक्षित, सम्मानित और समृद्ध सरकारी जीवन का अवसर था।
0: ये उपलब्धि इसलिए भी विशेष मानी जाती है क्योंकि उस समय ICS परीक्षा दुनिया की सबसे कठिन और लब्ध प्रतिष्ठ परीक्षाओं में गिनी जाती थी और अधिकांश भारतीयों के लिए इसे पास करना बहुत कठिन हुआ करता था।
1: लेकिन उनके मन में एक प्रश्न बार बार उठता था, क्या मैं उस सरकार की सेवा कर सकता हूँ जिसके अधीन मेरा अपना भारत देश गुलाम है।
0: बहुत विचार विमर्श करने के बाद सन 1921 में उन्होंने स्वेच्छा से ICS से इस्तीफा दे दिया और त्यागपत्र पर लिखा कि वे विदेशी शासन की सेवा नहीं बल्कि भारत की सेवा करना चाहते हैं।
1: जब ये समाचार भारत पहुंचा तो अनेक युवाओं को देश के लिए काम करने की नई प्रेरणा मिली। शुरुआत में उनके परिवार के सभी सदस्य इस निर्णय से सहमत नहीं थे,
0: लेकिन धीरे धीरे समय के साथ परिवार ने उनके निर्णय का सम्मान किया। जब वे स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता बने तो उनके परिवार को उन पर बड़ा गर्व हुआ।
1: ये प्रसंग उनके जीवन का एक प्रेरक उदाहरण है जो बताता है कि व्यक्तिगत सफलता से अधिक देश की सेवा महत्वपूर्ण है।
0: श्रोताओं आज भी उनके जीवन का ये प्रसंग हजारों युवाओं और सबको प्रेरणा देता है। ये घटना बताती है कि महान व्यक्तित्व केवल सफलता से ही नहीं बल्कि अपने आदर्शों के प्रति अटल रहने से बनते हैं।
1: जी
0: श्रोताओं आज के प्रसंग में आपने एक शब्द सुना, शब्द था
1: लब्ध प्रतिष्ठ।
0: इसका अर्थ है
1: अत्यंत प्रतिष्ठित या सम्मानित।
0: तो श्रोताओं अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, अंग्रेजी शासन काल के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज किस नाम से जाना जाता है और साथ ही साथ आपको अर्थ बताना है लब्ध प्रतिष्ठ शब्द का। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: अंग्रेजी शासनकाल के दिनों की इंडियन सिविल सर्विस को आज किस नाम से जाना जाता है और साथ ही साथ आपको बताना है लब्ध प्रतिष्ठ का अर्थ।
0: श्रोताओं आप हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश भेज सकते हैं। और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं एक खूबसूरत गीत संगीत से भरा कार्यक्रम, शीर्षक है पहली बूंद।
1: ये कार्यक्रम NCERT की कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है जिसमें बताया गया है कि जब वर्षा ऋतु आती है तो किस तरह धरती पर आनंद और उल्लास का वातावरण रच जाता है और लोगों को बहुत राहत मिलती है।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम पहली बूंद। जरा सोचिए मित्रों, क्या होता यदि हम बीमारियों और संक्रमणों का इलाज नहीं खोज पाते। पहले बहुत सी महामारियों से हजारों लोग मरते थे। इतिहास बताता है कि गांव के गांव खत्म हो जाते थे, लेकिन अब इलाज या रोग निरोधक टीके खोज लिए गए हैं।
1: जी हाँ, रोगाणु विज्ञान में एक महान चिकित्सक लुई पाश्चर का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। उन्होंने बहुत सी बीमारियों के टीकों की खोज की और दुनिया को महामारियों से बचाया।
0: तो आज का कार्यक्रम लुई पाश्चर के जीवन पर आधारित है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लुई पाश्चर।
2: आज हम आपको एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उस वैज्ञानिक का नाम है लुई पाश्चर, जो दुनिया के महान और श्रेष्ठ वैज्ञानिकों में से एक हैं।
3: 19वीं शताब्दी में अपने सार्थक और बेजोड़ योगदान के लिए वे सदैव याद किए जाएंगे। पेंसिलिन के आविष्कारक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी इस जीनियस के गुणों को पहचान लिया था। इसीलिए उन्होंने कहा था, विदाउट पाश्चर आई वुड बी नथिंग।
2: 27 दिसंबर सन 1892, सॉर्बोन विश्वविद्यालय का एम्फीथिएटर।
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, आज इस सुप्रभात में हमारे साथ विज्ञान की दुनिया के जाने माने लोग हैं। आज के दिन लुई पाश्चर जी को उनके 70वें जन्मदिन पर उनके मानव कल्याणकारी कार्यों के लिए उन्हें सम्मान देते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है। और अब साइंस एकेडमी के प्रेसिडेंट मॉन्सिनर द अबेडी उन्हें यह मेडल प्रदान करेंगे।

0: लोगों ने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। इसे मुझ जैसा व्यक्ति ही महसूस कर सकता है। हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि विज्ञान और शांति अज्ञान और अशांति पर विजय पाएंगे।
1: आज भी कई झकझोरने वाले सच लुई पाश्चर के नाम से जुड़े हैं। उनका नाम केवल कुछ आविष्कारों के लिए ही नहीं लिया जाता है। उनकी प्रत्येक खोज एक बाधा रहित श्रृंखला की कड़ी है। उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया,
2: रिमेम्बर, कोई भी ऐसी बात मत कहो जिसे प्रयोगों द्वारा तुम सिद्ध ना कर सको।
3: लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर सन 1822 को फ्रांस में स्विस बॉर्डर के नजदीकी शहर जूरा के एक छोटे से गांव डोले में हुआ था।
1: वे एक किसान परिवार से थे। उनके पिता जीन जोसेफ पाश्चर नेपोलियन ग्रैंड आर्मी में नॉन कमीशन ऑफिसर थे।
3: लुई पाश्चर का बचपन अपनी तीन बहनों के साथ बहुत ही खुशहाल रहा।
1: स्कूल में वे एक सामान्य पर गंभीर छात्र थे। आगे जिंदगी में क्या करना है, इन्हीं विचारों में वे खोए रहते थे। उनकी रुचि या तो मछली पकड़ने में या फिर चित्रकारी में थी। उनमें पोर्ट्रेट बनाने की गजब की प्रतिभा थी। ये देखकर किसी ने उन्हें एक बार कहा भी था कि एक दिन वे महान पेंटर बनेंगे। लुई पाश्चर के पिता उनके भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। एक दिन,
4: देखो, मुझे पाश्चर की बहुत चिंता है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि पाश्चर इस गांव की मामूली जिंदगी को पीछे छोड़कर दूसरी जगह किसी अच्छे स्कूल में एक दिन टीचर बनेगा। वो काबिल तो है, पर उसमें विद्वान बनने के लक्षण मुझे जरा कम ही नजर आते।
5: हाँ, ठीक कहते हो, वो मेहनती है, चित्रकारी में भी अच्छा है। उसने मेरे और आपके जो स्केच बनाए हैं वो देखे हैं आपने?
4: लेकिन क्या सिर्फ चित्रकारी से ही वो अपनी जिंदगी चला लेगा?
5: हाँ, मुझे भी उसकी चिंता होती है, पर मुझे लगता है वो सिर्फ हाथों से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेता है।
4: तुम शायद ठीक कह रही हो, लेकिन
1: सन 1831 में जब लुई पाश्चर केवल 8 साल के थे, तभी एक महत्वपूर्ण घटना घटी। पहाड़ियों से एक भयानक भेड़िया नीचे तलहटी में आकर लोगों पर हमला करने लगा, जिसके कारण 8 लोग रेबीज नामक भयंकर बीमारी के शिकार हुए और फिर मर गए।
6: चलो,
7: अरे भेड़िया, अरे भेड़िया।
1: लुई पाश्चर के गांव के भी कुछ लोग इस भयानक बीमारी का शिकार हुए।
3: वे लोग रेबीज का सिर्फ एक ही इलाज जानते थे। वे लोहार के पास जाते थे और वो घावों को गर्म लोहे

0: की छड़ से दाग देता था।
1: चलो चलो चलो
2: चलो, लोहा गर्म हो रहा है।
3: ये लीजिए, बिल्कुल लाल हो गया।
4: जले हुए मांस की बदबू और रोगियों की दर्दनाक चीखों से लुई पाश्चर घबरा गए।
0: जब वे 15 वर्ष के हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया गया। घर से दूर रहने के कारण वे निरुत्साहित रहते थे।
4: 21 वर्ष की आयु में लुई पाश्चर ने पेरिस के मशहूर नॉर्मल साइंस स्कूल इकोल में प्रतियोगी परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया।
0: ये उथल पुथल और हलचल से भरा समय था। सन 1848 की क्रांति ने पेरिस को हिला दिया था और दूसरे कई लोगों की तरह लुई पाश्चर के मंसूबे भी इस दौर की उठापटक में कहीं दब के रह गए थे।
4: 26 वर्ष की आयु में टार्टरिक एसिड, जो प्राकृतिक रूप से इमली व अंगूरों में पाया जाता है, उसके क्रिस्टल पर शोध के अपने डॉक्टरल थीसिस के बाद लुई पाश्चर स्ट्रासबर्ग कॉलेज में प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए।
0: केमिस्ट्री प्रोफेसर के पद पर 2 साल काम करने के बाद वे लिली विश्वविद्यालय की साइंस फैकल्टी के डीन बने।
4: उसी समय उत्तरी फ्रांस के शराब उद्योग में एक समस्या उठ खड़ी हुई, जिसके समाधान के लिए फ्रांस के तत्कालीन शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने लुई पाश्चर को बुलाया और कहा,
5: लुई पाश्चर
6: सर,
5: हम तुमसे एक मदद चाहते हैं।
6: कहिए सर।
5: पता लगाकर हमें बताओ कि वो कौन से जीवाणु हैं जिनसे हमारे यहां बनने वाली शराब प्रदूषित हो रही है और हमें बहुत ही आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है।
6: यस सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इस समस्या का हल ढूंढ सकूं।
5: ठीक है।
0: कुछ ही वर्षों बाद सन 1864 में पाश्चर इस समस्या का हल खोजने के लिए अरबोइस नामक एक जगह पर अंगूरों के बाग में गए। उन्होंने साबित कर दिखाया कि सूक्ष्म जीवों के कारण ही शराब प्रदूषित हो रही है और अगर शराब को कुछ मिनटों तक 55 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो इन जीवाणुओं को नष्ट किया जा सकता है। 8 साल तक लुई पाश्चर ने फर्मेंटेशन पर काम किया और अपनी कड़ी मेहनत से उन्होंने एक नई तकनीक विकसित की जो दुनिया भर में पाश्चरीकरण के नाम से जानी जाती है।
4: तभी से दूध और अन्य पेय पदार्थों पर सफल प्रयोग के बाद ये प्रक्रिया पूरे विश्व में काम में लाई जाने लगी। इस प्रक्रिया में जल्दी खराब होने वाली खाने पीने की चीजों को गर्म करके उनमें मौजूद नुकसानदायक बैक्टीरिया और मोल्ड्स को नष्ट किया जाता है। और अच्छी बात ये है, इस प्रक्रिया से खाद्य पदार्थों को कोई नुकसान भी नहीं पहुँचता है। आज दूर दूर से खाद्य पदार्थ और दवाइयां आ पाती हैं, वे इसी प्रक्रिया की देन हैं।
0: पाश्चर वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली जिससे रोगाणुओं को नष्ट करना और उनसे होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण रख पाना संभव हो पाया।
4: इस जानकारी के साथ ही पाश्चर ने स्टेरिलाइजेशन के आधारभूत नियमों को भी विकसित किया। इसके साथ साथ उन्होंने रोगाणुओं द्वारा फैलने वाली बीमारियों को कम करने के लिए अस्पताल प्रणाली में बहुत ही गौरवशाली बदलाव किए।
0: इससे पहले जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक विधि विकसित की थी, जिसमें कार्बोलिक एसिड का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता था। शल्य चिकित्सा में शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश रोकने के लिए ये विधि काफी सफल रही।
4: सन 1874 में लिस्टर ने पाश्चर को पत्र लिखकर अपने शोधों के बारे में

0: बताया, जिससे पास्चर को आगे बढ़ने और नए तरीके से सोचने में सहायता मिली।
1: लेकिन 1786 में एक ब्रिटिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने, जिन्हें प्रतिरक्षण प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम की कोई जानकारी नहीं थी, सबसे कारगर दवाई का उन्होंने पता लगाया, जिसे उन्होंने नाम दिया वैक्सीन।
0: प्रतिरक्षण विज्ञान के जनक के नाम से मशहूर लुई पाश्चर ने रोगों से बचाने वाली वैक्सीन के वैज्ञानिक सिद्धांत को स्थापित किया।
1: एक बार फिर समय ने अपना खेल दिखाया और ये खोज बड़ी ही सफल रही।
0: सन 1881 में भेड़ों पर शोध करते हुए पाश्चर ने एंथ्रेक्स बीमारी को रोकने के लिए वैक्सीन बनाई।
1: तो फिर उन्होंने क्या किया?
0: 5 और 17 मई को 25 भेड़ों के एक समूह को पाश्चर के इसी साल बनाए गए एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला द्रव दिया गया और दूसरे नियंत्रित समूह की 25 भेड़ों को ये द्रव नहीं दिया गया। इस प्रकार ये बिना टीके वाली भेड़ें थीं। 2 सप्ताह बाद यानी 31 मई को सभी 50 भेड़ों को एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया वाला टीका दिया गया।
2: अरे आजा आजा आजा आज, ए, ए, हाँ इंजेक्शन लगा दूँ?
3: आई एम श्योर 100% सारी की सारी भेड़ें बच जाएंगी और यही बात मेरे सिद्धांत को सही साबित करेगी।
1: रिजल्ट के इंतजार में उन्होंने कई रातें जाग जाग कर बिताई।
4: सर सर ये टेलीग्राम।
3: अच्छा लाओ दिखाओ। अरे आश्चर्यजनक कामयाबी चार्ल्स, वंडरफुल सक्सेस।
4: क्या हुआ सर?
3: देखो टीके वाली सभी भेड़ें बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं।
4: कांग्रेचुलेशंस, बधाई हो सर।
3: थैंक यू। और बिना टीके वाली सारी भेड़ें मर रही हैं या फिर मर चुकी हैं।
4: यानी आपका प्रयोग सफल रहा।
3: हाँ चार्ल्स।
1: उनकी प्रसिद्धि आसमान को छूने लगी।
0: इस समय तक भी पाश्चर ने मानव जाति पर प्रयोग करने की बात सोची तक नहीं थी। 6 जुलाई सन 1885 का ऐतिहासिक दिन, उन्होंने पहली बार एक व्यक्ति का इलाज रेबीज वैक्सीन से किया।
5: सर देखिए, एक पागल कुत्ते ने मेरे बेटे के हाथ पैरों और जांग पर काट लिया है। मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए।
3: लेकिन इंसानों पर और खासकर बच्चों पर परीक्षण करने के लिए मैं अभी पूरी तरह तैयार नहीं हूँ।
5: डॉक्टर साहब कुछ तो करिए, वरना मेरा बेटा।
3: देखिए आप,
5: ओ गॉड, जोसेफ मास्टर की उम्र ही क्या है, 9 साल का है, लगता है मर जाएगा।
3: पर ये काम जोखिम भरा है, इससे जान को भी खतरा हो सकता है। हाँ
5: मेरा
3: अच्छा,
5: बेटा।
3: अच्छा ठीक है ठीक है, मैं ये परीक्षण करूंगा।
1: और आखिरकार उन्होंने ये परीक्षण करने की ठान ली।
0: उनके सहयोगी जोसेफ ग्रांचर एक डॉक्टर थे। उन्होंने रेबीज से मरे हुए खरगोश की हड्डी में थमे द्रव का आधा सिरिंज जितना डोज लिया और उस सहमे हुए बच्चे के शरीर में इंजेक्शन लगा दिया।
1: 10 दिनों तक रहस्य की स्थिति बनी रही, जिस दौरान उस बच्चे को एक के बाद एक 13 इंजेक्शन लगाए गए। 3 हफ्तों के परीक्षणों के बाद उन्हें महसूस हुआ कि अब वे अपनी सफलता संसार के सामने घोषित कर सकते हैं।
0: पाश्चर को खुद यकीन नहीं था कि वैक्सीन काम करेगी, लेकिन माइस्टर चंगा हो गया। वो इतिहास का प्रथम व्यक्ति बन गया जिस पर रेबीज की दवाई का पहला प्रयोग किया गया। उसने बड़े होकर

0: वर्षों तक पाश्चर इंस्टीट्यूट में गेटकीपर के रूप में कार्य किया।
1: सन 1940 के दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब नाजियों ने पाश्चर के इंस्टीट्यूट पर आक्रमण किया तो यही माइस्टर था जिसने जर्मन्स को पाश्चर की कब्र तक पहुंचाने के बजाय अपनी जान देना बेहतर समझा। सन 1868 में अपने शानदार करियर के बीच में ही पाश्चर पर अपंगता का प्रहार हुआ जिसका परिणाम आंशिक रूप से लकवे के रूप में सामने आया। उनके बाएं हाथ को लकवा मार गया था और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था।

0: और उनकी जबान पर भी इसका बुरा असर पड़ा था। तब वे 46 वर्ष के थे और तभी से उन्हें अपने प्रयोगों को करने के लिए दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी।
1: इतना सब होने के बावजूद उनके महान मस्तिष्क पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और जो जो प्रयोग और नए विचार पाश्चर के दिमाग में थे वे दूसरों की मदद से दुनिया के सामने आए। पाश्चर के समय विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं था, अगर होता तो उन्हें जरूर मिल ही जाता।
0: और फिर 27 सितंबर सन 1895 को उनकी पत्नी ने उन्हें ये कहते हुए सुना।
2: इस तरह मैं और ज्यादा नहीं जी सकता।
0: और 24 घंटे बाद दोपहर को 4:40 पर लुई पाश्चर ने अपनी समर्पित पत्नी की बाहों में दम तोड़ दिया। पूरी जिंदगी एकनिष्ठ और उत्साह से भरे पाश्चर का अंतिम संस्कार भी एक नायक की तरह किया गया और उन्हें पेरिस के नोट्रेडम कैथेड्रल में दफना दिया गया। अपने दादा को याद करते हुए उनके पोते वैलोरी रेडॉट ने अपनी डायरी में लिखा, My grandfather was the gentlest with the goodness of his heart, most affectionate and sensitive individual. He was a humanist, always working towards the improvement of the human condition.
3: और इसी के साथ अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ यानी कुसुमलता,
4: जगबंधु,
3: चेतना,
4: अर्शद और फैजान के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए।
3: नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग।
6: अभी आप सुन रहे थे NCERT एवं CIET द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.2 MHz पर। अपराह्न के 3 बज चुके हैं। हमारी ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। संध्या 4 बजे हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: नंदन वंदन अभिनंदन। आप सभी दोस्तों का संदेश टू सोल्जर्स के इस विशेष कार्यक्रम में स्वागत है। आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में लाखों दिलों की धड़कन छुपी हुई है, क्योंकि प्रत्येक भारतीय इस कार्यक्रम को सुनते हुए भाव विभोर हो जाते हैं। ये कार्यक्रम वीरों की गाथा, उनके अदम्य साहस और कर्तव्य निष्ठा, देशभक्ति का परिचायक है। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे आज की मेहमान कर्नल शैलेंद्र सिंह, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, जिन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया है और अपनी कर्तव्य निष्ठा से हमेशा ही परचम लहराया है। जितने भी ऑपरेशंस में इन्होंने अपना दम खम दिखाया, वहां ये साबित कर दिया कि अपनी दक्षता से, कुशलता से किसी भी परेशानी को, किसी भी जटिल समस्या को उससे निजात पाया जा सकता है, उसे लड़ा जा सकता है और जीत हासिल की जा सकती है। इनके तमाम ऑपरेशंस, इनके बारे में जिनमें इन्होंने हिस्सा लिया, जिनमें इन्होंने अपना साहस दिखाया, जिनमें इन्होंने अपना नेतृत्व किया, खासतौर पर अगर कारगिल युद्ध की बात की जाए, उसका जिक्र हम आज करेंगे यहाँ इसी शो पर जिसका नाम है संदेश टू सोल्जर्स। और इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे, इन्हें कई सम्मानों से अलंकृत किया गया। नेल्सन मंडेला नोबेल पीस प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया। इन्हें 21वां राजीव गांधी ग्लोबल एक्सलेंस अवार्ड 2020 इससे भी सम्मानित किया। और ये पहले ऐसे डिफेंस पर्सनल हैं जिन्हें TIIFATFA 2018 मुंबई अवार्ड्स यहां भी सम्मानित किया गया। तो सर्वप्रथम हम स्वागत करना चाहते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल शैलेंद्र सिंह, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। और कहते हैं कर्नल साहब की सेवानिवृत्ति जो है अपने साथ असंख्य यादें, असंख्य बातें, असंख्य किस्से कहानियां लेकर आती हैं। तो आज हम कर्नल शैलेंद्र सिंह से उन सभी किस्सों कहानियों के माध्यम से जानेंगे कि किस तरह भारतीय सेना ने हमेशा वीरों के जरिए, अपने सैनिकों के जरिए, ऑफिसर्स के जरिए बड़े बड़े जंग लड़े हैं और हमेशा हर मैदान में, हर जंग के मैदान में फतेह हासिल की है। सबसे पहले हम स्वागत करना चाहते हैं हमारे आज के मेहमान कर्नल शैलेंद्र सिंह का। आपको बहुत बहुत स्वागत है सर।
1: जय हिंद, नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपने प्रोग्राम में इन्वाइट किया है और मैं आज आपके थ्रू सभी को करेक्ट कर दूं, फौजी कभी रिटायर नहीं होता।
0: जी,
1: मेरा फौजी कभी रिटायर हो ही नहीं सकता। आप मान लीजिए मेरी बात अथॉरिटी के तौर पर, मेरे फौजी से जितना ज्यादा काम कराओगे वो उतना ज्यादा खुश होगा। जिस दिन उससे आप काम नहीं कराओगे उस दिन वो रिटायर हो जाता है। मैं ये जरूर मानता हूं और इस बात में मेरा पूरा विश्वास है। और मेरे सारे फौजी भाई कि जिस कैपेसिटी में जहां पर भी हैं, आप पाएंगे गांव के लेवल पर, सिटीज के लेवल पर, कस्बों के लेवल पर, नेशनल लेवल पर जो उनसे हो सकता है वो कंट्रीब्यूट जरूर कर रहे हैं। और मैं यही कह सकता हूं, आई एम सो प्राउड ऑफ देम, मेरे से ज्यादा वो कर रहे हैं।
0: जी बिल्कुल, आपने सही कहा। यहाँ पे कहा जाता है वंस एन ऑफिसर इज ऑलवेज एन ऑफिसर, और आपको देखकर इस वक्त ये प्रतीत भी हो रहा है कि वो जो डिसिप्लिन आप अपने कार्यकाल में सीखते हैं, वो डिसिप्लिन निरंतर ही आपके साथ चलता है और जो सेवाएं हैं वो आपने कहीं ना कहीं समाहित हो जाती हैं और आप उन्हें उम्र भर जीते हैं। अब मुद्दा ये उठता है कि कहां से ये कारवां शुरू हुआ, सबसे पहले कि जीवन का वो कौन सा मोड़ था, कौन सा पल था जहां आपने ये निर्णय लिया कि आपको भारतीय सेना ही ज्वाइन करना है।
1: अब ये तो बड़ा पर्सनल सा क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि मुझे याद है कि लाइक हर स्कूल में ये किस्सा है कि एक लड़की थी जिसके ऊपर हमारा भी क्रश था और उस लड़की को फौजी पसंद थे। उस समय तो हमें रियलाइज नहीं हुआ।

0: लेकिन मेरे फादर फौजी थे, कैंटोनमेंट्स में हम रहे थे, एक अलग तरीके की लाइफ देखी थी। हालांकि हमें वो लाइफ कंफर्टेबल लगती थी, क्योंकि हमें जब तक समझ आई कि फौज में हमारे फादर क्या कर रहे हैं, तो उनका ओहदा जो था वो थोड़ा बढ़ गया था, तो इसलिए हमें तो सारा कंफर्टेबल लगा। हमने ये तो नहीं देखा कि 4 बजे कब उठे होंगे, जो यंगर डेज होते हैं। सो मोटे तौर पर अगर मैं कहूँ तो ये जो दो अट्रैक्शन हैं जो मुझे एसएसबी में भी पूछा गया था कि फौज आप क्यों ज्वाइन कर रहे हो
1: जी।
0: तो मेरा पहला आंसर था कि ऐसा समझा जाता है कि फौजियों को सुंदर बीबियां मिलती हैं।
1: अब निश्चित ही मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी जो स्पाउस हैं, जो बेटर हाफ हैं, वो बहुत ही खूबसूरत हैं और आपकी मुस्कुराहट से इस बात को महसूस कर सकती हूँ मैं।
0: मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, मेरी नजरों से देखोगे तो उससे ज्यादा सुंदर कोई नहीं हो सकता।
1: वाह क्या बात है, क्या बात है। और जब भी किसी आर्मी ऑफिसर की बात की जाती है, जब आपसे बात की जाती है, तो वो यही कहते हैं कि हमारे घर को जिसने संजो कर रखा है, जिस खूबसूरती से संजो कर रखा है, हमारे पीछे भी जब हम मिशन पे जाते हैं, वार्ड्स पे जाते हैं, ऑपरेशन पे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं शीज द वन, वही एक है जिसकी वजह से घर चहकता है।
0: नहीं देखिये, ये जो आपने बोला है ना कि जब हम बाहर जाते हैं, मैं अपने बेटे से जब पहली बार मिला तो जब मैंने बेल बजाई और वो जो जाली वाला था उसमें से मैंने देखा एक छोटा सा बच्चा लुढ़कता पुढ़कता आ गया और उसने फिर मुड़ा और अपने मम्मी की तरफ आवाज निकाल के कहता है, मम्मा कोई अंकल आए हैं। आप सोचिए कि वो दैट लेडी जो इतने टाइम तक अपने बच्चे को, अपने घर को संभालती रही। मैं आपको ये निश्चित तौर पर बता सकता हूँ, ये बहुत डिफिकल्ट है। इट इज लिटिल मोर देन बहुत डिफिकल्ट, इतना ज्यादा मुश्किल का मामला है। ये एक अलग बात है कि आपको आदत पड़ जाती है, आपको लग्जरीज नहीं है, बिजली नहीं आ रही है, आपके पास जो सुविधाएं जो हैं वो नहीं मिल पाती हैं, बट उसके बावजूद आप छोटी छोटी खुशियां ढूंढो कि मेरा हस्बैंड कल आ रहा है, देयर इज अ सेलिब्रेशन। अगर दिवाली पर नहीं आया तो जिस दिन आया उस दिन दिवाली जरूर हो जाती है।
1: क्या बात है, क्या बात है। जितनी भी आर्मी वाइफ, आर्मी मेन की वाइफ इस वक्त हमें सुन रही है ना, इट इज़ अ ब्यूटिफुल कॉम्प्लीमेंट फ्रॉम यू टू देम। कितनी प्यारी बात इन्होंने यहाँ पे की है कि वैसे भी जिस घर में महिलाएं हैं, जिस घर को महिलाएं सजा रही हैं, और खास तौर पर जब घर के पुरुष देश सेवा में नहीं थे, देश सेवा में तत्पर हैं और घर से दूर है, ना जाने कितने समय तक घर नहीं पहुंच पाते हैं, वो कंप्लेन नहीं करती और घर वैसे का वैसा ही चलता है। जैसा कि आपने बताया कि जब घर पहुंचा तो बेटे ने जिस तरह से आपको देखा, तो इसके भी बहुत सारे पहलू, लेकिन एक पहलू आपके जीवन, आपके बचपन से जुड़ा हुआ। आप क्योंकि एक ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं जहां आपके पापा, आपके फादर खुद एक सर्विसमैन है, तो आर्मी मैन है, तो आप के लिए ये, आपने बहुत देखा होगा कि इस शहर उस राज्य बहुत ज्यादा ऐसे इधर से उधर ट्रैवल करते होंगे, तो ऐसे में बहुत सारे दोस्त भी बनते होंगे, बहुत सारे स्कूल्स भी चेंज होते होंगे, उसकी कुछ यादें बातें साथ हैं।
0: मुझे लगता है कि फौजीज के बीच में ना एक बड़ा फेमस है बात कि फौजियों की दोस्ती रेलवे स्टेशन तक ही होती है।
1: अच्छा।
0: हर रेलवे स्टेशन पर कुछ फौजी दोस्त पीछे छूट जाते हैं, जब आप अगले रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो कुछ नए फौजी आपके दोस्त बन जाते हैं। बढ़िया बात यह है कि पिछले वाले चलते रहते हैं, अगले वाले जुड़ते चले जाते हैं। इसलिए अगर आप किसी के साथ एक बार सर्व कर लें और अगर कल वो आर्मी चीफ भी बन जाता है और जब आपसे मिलता है और आपको सिर्फ ये बोलना होता है कि सर मैं वहां था, अरे तू वहां था, मतलब वो जो आप अगर एक आर्मी चीफ को भी देखेंगे उसके एग्जैक्ट वर्ड कुछ ऐसे ही होते हैं कि अरे तुम भी वहां थे, तुम कहां थे। दैट अमाउंट्स टू के पीछे का दोस्ती आगे बढ़ रही है और आगे की दोस्ती जुड़ती चली जा रही है। इससे बड़ी मुझे नहीं लगता कि फौज के लिए एक अचीवमेंट हो सकती है कि वी आर एग्जेम्पलरी इन दिस, कि जो भी है सबसे बड़ी बात यह है हम हमेशा दोस्त हैं।
1: वाह क्या बात है, हमेशा दोस्त हैं। तो केवी स्कूल से आप पढ़े हैं और केवी स्कूल की जो एटमॉस्फेयर होता है वहाँ अलग ही तरीके का एटमॉस्फेयर, चाहे वहाँ की बिल्डिंग हो, वहाँ के बच्चे हों, वहाँ की टीचर्स हों, तो असंख्य यादें आपके साथ होंगी और वो दोस्त आज तक आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, ये तो इस बात को मैं सुनिश्चित कर चुकी हूँ यहाँ पर। ये बताएं मुझे कि क्या आपने ये सोच लिया था स्कूल खत्म होते होते कि जाना है तो आर्म्ड फोर्सेज ही जाना है, ऐसा कुछ था मन में?
0: नहीं, मुझे लगता है मेरे स्कूल में मेरे लिए सबसे खराब बात एक ही थी कि मेरे टीचर्स सोचते थे

0: कैंटोनमेंट का स्कूल है, फौजी का बच्चा है, इसको डिसिप्लिन होना ही पड़ेगा. दिस इज नॉट डन एज फार एज जहां तक मेरे लिए बात है. भाई आप, मैं, मेरे फादर फौजी हैं, आप चाहते हो मैं भी डिसिप्लिंड ही हूं, बिल्कुल सीधा हूं, जहां खड़ा कर दिया वहीं खड़ा हो जाऊं, जहां आपने लाइन में खड़ा कर दिया वहां पर खड़ा हो जाऊं, शोर नहीं करूं. अब वेल मुझे मैं इसमें काफी हद तक, अगर आज भी मेरे स्कूल वाले केंद्रीय विद्यालय चंडी मंदिर वाले बच्चे अगर सुन रहे होंगे तो उनके पास एक ही जवाब होगा कि सर आपसे ज्यादा बदमाश कोई नहीं था.
1: वाह क्या बात है, यही मैं आपसे जानना चाहती थी कि किस तरह के बच्चे थे आप, क्योंकि कहते हैं जो बच्चे बहुत शैतानी करते हैं ना, बच्चे शैतानी करते हैं, लेकिन वो बच्चे जो अलग से शैतानी करते हैं जिसकी वजह से वो रिकग्नाइज हो जाते हैं, जाने जाते हैं, याद किए जाते हैं, वो बच्चे लाइफ में आगे चल के बहुत एक्सेल करते हैं.
0: मेरे ख्याल हमारा स्कूल बड़ा इंटेलिजेंट था, हमारे प्रिंसिपल टीचर्स जो थे ना दे वर वेरी गुड, बहुत ज्यादा बढ़िया लोग थे. पता है क्यों? जो सबसे शैतान बच्चा होता था उसे स्कूल कैप्टन बना दिया जाता था.
1: अच्छा।
0: और मैं 2 साल तक स्कूल कैप्टन ही बना रहा.
1: वाह क्या बात है, क्या
0: मतलब
1: बात है?
0: आज भी मेरे स्कूल ग्रुप में लोग यही बोलते हैं कि सर हम तो आपको सिर्फ स्कूल कैप्टन के तौर पर जानते हैं.
1: हाँ।
0: क्योंकि अब स्कूल में जैसे ही आप स्कूल कैप्टन बने तो शैतानियां कम हो गई.
1: क्या बात है, शैतानियां कम हो गई. मैं ऐसा करती हूँ कि आपके सभी जितने भी दोस्त हैं ना जो इस वक्त हमें सुन रहे होंगे, स्कूल के फ्रेंड्स, कॉलेज के फ्रेंड्स, उनके लिए एक बहुत प्यारा सा नगमा यहाँ पर प्ले करती हूँ.
0: बिल्कुल.
1: और कहते हैं कि खुशी जो है दोस्तों से बढ़ती है और दोस्तों की वजह से परवान चढ़ता है. हम किसी भी उम्र में क्यों ना हो, जब भी वो दोस्त मिलते हैं तो खुशी में हमेशा इजाफा ही होता है.

0: वैसे आज स्टूडियो की खिड़की में से भी ना खुशियां ताक झांक रही हैं, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, जिनकी किसी कहानियां जब आप सुनेंगे तो आप उनकी वीरता के गाथा जग जग तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले बहुत सी बातें हैं जो उनसे जाननी है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व इतना खुश मिजाज है, जिस तरह से हमारे पास संदेश भी आ रहे हैं कर्नल साहब, मैसेज यही आ रहे हैं कि आपकी खुश मिजाजी सुनकर ना सब लोग बड़े प्रफुल्लित हैं, उनको बड़ा मजा आ रहा है आपको सुनने में। तो निश्चित रूप से और भी बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन वो पल जिस वक्त आपने इंडियन आर्मी ज्वाइन की, उससे पहले बहुत सारे सवाल जवाब जरूर हुए होंगे। घर पर किस तरीके का माहौल था? बहुत ज्यादा डिसिप्लिन था क्या? घर से आपको ये हमेशा हिदायत दी जाती थी ज्वाइन करना है तो इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है? किस तरह से आप अपने गंतव्य तक पहुंचे, ये कहानी जरूर सुनाए।
1: मुझे लगता है कि फौजी अफसर के बेटे होने का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि घर में हिटलर रूल चल रहा होता है।
0: अच्छा,
1: हमारे लिए उनको हम उस समय हिटलर रूल बोलते थे कि ड्राइंग रूम में आप आ नहीं सकते, सोफे के ऊपर आप चढ़ नहीं सकते, चारपाई में कूद नहीं सकते, अगर डाइनिंग टेबल पर बैठना है तो आपको एक पर्टिकुलर स्टाइल में ही बैठना है, आप जब तक खाना स्टार्ट नहीं कर सकते जब सब ना आ जाएं, खाना क्लोज करना है तो जब ही करना है जब कोई सारे क्लोज कर रहे हों। तो मुझे लगता है कि वो डिसिप्लिन वाला जो पार्ट है, एटलीस्ट मुझे लगता था इस सबसे हटके खाना चाहिए कि उस रोटी के अंदर हम आलू की सब्जी भरें, उसको गोल गोल घुमाएं और उसको पोंगा बनाकर खाते हुए घूमते जाएं। बट ये अलाउड नहीं था। सो ये मैं जरूर मानूंगा। बट एट द सेम टाइम ज्यादातर घरों में क्योंकि यही था, तो जब हम बाहर भी जाते थे तो कोई लड़का या लड़की जो कि हमारे केंद्रीय विद्यालय के होते थे, अगर इस तरह की कोई हरकत करी तो वो बाकी टोक देते थे, क्योंकि मे बी देवर मोर डिसिप्लिन। बट पर्सनली अगर मुझे लगता है, अगर मैं अपना याद करूं, तो मुझे लगा कि मैंने कोई गलत काम नहीं करे, बट मुझे डिसिप्लिन अपने आप में बहुत ज्यादा पसंद नहीं था, क्योंकि मैं डिसिप्लिन को रुकावट के तौर पर देखता था। एंड आई वॉन्टेड टू फ्लाई फ्री, कि उल्टे सीधे सारे काम क्यों ना करूं। ये एक अच्छी बात हुई कि डिसिप्लिन इतना स्ट्रिक्ट था कि मैं कोई उल्टा काम कर ही नहीं पाया, जो मुझे लगता है आज भी, कि दारू पीने की बात कर लो या सिगरेट की बात कर लो, तो वो इतना बड़ा टैबू था कि नहीं। और उसमें मेरे फादर का कंट्रीब्यूशन है कि यस, वो खुद भी नहीं पीते थे, तो वो भी एक बड़ा वो था। वो खुद भी जिम्मेदारी से चलते थे, वो वॉक करते थे, वो पीटी करते थे, तो देख के अच्छा तो लगता था। हम उसी से स्पोर्ट्स में आ गए। और जहां तक बात आती है फौज ज्वाइन करने की, तो वेल कैंटोनमेंट्स में, स्कूल्स में ये एक माहौल बनता है कि आप 12वीं के करीब एनडीए का एग्जाम जरूर देंगे, अगर आप कॉलेज वाले हैं तो सीडीएस का एग्जाम जरूर देंगे। अब मेरे जैसे जो चाहे नहीं भी चाहते थे, क्योंकि 6-7 दे रहे हैं तो उसको दिखाने के लिए ईगो हैसल के चलो मैं भी दे लेता हूं, तो हम 7 बच्चों ने एनडीए का एग्जाम दिया और मानिए मेरी बात, 7 का क्लियर हो गया। 7 क्लियर हो गए।

0: लेकिन एक आठवां बच्चा था वो ज्यादा इंटेलिजेंट था, उसने नहीं दिया था। उसने कह दिया कि आईआईटी होता है जो भी एग्जाम असली, ये तो सब बेकार है। सातों के सातों एसएसबी एग्जाम देने नहीं गए।
1: अच्छा।
0: सो आठ के आठ ने आईआईटी का एग्जाम पर जोर लगाया और आठ के आठ में से सिर्फ वो एक आईआईटी निकल गया, हम सात रुक के रह गए। मतलब आप सोचिए कि दूसरे के ऊपर जाने। और फाइनली ग्रेजुएशन के बाद उन्हीं सात में से हम चार वापस आर्मी के अंदर आ गए।
1: वाह, क्या बात है, क्या बात है। कहते हैं कि कुछ नियतियां तय किया होता है और कुछ आपके इंस्टिंक्ट्स ने, यानी कि जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए आपका जन्म हुआ है, आप उस रास्ते पर जरूर चलते हैं। तो एनडीए के थ्रू तो एंट्री नहीं हुई आर्म फोर्सेस में, फिर कौन सा रास्ता था जिसकी वजह से आप पहुंचे?
0: हम ग्रेजुएशन, आई वॉज डूइंग ग्रेजुएशन, वो अपना शिमला में था, मैं हिमाचल यूनिवर्सिटी से, वहां पर माहौल में हमारे पास चार हम इकट्ठे थे। एक होता था एनसीसी वाला, तो वो बहुत ज़्यादा तेज था। एक और होते थे, वो होते थे अपना एक बॉर्डर रोड्स के, और एक और लड़का था। तो हम चार थे। तो सडनली वो जो एनसीसी का था, आज भी मुझे याद है, सतीश सूद उसका नाम था, वो अंडर ऑफिसर होता था। तो वो हमारे लिए सबसे अच्छा फ्रेंड सिर्फ इसलिए था, नॉट बिकॉज ऑफ एनसीसी, क्योंकि मैंने एनसीसी नहीं ली थी, क्योंकि एनसीसी की सैटरडे को जब परेड हो जाती है तो चाय और समोसे मिलते हैं।
1: अच्छा।
0: तो हमारा अट्रैक्शन होता था कि चाय और समोसे मिलने चाहिए। तो वहां हमारा इंट्रैक्शन उससे बढ़ा और देखा कि फाइनली वो एग्जाम दे रहा है। जब वो एग्जाम दे रहा था तो हमने कहा चलो भाई हम भी एग्जाम देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा था कि अब ग्रेजुएशन के बाद क्या, कितना और। सो मुझे लगा कि इस एग्जाम को दे देने में कोई बुराई नहीं है, एंड स्पेशली बिकॉज मेरे फादर तब तक इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे थे और मैं अकेला रह रहा था, तो मैंने ये एग्जाम दे दिया। और एग्जाम देने के बाद मैंने अपना जो ग्रेजुएशन का फाइनल डे का एग्जाम दिया, उस दिन शाम को मैंने कॉर्पोरेट हाउस में जस्ट लाइक दैट स्पेकुलेटिवली इंटरव्यू दे दिया। और उस इंटरव्यू में मेरे को उन्होंने थ्रू कर दिया।
1: अच्छा।
0: और उन्होंने बोला कल से आप ज्वाइन कर लीजिए। सो मतलब मेरा अभी ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन मेरी जॉब लग गई। और उस जॉब के साथ ही साथ एक और खुशखबरी आई कि आपका सीडीएस एग्जाम क्लियर हो गया है। तो वहां से कॉल अप लेटर आ गया एसएसबी का। तो हमने उस जॉब के अंदर 3 दिन की छुट्टी लेकर गए कि भाई जाकर देख कर आते हैं बेंगलोर में क्या हो रहा है, जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है वहां गए। वहां पर देखा कि वो पहले दिन, अदरवाइज काफी को पहले दिन वापस कर दिया जाता है, तो पहले दिन हमारा पता नहीं क्यों सिलेक्शन हो गया।
1: अच्छा।
0: अच्छा, अगले 3 दिन उन्होंने और कराया, ग्रुप टास्क, ये टास्क, वो स्टाफ,
1: तो
0: हाँ जीटीओ वाला जो काम था वो भी आ गया। तो वहां फिर लाइनअप लगी, तो वहां पर 3 लड़कों को बोला गया कि तुम आगे और बाकी पीछे, और पीछे वालों को बोला गया पीछे मुड़ तेज चल, आप बाहर जाइए, आगे 3 वाले। तो वहां पर एक बड़ी अच्छी सी ड्रिल होती है कि बच्चा लोग गाड़ी में चढ़ो जो रिजेक्ट हो गए, साहब लोग आप आगे आओ।
1: अच्छा।
0: तो हम उस दिन साहब बन गए सडनली। सो आई हैड टू एक्सटेंड माय लीव के भाई चलिए अभी 3 दिन और मेडिकल होना है, तो इसने मेडिकल होता रहा। अब वो पता नहीं क्या किस्मत, यही बोलते हैं कि हर चीज पहली बार में होती चली गई। और उसके लिए आज मैं जरूर ये मानता हूं कि आई वाज डेस्टाइंड फॉर दिस, मेरी किस्मत जो थी भगवान ने फौज के लिए ही लिखी थी, क्योंकि जिस तरीके से मैंने फौज के साथ शादी करी, काश मैं अपनी बीबी के साथ निभा पाता।
1: क्या बात है। अच्छा कर्नल साहब, एक बात और यहाँ पे कहना चाहूंगी, अगर मैं आपके अतीत के पन्नों को पलटूं, आपके बचपन जिसे आपने अपने बताया कि आपको लगता था यू आर फुल ऑफ लाइफ एंड यू वर फुल ऑफ लाइफ, बचपन को जीना चाहते थे, खूब दुनिया को देखना चाहते थे, अपनी तरह से चीजों को करना चाहते थे, आपने कहा कि शैतानियां भरपूर करते थे, शैतानियों से ऊपर शैतानी करती, जिसकी वजह से आप स्कूल कैप्टन बन गए 2 बार, क्या वो शैतानी फोर्सेस ज्वाइन करने के बाद बरकरार रही या एक अलग सा ड्रिफ्ट आ गया आपकी जिंदगी में? सोचने समझने की क्षमता या सोचने समझने का नजरिया पूरा बदल गया सर्विसेज ज्वाइन करने के बाद?
0: नहीं, बट मुझे लगा कि मैंने फौज में बढ़ चढ़ के शैतानी करी।
1: अच्छा,
0: बढ़ चढ़ के
1: क्या बात?
0: जो बारिश में मैं अपने एज अ सन ऑफ आर्मी ऑफिसर नहीं कर पाया कि मैं शर्ट खोलकर निक्कर पहनकर बारिश में

0: सीखूं और एंजॉय करूं जो मैं वहां नहीं कर पाया वो मैंने फौज में किया।
1: वाह।
0: अपने जवानों के साथ कि भाई चलो आज बारिश तगड़ी आ रही है, सब अपनी अपनी शर्ट उतारेंगे। अदरवाइज मेरे फादर तो कभी शर्ट उतारने नहीं देते कि पब्लिकली आप कैसे उतार सकते हो। हम तो जब बास्केटबॉल खेलते थे तो अभी भी फौजी याद करते होंगे, मैं तो अभी भी याद कर सकता हूँ, एक होती थी बनियान वाली टीम और एक होती थी नंगा टीम। नंगा टीम का मतलब आपकी बनियान नहीं होगी।
1: अच्छा।
0: और जो दूसरी टीम है उसके बाद बनियान होगी। पता नहीं क्यों मैं हमेशा नंगा टीम का पार्ट होता था कि यार बनियान उतारने को मिल रहा है। सो मैंने अपनी तरफ से भरपूर शैतानी करी। मैंने अगर ऑपरेशनल शैतानी भी बोलो तो उसमें भी मैंने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी कि जहां लोगों का कहना था कि आपको गोली चलाने के लिए आर्मी हेडक्वार्टर की परमिशन चाहिए, हमें कभी किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। लोगों ने पूछा जरूर, हमारा एक्सप्लेनेशन भी हुआ।
1: अच्छा।
0: कि आपने क्यों किया, बट हमने अपनी तरफ से खुल के जिंदगी जी है फौज के लिए और फौज की मौज के लिए।
1: क्या बात है। वो जो आपके अंदर बच्चा विराजमान था और है, उसी ने कहीं ना कहीं आपको कहे थे ना ट्रू जेंटलमैन, उसी ने आपको ट्रू जेंटलमैन बनाया और उसका परिचय आज आपसे बात करते हुए मिलता है कि वो ट्रू जेंटलमैन उस बच्चे ने आपको बनाया और बच्चा आज भी जिंदा है, आपसे बात करते हुए महसूस हो रहा है। तो उस बच्चे के नाम ना ये गाना हमारी तरफ से।

0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं संदेश टू सोल्जर्स। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीता कौनियाल, और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है कर्नल शैलेंद्र सिंह, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। अगर इनके कैनवस को देखूं ना मैं, तो मैं कहूंगी हिज कैनवस इज लार्जर देन लाइफ। व्हाई? क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा देश के नाम किया है, और वो हिस्सा ना आज भी देश की ही बात करता है। लेकिन कहते हैं कि जिंदा दिली व्यक्ति को हमेशा हमेशा अपने लिए और दूसरों के लिए भी जीने के लिए प्रेरित करती है, और इसकी जिंदा दिली की वजह से हमारा आज का ये शो, आज का ये कार्यक्रम किसी और दिशा में है। और मैं सच बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उस दिशा में ना गोते मार रही हूं। अब कर्नल सिंह, आपसे एक बात पूछना चाहती हूं। भले ही आपने अपनी जिंदगी, आपकी सोच, आपका परसेप्शन जीवन जीने का मौज मस्ती के साथ रहा हो, पर मैं ये बात जरूर कह सकती हूँ कि आपसे लोग डरते भी बहुत होंगे। जब डिसिप्लिन की बात आती होगी, जब फौज में रहे, जब कमांड किया, जब नेतृत्व किया, जब फैसले लिए, तो माहौल उस वक्त कुछ और रहा होगा, निश्चित है।
1: नहीं, देखिए, सिचुएशन के हिसाब से आपको डिसीजन तो लेने पड़ते हैं, मैं मान लूंगा इस बात को। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने हर वो डिसीजन जो लिया उसमें मैं खुद इन्वॉल्व था। अगर मैंने अपने बैटरी को या अपनी कंपनी को बोला कि हम इस दिशा में जाएंगे और मालूम है कि वो दिशा गलत है, तो मैं उसमें सबसे आगे चल रहा था कि यस, हम गलत जा रहे हैं, हमें मालूम है कि यहाँ रिस्क है और हम रिस्क लेने जा रहे हैं, लेकिन मैं उसमें आगे हूँ तुम्हारे साथ। इसलिए मेरे को कभी नहीं नज़र आया कि कहीं किसी ने आँख भी झपकी हो कि अगर मैंने कह दिया कि इधर, तो सिर्फ इधर ही होगा, उधर का मामला हो नहीं सकता। क्योंकि मेरी रेजिमेंट आज भी मुझे कई बार सो कॉल्ड ब्लेम कर लेती है कि जिसने इधर का उधर देखा उसका बैंड बाजा बारात उधर ही बज गया। मतलब हमारे टाइम में हमारे को ये कष्ट नहीं होता था कि हमने किसके थप्पड़ मारा या नहीं मारा, किसकी कुटाई हुई या नहीं हुई। बड़ी सीधी बात है कि जो तू कर रहा है वो मैं कर रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं वो तू करेगा। सो दैट इज द वे जो लाइफ है। और मुझे लगता है कि रेजिमेंट्स के अंदर जो लाइफ होती है वो बड़ी अलग लाइफ होती है। आप में और आपके जवान में फर्क नहीं है, फर्क है तो सिर्फ कंधे का है। और इसीलिए मैंने आपको बोला कि जब हम गेम खेलते हैं तो हम कंधे पर स्टार लगाकर नहीं खेलते हैं। उसमें अगर मेरे जवान बिना बनियान का नंगा टीम का पार्ट है, तो मैं भी उतना ही नंगा टीम का पार्ट हूँ कि मैंने भी सिर्फ अपना शॉर्ट्स पहने हैं, निक्कर पहनी है, जूते पहने हैं, इसके अलावा मैं बिल्कुल उसके साथ हूँ। जिसको बोलते हैं ना, कंधे से कंधा नहीं, छाती से छाती टकराती है। और वहाँ हम पाते हैं कि हमारा जवान कभी नहीं ये सोचता कि मेरा अफसर कहीं डिसिप्लिन में स्ट्रिक्ट है या नहीं। यूनिफॉर्म पहनी है, यूनिफॉर्म सही पहननी पड़ेगी। सलूट मारना है, सलूट सही मारना ही पड़ेगा। इसके लिए कहीं कोई दो राय नहीं है। उसमें आपकी टुकाई नहीं होगी, मेरे तरीके से ठुकाई होगी। बड़ा सीधा सीधा तरीका है काम करने का। मुझे लगता है कि आज भी मेरी रेजिमेंट जब जिस तरीके से मुझे याद करती है, मुझे आज तक उसमें यह नजर नहीं आया कि किसी ने यह कहा हो कि सर आपने मुझे गलत मारा। आज भी लोग कहते हैं सर आप आरपी गेट में घुसते थे तो हम इधर उधर हो जाते थे कि भाई साहब बवंडर आ गया, पता नहीं आज किसको लपेटेगा। सो दैट इज अ सिकनेस। सिकनेस को अगर सिकनेस की तरह देखना है तो यस, इट वॉज सिकनेस। बट मुझे लगता है मेरी रेजिमेंट की इज्जत, मेरे रेजिमेंट की डिसिप्लिन किसी हालत में कंप्रोमाइज नहीं हो सकती। मैं इनडिसिप्लिन हो सकता हूं, मेरा जवान हो सकता है, बट रेजिमेंट के नाम पर गलत चीज होने नहीं दूंगा।
0: जी बिल्कुल। अब बात करते हैं उस दौर की, जिस दौर में आप सीडीएस आपने क्लियर किया। सीडीएस क्लियर करने के बाद घर पर बताया पिताजी

0: क्या प्रतिक्रिया थी?
1: नहीं, पिताजी एक्चुअली बहुत ज्यादा कीन नहीं थे, क्योंकि देखिए ये जब 85, 86, 87 ये जो वो वाला दौर है जहां आर्मी में तनख्वाह बहुत कम थी, तब तक मेरा कॉर्पोरेट हाउस में ऑलरेडी जॉब लग गया। 2800 रुपए मेरे को पहली तनख्वाह वहां मिली, और फौज में वापस अगर मैं ज्वाइन कर रहा था तो जीरो थी। ये तो हमारी अगेन किस्मत है कि हमें 1500 रुपए महीना वहां पर भी अलाउड हो गए, लेकिन एकेडमी के रूल्स अपने होते हैं, वो 1500 आपको कभी मिले नहीं, बोला आपके जमा होते रहेंगे।
0: अच्छा।
1: आप नहीं तो खर्च कर दोगे, मतलब खाने पीने में दाएं बाएं कर दोगे। सो माई फादर वॉज वेरी क्लियर कि भाई एक काम करो बेटा, देखो देख लो, अच्छा खासा तुम्हारे पास 2800 का जॉब है, अब आप जीरो पर आ जाओगे। और उस समय एक लेफ्टिनेंट की, सेकेंड लेफ्टिनेंट की जो पे थी वो भी 2300 रुपए थी, मतलब 2800 से भी कम। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने मुझे अलाउ किया। हालांकि मैं अब अगर बाद में देखता हूं ना, सबसे बड़ी खुशी अगर कहीं किसी को हुई थी तो मुझे लगता है मेरे फादर को हुई।
0: अपने बेटे को अपने पद चिन्हों पर चलता देख किसी भी पिता के लिए गर्व की बात हो सकती है, और आप उसका उदाहरण भी हैं। तो 1987 में आप ओटी गए, ओटीए चेन्नई, जहां से आपने अपनी ट्रेनिंग प्राप्त की। उसके बाद फिर 1988 में कमीशन हुए,
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: पहला डिप्लॉयमेंट कहां डिप्लॉय किए गए?
1: ये मेरी बदकिस्मती है कि पोस्टिंग आई जोरिया, दैट इज जम्मू, लेकिन उसकी एडवांस पार्टी जा रही थी मेरठ।
0: अच्छा।
1: सो हमें बोला गया एकदम से जाओ, और वो इसलिए जाओ क्योंकि वो गेम्स जो है उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है, तो इस वजह से हमें मेरठ आना पड़ा। लेकिन यहीं पर बोलते हैं कि किस्मत का टर्न देखिए, वर्स्ट राइट्स ऑफ इंडिया टुक प्लेस वो समय 1988 वाले वो मेरठ में हुए थे, और आज मैं कह सकता हूं तब से लेकर अब तक कभी कोई राइट नहीं हुआ मेरठ में। तो ये किस्मत वाली बात है कि मैं उसका पार्ट था, और वहीं से पंजाब की ऑप रक्षक वाला जो डिप्लॉयमेंट था वो हमारी यूनिट को मिला। तो मेरे को आज भी याद है, हम धालीवाल में थे, हम डेरा बाबा नानक वाला जो इलाका है वहां थे, जहां पर के ट्रेन जब जाती थी तो वो डेरा बाबा नानक के रेलवे स्टेशन पर नहीं जाती थी, वो उससे 2 किलोमीटर पहले ही रुक के वापस आ जाती थी, क्योंकि उसमें कोई होता ही नहीं था। तो एक बार तो मैं अकेला था, अकेला ट्रेवलर इन द ट्रेन, और सबसे बड़ी वो देखिए कि काउंटर इंसर्जेंसी का टाइम चल रहा है और मैं अपनी कार्बाइन लेके चल रहा हूं। तो जैसे ही मैंने देखा कि मैं कोई दूर दूर तक नहीं है, तो मैंने फटाफट अपना सूटकेस खोला, कार्बाइन उसके अंदर रखी और उसे बंद किया। मैंने कहा अगर यहां तो दिख गया किसी को तो शायद वो कार्बाइन के लिए आएगा। लेकिन जब मेरे को थोड़ी देर में रियलाइज हुआ कि भाई अगर मैंने यूनिफॉर्म पहनी हुई है तो व्हाई नॉट कार्बाइन, सो आई टुक इट आउट, आई डिस्प्लेड। मैं 2-2.5 किलोमीटर पैदल गया, लोगों ने दाएं बाएं देखा, लेकिन कहीं किसी ने उंगली नहीं उठाई, नजर नहीं उठाई कि भाई एक फौजी जा रहा है अपना सूटकेस पकड़कर। सो लाइफ वॉज वेरी डिफरेंट। हमें सेकेंड लेफ्टिनेंट के तौर पर मौका मिला कि हम काउंटर इंसर्जेंसी पंजाब में पार्टिसिपेट करें।
0: क्या बात है, बहुत गर्व महसूस हुआ करता होगा ना उस वक्त, जब जैसे जैसे ऑपरेशंस मिलते होंगे और जिन जिन ऑपरेशंस का हिस्सा बनते गए, तो जैसे कि आप खुद एक डेस्टिनी लवर हैं कि किस तरह के से आपकी किस्मत आपको आर्म्ड फोर्सेस ले आई, उस तरह से जैसे जैसे आपको ऑपरेशंस मिलेंगे और जिस जिस ऑपरेशन पर आपने हिस्सा लिया, गौरवान्वित महसूस करते होंगे बहुत ज्यादा।
1: गौरवान्वित तो बहुत अंडरस्टेटमेंट हो जाएगी।
0: अच्छा।
1: मुझे तो लगता था आर्मी चीफ जो है वो टाइम पास कर रहा है, मैं ही कर रहा हूँ जो काम कर रहा हूँ। मेरे लिए तो उससे बड़ी चीज, मेरे लिए कोई कमांडिंग ऑफिसर, जीओसी कुछ नहीं, मुझे लगता था मैं ही हूँ, मैं मतलब मैं और मेरी कंपनी, हम दो ही हैं जो दुनिया ठीक करने वाले हैं, पूरी काउंटर इंसर्जेंसी को ठीक करने वाले हैं। सो गौरवान्वित मेरे को लगता है बहुत छोटा वर्ड हो जाएगा मेरे लिए, हम लोग बहुत ऊंचाई पर थे।
0: वाह क्या बात है, ये जो फीलिंग है ना आपकी कि सब कुछ अब मुझ पर निर्भर करता है और मेरे फैसले से काया पलट हो सकती है, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि यू वर अगेंस्ट एनीथिंग, आपने अपनी जिम्मेदारी को इस तरह से पकड़ लिया था कि अब जो करना है मुझे करना है, सब कुछ मेरे कंधों तले है, क्यों सही कह रही हूँ ना मैं? करना
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये कहूंगा कि हम ही उस जगह की डेस्टिनी बना रहे थे, ऐसा हमें लग रहा था। इसमें कोई शक नहीं है मुझे, आज भी अगर मैं बोलूं तो आपके स्टूडियो में बैठकर मुझे नहीं लग रहा कि आप बोल रही हैं, मुझे लग रहा है मैं बोल रहा हूं। मैं आपका शो कंडक्ट कर रहा हूँ मुझे, और ये मैंने अपनी फौज

0: जिया है, अपने जवानों के साथ जिया है, अपनी रेजिमेंट के साथ जिया है। मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं आर्मी के लिए लड़ रहा हूँ या मैं देश के लिए लड़ रहा हूँ। मैं लड़ रहा था, काम कर रहा था मेरी रेजिमेंट और मेरे जवानों के लिए।
1: बहुत खूब, बहुत खूब। तो वो और कौन कौन से ऐसे ऑपरेशंस हैं आपके जिनका आप यहाँ जिक्र करना चाहते हैं? क्योंकि हर ऑपरेशंस, मैं कहती हूँ कि शायद हमारे पास इतना समय नहीं कि हर ऑपरेशन पर बात कर पाए, पर निश्चित रूप से आपके पास इतनी सारी बातें हैं, लेकिन हम उन ऑपरेशंस का नाम जरूर ले सकते हैं यहाँ पर।
0: देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि सबसे रिवॉर्डिंग ऑपरेशन अगर बात करी जाए तो आई थिंक मेरे लिए JNK रहेगा, श्रीनगर। क्योंकि उसका रिवॉर्ड ये था कि मैं JNK के सो कॉल्ड काउंटर इंसर्जेंसी में था और मेरी वहाँ शादी हो गई। सो इससे बड़ा रिवॉर्ड क्या हो सकता है? अगर कहीं किसी और दिल्ली विल्ली में होता तो पता नहीं कोई शादी करता या नहीं, बट हवाई श्रीनगर में शादी हो गई।
1: वाह, क्या बात है। तो आपने उन्हें चुना या उन्होंने आपको चुना या किसी और ने आप दोनों को मिलवाया और आपको प्रणय सूत्र में बांधा?
0: नहीं, ये ना एक्चुअली हमारे फौज में जो सीनियर फौजी होते हैं ना वो बड़े तगड़े होते हैं। तो मेरी वाइफ के जो चाचा जी थे वो फौज में थे और वो वहीं पर श्रीनगर में थे। उन्होंने मेरे ऊपर पूरा अच्छा खासा होमवर्क रिसर्च करके और ठा करके सामने रख दी लड़की। अब वही वाली बात है कि फौजियों की एक कमजोरी ये जरूर होती है कि सुंदर चीज को सुंदर मानने में बुराई कोई नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। एंड वी गॉट मैरिड। श्रीनगर, काउंटर इंसर्जेंसी एंड शादी।
1: वाह, क्या बात है, क्या बात है। मतलब यहाँ से तो पूरी काया पलट हो गई। और जो सुंदर काया जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिन्होंने आपके जीवन की काया को बहुत सुंदर बनाया हुआ है आज तक, वो आपको मिल गई। अच्छा, अब कारगिल युद्ध की अगर बात करें, ये आपके जीवन का शायद एक ऐसा चैप्टर जरूर रहा होगा जिसके बारे में आप बार बार जिक्र करना चाहते हैं।
0: मैं बिल्कुल जिक्र नहीं करना चाहूंगा, ये बड़ा इमोशनल टॉपिक है हमारे लिए। कारगिल, हमने अपने इस हाथ में अपने बंदे खोए हैं। आज भी मेरे घर मेरे हाथ को अगर मैं देखता हूँ तो मुझे ये लाल हाथ दिखते हैं। कारगिल वो लड़ाई थी जो कभी नहीं लड़ी जा सकती फिर से, ना पहले ना बाद में। उन हाइट्स को अगर आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही थॉट प्रोसेस आ सकता है कि ये लड़ाई हो ही नहीं सकती जिस लड़ाई को हमारी फौज लड़ गई, जिन जिन जिन टारगेट्स के ऊपर हम गोला दाग रहे थे, जिसके ऊपर हमारे अपने लोग चढ़ रहे थे, हम उसमें से एक थे, कि उस चढ़ाई को चढ़ना इम्पॉसिबल, मेरे ख्याल बड़ा छोटा वर्ड होगा, दैट इम्पॉसिबिलिटी वॉज मच बिगर, बहुत बड़ी इम्पॉसिबिलिटी थी। बट उसके बावजूद जैसे जैसे चढ़ते जा रहे थे, जैसे जैसे वो अनहोनी चीजें करते जा रहे थे, वहां से निकलकर आ रहा था कि यार ये करना अब हमारे लिए रूटीन है। जब पहली पोस्ट आप कैप्चर करते हो तो तकलीफ होती है, उसके बाद आई थिंक बड़ा फेमस डायलॉग यू नो टाइगर हिल वाली साइड में चला, हम बटालिक साइड में थे, लेकिन वहां से और यहां से कॉमनैलिटी ये आई कि अब दिल ना मांगे मोर, अब दिल मांगे मोर एंड मोर।
1: कैप्टन विक्रम बत्रा,
0: सीधी सीधी मोर एंड मोर पर बात आ गई थी। कोई जवान, कोई अफसर सेटिस्फाइड ही नहीं था कि एक पोस्ट कैप्चर कर ली तो अब यहां रुको, अगले पर, उससे अगले पर। वो जो स्पिरिट थी, मुझे लगता है वो उन सब इम्पॉसिबिलिटीज को पीछे कर बैठी और अपने आप में वो लड़ाई एक विनिंग लड़ाई में कन्वर्ट हो गई। अदरवाइज मैं आपको जिम्मेदारी लेकर बोल रहा हूँ, 15,000-18,000 फीट पर जहाँ ऑक्सीजन कंटेंट आपको 30% मिलता है, सांस लेना अपने आप में तकलीफ है, आप वहाँ भाग रहे थे, आप वहाँ दुश्मन के पोस्ट की तरफ भाग रहे थे, उसको कैप्चर करने के लिए, उसको मारने के लिए, उसको पीछे धकेलने के लिए। दिस वॉज अ इम्पॉसिबल लड़ाई। एंड मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ 528 लोग उस दिन मारे गए। मैं आपको जिम्मेदारी की स्टेटमेंट दे रहा हूं, 528 लोग उस दिन वीरगति को प्राप्त हुए, 527 ऑफिशियल है, 528 वहां आपके सामने बैठा है। हम उसमें अपनी जान नहीं दे पाए, मुझे लगता है भगवान ने मेरे साथ क्रूरता करी कि मैं वो 528वां आदमी होना चाहिए था जिसे उन 527 का बराबर का हकदार मानना चाहिए।
1: शब्द नहीं।

0: निःशब्द हूँ, एक ऐसे व्यक्तित्व से बात कर रही हूँ जो जिंदगी से भरपूर है, जिसकी बहुत इच्छा शक्ति है, जो बहुत जीवंत है, जो जीने की वजह बन सकता है, जो जीने की वजह बन रहा होगा लाखों लोगों को जो इस वक्त सुन रहे होंगे। वो ये कहता है कि वो अपने प्राण नहीं दे पाया, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड। शब्द नहीं है हमारे पास इस वक्त कर्नल शैलेंद्र सिंह की बातें सुनने के बाद। किस मिट्टी के बने हैं आप, ये जरूर बताएं। और इसका श्रेय मैं भारतीय सेनाओं को देना चाहूंगी कि एक बच्चा जो अपने घर से निकलकर, अपनी माँ की आंचल से निकलकर सीधा पहुंचता है ट्रेनिंग देने के बाद, उसको इस तरह से तैयार किया जाता है कि वो सिर्फ देश के बारे में सोचता है, देश को बचाने के लिए सोचता है, जो अपने प्राणों की परवाह नहीं करता, जिसके लिए मृत्यु जो है, आप मृत्यु शायद शब्द यहाँ पर ठीक भी नहीं, जिसके लिए देश के लिए बलिदान देना सर्वोपरि है। आई कुड सी कर्नल शैलेंद्र सिंह हैव वेट आईज। किस तरह का पल वो रहा होगा शायद शब्दों में उसको बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, आपकी नम आंखें इस बात का सबूत है, आपके एक एक लफ्ज इस बात को यहाँ साबित कर रहे हैं कि जब एक सोल्जर, एक सैनिक मैदान जंग में जाता है तो यही सोचकर जाता है कि मैं वापस नहीं लौटूंगा, मैं जा ही रहा हूं देश के लिए अपने प्राण त्यागने के लिए। आप और उन तमाम, आप और 527 टोटल 528 वो सभी सोल्जर्स, उनको हमारी ओर से नमन। हम यही कहते हैं, अगर आप नहीं तो हम नहीं। एक और व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे कि अगर आपको मौका मिला, आपको ये मौका दिया गया, जो आपने अपना कार्यकाल जिया है, जो आपने अपनी सेवाएं दी हैं, आपने वो यूनिफॉर्म, वो पोशाक पहनी है, चौड़ा अपना सीना चौड़ा कर अपने मेडल्स लगाए हैं, अगर वो मौका दोबारा से मिले, क्या आप दोबारा से जीना चाहेंगे उन्हीं पलों को?
1: मैं पहले वाला मौका ही अभी तक खत्म नहीं कर पाया हूँ।
0: अभी तक
1: वो यूनिफॉर्म मेरे ऊपर अभी भी है।
0: वाह।
1: वो मेरे दिमाग पर अभी भी है। और जब आप कहती हैं मेरी आंखें नम है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। मुझे गर्व है उन नम आंखों पर कि उन 527 जानों के लिए अगर आज भी मैं एक बूंद अपनी आंखों से पानी बहा पाता हूँ, ये मेरे लिए गर्व की बात है। इट्स अ सेटिस्फेक्शन फॉर मी। और जहाँ तक बात है रीलिव, मैं आपको पता नहीं कैसे लग गया कि आई हैव टू रीलिव। मैं तो ऑलरेडी लिव कर रहा हूँ। मेरी यूनिफॉर्म ना उतरी है ना उतरेगी। एज फार एज आई एम कंसर्न, फौजी दिखाने के लिए आज मैंने आपके सामने टाई पहन ली होगी, लेकिन इस टाई के पीछे मेरी यूनिफॉर्म अभी भी बिल्कुल बरकरार है।
0: वाह, आपने आज निःशब्द कर दिया। आपके किरदार के, आपके व्यक्तित्व के अलग अलग पहलू, किसी आर्मी ऑफिसर की इतने सारे पहलुओं को जानने के बाद ये लगता है कि जैसा कि मैंने कहा कि किस मिट्टी के बने हैं, हम ये कहेंगे भारत की मिट्टी से बने हैं, कण कण भारत की मिट्टी से बने हैं, जो सिर्फ देश के बारे में सोचते हैं, जिन्होंने हमेशा देश के बारे में सोचा। और शायद आपने देश के बारे में सोचा, शायद आप देश के लिए अब तक सिर्फ देश के लिए जी रहे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे जितने भी युवा हैं जो आर्म फोर्सेस जाना ज्वाइन करना चाहते हैं, आप उनके लिए मिसाल हैं। क्या कहना चाहेंगे उन सबसे आप?
1: मैं एक ही बात कहूंगा, अगर जिंदगी जीनी है तो फौज की जी लो, अदरवाइज जी तो सभी रहे, बट अगर जिंदगी जीनी है तो आपके पास एक ही जिंदगी है और उसे मैं कहता हूं फौजी जिंदगी। अदरवाइज आप जी वैसे भी लेंगे, ऐसे भी लेंगे, बट अपने आप में, मेरा इसमें अहंकार नहीं है, मेरे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप फौजी जिंदगी नहीं जी पाए तो भी आपके पास मौका है, अपने देश के लिए जरूर जी लो। देश के लिए जी लिए तो आप ये समझ लेना कि आप फौजी की जिंदगी जी लिए।
0: बहुत खूब। यहाँ पर एक सवाल और आपसे पूछना चाहती हूँ, जो मैं दिल से चाहती हूँ पूछूं। एक वो पल जहाँ आप बहुत मेजर ऑपरेशन में हैं, जहाँ पे आपकी तीक्ष्ण बुद्धि, जहाँ पे आपका नेतृत्व, पॉइंट टू पॉइंट डिसीजन देने की ताकत, जिस वक्त निर्णय लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, खासतौर पर अगर कारगिल युद्ध की बात करें, जहाँ आपके बहुत सारे साथी पल पल क्षण क्षण साथ छोड़कर जा रहे थे, उस वक्त निर्णय लेना कितना मुश्किल होता है। मैं जानती हूँ कि भारतीय सेनाएं आपको तैयार करती हैं, इस मौके के लिए भी तैयार करती हैं, पर व्यक्तिगत रूप से जिस तरह के जहीन व्यक्ति आप खुद हैं, आप जैसे व्यक्ति के लिए या उन सभी सैनिकों के लिए, उन सभी ऑफिसर्स के लिए, उस वक्त डिसीजन लेना कितना मुश्किल होता है?
1: इम्पॉसिबल होता है कुछ डिसीजंस लेना, और आपको वो डिसीजन लेने पड़ते हैं।

0: अगर मैं अपनी जिंदगी में देखूं, आर्टिलरी में एक फायर होता है जिसको बोलते हैं फायर SOS, सेव आवर सॉल। दैट मींस जो OP ऑफिसर या इन्फेंट्री है वो अपने ऊपर फायर बुलाती है, और जब वो कह देता है कि टारगेट विक्टर ये, और जब मैं उसे गन एंड पर देखता हूं और मुझे दिखता है ये तो अपने ऊपर फायर बुला रहा है, सोचिए उस टारगेट के ऊपर जब 18 गन के 18 गोले आके क्या बचेगा। तो इसलिए हम उसमें फिर से पूछते हैं, दूसरी बार पूछते हैं, चेक फायर, सेफ्टी फायर, सारी चीजें ट्राई कर ली उसे एक मिनट के अंदर, लेकिन फाइनली जब डिसीजन लेने की बात आई तो वो भोंपू को मैं पकड़ता हूं और मैं कह देता हूं फायर
1: क्या?
0: और वो फायर बोलना लिटरली अमाउंट्स टू कि मुझे नहीं मालूम कि वो OP ऑफिसर और वो कंपनी कमांडर उस फायर में जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा, बट उस गन एरिया के अंदर मैं अधमरा हो जाता हूं कि यार ये फायर मैंने अपने लोगों के ऊपर किया है, अपने लोगों द्वारा मांगने पर। अब इसमें गलती थी या नहीं थी वो एक अलग बात है, बट इसको बोलते हैं कि फॉर्च्यून्स एंड द गॉड ऑल्सो स्टैंड्स विद पीपल हु आर ब्रेव। ब्रेवरी के साथ भगवान हमेशा होता है। उस अकेले जिंदगी के एक SOS फायर में हमारा कोई नहीं मरा, पाकिस्तान के सारे मारे गए।
1: क्या बात है।
0: सो ये डिसीजन लेना आई थिंक टफेस्ट पार्ट होगा एक गनर के लिए, कि उसे मालूम है कि आप फायर कहां कर रहे हो, अपने ओन ट्रुप्स पर कर रहे हो, और उसके बावजूद आप वो फायर कर देते हो।
1: बहुत खूब। इसलिए हम कहते हैं कि हमें जो सबसे टफेस्ट ट्रेनिंग जो है हमें हमारी भारतीय सेनाएं देती हैं, और आप जैसे ऑफिसर्स को बनाती हैं, और आप अपनी कर्तव्य निष्ठा से, देश प्रेम से, और कहीं ना कहीं अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से मैदान जंग में हमेशा फतह हासिल करवाते हैं। इसीलिए हमारे पास बहुत सारे संदेश भी आए हैं, और हम आप सभी का धन्यवाद देना चाहते हैं। राजेश भल्ला एडवोकेट कंकरखेड़ा मेरठ से जय हिंद लिख भेजा है इन्होंने। सौरभ बनेजा का हमारे पास गाजियाबाद से संदेश है, गुड आफ्टरनून। एक संदेश हमारे पास यहाँ पर आया है पंकज कामरावती महाराष्ट्र से, और ये बहुत ज्यादा खुश हैं आपकी बातें सुनने के बाद कि आपने भारतीय सेना के बारे में, और भारतीय सेना क्योंकि जब हम भारतीय सेना की बात कर रहे हैं, ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं, तो उनकी फैमिली लाइफ के बारे में आपने हमें रूबरू कराया, ये और भी प्यारी और सुखद बात थी। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। संदेश हमारे पास रोहित मेहर का आया है ओडिशा से, और इनको आपकी खुश मिजाजी बहुत ज्यादा पसंद आई, जिंदा दिली पसंद आई। थाईलैंड से हमारे पास संदेश आया है मिस्टर अमोल बवाने का। संदेश भेजने वालों में और भी बहुत सारे दोस्त हैं, और हम यही चाहेंगे कि आप अपना प्यार यूं ही बरसाते रहें। एक संदेश और है, बहुत बड़ा संदेश है, पर यही कहना चाहूंगी कि इन्होंने पूरे सम्मान के साथ भारतीय सेना को सल्यूट किया है, वंदे मातरम कहा है, और ये हैं शंकर लोड द्वारका से। बहुत बहुत धन्यवाद कर्नल शरेंद्र सिंह आपका, आप स्टूडियो में आए, और सबसे बेहतरीन बात आपके व्यक्तित्व को पहचानने के बाद हम जीवन में कुछ भी क्यों ना करें अपने गंतव्य तक पहुंचे, लेकिन अपने अंदर के व्यक्ति को हमेशा जिंदा रखें, क्योंकि यही जिंदा दली हमें परचम लहराने पर प्रेरित करती है।
0: देश अकेला है, जिंदगी अकेली है, जी लीजिए इसे अपने देश के लिए। जय हिंद, नमस्कार
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हमने साक्षात्कार किया, बात की कर्नल शैलेंद्र सिंह से, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, और हम यही कहेंगे कि हम हमेशा आपके समक्ष, आप सभी ऑफिसर सैनिकों के समक्ष अपना शीश झुकाए खड़े हैं, खड़े थे, खड़े रहेंगे, और हमेशा गर्व से कहेंगे कि हमारी भारतीय सेनाओं ने हमें हमेशा मुस्कुराने की, जीने की वजह दी है, और आपको शत शत प्रणाम, शत शत नमन।

FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। संध्या के 5 बजे हैं और आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: अभिजीत साधना सरगम और साथियों को भी आपने सुना।
1: फिल्म थी
0: आर या पार, गीत इंदिवर का था, संगीत दिया था ए आर रहमान ने,

अनुराधा पौडवाल और सोनू निगम को अभी आपने सुना, फिल्म थी ताल, बोल आनंद बख्शी के थे, संगीत दिया था ए आर रहमान ने।

कुमार सानू और साधना सरगम के गाए दीवाना फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है और अब युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी साथियों को हमारा नमस्कार। मित्रों, मानव तस्करी एक गंभीर अपराध और मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है। हर साल हजारों पुरुष, महिलाएं और बच्चे अपने ही देश और विदेशों में तस्करों के चंगुल में फंस जाते हैं। दुनिया का लगभग हर देश तस्करी से प्रभावित है, चाहे वे पीड़ितों का मूल देश हो, पारगमन देश हो या गंतव्य देश हो। संयुक्त राष्ट्र संगठित अपराध विरोधी सम्मेलन यानी यूनटॉक और इसके प्रोटोकॉल के संरक्षण में यूएनओडीसी मानव तस्करी की रोकथाम, दमन और दंड के प्रोटोकॉल को लागू करने के प्रयासों में राज्यों की सहायता करता है और इसीलिए 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। मानव तस्करी के विरुद्ध 2026 विश्व दिवस का विषय है घोटाले के जाल में फंसे यानी ट्रैप्ड बिहाइंड द स्कैप। मानव तस्करी के तेजी से फैलते रूप की ओर ध्यान आकर्षित करता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध समूह बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी करने के लिए लोगों का शोषण करते हैं। पीड़ितों को जबरन अपराध करने के लिए तस्करी किया जाता है और उन्हें ऑनलाइन धोखाधड़ी के अभियानों में भाग लेने के लिए मजबूर किया जाता है। शोषण का ये साइबर अपराध वित्तीय धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, जो संगठित अपराध की बढ़ती परस्पर संबद्धता को दर्शाता है। मानव तस्कर अक्सर फर्जी नौकरी के विज्ञापनों के जरिए पीड़ितों को भर्ती करते हैं, जिनमें विदेश में वैध रोजगार के अवसरों का वादा किया जाता है। असली नौकरी मिलने की उम्मीद में पीड़ित दूसरे देशों की यात्रा करते हैं, लेकिन वहां उन्हें अवैध धोखाधड़ी वाले ठिकानों में कैद कर दिया जाता है। इन परिसरों के भीतर पीड़ितों को साइबर धोखाधड़ी करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसमें प्रेम प्रसंग धोखाधड़ी, क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी और दुनिया भर के लोगों को निशाना बनाने वाली अन्य ऑनलाइन योजनाएं शामिल हैं। उन्हें लगातार निगरानी में रखा जाता है और हिंसा, धमकियां, कर्ज के बंधन में अत्यधिक काम के दबाव का शिकार बनाया जाता है, जिससे वे भय के माहौल में फंस जाते हैं और उनके पास भागने का भी बहुत कम अवसर होता है। पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया यूएनओडीसी का अनुमान है कि अकेले 2023 में घोटालों के कारण 18 अरब

अमेरिकी डॉलर से लेकर 37 अरब अमेरिकी डॉलर तक के वित्तीय नुकसान हुआ है और इसका संगठित अपराधों का समूह का एक घोटालों से ही जुड़ा हुआ है। यूएनओडीसी उन देशों को कानूनी सुधारों पर भी सलाह देता है जिनकी आवश्यकता अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध से जुड़े सभी प्रकार के अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए होती है, जिसमें बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर सक्षम अपराध और भ्रष्टाचार शामिल है। चूंकि ये अपराध अक्सर कई देशों में फैले होते हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 2024 में अपनाई गई साइबर अपराध विरोधी संयुक्त राष्ट्र संधि डिजिटल अपराध, ऑनलाइन धोखाधड़ी और प्रौद्योगिकी आधारित संगठित अपराध के खिलाफ सहयोग को मजबूत करने के लिए एक नया वैश्विक ढांचा प्रदान करती है। मानव तस्करी विरोधी विश्व दिवस 2026 के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र मानव संसाधन विकास परिषद पीड़ितों की सुरक्षा के लिए सीमा पार न्यायिक एवं कानून प्रवर्तन सहयोग को बेहतर बनाने हेतु सशक्त कार्रवाई का आह्वान करती है। मानव तस्करी से जुड़े मामलों में और घटित घोटालों में शामिल संगठित अपराध समूह को ध्वस्त करने के लिए प्रयास अत्यंत आवश्यक है और इसको अभियान के लिए ब्लू हार्ट दिया गया है और जो कि नीला दिल का प्रतीक पीड़ितों के साथ एकजुटता और उन लोग की निर्ममता का प्रतिनिधित्व करता है जो अपने साथी मनुष्यों का सौदा करते हैं। मानव तस्करी के अंत के लिए विश्व दिवस के उपलक्ष में सोशल मीडिया पर संदेशों को जरूर साझा करें और उन पर टिप्पणी करें। ब्लू हार्ट कम्युनिटी से जुड़े या अभियान को समर्थन देने के लिए अन्य तरीकों के बारे में भी जानकारी लोगों को प्रदान करें। जमीनी स्तर पर सहायता और संरक्षण प्रदान करके इस पर हम अपने सहयोग से इस तस्करी के अभियान को रोक सकते हैं और सहयोग करके उनका भविष्य संवार सकते हैं।

0: जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
1: आराम से मैडम।
0: क्या
1: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
2: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: युवाणी कार्यक्रम में अब अपने साथियों को सुनाते हैं युवा वार्ता। तकनीकी और नवाचार का युवाओं के जीवन पर प्रभाव। वार्ताकार हैं आदित्य चूड़ामणि।
2: आज का युग एक ऐसा युग है जिसे हम डिजिटल युग या फिर तकनीक और नवाचार का युग कह सकते हैं। यह ऐसा युग है जिसमें वर्षों में नहीं हर कुछ महीनों में नई तकनीक आ रही है। जहां पहले लोग घोड़ा गाड़ी से सफर करते थे, आज वो रॉकेट में बैठकर अंतरिक्ष की खोज कर रहे हैं। कभी जो चीजें सिर्फ विज्ञान कथा में होती थीं, आज

हमारे हाथों में है। स्मार्टफोन, एआई चैटबॉट्स, रोबोट्स, इंटरनेट, डिजिटल बैंकिंग और क्या नहीं। और इस पूरी टेक्नोलॉजी क्रांति का सबसे गहरा असर पड़ा है युवाओं पर, क्योंकि युवा ही वो वर्ग है जो तकनीक को सबसे जल्दी अपनाता है, प्रयोग करता है और उसमें बदलाव लाने की हिम्मत रखता है। आइए समझते हैं कि तकनीक का युवाओं के जीवन पर किस प्रकार सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वह कैसे अपने जीवन को नवाचार की सहायता से और बेहतर एवं उत्तीर्ण बना सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक का क्या प्रभाव रहा। पहले शिक्षा केवल स्कूल की घंटी, ब्लैक बोर्ड व टीचर की उपस्थिति तथा किताबों तक सीमित थी। दूर दराज गाँवों में ना अच्छे शिक्षक थे और ना ही संसाधन। बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु घर से दूर शहर में कोचिंग जाना पड़ता था। लेकिन अब डिजिटल लर्निंग के अनेक माध्यमों ने छात्रों के लिए शिक्षा पाना किफ़ायती अथवा सुलभ बना दिया है। हर छात्र अब मोबाइल पर इंटरनेट के माध्यम से YouTube से मुफ्त में पढ़ाई कर सकता है, जो कि एक ज्ञान का खजाना है। कोई भी बच्चा घर बैठे काफ़ी सस्ते ऑनलाइन माध्यमों से JEE, UPSC और कैट जैसी परीक्षाओं की तैयारी अपनी सहूलियत अनुसार कर सकता है। बिग टेक कंपनीज जैसे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट तथा विदेशी यूनिवर्सिटीज जैसे हार्वर्ड और MIT के कई कोर्स अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जिससे युवाओं की स्किल सेट ग्लोबल स्तर की बन रही है। नई तकनीकों ने करियर के लिए भी अनेक नए दरवाजे खोले हैं, जिसमें युवा अपनी इच्छा अनुसार कदम रखकर अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं। पहले युवाओं के पास काफ़ी कम विकल्प हुआ करते थे, जैसे इंजीनियरिंग, डॉक्टर, शिक्षक, सरकारी नौकरी आदि। लेकिन तकनीक के इस नए दौर में अब असीमित विकल्पों में प्रवेश किया जा सकता है, जैसे डेटा साइंस, UI/UX डिज़ाइन, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, गेम डिज़ाइन, ब्लॉकचेन, एथिकल हैकिंग आदि। इतने सारे करियर विकल्प होने के कई फायदे हैं, जैसे ग्लोबल जॉब मार्केट से जुड़ाव बढ़ना व विदेशी स्तर पर भी नौकरियां उपलब्ध होना। रिमोट और हाइब्रिड जॉब्स में विकल्प होने से युवा अपने समय व रुचि अनुसार सही विकल्प चुन सकते हैं। इस तरह से रोजगार मिलना और भी आसान है। आजकल होने वाली स्किल बेस्ड हायरिंग के कारण, जिसमें डिग्री पर कम तथा प्रतिभा पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जिससे कॉलेज न जाने पर भी अगर युवा में ज्ञान है तो उसके हुनर के बल पर उसे नौकरी मिल सकती है। तकनीक के विकास होने से युवाओं की सोच में भी क्रांति आई है। अब युवा सिर्फ नौकरी पाने के बारे में नहीं सोचता, वो समाज के लिए कुछ बेहतर करने के बारे में भी सोचता है, जिससे अन्य लोगों का भी कल्याण हो। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन चुका है। 2024 तक भारत में 1 लाख से भी ज़्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप थे, जिनमें 50% से ज़्यादा युवाओं द्वारा शुरू किए गए हैं। अनेक स्टार्टअप खुलने से नई रोजगार की उपलब्धताएं बढ़ती हैं और कई नई तकनीकें भी विकसित होती हैं, जो भारत को आगे ले जाने में सहयोग देती हैं। उदाहरण के लिए पेटीएम जैसे भारतीय स्टार्टअप ने भारत में ऑनलाइन पेमेंट्स की लेन देन करना काफ़ी आसान बना दिया था। आजकल बड़े दुकानदारों से लेकर छोटे ठेले वालों पर भी ऑनलाइन भुगतान की सेवा उपलब्ध है, जो कि कैश न होने की समस्या का निवारण भी है। स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया आदि जैसी सरकारी योजनाओं की वित्तीय और कानूनी सहायता स्टार्टअप खोलने में काफ़ी मददगार है। पहले की दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए बड़े शहरों में जाना पड़ता था, किसी मंच का इंतजार करना पड़ता था या मीडिया और पब्लिकेशन हाउस की कृपा पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन आज एक मोबाइल फोन और इंटरनेट कनेक्शन ही पर्याप्त है। तकनीक ने युवाओं को अपनी बात कहने तथा अपनी प्रतिभा दिखाने और पहचान बनाने का खुला मंच दिया है। पहले लेखक को अखबार की मंजूरी चाहिए होती थी, लेकिन अब कोई भी मीडियम, ब्लॉगर इत्यादि जैसी ब्लॉगिंग साइट पर खुद का कॉलम शुरू कर सकता है। पहले गायक या कलाकार को स्टूडियो जाना पड़ता था, लेकिन अब इस ऑनलाइन दुनिया में कोई भी युवा YouTube, Instagram या Spotify पर अपना म्यूजिक खुद अपलोड कर सकता है। आज भारत में हर महीने 20 लाख से ज़्यादा क्रिएटर्स
इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब

शॉर्ट्स बनाकर पैसे कमा रहे हैं। काफ़ी सारी ऑनलाइन फ्रीलैंसिंग वेबसाइट्स जैसे फाइवर, अपवर्क, फ्रीलैंसर इत्यादि ने छात्रों को स्कूल और कॉलेज के दौरान ही कमाई करने का जरिया प्रदान किया है। युवा अब कई ऑनलाइन स्किल्स जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ट्रांसलेशन आदि से हर महीने कमा रहे हैं। तकनीक ने सिर्फ करियर और पढ़ाई की दुनिया नहीं बदली, बल्कि युवाओं का सोचने, बात करने और समाज को देखने के नज़रिए में भी बदलाव किया है। कुछ वर्षों पहले तक युवा सिर्फ अपने आसपास घट रही घटनाओं और कई दिन पूर्व घट चुकी विदेशी घटनाओं तक अखबार के माध्यम से जान पाते थे, लेकिन आज के इस वक्त में युवा इंटरनेट पर कई माध्यम जैसे ट्विटर, रेडिट, पॉडकास्ट इत्यादि से कई मुद्दों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और सही समय पर उस जानकारी का जीवन में सही तरीके से इस्तेमाल करके फर्स्ट मूवर एडवांटेज का फायदा उठा सकते हैं। भारत का युवा अब जलवायु परिवर्तन, युद्ध, मानवाधिकार, मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषयों पर खुलकर अपनी राय रखता है। युवा अब लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म से अब प्रोफेशनल से जुड़ सकते हैं और काफ़ी आसानी से मेंटरशिप, इंटर्नशिप्स और जॉब रेफरल्स पाकर करियर में आगे बढ़ सकते हैं। डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम कम्युनिटीज़ पर लोग सीखते हैं, सवाल पूछते हैं व एक दूसरे की मदद करते हैं। अब एक छात्र दिल्ली में रहकर बेंगलुरु के स्टार्टअप में अपनी प्रतिभा के बल पर इंटर्नशिप या जॉब पा सकता है, सब टेक्नोलॉजी के कारण। पहले जो मुद्दे एक टैबू माने जाते थे, अब उन पर खुलकर बात की जा सकती है। पॉडकास्ट कल्चर और ऑनलाइन कम्युनिटीज़ ने एक डेमोक्रेटाइज्ड डायलॉग को जन्म दिया है। आज का युवा अब सिर्फ फॉलोअर नहीं है, बल्कि उसकी खुद की एक राय है जिससे वह औरों को भी लीड करता है। जहां नई तकनीकों ने युवाओं के जीवन में अनेक प्रकार के द्वार खोलकर उनका जीवन सुगम बनाया है, वहीं उनके जीवन पर कई दुष्प्रभाव भी पड़े हैं जिनका परिणाम काफ़ी नकारात्मक है। आजकल के युवाओं को पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा तनाव होता है, जो कि उनकी कम उम्र में काफ़ी घातक साबित हो सकता है। इंस्टाग्राम रील्स, स्नैपचैट स्ट्रीक्स अथवा यूट्यूब शॉर्ट्स ने युवाओं के मन को एक डोपामिन साइकिल में फंसा दिया है, जहां फ़ोन की हर बजती नोटिफिकेशन के साथ उनका ध्यान टूटता है और नतीजन युवाओं का अटेंशन स्पैन यानी ध्यान अवधि कम हो गई है। युवाओं को अब पढ़ाई में मन नहीं लगता तथा सोशल मीडिया से समय की बर्बादी भी होती है, साथ ही उनकी स्लीप साइकिल भी गड़बड़ होती है। हार्वर्ड की 2023 की एक स्टडी में पाया गया है कि सोशल मीडिया की अत्यधिक लत से युवाओं में एन्जाइटी, कंपैरिजन स्ट्रेस और डिप्रेशन के लक्षण तेजी से बढ़ रहे हैं। आजकल युवा फेस टू फेस बात करने से कतराते हैं क्योंकि उनमें ऑकवर्डनेस बढ़ती जा रही है। आजकल की पूरी दुनिया सिर्फ ऑनलाइन चैट्स, वर्चुअल मीटिंग्स, फ़ोन कॉल्स और कैमरा फिल्टर्स की दुनिया है, जिसने असली रिश्तों को कमज़ोर कर दिया है। इस सब के चलते आजकल के युवा पहले जितने मैच्योर नहीं रहे और उनमें इमोशनल इंटेलिजेंस और दूसरों के प्रति सहानुभूति घट रही है। वह लोगों से जुड़ते तो हैं, लेकिन उन्हें समझना भूल चुके हैं। सोशल मीडिया पर झूठी सफलता भी काफ़ी मशहूर होती है। हर कोई अपनी सक्सेस, लग्जरी और अचीवमेंट्स दिखाता है, जिसे देखने वाला युवा खुद की तुलना उससे करता है और हीन भावना यानी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है। उसके पास मैकबुक है, मेरे पास नहीं। वो कोडिंग से 2 लाख कमा रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ? जैसे विचार मानसिक दबाव पैदा करते हैं, जिससे युवा और ज़्यादा डिमोटिवेट होते हैं और वे अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाते, वह मेहनत करना छोड़ देते हैं। सच्चाई यह है कि जो दिख रहा है वह हमेशा सच नहीं होता, लेकिन इस डिजिटल दुनिया में फ़र्क समझना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। तकनीक जितनी तेज़ी से फैल रही है उतनी खतरनाक भी है। आजकल जितनी तेज़ी से ऑनलाइन फ्रॉड और अपराध जैसे फिशिंग, एक्सटॉर्शन, साइबर बुलिंग और डेटा थेफ्ट भी काफ़ी बढ़ रहे हैं, जिनसे धोखा खाना बहुत आसान है। युवाओं की डिजिटल हाइजीन और फुटप्रिंट का ज्ञान नहीं है, जिससे वे काफ़ी जल्दी शिकार बन जाते हैं। नौजवानों में अवेयरनेस और साइबर लॉस की भारी कमी है। इंटरनेट इस कदर तेज़ी से

0: रहा है कि उस पर कंटेंट की बिल्कुल कमी नहीं है। इतने सारे विकल्पों से युवा कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि उन्हें कौन सी स्किल सीखनी चाहिए या फिर कौन सी जॉब चुननी चाहिए। फायदे की अधिकता भी नुकसान बन सकती है अगर उसके साथ डायरेक्शन ना हो तो। तकनीक और नवाचार एक तलवार की तरह है, एक धार तरक्की की तरफ ले जाती है और दूसरी असंतुलन की खाई में। हमें चाहिए तकनीक की जानकारी के साथ संवेदनशीलता भी बढ़े और उड़ान के साथ जमीन से जुड़ाव भी बना रहे। टेक्नोलॉजी को दोस्त बनाइए लेकिन उसके गुलाम मत बनिए। आज का युग एक ऐसा युग है जिस
1: तकनीकी और नवाचार का युवाओं के जीवन पर प्रभाव। अभी साथी सुन रहे थे यह युवा वार्ता, वार्ताकार थे आदित्य चूड़ामणि।
2: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: और ये अब चलते चलते सुनते हैं ये गीत।

कविता कृष्णमूर्ति के गाए इस गीत के साथ ही आज का युववाणी कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कुछ ही पलों में समाचार होंगे।

0: मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
1: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
0: राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हो गई है। लोकसभा ने यह विधेयक कल पारित कर दिया था। भोजन अवकाश के बाद कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। चर्चा के लिए 7 घंटे आवंटित किए गए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक के अंतर्गत जांच 2 महीने के भीतर और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मुकदमा पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह विधेयक देश के छात्रों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
2: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना कोई समय गवाए घोषणा की है कि किसी भी छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया जा रहा है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके। यदि इसमें सुधार के लिए कोई सुझाव होंगे तो मैं उनका स्वागत करता हूं और उन पर विचार करूंगा।
2: आई विल बी टेकिंग नोट ऑफ इट।
0: पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट हटाने पर मेटा ने खेद व्यक्त किया है। नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव एस कृष्णन ने कहा कि मेटा ने इस घटना पर अफसोस जताते हुए सरकार को पत्र लिखा है। श्री कृष्णन ने मेटा के वरिष्ठ प्रतिनिधियों को इस घटना के कारण बताने को कहा है। बिहार की बांकीपुर, गुजरात की मंजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान समाप्त हो गया है। शाम 5 बजे तक बांकीपुर और मंजलपुर में लगभग 34% और दतिया में 69% से अधिक मतदान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों से मुलाकात की। इस दौरान दोनों राज्यों में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने में राज्यों की सहायता करना जारी रखेगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम 2026 की विजेता परगना मांझी और पद्म पुरस्कार विजेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने कहा कि बस्तर पांडुप जैसे आयोजनों ने युवाओं को उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि ऐसे आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और रोजगार के अवसर सृजित करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई, कोयम्बटूर, हैदराबाद और मुंबई में वर्ष 2022 में कोयम्बटूर बम धमाकों से जुड़े अवैध धन शोधन मामले में 16 स्थानों पर तलाशी ली। फिदाइन आतंकी जमीशा मुबीन और इस्लामिक स्टेट से जुड़े कई आतंकियों की इन हमलों में संलिप्तता पाई गई है। हमलों में विस्फोटक से भरी एक कार का इस्तेमाल किया गया था। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 274 अंक बढ़कर 77,928 पर बंद हुआ। निफ्टी 67 अंक बढ़कर 24,317 पर बंद हुआ। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आज भी प्रदर्शन जारी रहे। सोमवार को शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई में 40 से अधिक लोग मारे गए थे। जम्मू कश्मीर संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी ने सुरक्षा बलों पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ घातक बल प्रयोग का आरोप लगाया है। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज राष्ट्रमंडल खेलों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बनाई है। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन के दौरान अरुणाचल प्रदेश, केरल, माहे और राजस्थान में गरज चमक के साथ तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं और अब प्रस्तुत है हमारे यहाँ से आज शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

आज रात 8 बजे संसद समीक्षा होगी। रात 9:30 पर कंट्री वाइड कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इनसाइट्स प्रोग्राम का प्रसारण होगा रात 9:45 पर। रात 10 बजे संसद में प्रश्नकाल की कार्रवाई की रिकॉर्डिंग का प्रसारित किया जाएगा और ये सभी कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

अब से कुछ देर बाद संध्या 6:15 पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किसान वाणी कार्यक्रम होगा, जिसमें आज किसान क्रेडिट कार्ड पर चर्चा करेंगे नीलमणि शर्मा। ओबी आधारित भेंटवार्ता होगी। कृषका ऐप पर अभिषेक शुक्ला से बातचीत करेंगे दीपक गोस्वामी। एक और भेंटवार्ता, कृषि आदान खरीदते समय सावधानियां। वार्ताकार होंगे विजय कुमार रावत और आपसे भेंट करेंगे विजय सिंह नौलखा। इसके अलावा कुछ लोकगीत होंगे, साथ ही मौसम का हाल और बाजार भाव बताया जाएगा। समय रहेगा संध्या 6:15।

फिल्मी भक्ति रचनाओं पर आधारित कार्यक्रम संध्या वंदन का समय रहेगा आज सायं 6:45। शाम 7:05 पर ब्रज साहित्य कार्यक्रम में दे समारोह में श्रोता लेंगे जानकारी पर्यटन स्थल हरिद्वार के विषय में। वार्ताकार होंगे नरेंद्र कुमार शर्मा।

प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी लखनऊ से रिले करेंगे संध्या 7:20 पर। श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम होगा शाम सुहानी संध्या 7:31 पर। एक ही फिल्म से कार्यक्रम होगा आज रात 8:30 पर। चितपट संगीत का कार्यक्रम सुहानी तराने का समय रहेगा रात 9:15।

देशकान का समय रहेगा रात 8:15 और अब से कुछ देर बाद संध्या 6:10 पर हिंदी समाचारों का समय रहेगा रात 8:45 और रात्रि 11:00। अंग्रेजी समाचार होंगे रात 9:00 और रात्रि 11:05 पर। हमारी दूसरी सभा का समापन होगा रात 11:10 पर। यह था आज का कार्यक्रम विवरण।

FM 102.2 मेगा हर्ट्स पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है और अब प्रस्तुत है देशभक्ति पर कृष्णा।

योगेश श्रीवास्तव की शब्द रचना भी आपने सुनी। एफएम 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। और अब श्रोता सुनेंगे किसान मणि कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत

0: क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो।
1: क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ, ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं, और इसमें लागत भी कम है।
0: जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं
1: और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-1801551 पर कॉल करें और लॉग इन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी
3: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना
4: मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भैया को राम राम। भैया, जैसे कि हम सभी जाने हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारी अर्थव्यवस्था को आधार किसान है। किसान पूरे वर्ष मेहनत करके अन्न, फल, सब्जी और दूसरे कृषि उत्पाद तैयार करे हैं, पर खेती के लिए समय समय पर बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई, मशीनरी और मजदूरी के लिए धन की आवश्यकता होवे है। अगर समय पर धन उपलब्ध ना हो तो किसान साहूकारन ते ऊंचे ब्याज पे ऋण लेवे को मजबूर है जामे हैं। जा समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड KCC की योजना शुरू करी। भैया, किसान क्रेडिट कार्ड एक ऐसी बैंकिंग सुविधा है जाके माध्यम से किसान भैयान को खेती और वाते जुड़े कामन के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाए है। जा योजना को उद्देश्य किसान भैयान को समय पर आर्थिक सहायता देवो, खेती की लागत कम करवो और इनकी आय बढ़ावे में सहयोग करना है। किसान क्रेडिट कार्ड से किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई और कृषि उपकरण की व्यवस्था समय पर कर सके हैं, जाते खेती को काम बिना काई रुकावट के चले है। पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन जैसे कृषि से जुड़े व्यवसाय में भी जाको लाभ लियो जा सके है। समय पर ऋण चुकावे वाले किसान भैयान को ब्याज में सरकारी सहायता भी मिले है, जाते भी इनकी आर्थिक बचत हुए है। किसान क्रेडिट कार्ड जो हुए है वहाँ का उपयोग केवल कृषि और कृषि से जुड़े कामन के लिए ही करो जाए हैं। ऋण को सही उपयोग और समय पर भुगतान करवे थे किसानन की बैंक में अच्छी साख बने हैं और भविष्य में हूँ आवश्यकता पड़वे पर आसानी से इनको ऋण मिल जाए है। यानी किसान क्रेडिट कार्ड केवल ऋण लेवे को साधन ना है बल्कि किसानन को आर्थिक सुरक्षा को मजबूत आधार है। अगर किसान जाको सही उपयोग करें, समय पर ऋण को भुगतान करें और आधुनिक खेती की तकनीकन को अपनावें तो खेती ज़्यादा लाभकारी बन सके है। आत्मनिर्भर किसान की समृद्ध गांव और विकसित भारत की पहचान है। जाने प्रत्येक पात्र किसान को किसान क्रेडिट कार्ड को लाभ जरूर लेना चाहिए। समृद्ध किसान, सशक्त भारत। किसान क्रेडिट कार्ड हर किसान को अधिकार है। भैया, जा प्रकार किसान क्रेडिट कार्ड किसान को समय पर आर्थिक सहायता

0: दे के खेती को सुचारू रूप से चलावे में महत्वपूर्ण भूमिका निभावे है, पर केवल आर्थिक संसाधन ही पर्याप्त ना है, आज के समय में सही जानकारी और आधुनिक तकनीक भी उतनी ही जरूरी है। यही कारण है कि अब सरकार किसानों तक वैज्ञानिक सलाह और कृषि संबंधी नवीनतम जानकारी पहुंचावे के लिए डिजिटल माध्यमन को भी बढ़ावा दे रही है। इन्हीं प्रयासन में एक महत्वपूर्ण पहल है कृषि का ऐप। कृषि का ऐप किसानन के लिए एक उपयोगी डिजिटल साथी है, जाके माध्यम से किसान फसलन की उन्नत किस्म, मौसम की जानकारी, कीट और रोग प्रबंधन, उर्वरक प्रबंधन, कृषि विशेषज्ञ की सलाह और विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सके हैं। तो आओ चाय की अधिक जानकारी के लिए हम आपको एक भेंटवार्ता सुनवा में ओबी आधारित कृषि का ऐप अभिषेक शुक्लाते भेंट कर रहे हैं दीपक गोस्वामी।
1: आज का समय है नई तकनीक का, और इस नई तकनीक के दौर में किसानों को भी नई तकनीक के साथ जुड़ना चाहिए, खासकर बैंकिंग आवश्यकताओं के लिए। तो आज हमारे साथ हैं श्री अभिषेक शुक्ला जी, जो कि जिला विकास प्रबंधक हैं नाबार्ड। नाबार्ड एक ऐसी संस्था जो भारत सरकार के द्वारा खासकर किसानों के हित के लिए, उनके कल्याण के लिए चलती है। तो आज हम अभिषेक शुक्ला जी से जानना चाहेंगे कि ये जो नई तकनीक का दौर है, खासकर वित्तीय अनुशासन से संबंधित, ऐसे में कौन कौन से ऐप मौजूद हैं और किसान भाई उसका कैसे लाभ ले सकते हैं।
2: नमस्कार, सभी श्रोतागण को मेरा हार्दिक अभिनंदन। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने किसानों को ऋण प्रदान करने के क्षेत्र में कई सारे नवाचार किए हैं, जिनमें से एक प्रमुख नवाचार इस समय भारत सरकार द्वारा निर्मित एक ऐप है, कृषिका ऐप। इस कृषिका ऐप के माध्यम से जो भी किसान भाई बंधु हैं, जो चाहते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकें, उसके अंतर्गत आने वाले ऋण का फायदा उठा सकें, वो अब कृषिका ऐप के माध्यम से घर बैठे ये ऋण की सुविधा ले सकते हैं। सिंपल आधार बेस्ड, फोन नंबर बेस्ड, आपका ओटीपी के माध्यम से आप उसमें लॉग इन कर सकते हैं। लॉग इन के करने के बाद आप घर बैठे ही अपनी जो डिटेल्स, जिसमें क्या कहते हैं आपका कितनी जोत है, आपकी क्या चल अचल संपत्तियां हैं, कितने का आपके ऋण की आवश्यकता है, कि आप फसल बो रहे हैं, ये सब उसी ऐप में घर बैठे आप एंट्री करेंगे और आपका जो हर जनपद के जैसा जो वित्तमान निर्धारित होता है उसके अनुसार और आपकी जोत के अनुसार एक लिमिट बन जाएगी। इसमें किसान फिर ये भी डाल सकता है कि भाई मेरे को कितने ऋण की आवश्यकता है, और उसके अनुसार जो कहते हैं ऋण का टोटल अमाउंट है वो बनेगा। बैंक घर बैठे चयन कर सकता है कि भाई मैं किस बैंक में मेरा खाता है, जहां से मैं ये केसीसी की ऋण सीमा लेना चाहूंगा, और उसके पश्चात जो एप्लीकेशन है उसी में आप अपना खसरा खतौनी भी संलग्न कर सकते हैं। और एक बार जब एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है बैंक को, तब जो लाभार्थी है, जो किसान भाई बंधु है, वो उस बैंक में जाके अपने जो दस्तावेज है फिजिकल फॉर्म में प्रदान करके अपना ऋण सीमा स्वीकृत करवा सकता है।
1: तो कुल मिला के अगर कहा जाए तो जो किसान बैंकों के चक्कर लगाते थे, परेशान होते थे, बार बार बीच के लोगों की आवश्यकता पड़ती थी उनके काम में मदद करें, उसके लिए सरकार के द्वारा एक ऐसा माध्यम निकाला गया है कृषिका ऐप, जिसके माध्यम से किसान भाई अपने घर बैठे अपने कृषि से संबंधित जो कार्य हैं उनके लिए जो आप ऋण लेते हैं वो आप ऋण ले सकते हैं। तो और इसके बारे में थोड़ा सा आप विस्तार से ये बताएं कि इसका लाभ हमारे किसान भाई कैसे ले सकते हैं, और ये योजना किसान क्रेडिट कार्ड का भी थोड़ा सा आप इसमें जानकारी अवश्य दें, क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड में अब नए नए विकल्प आ चुके हैं।
2: जी देखिये, किसान क्रेडिट कार्ड, पहले तो मैं किसान क्रेडिट कार्ड की ही थोड़ी सी आपको भूमिका बता दूं। किसान क्रेडिट कार्ड में जो हमारे किसान भाई बंधु हैं वो अपनी रोजमर्रा की आवश्यकता के लिए, जैसे अगर खेती कर रहे हैं तो उसमें जो हमारा खाद बीज जो पड़ेगा उसके लिए जो हमें पैसे की आवश्यकता पड़ती है, भाई हमारे दिन के जो दैनिक दिनचर्या के कार्य हैं उसको करने के लिए, अगर हम लोग पशुपालन कर रहे हैं तो पशु के दाने चारे के लिए जो हमें ऋण पैसे की आवश्यकता पड़ती है उसके लिए बड़े सस्ते ब्याज दरों पे बैंक से ऋण ले सकते हैं, जिसके अंतर्गत ये केसीसी का कंसेप्ट आया था। इस केसीसी के कंसेप्ट के अंतर्गत जो ब्याज दर है वो 7% पे निर्धारित है। अगर यही केसीसी का सही समय पे किसान वापस

0: पैसा चुकाता है तो उसको उसमें 3% का ब्याज दरों में भी छूट मिलती है। तो एक तरह से आप बोल सकते हैं केवल 4% की ब्याज दर पे किसान ये केसीसी ऋण सीमा का सुविधा उठा सकता है। जैसा कि मैंने पहले बोला, ये हमारे फसलों के लिए भी है, ये हमारे पशुपालन के लिए भी किसानों के लिए उपयोगी साबित होती है।
1: पशुपालन का अभी बहुत ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं कि अगर किसान क्रेडिट कार्ड में पशुपालन के लिए किन किन चीजों के लिए मिलेगा और उसको प्रक्रिया क्या।
0: देखिए, एक साधारणता भ्रांति है कि किसान या किसान भाई बंधुओं को लगता है कि जो हमें केसीसी के अंतर्गत ऋण मिलना है वो नए पशुओं को खरीदने के लिए मिलना है। ये चीज का ध्यान रखें, ये नए पशुओं के लिए नहीं खरीदने के लिए है, ये पशुओं के दाने चारे के लिए है, टीकाकरण करवाना उनके लिए, उनके खाने के लिए सामग्री खरीदने का है, इन सब चीजों के लिए। किसानों के चारे के लिए मशीन हो गई, चारा खरीदना हो गया, इन सब चीजों के लिए जो आवश्यकता पड़ती है उसके लिए आपकी केसीसी पशुपालन की ऋण सीमा निर्धारित की जाती है, जिसकी सुविधा किसान उठा सकते हैं। और जो नियम शर्तें हमारी फसल ऋण में होती है, जो अधिकतर किसान भाई बंधु इसका उपयोग कर रहे हैं, उन्हीं नियम शर्तों के अंतर्गत हमारा केसीसी पशुपालन भी हो जाता है। उसी केसीसी लिमिट के अंदर एक सब लिमिट बन जाती है केसीसी पशुपालन के लिए।
1: यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने खेत के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया है वही व्यक्ति पशुपालन के लिए भी ले सकता है अलग से?
0: हाँ, अगर उसके घर में कोई गाय भैंस भेड़ बकरी कुछ भी बंधी हुई है उसके लिए वो केसीसी पशुपालन की ऋण सीमा का उपयोग कर सकता है। हर अलग अलग पशुओं के लिए, मतलब जैसे गाय के लिए भैंस के लिए 70,000 के आसपास का वित्तमान निर्धारित है जनपद में। अगर उसके पास एक गाय भैंस है तो उसको 70,000 रूपये की लिमिट मैक्सिमम बन सकती है। अगर उसके पास दो है तो 1,40,000 की ऋण सीमा बन जाती है। इसी तरह गाय भैंस के लिए भी, गाय भैंस बकरी, यहां तक कि अगर वो मत्स्य पालन कर रहा है तो उसके लिए भी केसीसी पशुपालन की ऋण सीमा बन सकती है।
1: अच्छा, ये तो ऋण की बात हो गई, अब इसमें एक छूट की बात भी आती है अगर समय से हम पैसा वापस करें। इसमें भी बड़ी भ्रांतियां हैं लोगों के दिमाग में, तो ये सही क्या है, इसका सही विषय क्या है?
0: देखिये, अगर किसान सही समय पे पैसा वापस कर रहा है, ब्याज दर होती है वो 7% पे होती है, और क्या कहते हैं, अगर वो सही समय पे पैसे वापस करता है तो उसको 3% की छूट मिल जाती है, जिसको 4% पे उसको, मतलब अंततः ये होता है कि भाई उसे 4% ही देने पड़ते हैं, 3% की छूट उसके खाते में।
1: यानी कितने दिनों में अगर किसान वापस कर दे तो उसको छूट मिल जाती है?
0: सैंक्शन लेटर में दिया रहता है, उनके सैंक्शन लेटर में दिया रहता है कि भाई किस हिसाब से होता है।
1: सामान्यतः
0: साल भर में उसको एक बार पूरा पैसा वापस कर देना पड़ता
1: है। तो अगर किसान भाई समय पे वापस करेंगे तो इसमें जो ऋण मिलता है, उस ऋण पे जो ब्याज मिल रही है, उस ब्याज की राशि में, जैसे आपने बताया, जो छूट है वो भारत सरकार के द्वारा किसान के खाते में दी जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, अगर किसान भाई समय से अपने ऋण को वापस करना सीख लें तो जो सरकार से जो छूट मिल रही है वो उनके खाते में आ जाएगी।
0: वो उनके खाते में छूट आ जाएगी। आगे कभी आप लोन ले रहे हैं तो उसको भी आपका फायदा मिलेगा, आपका सिबिल स्कोर अच्छा हो जाता है, जिससे बैंक देखता है कि भाई इन्होंने केसीसी की ऋण सीमा का पैसा वापस बिल्कुल सही समय पे किया था, पूरा पैसा वापस किया था, इसलिए ये आगे और भी ऋण के लिए हकदार हो जाते हैं, उनका सिबिल स्कोर अच्छा होता है, जिससे बैंक को भी आगे उनको लोन देने में सुविधा आती है।
1: तो ये जो कृषका के बारे में आपने बताया था, ये गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के कोई भी किसान भाई इसको, मतलब अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, ये पूर्णतः सुरक्षित है।
0: भारत सरकार द्वारा इसकी देखरेख करी जा रही है, इसका मेंटेनेंस किया जा रहा है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर कृषि का ऐप के माध्यम से केसीसी ऋण का आवेदन कर सकते हैं।
1: तो ये थे हमारे साथ में श्री अभिषेक शुक्ला जी, जिन्होंने बहुत अच्छी हमें जानकारी दी। आदरणीय शुक्ला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कृषि का ऐप, अभी आपने सुनी ये भेंट वार्ता, अभिषेक शुक्ला से भेंट करता है दीपक गोस्वामी। भैया, आज से पावन सावन मास का शुभारंभ है गया है। सावन भारतीय लोक जीवन का सबसे उल्लासपूर्ण और मन भावन महीना मानो जाए है। चारों ओर हरियाली, रिमझिम वर्षा, पेड़न पर पड़े झूला और प्रकृति की अनुपम छटा मन को आनंद से भर देवे है। जाय ऋतु में हमारे लोकगीत ग्रामीण संस्कृति, प्रकृति प्रेम और पारिवारिक स्नेह की मधुर अभिव्यक्ति बन के गूंज उठे हैं। अपने ब्रज आंचल का प्रसिद्ध लोकगीत हिंडोला कुंज भंडारोरी सावन की जाय मादकता और उल्लास को स्वर देवे है। जा गीत में कुंजन में पड़े झूला, हरियाली और सावन की उमंग को अत्यंत चुतन हम देख सके हैं। तो आओ सावन की जाय सुहानी अनुभूति के संग सुने ये मधुर लोकगीत। गाय वंदना त्रिवेदी।

0: है। सबसे पहले हमेशा अधिकृत विक्रेता से ही कृषि उत्पाद खरीदें और खरीद को पक्को बिल जरूर ले लें। मैं बिना बिल के काई भी शिकायत को समाधान कठिन है सके है। बीज खरीदते समय पैकेट पर फसल को नाम, किस्म, अंकुरण प्रतिशत, बैच नंबर, उत्पादन और समाप्ति तिथि और प्रमाणम को जो चिन्ह है वो जरूर देख लें। मैं यदि काई उत्पाद की कीमत असामान्य रूप से कम हो या इनकी गुणवत्ता संदिग्ध लगे तो भाई खरीदते बचें। यानी बहुत सारी बातें जिनको कि हमें ध्यान रखना है। तो जाई विषय पे हम आपको एक और भेंटवार्ता सुनवा रहे हैं। कृषि आदान खरीदते समय सावधानियां, विजय कुमार रावत के संग भेंट करता है विजय सिंह नौलखा।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाइयों को हमारी राम राम। किसान भाइयों, आपने अक्सर देखा होगा कि हम जब अपने कृषि आदान खरीदते हैं तो अपने नज़दीक की जो दुकानदार है उससे खरीदते हैं। कई बार ऐसा होता है कि चाहे आप दवाई खरीद रहे हों, बीज हो, खाद हो या और दूसरे रसायन हो, कृषि रसायन जिनका हम प्रयोग अपनी खेतीबाड़ी में करते हैं, वो कभी-कभी नकली आ जाते हैं। तो ऐसे उत्पादों की हम पहचान कैसे करें? या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि अगर हम कोई चीज़ बाजार से खरीदने जाते हैं, जैसे खाद या बीज या फिर कृषि रसायन, तो हमें कौन-कौन सी सावधानियों का पालन करना चाहिए? तो इस विषय में आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जानकारी देने के लिए विजय रावत जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और रावत जी, एक लंबे समय से इस कृषि आदानों के क्रय विक्रय से संबंधित हैं, एक लंबा अनुभव है इनके पास। तो यह रावत जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। राम राम सा। तो
2: राम राम साहब।
1: रावत जी, आप तो चूंकि बहुत दिनों से इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, अक्सर किसान भाई जो चीज़ों में धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं, तो उसमें कौन कौन से ऐसे उत्पाद हैं जिसमें कभी कभी मिलावट का या नकली उत्पाद मिल सकता है?
2: कृषि उत्पादन हमारे बढ़ाने में जो मुख्य आदानों का इस्तेमाल होता है उसमें उर्वरक मुख्य भूमिका निभाते हैं।
1: जी
2: उत्पादन बढ़ाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसका जो प्रयोग करते हैं किसान वो सबसे अधिक करते हैं और इसमें किसान का जो पैसा लगता है वो भी सबसे अधिक लगता है। इसलिए हमें सावधानी रखनी चाहिए कि हमें जो DAP, जो यूरिया, जिंक सल्फेट मिल रहा है उसमें किसी तरह की मिलावट ना हो। इसके कुछ छोटे छोटे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसे देखकर हम पहचान कर सकते हैं कि इसमें मिलावट है या नहीं। सबसे पहले मैं बात करूंगा यूरिया की। यूरिया में नाइट्रोजन होती है 40% और ये सफ़ेद चमकदार एक कणकार एक छोटा
1: दानेदार
2: दानेदार होता है। जब हम इसको हाथ पे लेकर थोड़े से दाने लेकर पानी डालेंगे तो थोड़ी देर बाद हमें ठंडक महसूस होगी, तो इससे पता लग जाता है कि यूरिया असली है। या इसको हम तवे पर गर्म करते हैं तो ये पानी बन जाता है और कुछ समय बाद भाप बन के उड़ जाता है, इससे पता लगता है कि हमारा यूरिया असली है। दूसरा हमारा मुख्य जो इस्तेमाल होता है वो नाइट्रोजन और फास्फेटिक उर्वरक है, जिसको हम DAP के नाम से, डाइमोनियम फास्फेट के नाम से जानते हैं।
1: जी
2: इसके जो कण होते हैं वो उभरे हुए होते हैं, भूरे, कत्थई रंग के, काले रंग के होते हैं। इसकी पहचान हम या तो इसको हम थोड़ा गर्म करेंगे तो फूल के दुगना हो जाता है, इसकी पहचान है। और दूसरा, या इसको ज़मीन पर डालें और जूते से दबाव देकर इसको घिसेंगे तो टूटेगा नहीं आसानी से। तीसरा जो किसान काफ़ी यूज़ करते हैं कि DAP लेंगे मुट्ठी में और उसमें फूंक मारेंगे 4-5 दफ़े, तो असली होगा तो वो पसीज जाएगा, सीला सा हो जाएगा, उसको हाथ पे महसूस होगा कि सीलन सी महसूस हो रही है, तो वो असली DAP है। चौथा हम जो देख सकते हैं, इसमें चूना मिलाएंगे और चूना लेके इसको रगड़ेंगे,
1: चूना
2: तो
1: जो पान में खाते
2: पान
1: हुए
2: में खाते हैं सफेद चूना, वो उसको रगड़ेंगे हथेली पे लेके DAP के साथ में, तो उसमें एक विशेष प्रकार की गंध आएगी।
1: जी
2: ये
1: जी
2: पक्की पहचान है कि आप DAP इस्तेमाल अच्छा कर रहे हैं। उसके बाद हमारा तीसरा जो चीज है वो है पोटास। पोटास का अधिकतर आलू में ज्यादा प्रयोग होता है, वैसे सभी सब्जियों में इस्तेमाल करना चाहिए। और पोटास एक फसल में ट्रांसपोर्ट का काम करता है, जो तत्व जमीन में पड़े हुए हैं उनको पेड़ों तक कैसे पहुंचाया जाए वो हमारा पोटास ही काम करता है। इसलिए पोटास भी जरूरी उपादान है, एक एक अच्छा उर्वरक है खेती में, इसका अधिक प्रयोग किया जाता है। इसके लिए पहचान करने के लिए, ये असल में एक तो जैसे नमक जैसे कण होते इस तरह का होता है और बालू का लाल रंग होता है या मिर्ची जैसा होता है इस तरह का होता है। अब इसकी पहचान करने के लिए इसमें सबसे ज्यादा मिलावट होती है वो बालू की होती है, और दूसरा इसमें जो मिलाया जाता है वो लाल रंग का कोई कण होते हैं पत्थर के, वो मिला दिए जाते हैं
1: जी जी।
2: बालू के अलावा पिसा हुआ नमक मिला दिया जाता है, इसलिए मिलावट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, पोटास में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो इसके लिए पहचान करने के लिए एक तो ये थोड़ा सा जैसे यूरिया से ठंडक महसूस होती है, इससे भी ठंडक महसूस होती है।

तो भैया आपने आनंद लियो जा लोकगीत को गा रही वंदना त्रिवेदी। भैया अच्छी फसल के लिए केवल मेहनत ही ना है बल्कि सही कृषि उत्पादन को चयन भी बहुत महत्वपूर्ण है। बीज उर्वरक कीटनाशक या दूसरे कृषि आदान खरीदते समय कई ऐसी बातें जिनको कि हमें ध्यान रख

0: पूर्णतः पानी में घुलनशील होता है। अब इसको पानी में घोलेंगे तो इसके जो लाल कण हैं वो ऊपर तैरने लगेंगे, इसकी
1: जी
0: पक्की पहचान है,
1: जो असली होगा
0: असली होगा, उसके लाल कण इसके तैरने लगेंगे पानी में घोलने, पता लग जाएगा, गिलास में घोलेंगे तैरने लगेंगे, और जिसमें मिलावट होगी वो तत्व नीचे बैठ जाएंगे, तो इसे पता लग जाएगा, शीशे में घोलेंगे, कांच के गिलास में शीशे में, तो देखने से पता लग जाएगा इसमें मिलावट है।
1: जी जी
0: चौथा आता है जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट में क्या होता है कि उसमें मैग्नीशियम वो मिलावट की जाती है, तो मैग्नीशियम के लिए क्या करेंगे कि ऐसे एक तो ठंडक महसूस नहीं होती इससे जैसे इसको लेंगे, और दूसरा इसको अगर इसमें गर्म लौ में डालते हैं तो लौ पीली हो जाती है, इसे डालेंगे गर्म लौ में डालेंगे तो पीलापन आ जाएगा उसमें लौ में, तो उससे पता लग जाएगा। अब अगली बात करते हैं बीज की। बीज के लिए सबसे पहली बात है कि उसमें अनुवांशिक शुद्धता हो, उसके लिए देखना बड़ा मुश्किल है, वो तो जब फसल खड़ी होती है तभी पता लगता है कि इसमें और किसी वैरायटी के लक्षण नहीं है, वो फसल देखने के बाद
1: यानी जो वैरायटी आपने ली है परम वो उसमें पौधे जितने भी हैं सब उसी वैरायटी के गुण धर्म के अनुसार के पौधे हैं।
0: हाँ, जी। ये वो पता लगेगा, बीज को देखने से नहीं पता लग पाता है, पर जब फसल खड़ी होती है तब पता लगता है कि उसकी जो अनुवांशिक शुद्धता है वो वही है, जो उस वैरायटी में जो लक्षण है वही लक्षण आ रहे हैं, वो जब पता लगेगी। और दूसरा, बीज को अगर आप आंखों से देखना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं, एक तो उसका आकार समान होना चाहिए, दूसरा उसमें खरपतवार के बीज नहीं होने चाहिए, और तीसरा देखेंगे तो बीज की जो जो कलर है वो सेम आना चाहिए, एक सा बीज कलर होना चाहिए, ये क्योंकि अलग दूसरी वैरायटी का बीज होगा तो वो थोड़ा सा उसके आकार में भी फर्क होगा, उसके रंग में भी फर्क होगा।
1: रावत जी, कई बार तो हम सब्जियों के जैसे बीज लेने जाते हैं उसमें कलर करके बीज दे देते हैं उसमें, तो जैसे आप ये टिंडे के बीज ले जाएं तो कलर होता है उसमें, अगर डालोगे भी तो कलर छूटता है उसमें।
0: ऐसा होता है, कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जो उसको उपचार के लिए मिलाई जाती हैं, वो कलर होता है उनमें, तो और जैसे कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं जो घटिया सामान बेचते हैं या जो कंपनी है वो उसके दोष को छुपाने के लिए कलर मिला देती हैं।
1: जी जी,
0: जैसे उसमें काले रंग के बीज हैं जो कि मृत हैं, वो उगेंगे ही नहीं, उसको छुपाने के लिए कलर मिला देंगे, तो उसको अगर पानी में डालेंगे तो कलर अलग दिख जाएगा, अलग हो जाएगा, और बीज है उसकी क्लियर पोजिशन सामने आ जाएगी बीज की।
1: एक चीज यहाँ पे आती है, आपने बताया, एक मोटी जानकारी दी, किसान भाई अगर उर्वरक खरीदने जाते हैं तो उसमें आप खुद भी देख सकते हैं और उसको जांच करने के पश्चात आप लें। एक सामान्य आदमी, एक सामान्य किसान जो है ज्यादातर अपने पास की दुकान से वो लेता है अपने कृषि आदान, और उसके बाद जो है वो जैसा दुकानदार बता देता है ज्यादातर वो कृषि संबंधी समस्याओं का निराकरण भी उसी से करवाते हैं जो दुकानदार होता है। कोई बीमारी आ रही है या कोई इस तरह की खेत में समस्या है उसको बताते हैं, उसके अनुसार वो दवाई का भी करता है। खास तौर पे जो हमारे कृषि रसायन है इनमें अक्सर सुनने में भी आता है, किसान भाई भी हमको फीडबैक देते हैं कि वो नकली दवाई लिया है कोई फर्क नहीं पड़ा। तो खास तौर पे अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो दवाई खरीदने जा रहा है तो उसको विशेष तौर पे किन मोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि भाई मैं अगर कोई भी कृषि आदान हम कहीं से खरीदते हैं तो चार पांच ऐसी बातें हों जिससे धोखाधड़ी अगर पूरी तरह से नहीं बच रहा है तो बहुत सारी संभावनाएं ऐसी हों कि धोखाधड़ी कम से कम हो।
0: देखिए, मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये दवा का जो व्यवसाय बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, हमको करते करीब इसको 30 साल हो चुके हैं।
1: जी,
0: पहले तो मैं किसान से ही कहना चाहूँगा किसी भी प्रतिष्ठित दुकान से दवा खरीदें, ऐसा नहीं चाहे यहाँ से खरीद लें, क्योंकि वो कुछ समय के लिए दवा बेचते हैं सीजन में, उसके बाद बैठे आते हैं, और उनके पास नकली दवाई बेचने वाले, सस्ती दवाई बेचने वाले वो उन लोगों के पास ज्यादा आते हैं। तो पहला मेरा सुझाव यही है कि जो भी जिले की या आपके क्षेत्र की जो प्रतिष्ठित दुकान है, पुरानी दुकान है, उनसे खरीदें, क्योंकि कोई भी दुकानदार पुरानी दुकान लेके बैठा है वो अपनी प्रतिष्ठा को खराब नहीं करेगा, नकली चीज बेच के खराब नहीं करेगा। और दूसरा मेरा एक सुझाव है कि सारे किसान जानते हैं आज के टाइम में कोई ऐसा नहीं है, सबके पास मोबाइल है, कि किस कंपनी की दवा बढ़िया है, कौन सी अच्छी कंपनी है, दुकान तो देखें ही देखें प्रतिष्ठित है कि नहीं है, पर कंपनी देखें कंपनी प्रतिष्ठित है कि नहीं है, कंपनी का पीछे से उसका वजूद क्या है, बढ़िया कंपनी है, कितने साल से चल रही है, और सब लोग जानते हैं कौन सी कंपनी बढ़िया है। मैं नाम ना लेके यहाँ पे बताना चाहूंगा कि किसान सब जानते हैं, तो अच्छी कंपनी का खरीदें, बाकी आप शीशी देख के बोतल देख के नहीं पता लगा सकते कि ये नकली है असली है, आप नहीं पता कर सकते।
1: हाँ, यानी पैकिंग देख के आप इस बात का निर्धारण नहीं कर सकते कि ये नकली है,
0: उसका तो एनालिसिस होता है तभी लेबोरेटरी में जाके तभी पता लगता है। इसके लिए कृषि विभाग बैठा हुआ है हमारा, वो टाइम टू टाइम सब दुकानों पर जाते सैंपल लेते हैं, उसका रिजल्ट आता है एक महीने में, और अगर वो अधोमानक होता है सैंपल तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाती है।
2: कृषि आदान खरीदते समय सावधानियां, जा विषय पर अभी आपने ये भेंट

वार्ता सुनी। विजय कुमार रावत के संग भेंट करता है विजय सिंह नौलखा और भैया घड़ी की सुई इशारों कर रही है कि हम कार्यक्रम को विराम दें में, तो सब बहन भैया को राम राम। यह कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

अभी श्रोता सुन रहे थे किसानवाणी कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत किया नीलमणि शर्मा ने। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। और अब प्रस्तुत है फिल्मी भक्ति रचनाओं पर आधारित कार्यक्रम संध्या वंदन।

हरी हर नौ साथियों को अभी आपने सुना फिल्म थी चार धाम, बोल उदय शंकर पाणिग्य थे, धुन तैयार की थी सुरेंद्र कोहली ने।

आनंद बख्शी की शब्द रचना अभी आपने सुनी लता मंगेशकर के स्वर में। फिल्म थी महबूबा। संगीत दिया था आर डी बर्मन ने।

0: अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण और साथियों को अभी आपने सुना। फिल्म थी वैष्णवी माँ की महिमा, बोल पंडित किरण मिश्रा के थे, धुन तैयार की थी सुरेंद्र कोहली ने। इस भक्ति रचना के साथ ही आज का संध्या वंदन कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।
1: जल्दी चलो, मेरी फ्लाइट है।
2: आराम से मैडम।
1: क्या
2: आराम से पहुंचेंगे मैडम? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यमुना एक्सप्रेसवे से जो जुड़ा हुआ है। नो ट्रैफिक, नो टेंशन,
3: इजी एक्सेस एंड सीमलेस ट्रैवल। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
4: हर बिजनेस ट्रिप को चाहिए एक स्मूथ स्टार्ट। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ्लाइट्स शुरू हो चुके हैं, सो डोंट वेट, बुक टुडे और बनाओ अपना ट्रैवल और भी कन्वीनियंट फास्टर कनेक्टिविटी के साथ। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वेयर ड्रीम्स टेक ऑफ।
0: FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। साहित्य कार्यक्रम में आज देश समारोह में लेते हैं जानकारी पर्यटन स्थल हरिद्वार के विषय में। वार्ताकार हैं नरेंद्र कुमार शर्मा।
5: नमस्कार। हरिद्वार जिला भारत के उत्तराखंड राज्य को एक धार्मिक स्थल है और जे नगर निगम बोर्ड है। हिंदी में हरिद्वार को अर्थ ईश्वर को द्वार हुए है। हरिद्वार हिंदू के सात पवित्र स्थानन में से एक है। समुद्र तल से 3139 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अपने स्रोत गौमुख गंगोत्री हिमनद से 253 किलोमीटर की यात्रा करके गंगा नदी हरिद्वार में गंगा के मैदानी क्षेत्रन में प्रवेश हुए है। या कारण से हरिद्वार को गंगा के द्वार के नाम से जानो जावे है। जाको अर्थ है वो स्थान जहां सो गंगा मैया मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करे है। हिंदू पौराणिक कथान के आधार सो हरिद्वार वो स्थान है जहां अमृत की कछु बूंद भूल सो घड़ा में ते गिर गई। जा समय खगोलीय पक्षी गरुण जीबा घड़ा को समुद्र मंथन के बाद ले जा रहे थे। चार स्थानन पे अमृत की बूंद गिरी हती और जे जा प्रकार सो हैं उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयाग। चार जे स्थान वो हैं जहां कुंभ को मेला चारों स्थानन पे, काऊ भी एक स्थान पे प्रत्येक 3 वर्ष में और 12वें वर्ष में इलाहाबाद में महाकुंभ को आयोजन हो गए तथा पूरी दुनिया सो करोड़न तीर्थयात्री संत समाज भक्तजन और पर्यटक या समारोह कुंभ मेला को मनाए को एकत्रित हो में है और गंगा नदी के तट पे शास्त्र विधि सो स्नान इत्यादि करे हैं। वो स्थान जहां पे अमृत की बूंद गिरी हती बाय हर की पौड़ी पे ब्रह्म कुंड माना जावे है। या कुछ शाब्दिक अर्थ जे है के ईश्वर के पवित्र चरण हर की पौड़ी पे हरिद्वार को सबते पवित्र घाट मानो जावे है और समस्त भारत सो भक्तन के और तीर्थ यात्रियों के जत्था त्योहारन पे और पवित्र दिनान के अवसर पे स्नान करवे के लिए यहां आवे हैं। या जगह को स्नान करवो मोक्ष प्राप्त करवे के लिए अति आवश्यक मानो जावे है। इतिहास और वर्तमान प्राकृतिक प्रेमियों के लिए हरिद्वार स्वर्ग जैसा सुंदर है। हरिद्वार भारतीय संस्कृति और सभ्यता को एक बहुरूप दर्शक प्रस्तुत करे है। या को उल्लेख पौराणिक कथान में कपिल स्थान गंगा द्वार और मायापुरी के नाम से किया गया है। यह स्थान चारों धाम की यात्रान को प्रवेश द्वार हुए। उत्तराखंड के चारों धाम या प्रकार सो हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। या लिए भगवान शिव के अनुयायी और भगवान विष्णु के अनुयायी या क्रमशः हरिद्वार और हरिद्वार के नाम से पुकारे हैं। हर यानी शिव और हरि यानी विष्णु।

महाभारत के वन पर्व में धौम्य ऋषि युधिष्ठिर को भारत वर्ष के तीर्थन के बारे में बतावे हैं, जहाँ पे गंगा द्वार अर्थात हरिद्वार और कनखल के तीर्थन को उल्लेख कियो गयो है। कपिल ऋषि को आश्रम हु यही जगह स्थित हतो। यासो या को प्राचीन नाम कपिल या कपिल स्थान हु जानो जावे है। पौराणिक कथान के अनुसार भागीरथ जो सूर्यवंशी राजा सगर के प्रपौत्र श्री राम के एक पूर्वज हते, गंगा जी को सतयुग में बरसन की तपस्या के बाद अपने 60,000 पूर्वजन के उद्धार और कपिल ऋषि के श्राप से मुक्त करवे के लिए पृथ्वी पर लाए हते। तभी सो जे एक ऐसी परंपरा चली आ रही है, जाय करोड़न हिंदू आज हु निभाते हुए चले आ रहे हैं, जो अपने पूर्वजन के उद्धार के लिए उनकी अस्थिन को लायके गंगा जी में विसर्जित करे हैं। कहो जावे है कि भगवान विष्णु ने एक पत्थर पे अपने चरण चिन्ह छोड़े है, जो हर की पौड़ी में एक ऊपरी दीवार पे स्थापित है, जहां पे हर समय पवित्र गंगा जी इन्हें छूती रहे हैं। दार्शनिक धार्मिक स्थल हिंदू परंपरान के हिसाब से हरिद्वार में 5 तीर्थ गंगा द्वार, हर की पैड़ी, कुश्वर्त घाट, कनखल, बिलवा तीर्थ मनसा देवी, नील पर्वत चंडी देवी हैं। हर की पौड़ी जे पवित्र घाट राजा विक्रमादित्य ने पहली शताब्दी में ईसा पूर्व में अपने भाई भिड़थारी की याद में बनवाया हो। तो मान्यता जे है कि भिड़थारी हरिद्वार आयो और वाने पावन गंगा के तट पे तपस्या करी। जब वो सदगति को प्राप्त भयो, तब उनके भैया विक्रमादित्य ने उनके नाम पे जे घाट बनवायो, जो बाद में हर की पौड़ी के नाम सो जानो जावे लगो। हर की पौड़ी सो को सबसो प्रवित्र घाट ब्रह्मकुंड है। संध्या के समय गंगा मैया की हर की पौड़ी पे करी जावे वाली आरती हरकाऊ यात्री दर्शनार्थी के लिए महत्वपूर्ण अनुभव है। स्वरण को व रंगन को एक कौतुक समारोह के बाद देखबे को मिले है, जा समय तीर्थ यात्री जरते भये दीपकन को नदी पे अपने पूर्वजन की आत्मा की शांति के उद्देश्य सो बहामे हैं। विश्व भर सो हजारों यात्री अपनी हरिद्वार यात्रा के समय या आरती में उपस्थित हुए हैं और विशेष ध्यान रखे हैं कि हमें आरती जरूर करनी है। वर्तमान के अधिकांश घाट 1800 के समय के बनवाए हुए हैं। चंडी देवी मंदिर, यह मंदिर चंडी देवी जो कि गंगा नदी के पूर्वी किनारे पर नील पर्वत के शिखर पर विराजमान है, जे मंदिर कश्मीर के राजा सुचत सिंह के द्वारा 1929 ईस्वी में बनवाया गया। तो स्कंद पुराण की एक कथा के अनुसार चंडमुंड जो कि स्थानीय राक्षस राजाओं शुंभ निशुंभ के सेना नायक हते, को देवी चंडी ने यहीं पे मारो हो तो जाके बाद जा स्थान को नाम चंडी देवी पड़ गयो। मान्यता है कि मुख्य प्रतिमा की स्थापना 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने करी हती। मंदिर चंडी देवी घाट से 3 किमी की दूरी पे स्थित है। यह स्थान पे पहुंचबे को उड़न खटुला रोपवे के द्वारा पहुंचबे की व्यवस्था है। मनसा देवी बिलवा पर्वत के शिखर पर स्थित मनसा देवी को मंदिर है। शाब्दिक अर्थन में वो देवी जो मन की सभी इच्छान को पूर्ण करे है, जे एक पर्यटकन को लोकप्रिय स्थल है। विशेष करके उड़न खटुला केवल कार के लिए जिसमें बैठ के हरिद्वार नगर को मनोहरी दृश्य दिखाई देवे है। मुख्य मंदिर में 2 प्रतिमाएं हैं, पहली 3 मुख तथा 5 भुजान के संग तथा दूसरी 8 भुजान के संग विराजमान है। माया देवी मंदिर 11वीं शताब्दी को माया देवी को मंदिर
हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी

0: को जी प्राचीन मंदिर एक सिद्ध पीठ मानो जावे है तथा यह स्थान पे देवी सती की नाभि व हृदय गिरबे की कथा प्रचलित है तथा जे उन प्राचीन मंदिरन में सो एक है जो आज नारायण शिला व भैरव मंदिर के संग खड़े हैं। हरिद्वार जिलो सहारनपुर डिविजनल कमिश्नरी के भाग के रूप में 28 दिसंबर 1988 को अस्तित्व में आयो। 24 सितंबर 1998 के दिन उत्तर प्रदेश विधानसभा में सभा ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 1998 पारित कियो। अंततः भारतीय संसद ने हूं भारतीय संघीय विधान उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 पारित कियो और या प्रकार सो 9 नवंबर 2000 के दिन हरिद्वार भारतीय गणराज्य के 27वें नवगठित राज्य उत्तराखंड तब उत्तरांचल को भाग बन गया हो। पर्व गहन धार्मिक महत्व के कारण हरिद्वार में वर्ष भर में कई त्योहार आयोजित होते रहे हैं जिनमें प्रमुख हैं कावड़ मेला, सोमवती अमावस्या मेला, गंगा दशहरा, गूगल मेला या में 20-25 लाख लोग भाग ले में हैं। या के अलावा यहाँ कुंभ मेला को आयोजन हर बार 12 वर्ष के बाद मनाया जावे है। जब बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में प्रवेश करे है तब कुंभ मेला होवे है।
1: देश समारोह में अभी श्रोता ले रहे थे जानकारी पर्यटन स्थल हरिद्वार के विषय में। वार्ताकार थे नरेंद्र कुमार शर्मा। इसके साथ ही आज का ब्रज साहित्य कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कुछ ही देर में श्रोता सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिन्हें हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के।
5: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 किया पारित। वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगणमन के समान वैधानिक संरक्षण का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत युवाओं से 2 अगस्त को करेंगे संवाद। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राज्य विश्वविद्यालयों के साथ ऑनलाइन बैठक में की तैयारियों की समीक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर को दी 692 करोड़।

0: रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात, कहा प्रदेश में पिछले 9 साल में 9 लाख से ज्यादा युवाओं को पारदर्शी तरीके से मिली सरकारी नौकरी। और श्रावण मास के पहले दिन आज प्रदेश के शिवालयों में उमड़े भक्त, मुख्यमंत्री ने वाराणसी में किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में संशोधन के लिए यह विधेयक लाया गया था। लोकसभा ने आज इस विधेयक को पास किया, जबकि राज्यसभा ने कल विधेयक को पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान जनगण मन के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। इन अपराधों के लिए 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक केवल एक विधायी संशोधन नहीं है, बल्कि ये भारत की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और देश के स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है।
1: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
0: राज्यपाल एवं राज्य विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में आज जनभवन लखनऊ से प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों के साथ ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी 2 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित होने वाले वर्चुअल संवाद की रूपरेखा और तैयारियों की जानकारी दी गई। 2 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के लगभग 10,000 स्थानों से वर्चुअली जुड़े 1 करोड़ से अधिक युवाओं से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गाजीपुर में 692 करोड़ रुपए की 268 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब यहां मेडिकल कॉलेज है, गाजीपुर से अन्य शहरों की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, गाजीपुर के स्पिरिचुअल टूरिज्म से जुड़े स्थानों का विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में पीएम स्टार्टअप, पीएम स्टैंडअप, डिजिटल भारत, मिशन रोजगार के तहत लाखों नौजवानों को नौकरी मिल रही है। यूपी में पिछले 9 साल में 9 लाख से ज्यादा युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी मिली है। उन्होंने गाजीपुर के लोगों से विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश व विकसित गाजीपुर के सारथी बनने का आह्वान किया।
2: आज के इस अवसर पर जब 692 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं का उपहार जनपद गाजीपुर को प्राप्त हो रहा है, इस अवसर पर मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि हम सब मिलकर के विकास की इस प्रक्रिया के सारथी बने, नए भारत में नए उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के सारथी बने, विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित गाजीपुर के निर्माण की दिशा में हम सभी मिलकर के कार्य करें।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नीट पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान तैनात रैपिड एक्शन फोर्स के हथियारों के उपयोग का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने कानून व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पुलिस को असाधारण परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल करने का अधिकार है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने दिल्ली सरकार को प्रदर्शन के दौरान पैलेट लगने से घायल हुए लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण यूपी रेरा बायर्स यानी घर खरीदने वाले ग्राहकों की सहूलियत और उन्हें सही जानकारी मुहैया कराने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेगा और जल्द ही रेरा की एक नई वेबसाइट लॉन्च होगी, जिसमें प्रोजेक्ट की जानकारी और शिकायतों को दर्ज कराना आसान हो जाएगा। उत्तर प्रदेश रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने कहा कि प्रदेश में लखनऊ जिला रियल एस्टेट के क्षेत्र में पहली पसंद बन गया है, जहां पिछले 6 महीनों में 37 नए प्रोजेक्ट आए हैं। वहीं गौतम बुद्ध नगर में 27 और गाजियाबाद

0: में 19 नई रियल एस्टेट परियोजनाएं पंजीकृत हुई हैं। उन्होंने कहा कि रेरा ने अब तक 8000 से अधिक विवाद के मामलों में 2173 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खरीदारों को वापस दिलवाई है। इसके साथ ही रेरा संवाद के जरिए 5000 से ज्यादा शिकायतों का भी समाधान किया गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। श्रावण मास के पहले दिन आज प्रदेश के शिवालयों में सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन शुरू कर दिया। राजधानी लखनऊ के मनकामेश्वर सहित प्रमुख मंदिरों में भक्तों ने भगवान शंकर का जलाभिषेक किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन कर प्रदेश और देशवासियों के सुख शांति समृद्धि और लोक कल्याण के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की सुरक्षा सुविधा और सुगम दर्शन की व्यवस्था को पूरे श्रावण मास में प्रभावी और निर्बाध रूप से बनाए रखे जाने का निर्देश दिया। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन का सिलसिला भोर से ही शुरू हो गया। मंदिर ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: सावन मास के प्रथम दिन श्री काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हैं। धाम में आने वाले भक्तों का पुष्प वर्षा और रेड कारपेट के साथ स्वागत किया जा रहा है। इस बार पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 20 लाख अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना को देखते हुए प्रशासन की विशेष व्यवस्थाएं जारी हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और भीड़ प्रबंधन के लिए धाम में 6 स्थानों पर जिग जैग बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के अलावा गौरी केदारेश्वर, तिल भांडेश्वर, महामृत्युंजय तथा BHU स्थित विश्वनाथ मंदिर सहित प्रमुख शिवालयों में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। पूरे सावन माह में दर्शन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन की विशेष व्यवस्थाएं लगातार जारी हैं। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
0: श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रदेश सरकार ने व्यापक कदम उठाए हैं। इसी क्रम में व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए प्रदेश के मुख्य सचिव SP गोयल और DGP राजीव कृष्ण ने आज बरेली में बरेली व मुरादाबाद मंडल के जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में पुलिस महानिदेशक ने बताया कि इस बैठक में सुरक्षा, ट्रैफिक, महिला सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।
2: न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक बड़ा आयोजन होता है, इसमें करोड़ों लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनके पूरे व्यवस्थापन के लिए, आम जनता के कोई दिक्कत ना हो उसके लिए और एक सुव्यवस्थित ढंग से ये पूरी यात्रा संपन्न हो, इस विषय में चीफ सेक्रेटरी साहब के द्वारा और मेरे द्वारा यहाँ पर गोष्ठी की गई है। इसमें सभी बिंदुओं पर, जो अवस्थापना के बिंदु हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बिंदु हैं, डिप्लॉयमेंट के बिंदु हैं, उन विषयों पर चर्चा हुई।
0: मुख्य सचिव ने कहा कि सभी एजेंसियां आपसी तालमेल के साथ काम कर रही हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले 3 दिनों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। विभाग के मुताबिक कुछ जगहों पर तेज हवाएं भी चल सकती हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 किया पारित। वंदे मातरम को राष्ट्रगान, जनगण मन के समान वैधानिक संरक्षण का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत युवाओं से 2 अगस्त को करेंगे संवाद। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राज्य विश्वविद्यालयों के साथ ऑनलाइन बैठक में की तैयारियों की समीक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर को दी 692 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात। कहा, प्रदेश में पिछले 9 साल में 9 लाख से ज्यादा युवाओं को पारदर्शी तरीके से मिली सरकारी नौकरी। और श्रावण मास के पहले दिन आज प्रदेश के शिवालयों में उमड़े भक्त। मुख्यमंत्री ने वाराणसी में किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: एपीजे अब्दुल कलाम का कथन है, लक्ष्य के प्रति एकाग्र समर्पण लक्ष्य को पाने का एकमात्र साधन है।
1: FM 102.2 MHz पर हम आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से बोल रहे हैं और अब प्रस्तुत है श्रोताओं के व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम श्याम सुहानी। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को हमारा स्नेह भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में आपके द्वारा प्रेषित 7:15 पर भेजे गए संदेशों को शामिल कर रहे हैं, जो कि बड़ी संख्या में भेजे गए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

लता मंगेशकर, किशोर कुमार को अभी आपने सुना फिल्म थी जैसे को तैसा। गीत आनंद बख्शी का था, संगीत दिया था आरडी बर्मन ने। इस गीत को सुनना चाहा था बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवानकर, निर्मला विशाल मलकापुर से नारायण इंगले सोपान आशीष मोहरकर, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा जयवीर सिंह डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद बजाज साहिल बजाज बिट्टा बजाज, पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद पराग पूना राम कृष्णा देवांगन, छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा प्रिंस निखिल और यशस्वी वर्मा, सनावत से मोहम्मद सादिक मुश्ताक मोहम्मद शाकिर मोहम्मद अलकमश खत्री मोहम्मद अलतमश, ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला तरुच छत्तीसगढ़ से बालकरण वर्मा अंजनी रजमत वर्मा मुरली नीरा ज्योति और प्रहलाद वर्मा, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा करुणा वर्मा, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा मीना शर्मा योगेश मैंडी सौरभ साइना निवान शर्मा, डोगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजबिये राधिका बेबी अनिष्का तन्मय गजबिये, कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान फैजी फराज फरहीन फरहान फारिया, सहारनपुर से आशा नारंग सोनाली और सुरेश नारंग, भावी नीम गांव शिवगांव से श्रीराम गोंथली ऊषा, कोपर गांव से सुरेश मालोदे वर्षा मालोदे, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया अंजल भाटिया पप्पी और सोनू भाटिया, नसवाला चौक मलकापुर से संजय पाटिल ऊषा पाटिल, मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा प्रीति कार्तिकारायण वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई पिंकी आर्यन कृष्णा पीहू, बरवड़ बकाल बुलठाणा से नारायण हागे कमल हागे दिव्या जय हागे, उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज कमला रानी गीतिका भानु प्रकाश, दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जामनिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल उर्मिला दीपक स्वाति बिपिन देव कुमार और कुमार जायसवाल, टाउनशिप सेक्टर 8 बेलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुमार प्रमला चीनू दीपक अनुशेष श्याम कुमार, कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल मोरस अनिल कुमार अजीत कुमार आयुष और नंदनी जगेल, दमदा ग्राम सुखरी कला से अमित शकुन आरुषि औशिका आदित्य और अंजलि जंगेर, दुर्गा कॉलोनी हासी से राजू मिकलानी बबीता मिकलानी सुभाष योगी और बब्बू डब्बू, बरेड़ी से राजेश सोनी कंचन गायत्री वैष्णवी और चंचल डोमने, जवाहरनगर दुर से आरसी कामड़े करुणा अश्वनी और विपुल कामड़े, खरसावां झारखंड सुकरा नायक से मंजू नायक जलेश्वर गौरव नायक, लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मनपुरी राजादास मनकापुरी रानी, कोटवा नारायण बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, दुबिया निविता जिला गाजीपुर से प्रतीक राय श्रीमती रोशनी राय, मेरठगंज से दिग्दर्शन और कविता गौड़, तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहुद्दीन फजान फरहान साइमरा अजमीन,

ललितपुर उत्तर प्रदेश से हैं जी। संतोष नामदेव, अभय, अनिल, अजीत, अनीता, संजना, रेखा, भारती, पूर्वी, रूही, अनु, अनन्या, शक्ति, भक्ति, आदर्श, लवकुश और समस्त नामदेव परिवार ने। और ये सुनते हैं गौतम गोविंदा फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

आनंद बख्शी की शब्द रचना भी आपने सुनी किशोर कुमार की आवाज़ में। फिल्म थी गौतम गोविंदा। इस गीत के लिए हमें संदेश प्राप्त हुए ब्रज रेडियो श्रोता मित्र चौधरी महेंद्र सिंह नकला राणा से, राधेलाल सारस्वत सिहोरा से, शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा से, राजू लवानिया खंदौली आगरा, यादराम जी उस पार मथुरा, वीरेंद्र सिंह मंडी चौराहे मथुरा, नेत्रपाल सिंह नगला विजय राया, भजन लाल कुमार राया, महेश चंद सदर बाजार मथुरा, सतीन चंदसौलिया जिला जालून से, पंचमलाल चतुर्वेदी दौसा राजस्थान से, शादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंदकला रेवाड़, ख्याल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडू गोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल डुक्कू भविका सिक्का, जिला हनुमानगढ़ से वेद मिड्डा अलका मिड्डा, दात्री गेट भिवानी से कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा, तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवंश श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आयुष विवेक, बेबी आयुषी श्रीवास, समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह, ज्योति रोहतास बिहार से सोनम सिंह, अनामिका सिंह, मंसूर रेडियो लिस्टनर्स क्लब बाजार रोड मुंगिसापुर से, मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद नसी, पलक लुबना और यश मंसूरी, पिपीरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्माला सुरलकर, आरती ओम कुमार, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल श्रीवास, सनीता पुष्पा श्रीवास, संजू योगिता, रजन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास बादवानी, शनि चौक खंडवा से उमा राज, कुलदीप जगदीश और प्रभा रानी राज, व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण अंजू श्रीवास्तव, दिवेंदु भूषण संस्कृति पौरुष, सप्तरंग श्रोता परिवार कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक तले, सविता निकेत रोहिणी ऋषिकेश जीविका सनिका, पुनावले पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका विशाखा सोनवने, जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से सौरभ निषाद, प्रकाश बल्लू, तरु शनिका श्रीनिजा, शाहरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मेघा मस्कीन, पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिदाना खुराना, नरकोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी टिंकल डिम्पल मीनाक्षी निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी नायक।

और अब सुनते हैं शिवहरी के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी की शब्द रचना, लता मंगेशकर और बाबला मेहता की आवाज़ में। फिल्म है चांदनी।

0: गीत आनंद बख्शी का था, संगीत दिया था शिव हरि ने। इस गीत को सुनना चाहा था जलालाबाद व्यस्त से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया देशानी और निमित आहूजा। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता केसुता सुवर्णा आनंद और सत्यमानंद। बूढ़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। करताल तेलंगाना से कनगुल गोपाल महेश्वरी, प्रमलिका विश्ववर्धन विघ्नेश। मजनू कटीला दिल्ली से कमल बालूजा, मधु बालूजा सागर। सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक। पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल, शिवांश गोप, संगीता लिपि और दीपाली गोप। 7:15 का ये संदेश। गाडगे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनादायी शैलेश, प्रतीक्षा, स्वप्निल, रक्षंदा, रियांश और समस्त लोखंडे परिवार। खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार। ग्राम पजोनिया जला जालौन से सतीन कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक चंसौलिया। ताजपुर मोरवा समस्तीपुर बिहार से कारी राय, कारी मीनाकारी, पुंजराज, आरती, आकर्षण और जयश्री। मधुबनी बिहार से नवीन सिंह, ज्योति रानी, मेनका, श्वेता, स्वाति, सुशांत, चुलबुल रानी। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण, सोनी, पूजा, पायल और जगदीश जौहरी। मधुबनी एक्सटेंशन से कुशेश्वर प्रसाद, कांति गुप्ता, रुद्राभाई, रिद्धि सिद्धि, कोमल रानी, मुकेश, नीलम, रश्मि। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला, वैशाल, निशा। मोहल्ला हलवाइन शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार, फरीदी, इकबाल, सितारा, नसरीन, रोजी, बिट्टू, सजदार, हिना कौसर। मंदी चौक भागलपुर से दिलीप कुमार, सोनी। धाणी नादोरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण पाठे, संदीप और अमूल पाठे। वरंगल से मोहम्मद खाजी रजाउद्दीन, मोहम्मद खजा फिजियुद्दीन, आयशा तबस्सुम। श्री गणेश अविकाट, श्री रामपुर से डी अशोर कुंभार, अविका खानू, अर्चना। पुनावली से अजय सोनमने, करिश्मा अविका और साइशा सोनमने। गौतमनगर नांदेड़ से प्रभाकर चौधरी, आरती। नांदेड़ महाराष्ट्र से आपका ये संदेश 7:15 पे। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान और पूजा परिहार। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमल अनेजा। आप हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल तनवी और अंकित कांगड़ा। एकता कॉलोनी रोहतक से रोहिदास चौक, पंडरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज, ऋषि और कृष्णा गोटके ने। और अब आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की हमें अनुमति दीजिए। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए सभी का हृदय से आभार। नमस्कार। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कुछ ही पलों में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे।
1: कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के दीपक रंजन। लोकसभा ने आज राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक पारित कर दिया। इसके प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान या उसका अपमान अपराध माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। राष्ट्रगान जन गण मन के साथ ही उसी सम्मान के साथ राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन को अनिवार्य बनाने वाले राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को डीएमके समेत विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के बीच संक्षिप्त चर्चा

के बाद ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी गई। इससे पहले उच्च सदन ने कल विधेयक को मंजूरी प्रदान की थी। प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पर सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि इस विधेयक के पारित होने के बाद राष्ट्रगीत को वही सम्मान मिलेगा जो राष्ट्रगान को मिलता है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम एक भारत श्रेष्ठ भारत और विकसित भारत के संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने डीएम के सांसदों की चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है जो किसी राज्य किसी व्यक्ति और किसी विचारधारा के विरुद्ध नहीं है। इससे पहले डीएम के सांसदों ने सदन में विधेयक पारित किए जाने का विरोध किया। विधेयक पर निचले सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा में भाग लेते हुए

विरोध किया। विधेयक पर निचले सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा में भाग लेते हुए डीएमके सांसद के कणिमोई ने कड़ा विरोध दर्ज कराया और आरोप लगाया कि सरकार इसके साथ हिंदुत्व के एजेंडे को राष्ट्रीयता के रूप में पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि देश के नागरिकों के विरुद्ध है, इस तरह राष्ट्रवाद नहीं थोपा जा सकता। कणिमोई ने विधेयक को संघीय ढांचे के विरुद्ध बताते हुए ये भी कहा कि विभिन्न मुद्दों पर सदन में हंगामे के बीच विधेयक को पारित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने इसे राज्यों के हितों की और धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बताया। डीएमके सदस्य ने कहा कि तमिलनाडु और अन्य राज्यों में इसका विरोध हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा ने कहा कि साधारण विधेयक नहीं है। उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि जो राष्ट्र को नहीं समझते वे यहां शोर मचा रहे हैं। श्री पात्रा ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1950 में संविधान सभा में यह आश्वासन दिया था कि जन गण मन और वंदे मातरम दोनों एक ही रूप से गाए जाएंगे और दोनों को एक ही सम्मान मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि 76 वर्ष में कांग्रेस की सरकारों ने एक परिवार को ऊपर रखा, राष्ट्रगीत वंदे मातरम को नहीं। डीएमके के ए राजा ने विधेयक पर अपना संशोधन प्रस्तुत करते हुए कहा कि आज देश और संसद के लिए बहुत खतरनाक दिन है, ये विधेयक मजाक की तरह है। सदन ने उनके संशोधन को खारिज कर दिया और डीएमके समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके बाद सदन की बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इस विधेयक के अंतर्गत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया है। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में कहा गया है कि राष्ट्रगान की तरह राष्ट्रगीत को गाने से जानबूझकर रोकने या किसी सभा में इसके गायन में व्यवधान पैदा करने को एक दंडनीय अपराध बनाने का प्रावधान किया जाता है। इसमें बताया गया है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि वंदे मातरम को जन गण मन के समान ही सम्मान और बराबर का दर्जा दिया जाएगा। विधेयक में राष्ट्रगीत के अपमान के लिए 3 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों सजा के प्रावधान हैं। लोकसभा में विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही बार बार स्थगित की गई। सवेरे 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने के बाद विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल लगातार 8वें दिन नहीं चल सका और कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट के भीतर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बैठक शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्हें बधाई दी। इसके बाद अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्य अपनी मांगें उठाने लगे। कांग्रेस सदस्यों को कल सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण के दौरान पैदा हुई गतिरोध की स्थिति का मुद्दा उठाते देखा गया। वो दिल्ली में पिछले सप्ताह प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की भी मांग दोहराते सुने गए। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल बाधित नहीं करने का अपना आग्रह दोहराया। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर पीठासीन सभापति संध्या राय ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाई। इस बीच विपक्षी सदस्य आसन के बीच करीब आ गए। उनके हाथ में तख्तियां थीं और वे अमित शाह जवाब दो के नारे लगा रहे थे। पीठासीन सभापति ने नारेबाजी कर रहे सदस्यों से अपने अपने स्थान पर लौटने का अनुरोध किया, लेकिन हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके हैं। और अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। राज्यसभा में आज शून्यकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर पुलिस के बल प्रयोग के आरोपों को लेकर सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग सभापति द्वारा अस्वीकार किए जाने पर विरोध जताते हुए बहिर्गमन किया। सदन में आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद विपक्षी सदस्यों ने 20 जुलाई को छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के संबंध में गृह मंत्री से सदन में आकर स्पष्टीकरण देने की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि संविधान मंत्रिपरिषद को संसद के प्रति जवाबदेह बनाता है। उन्होंने कहा कि जब छात्रों पर लाठीचार्ज की गई और गोली चलाई गई, तब ये स्वाभाविक मांग है कि गृह मंत्री सदन में आएं और इस पर बयान दें।
सभापति सीपी राधाकृष्णन ने व्यवस्था का प्रश्न खारिज कर

दिया और शून्यकाल के अंतर्गत लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए सदस्यों से कहा। विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग नहीं माने जाने पर सदन से बहिर्गमन किया। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि 20 जुलाई से शुरू हुए संसद के मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष का रवैया नकारात्मक रहा है। उन्होंने विपक्ष के आचरण को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए उसकी निंदा की। विपक्ष के बहिर्गमन के बाद सदन में नियत कामकाज जारी रहा और सदस्यों ने शून्यकाल के अंतर्गत लोक महत्व से जुड़े अपने मुद्दे उठाए। भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र नागर ने वन नेशन वन डिजिटल मेट्रो कार्ड की मांग दोहराते हुए कहा कि इससे यात्रियों को कई तरह की सुविधाएं मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि मेट्रो यात्रियों के लिए हर शहर अपने यहां नया मेट्रो कार्ड जारी करता है। ये प्लास्टिक के कार्ड होते हैं और एक शहर का कार्ड दूसरे शहर में नहीं चलता। नागर ने कहा कि इससे पर्यावरण को भी फायदा होगा क्योंकि मेट्रो कार्ड में चिप और एंटीना लगा होने की वजह से इसकी रिसाइकलिंग नहीं हो पाती और इससे कार्बन भी उत्पन्न होता है। डिजिटल मेट्रो कार्ड जारी होने पर यह समस्या नहीं होगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल मेट्रो कार्ड मोबाइल फोन से संबद्ध होगा, अतः इसके गुम होने से पूरी बैलेंस राशि का नुकसान नहीं होगा। अभी मेट्रो कार्ड गुम होने से उसकी पूरी बैलेंस राशि भी चली जाती है। कार्ड ब्लॉक भी नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी सुविधा नहीं है। डिजिटल कार्ड होने पर यह समस्या नहीं होगी। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश के देवरिया में बैतालपुर चीनी मिल का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मिल करीब 20 साल से बंद पड़ी है जिससे वहां के लोगों को रोजगार की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का 1,200 करोड़ रुपए बकाया है और वो इस राशि का इंतजार कर रहे हैं। शून्यकाल में ही घनश्याम तिवाड़ी, प्रकाश चिक बराइक, कणाद पुरकायस्थ, गोविंद भाई लालजी भाई ढोलकिया, रेखा शर्मा, दोरजी छिरिंग लेपचा, बाबूराव निषाद, संजय भाटिया, डॉक्टर के लक्ष्मण, जोगेन मोहन, संगीता यादव, डीएमके के सदस्य एलके सुधीश, बीआरएस के रविचंद्र वद्दी राजू, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, बीजू जनता दल के सुभाषीष खुंटिया ने भी आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। इसके बाद सदन में प्रश्नकाल भी सामान्य रूप से चला। भोजन अवकाश के बाद उच्च सदन में प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करवाने के लिए रखा। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र लीक रोधी कानून में प्रस्तावित संशोधन इस बात का प्रमाण है कि सरकार परीक्षा प्रश्न पत्र लीक के प्रति कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति पर चल रही है और किसी को भी देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। श्री सिंह ने कहा कि सरकार पूरी गंभीरता के साथ ये संशोधन लेकर आई है और सभी पक्षों से मिलने वाले रचनात्मक सुझावों का स्वागत करती है। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रश्न पत्र लीक मामलों को रोकने के लिए सरकार के विधेयक के भविष्य में कारगर होने पर आशंका जताते हुए एक समयबद्ध वार्षिक परीक्षा कैलेंडर बनाए जाने का सुझाव दिया तथा हाल में हुए छात्र आंदोलन में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ज्यादतियों की न्यायिक जांच कराने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस विधेयक में कड़े प्रावधान किए हैं किंतु उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि फर्क इससे पड़ेगा कि आप परीक्षाएं कैसे कराते हैं और प्रश्न पत्र लीक होने से कैसे रोक पाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने सरकार से सवाल किया कि वो इस समय जो काम कर रही है उसने 2 साल पहले मूल कानून बनाते समय इस काम को क्यों नहीं किया। विधेयक के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के ब्रजलाल ने कहा कि विधेयक ये प्रावधान करता है कि केंद्र एक विशेष एसआईटी का गठन कर सकता है और जांच एजेंसी को केवल 2 माह के अंदर पूरी प्रक्रिया समाप्त करनी है तथा त्वरित आंदोलन अदालत को 3 महीने के भीतर अपना फैसला देना है। उन्होंने उल्लेख किया कि विशेष सरकारी वकील नियुक्त किए जाएंगे जो केवल इस प्रकार के मुकदमे की पैरवी करेंगे और अपील सीधे उच्च न्यायालय की खंडपीठ में की जाएगी तथा उस अपील पर 3 महीने के अंदर फैसला सुनाया जाएगा। जनता दल यूनाइटेड के संजय झा ने कहा कि किसी भी देश के विकास में वहां की शिक्षा व्यवस्था का प्रमुख योगदान होता है। उन्होंने कहा कि विकास के पथ पर भारत आज जिस तरह बढ़ रहा है उसका एक मुख्य कारण यह है कि बीते करीब 12 साल में शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव हुआ है और शिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़ी है तथा शिक्षा की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र लीक होने की समस्या कहीं ना कहीं छात्रों को परेशान करती रही है। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने कहा कि नए विधेयक में दंड को कठोर किया गया है और सुनवाई के लिए विशेष त्वरित अदालतों के गठन का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि दंड बढ़ाने से अपराध कम नहीं होता।
पहली परीक्षा

की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के पास हुआ करती थी और तब इस तरह के प्रश्न पत्र लीक के मामले नहीं होते थे। आज पेपर ही 13 भाषा में होते हैं। उन्होंने सलाह दी कि पहले की तरह ही नीट को खत्म कर मेडिकल परीक्षा की जिम्मेदारी राज्यों को सौंप दी जानी चाहिए, जब 15% सीट केंद्र के अधिकार में होती थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि पिछले कुछ दिन में प्रश्न पत्र लीक मामले और उसके बाद हुए घटनाक्रम से केवल छात्र ही परेशान नहीं हुए बल्कि सरकार को भी पीड़ा हुई है और लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 इसी पीड़ा का परिणाम है। उन्होंने कहा कि सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाना ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि सरकार ने कहा था कि नीट का पेपर लीक होने से 22,80,000 बच्चे प्रभावित हुए हैं, लेकिन जब दोबारा नीट का पेपर हुआ तो 20 लाख बच्चे इसमें बैठे 2,80,000 बच्चों ने ये परीक्षा नहीं दी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक अदालतों में बेहिसाब मामले लंबित हैं, ये अदालतें कैसे जल्दी सुनवाई कर पाएंगी। उन्होंने कहा कि कई स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है, कई स्कूलों में शिक्षक नहीं है, कई की इमारत खस्ता हाल है और कई स्कूल बंद हो चुके हैं। शिक्षा पर आखिर सरकार कितना खर्च करती है। उन्होंने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि इसका आदेश किसने और क्यों दिया। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि भाजपा की एक सांसद ने जैन जी के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है उन्हें गटर कहा है, उन पर सत्ता पक्ष रोक लगाए, अन्यथा यही जैन जी आपको सबक सिखाएगी। चर्चा में राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा, बीआरएस के रविचंद्र वद्दी राजू, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जान ब्रिटास, झारखंड मुक्ति मोर्चा की महुआ मांझी और शिवसेना के मिलिंद देवड़ा ने भी हिस्सा लिया। समीक्षा लिखे जाने तक चर्चा जारी थी। अभी आप संसद में आज हुई कार्रवाई की समीक्षा सुन रहे थे।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं कुछ देशभक्ति परक रचनाएं।

उषा टंडन को अभी आपने सुना। देशभक्ति पर रचनाएं इस समय श्रोता सुन रहे हैं FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

संगीत स्वरों में अभी आपने देश गान सुना। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। एक ही फिल्म से आज इस कार्यक्रम में सुनते हैं मोहरा फिल्म के कुछ गीत। गीत आनंद बख्शी और इंदिवर के हैं। धुन तैयार की है विजू शाह ने।

उदित नारायण और साथ सरगम को अभी आपने सुना, और ये अब सुनते हैं पंकज उदास और साथ सरगम की आवाज़ में भूरा फिल्म का अगला गीत।

एक ही फिल्म से कार्यक्रम में समय श्रोता सुन रहे हैं मोरा फिल्म के कुछ गीत FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से।

उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों के गाए मोहरा फिल्म के इस गीत के साथ ही एक ही फिल्म से कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कुछ पलों में समाचार होंगे, पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में।

0: ये से भी कभी भी 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए एकीकृत व्यवस्था पर बल दिया। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। अमरीका और ईरान के बीच मिसाइल हमले तेज, पश्चिम एशिया संघर्ष के तत्काल समाधान की उम्मीदें कम हुई। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर। राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने तथा ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल और शिल्वा प्रभु ने

0: फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती हैं। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं बल्कि ये राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
1: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्र गीत का भी गायन हो। अब एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
0: राज्यसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पर इस समय चर्चा चल रही है। लोकसभा ने विधेयक कल पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि विधेयक के अंतर्गत जांच 2 महीने के भीतर और आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मुकदमा पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधेयक देश के विद्यार्थियों और युवाओं के कल्याण की रक्षा के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।
2: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
3: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया जा रहा है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके। यदि इसमें सुधार के लिए कोई सुझाव होंगे तो मैं उनका स्वागत करता हूं और उन पर विचार करूंगा।
2: आई विल बी टेकिंग नोट ऑफ इट।
0: विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावटी बदलाव किए हैं।
4: ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन ये जो मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन तब आपने हमारी इस बात को नहीं माना।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों में आज विधायी कामकाज हुए।
5: आज संसद के दोनों सदनों में विधायी कामकाज हुआ। लोकसभा ने आज राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दी। राज्यसभा ने यह विधेयक कल पारित किया था। इस विधेयक को मंजूरी देने के बाद निचले सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में अभी लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हो रही है, जिसे लोकसभा ने कल मंजूरी दी थी। नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई एक बार स्थगित करनी पड़ी। इस व्यवधान के कारण निचले सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो पाया। राज्यसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल सुचारू रूप से चले। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए आज मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने नाविकों और उनके परिवारों को समय पर सूचना, आपातकालीन सहायता और परामर्श के लिए एक व्यवस्था स्थापित करने का भी निर्देश दिया। बैठक में रबी फसलों के लिए उर्वरकों के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग पर भी चर्चा की गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध प्रदर्शनों में शामिल विद्यार्थियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी। ये फैसला आपराधिक रिकॉर्ड वाले प्रदर्शनकारियों पर लागू नहीं होगा। ये निर्णय उच्चतम न्यायालय के 28 जुलाई के आदेश के अनुरूप लिया गया है। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि प्रदर्शन की आड़ में हिंसा, तोड़फोड़ या अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
6: भारत सरकार ने पहले ही कहा था कि जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं, जो अपना विरोध प्रकट करने आए थे, उनके संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मगर ये उन पर जिनके ऊपर पहले से आपराधिक मुकदमे हैं, जिन्होंने हिंसा की है, तोड़फोड़ की, उन पर लागू नहीं होगा।
0: रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लगभग 17,000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अब रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। श्री सेठ ने बताया।

0: लगता है कि सरकार का एकमात्र उद्देश्य रक्षा क्षेत्र को स्वदेशी और आत्मनिर्भर बनाना है।
1: संकल्प एयरफोर्स और SIDM के द्वारा जो आज जितने कहते हैं इंडस्ट्री के लोग, स्टार्टअप के लोग, एक जिद है कि भारत को 2047 विकसित भारत बनाना है। और अभी आपने देखा होगा कैसे 74,000 स्पेयर्स एयरफोर्स के जो इंडिजिनस हो गए।
0: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सचिव एस कृष्णन ने कहा है कि सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर विनिर्माण मजबूत करने और आत्मनिर्भर सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बनाने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस वर्ष 3 सेमीकंडक्टर इकाइयां पहले से ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर चुकी हैं। पर्यटन मंत्रालय और इंडिगो ने अतुल्य भारत पहल को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत के पास एक असाधारण पर्यटन गाथा है जिसे सरकार और इंडिगो मिलकर दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के लिए आज हुए उपचुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो गए। बिहार की बांकीपुर, गुजरात की मंजलपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीटों पर मतदान हुआ। बांकीपुर में मतदान प्रतिशत 34% से अधिक रहा, जबकि मंजलपुर में 37% और दतिया में 71% से अधिक वोट डाले गए। छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम 2026 के विजेता परगना मांझी और पद्म पुरस्कार विजेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की। राष्ट्रपति ने कहा कि बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों ने युवाओं को उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने बताया कि ऐसे आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और रोजगार के अवसर सृजित करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने चेन्नई, कोयम्बटूर, हैदराबाद और मुंबई में वर्ष 2022 में कोयम्बटूर बम धमाकों से जुड़े अवैध धन शोधन मामले में 16 स्थानों में तलाशी अभियान चलाया। फिदायीन आतंकी जमीशा मुबीन और इस्लामिक स्टेट से जुड़े कई आतंकियों की इन हमलों में संलिप्तता पाई गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर नए मिसाइल हमलों से व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंका बढ़ गई है और युद्ध विराम की उम्मीदें कम हो गई हैं। अन्य देश भी संघर्ष में शामिल होने की आशंकाएं बढ़ गई हैं। जॉर्डन में एक अमेरिकी सैन्य हवाई अड्डे पर ईरान के मिसाइल हमले के बाद ईरान के खिलाफ अमेरिका के जवाबी हमलों से क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने कहा है कि केशम द्वीप पर हुए हमले में 3 लोग मारे गए और 2 अन्य घायल हो गए। पाकिस्तानी सेना की घातक कार्रवाई के बीच पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इस सप्ताह की शुरुआत में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के दौरान पाकिस्तानी सेना की क्रूर कार्रवाई में 40 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें तेज हो गई हैं। भारत ने चुनावों को पाकिस्तान द्वारा अपने अवैध कब्जे और क्षेत्र में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने का प्रयास बताया है। उड़ीसा की महानदी में बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित जिलों में बचाव राहत कार्य तेज कर दिए गए हैं।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है, हालांकि इसके मध्यम स्तर की बाढ़ बने रहने की उम्मीद है। भारी बारिश के कारण महानदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने आज जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर और केंदुझर जिलों में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया ताकि बचाव और राहत कार्यों की समीक्षा की जा सके। उन्होंने बताया है कि अब तक 20 जिलों के 7,00,000 लोग प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने बरगढ़ जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि झारसुगुड़ा, संबलपुर, सोनपुर, बलांगीर, कलाहंडी, नुआपड़ा और नवरंगपुर के लिए येलो चेतावनी लागू है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने गुजरात में अहमदाबाद, आणंद, सूरत और नवसारी समेत 13 जिलों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।
3: राज्य में भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए गांधीनगर स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में अपर मुख्य सचिव डॉ. जयंती रवि की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में हाई अलर्ट वाले जिलों की प्रशासनिक तैयारियों का जायजा लिया गया, जबकि आपातकालीन राहत और बचाव कार्यों के लिए भारतीय सशस्त्र बलों की तीनों सेनाओं को भी अलर्ट पर रखा गया है। राज्य सरकार ने संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन को

0: स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मौसम विभाग ने कल गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में अत्यधिक मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी तेज वर्षा की संभावना है। इसी तरह का मौसम पूर्वोत्तर भारत, पंजाब, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में अगले दो से तीन दिन तक रहने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संसद भवन में अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के सांसदों से भेंट की। इस दौरान दोनों राज्यों में आई बाढ़ की स्थिति पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने में राज्यों की सहायता करना जारी रखेगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 274 अंक बढ़कर 77,928 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 67 अंक बढ़कर 24,317 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 3 पैसे कमजोर होकर 95.68 रुपये पर बंद हुआ।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा है कि पहली जुलाई तक देश में 33 करोड़ 13 लाख घरेलू एलपीजी उपभोक्ता थे। इनमें से 10 करोड़ 58 लाख प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कनेक्शन शामिल हैं। श्री गोपी ने कहा कि सरकार घरों में किफायती कीमतों पर घरेलू एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र INSpace ने कहा है कि निजी अंतरिक्ष कंपनियों को किसी भी नियोजित अंतरिक्ष वस्तु की पुनः वापसी के दौरान दुर्घटना जोखिम को न्यूनतम करना होगा। INSpace अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की सभी गतिविधियों पर नजर रखने वाली एजेंसी है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गए। रोहित यादव और यशवीर सिंह ने भी फाइनल में जगह बनाई है। प्रवीण चित्रावेल और सेल्वा प्रभु ने पुरुषों की ट्रिपल जंप स्पर्धा के फाइनल में प्रवेश किया। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में आज उन्नति हुडा, तन्वी शर्मा और देविका सिहाग ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। वहीं अनमोल खरब, तान्या हेमंत और को राउंड ऑफ 16 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए एकीकृत व्यवस्था पर बल दिया। दिल्ली सरकार ने कहा नीट परीक्षा विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को कोई छूट नहीं दी जाएगी। अमरीका और ईरान के बीच मिसाइल हमले तेज। पश्चिम एशिया संघर्ष की तत्काल समाधान की उम्मीद कम हुई। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर। और राष्ट्रमंडल खेलों में भाला फेंक में नीरज चोपड़ा, रोहित यादव और यशवीर सिंह ने तथा ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल और शिल्वा प्रभु ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Parliament passes legislation granting Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem. Prime Minister Narendra Modi chairs meeting of Cabinet Committee on Security to review West Asia situation, stresses on unified mechanism for safeguarding citizens' interest, including seafarers. Delhi government says no legal action against individuals who participated in NEET protests, no protection for those with criminal background. US and Iran exchange fresh strikes, dimming hopes for a quick resolution of West Asia conflict. Red alert issued for very heavy rainfall in Gujarat and Madhya Maharashtra tomorrow. Flood situation in Odisha remains critical. Javelin throwers Neeraj Chopra, Rohit Yadav and Yashvir Singh qualify for the men's final at the Commonwealth Games. The Parliament has passed the Prevention of Insults to the National Honour Amendment Bill 2026 with the Lok Sabha approving it today. The Radha Sabha passed the legislation yesterday. The law will further amend the prevention of insults to national honor.

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म थी रोटी कपड़ा और मकान। गीत वर्मा मलिक का था, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

एस डी बर्मन के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी की शब्द रचना भी आपने सुनी। लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म थी चुपके चुप।

अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज के गाए दूध का कर्ज फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुहाने तरने अब यहीं संपन्न होता है। FM 102.2 MHz पर यह आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। कुछ ही पलों में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए दूर संचार क्षेत्र में भारत की विकास यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं दूर संचार विभाग के पूर्व सलाहकार राकेश कुमार भटनागर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: राकेश भटनागर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद
1: राकेश जी। भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम बाजार बन चुका है और ये डिजिटल अर्थव्यवस्था की एक तरह से मेरुदंड भी माना जाता है। तो ऐसे में अगर हम पिछले 10-11 वर्षों को देखें तो भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि आप किसे मानते हैं? क्या ये केवल मोबाइल और इंटरनेट का ही विस्तार है या इससे कहीं अधिक सूचना प्रौद्योगिकी में बदलाव आया है?
2: जो एक सेगमेंट जिसमें कि बहुत ज्यादा चेंज हुआ वो मोबाइल हैंडसेट की मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है। पहले जो है मोबाइल फोन जो था मोस्टली इंपोर्ट होते थे, अब इंडिया इस पोजीशन में पहुंच गया है कि इंडिया की रिक्वायरमेंट को भी मीट कर पा रहा है, उसके साथ साथ में विदेश में भी काफी हद तक एक्सपोर्ट कर रहा है। तो अगर एक सिंगल कंपोनेंट को हम लेके चले तो मोबाइल हैंडसेट एक बहुत बड़ा सेगमेंट हो रहा है जिससे कि हम अर्थव्यवस्था को और काफी उससे योगदान मिल रहा है। इसमें बस एक चीज की कमी है
1: जी,
2: कि जो लोकल वैल्यू एडिशन है वो अभी बहुत हाई लेवल पे नहीं पहुंचा है। तो हमको कुछ आइटम्स जो है कंपोनेंट्स वगैरह हैं वो फिर भी अभी हमें इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं, लेकिन सरकार का अच्छा प्रयास है, आने वाले समय में भी जो अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं उसके रिजल्ट्स आएंगे और लोकल वैल्यू एडिशन भी जो है काफी हद तक बढ़ पाएगा।
1: भटनागर जी, जैसे भी आपने मोबाइल क्षेत्र की बात की तो भारत को मोबाइल फोन निर्माण के क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता मिल चुकी है और अभी हमारा जो फोकस एक तरह से देखा जाए टेलीकॉम के उपकरणों के निर्माण पर है। और डिस्प्ले की बात करते हैं हम, फैब की बात करते हैं, तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग मॉडल की सफलता को जिस तरह से हम आगे ले जा रहे हैं तो अभी क्या लगता है कि किन किन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा काम हो रहा है और उन्हें आगे चल करके देश को काफी सफलता मिलेगी?
2: देखिए मैन्युफैक्चरिंग का जहां तक है अभी आज की डेट में भी टेलीकॉम इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग जो है काफी हद तक

0: लाइसेंस सर्विस प्रोवाइडर्स एयरटेल जियो वगैरह को अगर आप देखें तो विदेश से ही सामान मंगवा रहे हैं।
1: जी
0: टेलीकॉम सेगमेंट में चाइना से भी जो लेवल ऑफ इम्पोर्ट है वो अभी तक काफी है। ऐसा नहीं है कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के पास में उसको करने की क्षमता नहीं है। हमारे पास ऐसे प्लेयर्स हैं तेजस नेटवर्क, HFCL, जो 60-70 कंट्रीज को इवन एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। वो एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब क्वालिटी भी उनके पास में है, उनके पास प्राइसिंग भी वो कॉम्पिटिटिव है। तो सरकार की ओर से थोड़ा एडिशनल प्रयास करने की जरूरत है मार्केट एक्सेस, क्योंकि जब तक इनको डोमेस्टिक प्लेयर्स को ऑर्डर नहीं मिलते तब तक जो है उनका मैन्युफैक्चरिंग की जो कैपेबिलिटी है वो थोड़ी कम रह जाती है। तो इसमें काफी क्षमता है और सरकार जो है, मेरे को पूरी उम्मीद है कि मार्केट एक्सेस के ऊपर भी सरकार की तरफ से आने वाले कुछ हफ्तों में अच्छे स्टेप्स लिए जाएंगे।
1: जी, एक समय था जब भारत टेलीकॉम उपकरणों के लिए काफी हद तक आयात पर भी निर्भर था, जैसा कि भी आपने जिक्र किया, और सरकार अब घरेलू निर्माण पर काफी जोर दे रही है। तो इसके लिए सरकार ने भारत के पहले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन फेज वन की शुरुआत की है। तो ये किस तरह की परियोजना है, इसके पीछे की असली सोच क्या है, और हमारे टेलीकॉम सेक्टर में कैसा बदलाव देखने को मिलेगा इसके क्रियान्वित होने के बाद?
0: ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। ग्वालियर शहर में 70 एकड़ लैंड और ग्वालियर से करीब 15 किलोमीटर दूर वहां पर करीब 100 एकड़ लैंड का प्रोविजन किया गया है। ये फेज वन में है, इसके आने वाले फेज में और भी बढ़ने की क्षमता है। ग्वालियर सिटी में जो 70 एकड़ एरिया है उसमें जो है वहां पर शेड्स वगैरह भी लगाए जाएंगे। जो लागत होगी वो कंपनीज को उसको प्रोक्योर करने की लागत भी बहुत नॉमिनल होगी। उनके पास वहां पर टेलीकॉम टेस्टिंग इको सिस्टम भी वहां पे लगाया जाएगा, टेलीकॉम सेंटर्स भी लगाए जाएंगे और उसके साथ साथ में जो इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए भी काफी योगदान मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से किया जा रहा है अलॉन्ग विद द डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। तो
1: जी
0: ऑलरेडी फील्ड विजिट्स में मैं भी ग्वालियर और भोपाल में एक विजिट में ऑलरेडी जा चुका हूँ। इंडस्ट्री के लोग जो है ज्यादा मीटिंग्स में भी जा चुके हैं और इंडस्ट्री के साथ कॉपरेशन करते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने प्रोविजन किया है कि अच्छी से अच्छी सुविधाएं जो हैं, अच्छे से अच्छे इंसेंटिव जो दिए जा सकते हैं वो दिए जाए। कई सरकारों ने भी सिमिलर जोन स्थापित करने का प्रयास किए, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार का जो ये प्रयास है वो उन सब में एक अलग है और मेरे को काफी उम्मीद है कि इसकी सफलता जरूर आनी चाहिए।
1: राकेश जी, जिस तरह से आपने जानकारी दी है बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि भारत का लक्ष्य अब केवल घरेलू जरूरतें पूरी करना नहीं बल्कि टेलीकॉम उपकरणों का निर्यातक बनना भी है। तो ये जो टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन फेज वन की शुरुआत की जा रही है, तो इससे आगे चल करके किस तरह के सुधार हमें देखने को मिलेंगे? क्या निवेश इसमें बढ़ेगा या अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी जो है वो बढ़ने की बहुत ज्यादा संभावना है?
0: टेलीकॉम क्षेत्र में जो है अगर आप देखें तो 5G और 6G में इंडिया का बहुत अच्छा रोल जा रहा है। दुनिया भर में 5G में नोकिया, एरिक्सन, सैमसंग, ZTE एंड हुआई खाली 5 प्लेयर्स हैं, लेकिन इंडिया में जो है करीब 10 से 15 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि इस ग्लोबल मार्केट में जाने में सक्षम है। ऑलरेडी BSL MTL के नेटवर्क में गैलोर और लेखा वायरलेस दो इन्होंने ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन जो है स्टार्ट कर दिया है।
1: जी
0: मे बी 15 अगस्त को दिल्ली में 5G जो है इन लोगों के माध्यम से वो भी इम्प्लीमेंट हो जाए। प्राइवेट 5G एक बहुत बड़ी मार्केट है, करीब ये 10,000 करोड़ की मार्केट है, एनुअल मार्केट। तो इसमें जो है इंडिया के प्लेयर्स को क्योंकि अभी तक मौका नहीं मिला था और अब मौका मिलना शुरू हो रहा है। मंत्री जी का भी प्रयास है कि इसके लिए स्पेक्ट्रम का भी अलॉटमेंट वगैरह उस दिशा में भी प्रयास चल रहे हैं। तो अब इसमें अगर सफलता मिलती है तो हम एक 10,000 करोड़ की मार्केट में, हम इंडियन मार्केट में एंटर कर पाएंगे। हमने 77 यूज केसेस आइडेंटिफाई करके सरकार को अलग अलग मिनिस्ट्रीज के लिए, अलग अलग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए आइडेंटिफाई करके हमने पूरी ओवरऑल इकोनॉमी की इंप्रूवमेंट के लिए हमने शेयर किए हैं सरकार के साथ में।
1: जी
0: और ये सारे प्रयास हैं वो खाली इंडिया के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है, ये विदेश के लिए भी एप्लीकेबल है। अभी इंडिया ने रिसेंटली जो है अगर लास्ट वीक में ही पहला समृद्ध गांव का अवार्ड WIS में जीता है तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। मैं वॉइस का डायरेक्टर जनरल हूँ, वॉइस ने भी पहला इंडिया का स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज ITU की रिकमेंडेशन के हिसाब से हमने इम्प्लीमेंट किया। ऑलरेडी हमारे पास यूरोपियन यूनियन, UK और कई जगहों से रिक्वेस्ट आ रही है, क्या इंडिया लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को इसमें सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है? तो नेशनल इकोनॉमी के लिए ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है।
1: जी
0: एक और इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपके साथ शेयर करूंगा,
1: जरूर।
0: कल ही दीनदयाल उपाध्याय संचार अवार्ड जो है अनाउंस किए गए, उसमें एक अवार्ड फिनारा को जा रहा है। मैं इसके बारे में जस्ट बहुत संक्षेप में मेंशन करूंगा। अगर आप विजुलाइज करिए कि आपके पास एक बैंकिंग ट्रांजेक्शन यूनिट जो है आपकी एयरपोर्ट पे लगी हुई है, उसमें आप जाके अपना पासपोर्ट उसमें डालते हैं, नेक्स्ट स्टेप में आपको कहा जाता है कि अपना पैन कार्ड दीजिए, नेक्स्ट स्टेप में आपको कहा जाता है कि अपना आधार कार्ड दीजिए, 3 स्टेप के और की ऑथेंटिकेशन के साथ में आपका KYC कंप्लीट हो जाता है। उस स्टेज में आप कहते हैं कि मेरे को रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करना है, 10,000

0: रुपीज आई वॉन्ट टू कन्वर्ट इन टू डॉलर,
1: जी
0: तो ये मशीन जो है आपको डॉलर में भी कन्वर्ट करके दे देगी। और अगर आप डॉलर को इंडियन रुपी में कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं।
1: जी
0: तो हर एयरपोर्ट में, अब ये दिल्ली का एयरपोर्ट हो, बॉम्बे का एयरपोर्ट हो, लंदन का एयरपोर्ट हो, या पेरिस का एयरपोर्ट हो, तो सब जगह पे कन्वर्शन सेंटर्स लगे होते हैं कि आप मैनुअल एक्सचेंज कर सकते हैं। नई सुविधा जो है ये हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स ने ये डेवलप करी है,
1: जी
0: तो इंडिया में ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। तो इंडिया में इस तरह की करने की बहुत क्षमताएं हैं, और उन क्षमता के बेसिस में जो है वर्ल्ड मार्केट में इंडिया का जो रोल है अभी तक जो कंपेरेटिवली पीछे रहा है वो काफी आगे बढ़ सकता है।
1: इस दिशा में अगर थोड़ी सी बात और हम करते हो तो 6G टेक्निक पर भी भारत काफी काम कर रहा है, और भारत का फोकस शुरुआत में इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि 6G में हम वैश्विक नेतृत्व करने की बात कर रहे हैं, थोड़ा इस पर भी रोशनी डालिए।
0: इंडिया में हमारे पास भारत 6G अलायंस है, इसमें जो है डोमेस्टिक जितने भी प्लेयर्स हैं जो R&D कर रहे हैं वो ज्यादातर प्लेयर्स उसके साथ जुड़े हैं, वो इंडस्ट्री के से भी हैं, एकेडमिया से भी हैं, और नए पेटेंट्स के लिए भी काम शुरू हो गया है। कुछ पेमेंट रेगुलर इसकी मीटिंग्स भी हो रही हैं, और कई कंट्रीज के साथ में MOU भी साइन हो चुका है। करीब 6-7 कंट्रीज के साथ में इसमें इंडिया ज्वाइंटली वर्क कर रहा है।
1: जी
0: UK इंडिया फ्यूचर टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स के साथ में वर्क चल रहा है, US के साथ भी वर्क चल रहा है, यूरोपियन यूनियन के साथ भी साझा वर्क चल रहा है, जापान के साथ भी वर्क चल रहा है, और इंडस्ट्री जो है रेगुलरली जो है इसमें काफी क्लोजली कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क कर रही है। और ऐसा कोई कारण नहीं है कि इंडिया जो है 6G में एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर उभर के आए। पुरानी जो टेक्नोलॉजी थी, 4G तक की जो टेक्नोलॉजी थी, इंडिया ग्लोबल लीडर नहीं बन पाया था, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि इंडिया में 5G में भी करीब हमारे पास 10-12 प्लेयर सक्षम हैं जो कि ग्लोबल 5 प्लेयर्स को ज्वाइन कर सकते हैं।
1: जी राकेश जी, अभी आपने वैश्विक नेतृत्व की बात कही, ग्लोबल लेवल पर जो भी हम कर सकते हैं उसकी बात की, थोड़ा सा अपने देश में वापस आते हैं, गांव की हम बात करते हैं। तो भारत नेट जैसी जो परियोजनाएं हैं उनका उद्देश्य गांव गांव तक तो हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है, और इस योजना ने काफी हद तक सफलता प्राप्त कर ली है। अभी जो वर्तमान स्थिति है उसको देख करके आपको क्या लगता है कि भारत की और कितनी ज्यादा संभावनाएं हैं, खासतौर पर 5G और 6G को लेकर के जब हम गांव गांव तक पहुंचने की बात करते हैं?
0: इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। ITU की एक रिकमेंडेशन आई थी Y4218,
1: जी
0: आपने स्मार्ट सिटीज का तो सबने सुना हुआ था, लेकिन स्मार्ट विलेजेस का नाम शायद आपने कंपैरेटिवली नहीं सुना होगा। ये रिकमेंडेशन स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेजेस के बारे में इसमें रेफरेंस था, और हमने इंडिया का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज सतनावरी में हमने इंस्टॉल किया। इसमें सैटेलाइट सुविधा भी गांव में पहुंच रही है, 5G प्राइवेट नेटवर्क भी हम यूज कर रहे हैं, भारत नेट की बैंडविड्थ भी हम इसमें यूज कर रहे हैं। तो मीडिया की जो जो ऑप्शन हो सकती है कि इंडिया में किसी भी देश के कॉर्नर में आपको इंप्लीमेंट करना है तो
1: जी
0: आपके पास जो है बैंडविड्थ उपलब्ध कराने के तरीके हैं। अब जहां तक यूज केसेस हैं, सबसे ज्यादा जो है एग्रीकल्चर हो गया। एग्रीकल्चर में अगर आप सॉयल की कंडीशंस को देखें और उसके बेसिस पे आप रिकमेंड करें कि कौन सा फर्टिलाइजर, पोटेशियम या फॉस्फोरस या कौन सा केमिकल डालने की जरूरत है, आप खेत में फसल की कंडीशन को देख के आप आइडेंटिफाई कर सकें कि क्या वहां पर पेस्टिसाइड डालने की आवश्यकता है या नहीं है,
1: जी
0: तो ये सब चीजें ऑटोमेटिक वे में हो सकती हैं। हमने जो है वहां पर एक एंड्रॉयड बेस्ड एक एप्लीकेशन भी हमने डेवलप करके वहां पे लगाई है, तो किसान अगर चाहे दिल्ली में बैठा हो या लंदन में बैठा हो, वो अपने खेत को वहीं से बैठे हुए कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि इस एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन में आपको खेत की स्थिति पूरी तरह से पता लग रही है।
1: जी
0: अभी गाँवों में तालाब है तो तालाब में मछली पालन के लिए जो आपको योगदान चाहिए, तो वो भी आपको कितनी पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन है, वेदर फिश को सर्वाइव करने के लिए ठीक है या कम है, वो आपको पता लग जाएगा।
1: जी
0: आपको जो है सर्वेलेंस है वो आप कर सकते हैं।
1: जी
0: हेल्थ केयर के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं दिल्ली में, अगर आप एक HbA1c टेस्ट कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, ACG कराते हैं, तो आपको रिजल्ट्स कब मिलते हैं, नॉर्मली आपको रिजल्ट्स अगले दिन तक ही मिल पाते हैं, लेकिन हमने टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये दिखा दिया कि 15 मिनट के अंदर में आपके मोबाइल फोन में जो है आपका ब्लड टेस्ट जो है उसके रिजल्ट्स आ जाएंगे, ECG के रिजल्ट्स आपके पास आ जाएंगे,
1: जी
0: और आप टेली कंसल्टेशन के माध्यम से जो विशेषज्ञ है वो लंदन में बैठा हो या बॉम्बे में बैठा हो या नागपुर में बैठा हो कंसल्टेशन कर सकते हैं, और डॉक्टर की तरफ से जो रिपोर्ट है वो आपके स्क्रीन पे यहाँ जहाँ पे आप गांव में बैठे हैं वहां पे आ जाएगी, और वहीं पर ही आपको मेडिसिन भी दी जा सकती है।
1: जी
0: तो ये सारा प्रोसेस जो है 15 मिनट में हो रहा है। तो गाँवों में इस तरह की सुविधाएं अगर आप, अभी हमने एक गाँव में किया, महाराष्ट्र सरकार जो है 3,580 के लिए प्रयास कर रही है, और इसी साल में 75 इसी तरह के गाँव जो है वो तैयार होने जा रहे हैं।
1: जी थोड़ा सा फ्यूचर की अगर हम बात करते हैं तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन और पारंपरिक मोबाइल नेटवर्क क्या एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करेंगे, और इससे डिजिटल डिवाइड को किस हद तक हम खत्म करने में सक्षम होंगे?
0: हमने सतनावरी में जो इम्प्लीमेंटेशन किया था उसमें हमने सैटेलाइट का भी एडवांटेज हमने लिया था, 4G प्राइवेट नेटवर्क सैटेलाइट के से कनेक्टिविटी थी, और एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बैंगलोर में, ये पूरी हमने चेन बनाई।

0: सैटेलाइट में हमारे ही कुछ प्लेयर इस वर्क इस तरह भी प्रयास कर रहे हैं कि वो 100 के करीब लियो ऑर्बिट में सैटेलाइट छोड़े,
1: जी
0: उनके थ्रू पूरे देश के रिमोटेस्ट कॉर्नर्स में भी कम्युनिकेशन फैसिलिटीज का जो है योगदान मिल सके। और एक मैं बहुत आपको आश्चर्य भी हुआ कि नॉर्मली सैटेलाइट में रूफ टॉप के ऊपर में डिश एंटीना लगते हैं
1: जी
0: और आपको स्पेशल डिवाइसेस चाहिए होती हैं जिसके माध्यम से आप सैटेलाइट सिग्नल रिसीव करते हैं। हमारा एक डोमेस्टिक प्लेयर ने उससे इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर करी, 15 अगस्त को ही बी रेडी विद ए सॉल्यूशन जिसमें कि आपको ऑर्डिनरी फोन पे भी और वो भी घर के अंदर बैठे हुए भी आप सैटेलाइट का सिग्नल रिसीव कर सकते हैं। तो इस तरह का प्रयास दुनिया में किसी और देश में अभी आज तक नहीं हुआ है,
1: जी
0: ये इंडिया में होने जा रहा है।
1: जी राकेश जी, अंत में आपसे बस एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि आज हम AI, ओपन RAN और इंटरनेट थिंग्स या फिर क्लाउड जैसी तकनीकों की चर्चा कर रहे हैं जिनका इस्तेमाल अब बड़े पैमाने पर हो रहा है, तो टेलीकॉम सेक्टर से इनसे क्या उम्मीदें हैं और आने वाले वर्षों में भारत को इनसे किस तरह से लाभ होगा और भारत कैसे वैश्विक स्तर पर अपने आप को इसमें श्रेष्ठ साबित कर सकता है?
0: आपने क्लाउड की आपने मेंशन करी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मेंशन करी, तो हमने जो स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज का जो इम्प्लीमेंटेशन किया है तो उसमें ये ऑलरेडी बीच में यूज किया जा रहा है।
1: जी
0: और हमारे पास जो हमने सॉल्यूशन हमने इम्प्लीमेंट किया था, यूके एंड यूरोपियन यूनियन की एक टीम भी आई थी, 3 विशेषज्ञ 3 प्रोफेसर भी आए थे और उसके साथ उन्होंने हमारे साथ एक MOU किया। और जो हमने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया उसको लीस्ट डेवलप कंट्रीज में डेवलप प्रोवाइड करने के लिए भी हमारे पास रिक्वेस्ट आ चुकी है। तो इंडिया में एज फार एज द इंडस्ट्री इज कंसर्न पूरी क्षमता है, वेदर इट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस हैं या डाटा सेंटर्स हैं,
1: जी
0: हर क्षेत्र में हमारे पास क्षमता है। सरकार और इंडस्ट्री मिलकर काफी अच्छा काम कर सकते हैं
1: जी
0: क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो है ऑर्डर बुक होती है। हमारे पास क्षमता है और ऑर्डर आ जाते हैं तो कोई कारण नहीं है कि हम पीछे रह जाएं।
1: राकेश भटनागर जी, हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए, तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका तहे दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे दूरसंचार क्षेत्र में भारत की विकास यात्रा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे दूरसंचार विभाग के पूर्व सलाहकार राकेश कुमार भटनागर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOn AIR और यूट्यूब चैनल NewsOn AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। Countrywide.

0: अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग सुनेंगे। दिस इज द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी। प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट। यू विल नाउ लिसन टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे।
1: नाउ क्वेश्चन आवर, क्वेश्चन नंबर 121, श्रीमान कॉन्स्टेंटाइन रविंद्रन जी।
2: क्वेश्चन नंबर 21।
3: प्रश्न संख्या 121। क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने हाल ही के उन अंतर्राष्ट्रीय आकलनों की जांच की है जो ये दर्शाते हैं कि कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे के अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण और सतत प्रबंधन में जनजातीय एवं स्थानीय समुदायों के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देते हुए जैव विविधता संबंधी वित्त पोषण का एक बड़ा हिस्सा प्रत्यक्ष रूप से इन समुदायों को प्रदान किया जा रहा है। ख, जैव विविधता से संबंधित वित्तीय सहायता को पात्र वनवासी एवं जनजातीय समुदायों तक पारदर्शी, जवाबदेह और न्याय संगत रीति से पहुंचाया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं। ग, ऐसी निधि के उपयोग के संबंध में निर्णय लेने में सामुदायिक भागीदारी हेतु स्थापित संस्थागत तंत्र क्या है। और घ, परिणामों की निगरानी करने तथा प्रभावी संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए क्या रक्षोपाय स्थापित किए गए हैं।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
3: श्री भूपेंद्र यादव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री।
2: माननीय सभापति महोदय, उत्तर सदन के पटल पर रखा
1: है। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमान कॉन्स्टेंटाइन रविंद्रन जी।
2: थैंक यू सर। विल द मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज बी प्लीज टू स्टेट वेदर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स विल बी इंट्रोड्यूस्ड फॉर ट्रांसपेरेंट मॉनिटरिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट्स एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। एनी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म प्रपोज्ड फॉर एंश्योरिंग ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ ग्राम सभास, वीमेन।

0: Member raised a concern about whether there is any mechanism to giving a profit to a tribal community and other community as per the biodiversity fund is concerned. Sir, I want to submit that India has a well-established domestic access and benefit sharing mechanism which is under the Biological Diversity Act of 2002 as amended in 2023, supported by the Biological Diversity Rules 2024 and Access Benefit Sharing Regulation 2025. The present ABS framework provides for fair and equitable sharing of benefit arising from the utilization of biological resources and associated traditional knowledge. It operates through a three-tier institutional structure comprising the National Biodiversity Authority at the national level, State Biodiversity Authority and Biodiversity Council and management committees at local level. Sir, the ABS mechanism has mobilized more than 266 crore, including 21 crore during financial year 25-26, and approximately 153 crore has been disbursed to benefit claimers, including 78.8 crore rupees during financial year 25-26.
1: Second supplementary, Sriman Ashok Rao Sankar Rao Chavanji.
2: Sir, I would like to know from the Honorable Minister whether the Ministry will ensure that biodiversity finance mechanisms under the Kunming Montreal Global Biodiversity Framework specifically reached, particularly vulnerable tribal groups such as the Kolam community, a forest dwelling PVTG found in the Kinwat and Maur forest ranges of Maharashtra, and whether a transport gram sabha based participation mechanism in line with the Forest Rights Act 2006 is being institutionalized so that such communities themselves decide how these funds are utilized in their own habitats.
1: Honorable Minister.
0: Sir, the Kunming Montreal Global Biodiversity Framework provides the global roadmap to halt and reserve biodiversity loss by 2030. In alignment with the framework, India submitted its updated National Biodiversity Strategy and Action Plan 24 to 23 to the CBD Secretariat on 31st October plan. It comprises 23 national biodiversity target and supported by 142 national indicators. Sir, India has also established safeguard for transparency and accountability, including statutory oversight by NBA and state biodiversity boards, biodiversity council, maintenance of records of BMC provide biodiversity registers, monitoring of ABS agreements, financial management and audit of biodiversity fund and field level monitoring and conservation activities. Sir, as per the Maharashtra is concerned, 11 crore rupees, the ABS amount sanctioned, including the administrative charges also, and definitely it's providing the benefit the concerned community, which is the question is raised by the particular member. Yes.
1: Third supplementary, श्रीमान डॉक्टर अशोक कुमार मिट्टल जी.
3: एनवायरनमेंट तथा बायोडायवर्सिटी के मैनेजमेंट में महिलाओं की भागीदारी विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण है. वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप स्थानीय स्तर पर वन उत्पादों के कलेक्शन और प्रोटेक्शन में भी सक्रिय भूमिका निभाते हैं. तो माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि बायोडायवर्सिटी से जुड़े फाइनेंशियल ग्रांट्स में वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए क्या विशेष प्रावधान किए गए हैं. इसके साथ साथ बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन से जुड़े निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भूमिका सुरक्षित करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए. धन्यवाद.
1: ऑनरेबल मिनिस्टर.
0: माननीय सभापति महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो बायोडायवर्सिटी का विषय है वह हमारी विकास की प्राथमिकताओं में है. बायोडायवर्सिटी को सिक्योर करने का अर्थ है फूड सिक्योरिटी को, आजीविका को, इकोलॉजिकल बैलेंस को, हमारे जंगल, हमारे वेटलैंड, हमारे समुद्री तट, रेगिस्तान, घास के मैदान और मैरीन इकोसिस्टम की सुरक्षा करने का विषय है. और निश्चित रूप से जो ग्राम सभाओं का हम गठन करते हैं उसमें महिलाओं के सशक्तिकरण पर हम पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन पूरी कम्युनिटी को जब हम जोड़ते हैं तो उसमें महिला सशक्तिकरण में जो उनकी भागीदारी है उसको सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं. और ये निश्चित रूप से देश की बायोडायवर्सिटी संरक्षण में उनकी बड़ी भूमिका है. इसका कोई वैधानिक प्रावधान तो नहीं है, लेकिन हम उनको पूरा प्रोत्साहन, उनको पूरी नॉलेज शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कार्य करते हैं.
1: फोर्थ सप्लीमेंटरी, डॉक्टर श्रीमती मेहता विश्रम कुलकर्णी जी.
4: धन्यवाद सभापति महोदय।

0: बायोडायवर्सिटी के बारे में ये जो प्रश्न है, पुणे में 25 साल पहले से 900 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन पर बायोडायवर्सिटी का रिजर्वेशन किया गया था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। तो मेरा प्रश्न है, और दूसरा भी इससे जुड़ा है, कि मियावाकी फॉरेस्ट के जरिए अर्बन एरियाज में छोटे छोटे प्लॉट्स पर भी बायोडायवर्सिटी हम कर सकते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या मिनिस्ट्री अर्बन लोकल बॉडीज को ये आदेश देगी कि वो बायोडायवर्सिटी पार्क का रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंट करे, और मियावाकी गार्डन के लिए भी अगर मिनिस्ट्री बजट की सहायता कर सकती है क्या, ये मेरा प्रश्न है।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
2: माननीय सभापति महोदय, मंत्रालय के द्वारा नगर वन और नमो वन की योजना चलाई जाती है, वो बायोडायवर्सिटी से अलग है। अपने स्थानीय प्रशासन के माध्यम से अगर सदस्य महोदय प्रस्ताव भेजेगी तो हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।
1: नाउ क्वेश्चन नंबर 122, श्रीमान ए रहीम जी।
3: प्रश्न संख्या 122, क्या श्रम और रोजगार मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने श्रम संहिताओं के लागू होने के पश्चात रोजगार सुरक्षा, संविदात्मक रोजगार, छंटनी और कामबंदी यानी ले ऑफ पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है, और यदि हाँ तो उसके निष्कर्ष क्या हैं? ख, श्रम संहिताओं के अंतर्गत श्रमिकों की छंटनी करने वाले कर्मचारियों की कामबंदी अथवा अपना परिचालन बंद करने वाली स्थापनाओं की राज्यवार और क्षेत्रवार संख्या कितनी कितनी है? ग, क्या श्रम संहिताओं को लागू करने से पूर्व और पश्चात छंटनी, कामबंदी, औद्योगिक विवादों तथा औपचारिक रोजगार के संबंध में कोई तुलनात्मक अध्ययन किया गया है? और घ, क्या सरकार श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन तथा श्रमिकों के अधिकारों एवं उनकी रोजगार संबंधी सुरक्षा पर इसके प्रभाव की स्वतंत्र समीक्षा करवाने का विचार रखती है?
1: सेकंड सप्लीमेंट्री थ्रू पी विल्सन जी।
4: थ्रू दिस हाउस आई वुड लाइक टू आस्क द ऑनरेबल मिनिस्टर द रीजंस फॉर द गवर्नमेंट डिसीजन टू अब्स्टेन from the International Labour Organization Convention on the Decent Work in the Platform Economy, which seeks to set minimum standards for the gig and platform workers, and was supported by the both Indian employers and workers, especially when such abstention risk denying lakhs of young Indians engaged in app-based work basic protections on working conditions, social security and fair treatment that the global community has recognized as essential. Thank you, Chairman.
1: Honorable Minister.
3: Dr. Mansukh Mandavia, श्रम एवं रोजगार मंत्री।
5: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने आईएलओ के गिग वर्कर्स के विषय के संदर्भ में जब क्वेश्चन पूछा है, मैं बताना चाहूंगा कि गिग वर्कर्स हमारे देश में एक नई व्यवस्था खड़ी हो रही है, और गिग वर्कर्स का हितों की रक्षा हो, गिग वर्कर्स को अपना एक एम्प्लॉइज के रूप में अधिकार मिले, उसके लिए पहली बार लेबर कोड में, नहीं केवल भारत में लेकिन दुनिया में पहली बार हमने गिग वर्कर्स को रिकॉग्नाइज करा है और उसको कानूनी दर्जा दिया। कानूनी दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश है वो भारत है, और भारत में गिग वर्कर्स को रजिस्टर करने के लिए ई श्रम पोर्टल पर प्रावधान रखा गया है। और आज जो नीति आयोग के एक रिपोर्ट के मुताबिक 80 लाख गिग वर्कर्स है, और उसमें से 10 लाख गिग वर्कर्स ऑलरेडी ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर हुए हैं। अभी विषय है उसके हितों की रक्षा के लिए, या तो उसको सोशल सिक्योरिटी देने के लिए। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को और देश को बताना चाहूंगा कि हमारे गिग वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी मिले, उसको सोशल सिक्योरिटी का कानूनी प्रावधान मिले, उसके लिए ही हमने लेबर कोड में प्रावधान करा है। अभी आईएलओ ने जो अपना कन्वेंशन कर रहे थे, यूरोप और उनका एक मॉडल होता है, भारत का गिग वर्कर्स का एक अलग मॉडल है, हमारे यहाँ वो एक इमर्जिंग व्यवस्था है, उसके लिए कई प्रावधान हमने अभी करके रखा है। कई प्रावधान भविष्य में भी करने की आवश्यकता हो तो हम उसके में भी प्रावधान करेंगे, इसलिए हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी, ना कि उसके सोशल सिक्योरिटी के हितों के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज करना। इसलिए फ्लोर के द्वारा, पार्लियामेंट के सदन के द्वारा, मैं एश्योर करना चाहता हूं कि गिग वर्कर्स के हितों की रक्षा के लिए हमने लेबर कोड में जो प्रावधान करा है उसका इंप्लीमेंटेशन करके उसको सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित करी जाएगी।
1: थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमान प्रमोद बोरा जी।
6: ऑनरेबल चेयरमैन सर, विद रेफरेंस टू द इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी, विल द ऑनरेबल मिनिस्टर स्टेट इफ एनी असेसमेंट हैज बीन मेड ऑन हाउ द न्यू 50% बेसिक वेज रूल अंडर द कोड ऑन वेजेस विल इम्पैक्ट वर्कर्स एलिजिबिलिटी अंडर द

0: 21,000 ESIC ceiling, and what specific institutional mechanism or programs are being implemented under the new courts to currently clear pending provident funds of displaced workers and provide them financial literacy training to protect their social security resources. Thank you.
1: Honorable Minister.
2: Maniya Adhyaksh Mahoday, जब लेबर कोड लागू होने से सोशल सिक्योरिटी को हम बढ़ावा दे रहे हैं। ये देश है जिसमें 2014 के पहले केवल देश में 29% लोगों को, 19 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट मिलता था। पिछले 12 साल में मोदी गवर्नमेंट में हो एक्सेस बढ़ा के आज देश में 68% यानी कि 101 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी देने वाला ये देश बना। सोशल सिक्योरिटी सुनिश्चित हो और इसके लिए एसिक में हमारे न्यू लेबर कोड हमें प्रावधान करता है कि एसिक में पहले कई स्टेट बाहर थे, कई स्टेट ESIC के लाभार्थी नहीं थे, EPFO में उसको लाभ नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी लेबर कोड ये सुनिश्चित करता है कि सारे देश के सभी डिस्ट्रिक्ट को नोटिफाई करा जाएगा और सभी डिस्ट्रिक्ट में ESIC के तहत जो हमारे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स है, ESIC के लाभार्थी है, उसको उसका लाभ दिया जाएगा, सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी, हेल्थ सिक्योरिटी दी जाएगी, ताकि ऐसे वर्कर्स उसके लिए काम करते करते कोई भी दिक्कत आई हो, उसका काम छूट गया, उसके मैटरनिटी बेनिफिट की आवश्यकता हुई, तो ऐसी स्थिति में भी उसको लाभ मिले, वो भी हमने सुनिश्चित करा है। और माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न के प्रारंभ में कहा कि उससे क्या कोई असेसमेंट करा गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब हमने लेबर कोड लागू करा, और लेबर कोड तो 2019 और 20 में बना था, लेकिन कई कारणों से वो लागू नहीं हो पाया था, लेकिन हमने 2025 नवंबर में देश में लेबर कोड लागू करा और मई 2026 में हमने उसका रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन करा। सभी स्टेट अपने रूल्स को उसके साथ अलाइन कर रहे हैं और स्टेट स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमने प्राइमरी सर्वे करा था और हमारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ने VVGNLI करके हमारी एक लेबर इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक व्यापक सर्वे करा। उस सर्वे में वर्कर्स की ओर से जो फीडबैक आया, ये मैं आपके द्वारा सदन को और देश को बताना चाहूंगा। 60% वर्कर्स का मानना है कि लेबर कोड के पूर्ण इंप्लीमेंटेशन से वर्किंग कंडीशन बेहतर बनेगी। 63% वर्कर्स का विश्वास है कि सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स अधिक पोर्टेबल बनेंगे। 60% कॉन्ट्रैक्ट माइग्रेंट और गिग वर्कर्स का मानना है कि उन्हें सोशल सिक्योरिटी का बेहतर कवरेज मिलेगा। 66% वर्कर्स का मानना है कि एम्प्लॉयमेंट टर्म्स एंड कंडीशन अधिक स्पष्ट होगी। 66% वर्कर्स का मानना है कि महिला वर्कर्स की सेफ्टी और प्रोटेक्शन में सुधार आएगा। और 63% वर्कर्स का विश्वास है कि वर्क प्लेस पर सेफ्टी इक्विपमेंट और प्रोटेक्टिव मेजरमेंट बेहतर होगा। ये कुल मिला के हमारा सर्वे से निकला है, वो बताता है कि देश के श्रमिक के लिए ये लेबर कोड हितकारी।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री, श्रीमान मयंक कुमार नायक जी।
3: थैंक यू सर। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा खूब काम किया जा रहा है। नई नई टेक्नोलॉजी और नए नए औद्योगिक डेवलपमेंट भी हो रहे हैं। सर, मेरा माननीय मंत्री जी आदरणीय मनसुख भाई जी से प्रश्न है कि सर, जो नए नए बिजनेस आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो क्या श्रम मंत्रालय के द्वारा उसी इंडस्ट्रीज को जिस प्रकार से कामदार चाहिए, लेबर चाहिए, उसकी ट्रेनिंग का कोई प्रावधान है क्या? और यदि हाँ, तो उनके लिए सरकार के द्वारा और राज्य सरकारों द्वारा समन्वय करके इस तरह से देश के युवाओं को रोजगारी मिल जाए, जो आने वाले भारत में आत्मनिर्भर भारत का माननीय प्रधानमंत्री ने स्वप्न देखा है, उसको पूरे करने में सरकार का जो दायित्व है वो सरकार कैसे निभा रही है, वो मैं आपके माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ। थैंक यू सर।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
2: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। बदलते समय में टेक्नोलॉजी का भी बदलाव हो रहा है, बदलते समय में वर्किंग कंडीशन भी बदल रही है। एक समय था जब श्रमिक खेत में काम करने के लिए जाते थे तो हाथों से काम करते थे, आज समय बदला है और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, फार्म इक्विपमेंट का यूज करते हैं, और जब स्प्रे करते थे पहले तो हैंड से उसको पेस्टिसाइड का स्प्रे करना था तो हैंड से करते थे, आज समय बदला और ड्रोन से करते हैं। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी का समझदारी आए, ड्रोन टेक्नोलॉजी

0: जी के लिए ट्रेनिंग मिले, तब जाके हमारे ड्रोन दीदी आज देश में हजारों की संख्या में ऐसी महिला को ऐसे ड्रोन चलाने का तकनीकी का ज्ञान दिया गया है, ताकि वो ड्रोन को अपने अर्थोपार्जन के लिए उपयोग करते हैं और किसान के खेत में जाके ड्रोन से वो छिड़काव करवाते हैं। वैसे कई सेक्टर में, हर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आई है, वो टेक्नोलॉजी के अनुरूप हमारे वर्कर्स में टेक्नोलॉजी का ज्ञान आए, इसके लिए स्किल इंडिया मूवमेंट के द्वारा उसको स्किलिंग करा जाता है। हर इंडस्ट्रीज को ये व्यवस्था और हर इंडस्ट्रीज को ये कहा गया है कि बदलते टेक्नोलॉजी के साथ उसको रिस्किलिंग करा जाए। तो आज जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग आज आपकी इंडस्ट्रीज में करते हैं और उसका नया वर्जन आया और नया मशीन आया, तो नया मशीन का उपयोग करने के लिए उसको रिस्किलिंग करने की भी व्यवस्था करी गई है। स्किल इंडिया के तहत अभी लास्ट 2025 के बजट में अनाउंसमेंट करा गया था सरकार के द्वारा, जिसमें हर सेक्टर में भी टेक्नोलॉजी बदल रही है और इंडस्ट्रीज क्लस्टर के आधार पर जिस टाइप का इंडस्ट्रीज क्लस्टर है, एक क्लस्टर के अनुरूप उसको स्किलिंग हो, इसलिए हब एंड स्पोक के द्वारा आईटीआई की व्यवस्था करी गई है। एक डिस्ट्रिक्ट में एक लेवल की इंडस्ट्रीज है तो डिस्ट्रिक्ट के हब के रूप में एक आईटीआई काम करेगी और स्पोक के रूप में ये इंडस्ट्रीज के क्लस्टर में उसको ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि उसकी स्किलिंग का भी इन्हेंसमेंट हो और इस स्किलिंग के इन्हांसमेंट का उपयोग हमारे टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उपार्जन बढ़े। दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, टेक्नोलॉजी कैसे रोजगार एम्प्लॉयमेंट देने के लिए उपयोगी हो सकती है? भारत सरकार ने नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल बनाया है, तो नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पर आज देश में 53 लाख से अधिक स्टेट गवर्नमेंट, देश की कंपनी, दुनिया की कंपनी उसके पर जुड़ी हुई है। उनको की कोई भी टाइप का स्किल मैन पावर की रिक्वायरमेंट हो, तो स्किल मैन पावर उसको क्या चाहिए उसके पर वो नोट करते हैं। आज सुबह से मैंने देखा 12 लाख से अधिक नौकरियां वहां उपलब्ध है, कोई ना कोई टाइप के उसको स्किल मैन पावर चाहिए, ताकि जिसको जॉब चाहिए और जिस टाइप की स्किल की रिक्वायरमेंट है, ऐसा स्किल वर्कर्स उसमें अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने अप्लाई करा और फिर उसको स्किलिंग की आवश्यकता रही, विशेष स्किलिंग की आवश्यकता हुई, तो भारत सरकार की ओर से उसको 15 दिन का, 1 महीने का, 3 महीने का स्किलिंग करा के जिस इंडस्ट्रीज को जिस टाइप का स्किल मैन पावर चाहिए, ऐसा स्किल मैन पावर उपलब्ध कराने के लिए भी भारत सरकार ने व्यवस्था करी है। इसलिए देश में एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ रही है, देश के युवाओं में एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ने से उसका रोजगार प्राप्त हो रहा है और रोजगार निर्माण से देश में हमारे इंडस्ट्रीज का की जो स्किल मैन पावर की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी हो रही है। इसलिए समय बदलते समय के साथ स्किलिंग, रिस्किलिंग और रिस्किलिंग के बाद जॉब और जॉब के बाद अर्थोपार्जन की एक श्रृंखला मोदी गवर्नमेंट में हमने सुनिश्चित करी है।
1: नाउ क्वेश्चन नंबर 123, श्रीमान संतोष कुमार पी।
2: प्रश्न संख्या 123, क्या श्रम और रोजगार मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि आज की स्थिति के अनुसार अकुशल, अर्धकुशल, कुशल तथा अति कुशल श्रमिकों सहित विभिन्न श्रेणियों के कामगारों के लिए अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी का राज्य, संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है? क्या सरकार ने मुद्रास्फीति तथा जीवन यापन की बढ़ती लागत के दृष्टिगत विद्यमान न्यूनतम मजदूरी की पर्याप्तता की कोई समीक्षा की है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? क्या सरकार मजदूरी संहिता 2019 के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी लागू करने सहित न्यूनतम मजदूरी को संशोधित करने अथवा बढ़ाने का विचार रखती है, और यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा संभावित समय सीमा क्या है? और देश भर में न्यूनतम मजदूरी संबंधी उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?
1: सेकंड सप्लीमेंट्री, श्रीमान सतपाल शर्मा जी।
3: धन्यवाद माननीय चेयरमैन महोदय। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में ये विषय लाना चाहता हूँ कि जो रेट्स ऑफ वेजेस है इंक्लूडिंग वीडीए पर डे, वो एग्रीकल्चर के केस में बहुत कम है, जबकि हम सब जानते हैं कि जीवन व्यतीत करने के लिए एग्रीकल्चर का एक विशेष महत्व होता है। और जब मैं इसको कंपैरिजन करता हूँ स्वीपिंग से, वॉच एंड वार्ड, लोडिंग अनलोडिंग, इन सब के संदर्भ में ये जो वेजेस हैं बहुत कम है, तो क्या सरकार इस विषय को

0: गंभीरता से लेगी और किसानों के रेट्स को भी बढ़ाने का प्रयत्न करेगी। एक थोड़ा सा एक विषय क्लासिफिकेशन को लेकर भी है, तीन क्लासिफिकेशंस दी है, ए बी एंड सी। आज के संदर्भ में जब हम पूरे भारतवर्ष की बात करते हैं, ठीक है बड़े जगह हैं जैसे दिल्ली है, मुंबई है, मद्रास है, लेकिन इन जगहों को छोड़कर मुझे लगता है कि भारतवर्ष की सभी जगहों को मात्र बी में ही कन्वर्ट किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
2: डॉक्टर मनसुख मांडविया, श्रम एवं रोजगार मंत्री।
3: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने किसान के हित की रक्षा की बात करी है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सभी लोगों को जीवन व्यापन करने के लिए मिनिमम जरूरत है वो तो उपलब्ध होना ही होना चाहिए, और मिनिमम जरूरत उपलब्ध हो इसलिए ही प्रधानमंत्री जी ने आज देश में इस टाइप की सोशल सिक्योरिटी की व्यवस्था करी है, ताकि देश में सभी नागरिक को अपना घर मिले, पूर्ता खाना मिले और घर में उसको गैस का सिलेंडर मिले। ये सारी व्यवस्था सोशल सिक्योरिटी का एक पार्ट ही है और वेजेस का भी एक पार्ट है, और जब वेजेस तय करी जाती है तब व्यक्ति को कितना न्यूट्रिएंट फूड चाहिए, कितनी कैलोरी चाहिए, उसको विज्ञापन के उसको जीवन निर्वाह के लिए कपड़ा चाहिए, उसको घर चाहिए, उसको फैन, घर में फैन चाहिए। तो पहले फैन नहीं था तो बिजली बिल नहीं आता था, आज अभी मोबाइल तो हम काउंट ना करें वो एडिशनल व्यवस्था है, लेकिन उसके जीवन में मिनिमम जीवन जरूरी चीजों को खरीदने के लिए उसको मिनिमम जो खर्च लगता है उसको मिनिमम वेज के रूप में माना जाता है, और मिनिमम वेज आज तक माननीय अध्यक्ष महोदय सरकार तय करती थी, लेकिन भारत सरकार तय करती थी, लेकिन वो एडवाइजरी के रूप में था, स्टेट उसको माने नहीं माने उसके लिए कोई कंपलसरी नहीं था। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लेबर कोड लागू करा, लेबर कोड में फ्लोर वेज की का प्रावधान करा गया है, तो भारत सरकार अभी नए लेबर कोड के मुताबिक फ्लोर वेज तय करेगी। फ्लोर वेज मतलब कोई भी राज्य उससे कम मिनिमम वेज नहीं देंगे, उसका तो इतना देना ही देना, उससे ऊपर राज्य जितना रख सकते हैं, जितना रखना चाहे इतना रख सकते हैं, उसमें से सभी राज्य अपने, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि देश में बहुत डाइवर्सिटी है, हमारे देश में मैदानी प्रदेश भी है, हिमालयन रेंज भी है, नॉर्थ ईस्ट जैसे पहाड़ी प्रदेश भी है, विकसित प्रदेश भी है, अल्पविकसित प्रदेश भी है, तो ऐसी स्थिति में उसकी रिक्वायरमेंट और उसका जीवन निर्वाह का एबीसी यानी कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी, उसके अगल बगल में रहने वाले लोगों का खर्च, एक छोटे शहर में रहने वाले और उसके अगल बगल में रहने वाले लोगों का जीवन खर्च, और एक का दूर सुदूर गांव में रहने वाले और किसान का जीवन निर्वाह का खर्च अलग अलग होता है, उसको ध्यान में रख के फ्लोर वेज तय करा जाएगा, और फ्लोर वेज के ऊपर सब लोग वेज तय करे, उसमें सारा पैरामीटर को सुनिश्चित करके तय करा जाएगा। वर्तमान समय में जो वेजेस उपलब्ध है वो हर साल में दो बार वेरिएबल डियरनेस अलाउंस होता है, उसके अनुसार ऐड होता है, और ये आज भारत सरकार सभी को बाधित करती है।
1: थर्ड सप्लीमेंट्री थ्रू आर गिरिराजन जी।
4: सर, नाउ द मिनिस्ट्री इज अनाउंसिंग मिनिमम वेजेस 5 ईयर वंस और 3 ईयर वंस और 2 ईयर वंस रेगुलरली। द मिनिस्ट्री शुड अनाउंस द मिनिमम वेजेस एवरी फाइनेंशियल ईयर विदाउट फेल। सर, द मिनिमम वेजेस नॉट अनाउंस्ड ईयरली बाय द मिनिस्ट्री। द मिनिस्ट्री हैज एनी प्रपोजल टू अनाउंस मिनिमम वेजेस एवरी फाइनेंशियल ईयर, दैट विल हेल्प द लेबर्स अक्रॉस द कंट्री। थैंक यू।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
3: माननीय अध्यक्ष महोदय, हर राज्य अपने अपने हिसाब से मिनिमम वेज में बढ़ोतरी करता है, लेकिन भारत सरकार तो जो महंगाई को ध्यान में रखते हुए हर साल में दो बार वीडीआर के द्वारा, वीडीएस के द्वारा बढ़ोतरी करता है कि इस बार जो इन्फ्लेशन बढ़ा हो, अभी महंगाई बढ़ी हो, उसके आधार पर उसका खर्च बढ़ता है, तो उसके आधार पर सरकार बढ़ोतरी करती है, और उसको देखते हुए राज्य सरकार उसको प्लस माइनस प्लस कर सकती है, माइनस तो नहीं, और उसका लाभ अपने देश के, अपने राज्य के वर्कर्स को दे सकते हैं।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमती सुलादा देव।
5: थैंक यू सो मच ऑनरेबल चेयरमैन सर। जय श्री जगन्नाथ। सर, माननीय मंत्री अभी बोल रहे थे कि इन्फ्लेशन के बारे में, किस तरह से हर चीज में प्राइस राइज हो रहे हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली भी अपनी घर चलाने के लिए मुश्किल हो रहा है, तो हम लोग जो एकदम लोअर क्लास बिलोंग्स करते हैं, जो अनस्किल्ड लेबर और स्किल्ड लेबर है, उन लोगों के लिए मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से प्राइस हाइक हो रहा है, उस माननीय मंत्री जी ये बोलेंगे कि उन लोगों की जो वेजेस है, डेली वेजेस है, वो बढ़ना जरूरी है, वो बढ़ाने के कोई प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है क्या? अगर है तो स्टेट को भी कम्युनिकेट करें। और दूसरी बात मैं

0: मतलब ये कर जानना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे स्वास्थ्य मित्र है जो हमारे ओडिशा में काम करते थे हेल्थ में, आयुष्मान योजना में, उन लोगों को भी जो कंटक जेल में काम करते थे उन लोगों को भी निकाला जा रहा है, वो कौन से कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों की फिर रिहेबिलिटेशन किस तरह से हो और किस तरह से, क्योंकि हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर हेल्थ अगर किसी का खराब होता है तो अगर वहां पर कोई असिस्टेंट ना हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, उन लोगों के लिए कुछ सोचे हैं क्या, और कि वो कौन से कैटेगरी में आते हैं और बढ़ाने की अगर कोई योजना है तो सर बताए। थैंक यू सो मच सर।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर,
2: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की बात में ऐसा इस दृष्टि से ऐसा समझा हो कि उनके यहाँ हेल्थ वर्कर है, उसकी सैलरी बढ़नी चाहिए और उसने ये भी अपेक्षा रखी है कि जो अपने मिनिमम वेज है वो आपको रेगुलर बढ़ाता जाना चाहिए, समय समय पर बढ़ाते जाना चाहिए। मैं उसको माननीय सदस्य को रिप्लाई देना चाहूंगा आपके द्वारा, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा देश अभी बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, नया भारत बन रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज हमारा भारत दुनिया में डेवलप्ड कंट्री, यूरोप की बात करें 1-2% इकोनॉमिक ग्रोथ है, चाइना यूएसए 4-5% इकोनॉमिक ग्रोथ है, भारत की इकोनॉमी 7.5% से ग्रो कर रही है। जब कोई भी देश की इकोनॉमी ग्रो करती है तब देश के नागरिक का परचेज पावर बढ़ता है, देश के नागरिक का परचेज पावर बढ़ता है तो देश में डिमांड बढ़ती है और डिमांड बढ़ती है तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो रोजगारी बढ़ती है स्वाभाविक तौर पर। यहां जो बात रखी गई है कि अपने वर्कर्स है उसको, हेल्थ वर्कर्स को अपना सैलरी बढ़नी चाहिए सभी राज्य को, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप 2 साल में बढ़ाओ, 3 साल में बढ़ाओ, 5 साल में बढ़ाओ, भारत सरकार तो हर 6 महीने में बढ़ाती है, उसको देखते हुए हर राज्य सरकार, क्योंकि लेबर वेलफेयर वो कंकरेंट लिस्ट में है तो ये राज्य सरकार का अधिकार है कि जब चाहे तब अपने राज्य में वो मिनिमम वेज बढ़ा सकते हैं, किसी का भी वेज में बढ़ोतरी करनी है तो राज्य सरकार उसमें पर बढ़ोतरी करके अपने एम्प्लॉइज को उसका लाभ दे सकते हैं।
3: नाउ क्वेश्चन नंबर 124 श्रीमती सुमित्रा पाल्मिक जी।
4: 124 प्रश्न संख्या 124, क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क दिव्यांगजनों तथा महिलाओं के मध्य खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है, ख ऐसे वर्ग के युवाओं को सहायता प्रदान करने हेतु विभिन्न योजनाओं तथा वित्त प्रावधानों का ब्यौरा क्या है, और ग ऐसे वर्ग के युवाओं में नशीली दवाओं के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने तथा उनके करियर मार्गदर्शन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
3: ऑनरेबल मिनिस्टर,
4: रक्षा निखिल खड़ से युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री।
5: टल पे रखा है।
3: नाउ फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमती सुमित्रा पाल्मिक जी।
6: माननीय सभापति महोदय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से ये जानना चाहती हूँ कि जो पैरा एथलीट्स हैं, इन खिलाड़ियों के लिए आपने कितने सेंटर बनाए हैं और उसमें इन्हें प्रशिक्षित करने का क्या क्या माध्यम है और इसमें महिलाओं युवाओं की संख्या कितनी है।
3: ऑनरेबल मिनिस्टर।
7: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहूंगी कि पैरा फ्रेंडली फैसिलिटी सेंटर्स हमारे पूरे टोटल साई में 13 सेंटर है, जिसमें से गांधीनगर का जो सेंटर है वो डेडिकेटेड सेंटर है फॉर पैरा, और उसके अलावा 12 सेंटर है हमारा त्रिवेंद्रम में है, अर्नाकुलम में है, संभाजीनगर, बैंगलोर, भोपाल, कलकत्ता, लखनऊ, पटियाला, सोनीपत, आईजी स्टेडियम और केएसएसआर में, इन सभी जगह पे हमारे पैरा एथलीट्स को ट्रेनिंग दी जाती है और लगभग 172 एथलीट्स यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और जिसमें से 62 जो हमारे एथलीट्स है वो टॉप स्कीम में भी है, जो एलए के लिए आने वाले ओलंपिक के लिए तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूंगी कि 2014 से पहले जो हमारा पैरा ओलंपिक में रैंक था पूरे वर्ल्ड में 67 था और मेडल सिर्फ एक ही था, पैरा एशियन गेम्स में हमारा रैंक 15 था और मेडल सिर्फ 14 थे, लेकिन 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्पोर्ट्स को लेकर काफ़ी अग्रसर भूमिका रखी और उसके बाद हम देख सकते हैं है कि 2024 में हमारा रैंक 18 था, 29 मेडल्स हमने प्राप्त किए
1: और पैरा एशियन गेम में हमारा रैंक अभी फिफ्थ है और जहाँ पे हमने 108 मेडल प्राप्त किए, तो सभी पैरा एथलीट्स के

0: लिए हमारे सभी साई के सेंटर में सभी सुविधाएं दी जा रही है, जहाँ पे हमारे महिला एथलीट्स भी काफी बड़ी संख्या में आज प्रैक्टिस कर रही है। धन्यवाद।
1: सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान गुलाम अली जी।
2: शुक्रिया चेयरमैन सर। मैं जम्मू कश्मीर से आता हूँ और हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो हमेशा कहीं षड्यंत्र से हमें हमारे युवाओं को खासकर नशा की लपेट में नस्ल कशी करना चाहता है। हमारे वहाँ हमारी जो यूथ मिनिस्ट्री है उसने बहुत सारे प्रोग्राम वहाँ शुरू करे हैं और बच्चे जो हैं हमारे जो स्टोनिंग और उसमें मुलव्वस थे आज वो स्कूलों में और खेलकूद के जरिए बड़े बड़े अवार्ड लेके आ रहे हैं। मैं मिनिस्टर साहिबा को मुबारकबाद भी दूंगा और उनकी बहुत पार्टिसिपेशन रहती है और उनमें उत्साह रहता है खेलने का। मेरा मिनिस्टर साहिबा से क्वेश्चन है कि फिट इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ सर्विसेज का, नशा मुक्त के प्लेजेस भी हम लेते हैं, ड्रग फ्री इंडिया, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, क्या नौजवान जो बच्चे बच्चियां हैं जम्मू कश्मीर के, क्या उनकी जो एक्सट्रीम लेवल पर चले गए हैं क्या उनके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रिहैबिलिटेशन का जहां उनको मेन स्ट्रीम में फिर लाने का कोई प्रोग्राम उस पर कुछ काम हुआ है? मैं उसकी जानकारी चाहूंगा। शुक्रिया।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
3: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि देश के युवा धन आज नशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उसको बचाना उस समय की मांग है और न केवल सरकार लेकिन सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। वर्तमान समय में जिस तरह से एडिक्शन बढ़ रहा है, एडिक्शन के सामने मूवमेंट चलाने के लिए आज से एक साल पहले हमने सोचा कि देश के स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जिसका बहुत बड़ा अनुयायी वर्ग होता है उसको भी उसमें शामिल करना चाहिए, स्कूल कॉलेजों को भी उसमें शामिल करना चाहिए। इसलिए हमने वाराणसी में एक समिट करी थी, दो दिन की चिंतन बैठक करी थी और उसमें हमने तय करा कि आने वाले दिनों में हम नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत का कैंपेन को कैसे चलाएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी देश को समृद्ध राष्ट्र बनना है, डेवलप्ड कंट्री बनना है तो आवश्यक है कि उसके देश के नागरिक फिट रहे, उसके देश के नागरिक स्वस्थ रहे। जब नागरिक स्वस्थ होगा तब सोसाइटी स्वस्थ होगी और स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। और इसलिए समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए, डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए हमारे देश के युवा नशा से मुक्त हो उसके लिए कई कार्यक्रम की श्रृंखला चलती है। सरकार की ओर से राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने अपने हिसाब से रिहैबिलिटेशन सेंटर ये सब तो करते हैं, अवेयरनेस कैंपेन भी चलाते हैं, लेकिन हमने तय करा है 2 अगस्त को सारे देश में 100 वीक 2 साल के लिए एक बहुत बड़ा नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत कैंपेन ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी प्रारंभ करवा रहे हैं। एक ही साथ में देश के सभी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन एक मंच पर आ रहे हैं, देश के सब कॉलेज मंच पर आ रही है, यूनिवर्सिटी मंच एक मंच पर आ रही है और माय भारत के युवा उसको लीड कर रहे हैं। युवाओं ने अपने स्वयं को चिंता करी कि हम हमारे साथी को एडिक्शन से बचाए, नशा से बचाए। इसलिए 2 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी 10:30 बजे समग्र देश को संबोधित करेंगे और 1 करोड़ से अधिक युवा एक साथ में शपथ ग्रहण करेंगे कि हम तो नशा से मुक्त होंगे लेकिन हम हर व्यक्ति एक एक व्यक्ति को नशा मुक्त करेंगे। एक कैंपेन हर वीक चलेगा, उसमें नुक्कड़ नाटक हो, उसमें क्विज कंपटीशन हो, उसमें पेंटिंग कंपटीशन हो, उसमें अलग अलग अलग संडे ऑन साइकिलिंग के साथ उसको जोड़ा जाए, स्पोर्ट्स के साथ उसको जोड़ा जाए। हमें हमारे युवाओं को खेल के मैदान में लाना होगा, हमें हमारे युवाओं को में व्यापक अवेयरनेस लानी होगी और ये केवल सरकार नहीं कर पाएगी, उसमें सारी सोसाइटी सारे देश की जिम्मेवारी है। वो हमारा युवा है, देश का युवा है, देश का भविष्य है और यही हमारे देश के विकसित भारत के राहबर है और इसलिए देश के युवाओं को उसके साथ जोड़ के इस अभियान का प्रारंभ हो रहा है। सभी सम्मानित सदस्यों को मेरी प्रार्थना है, आप सब लोगों को भी लोकल लेवल पर इनविटेशन दिया जाएगा, जहां से भी आपको इनविटेशन मिले वहां आप उपस्थित रहे, युवाओं को प्रोत्साहित करें, हर वीक में कोई एक एक और एक कोई न कोई एक ऐसी एक्टिविटी करे जिसमें युवाओं के साथ नशा मुक्ति के लिए मेरे देश के जनप्रतिनिधि का भी संवाद हो ताकि देश के युवा व्यसन मुक्त बने और विकसित भारत के राह पर आगे बढ़े। इस अभियान के साथ सभी को जुड़ने के लिए मेरी प्रार्थना है।
1: थर्ड सप्लीमेंट्री डॉक्टर कविता पटेलदार।
4: सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि ग्रामीण महिलाओं को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
0: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहूंगी कि खास करके ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री

0: इन्हें 2021 में अस्मिता लीग्स की शुरुआत की थी कि जिसके माध्यम से आज पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे हम अस्मिता लीग्स का आयोजन कर रहे हैं और जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां या महिलाएं, उनका पार्टिसिपेशन आज स्पोर्ट्स में बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और मैं आज इस हाउस को भी बताना चाहूंगी कि लगभग 3,500 से भी ज्यादा लीग्स आज तक हम करवा चुके हैं। 38 डिसिप्लिन में आज ये लीग्स हो रही है पूरे देश में और लगभग 6,00,000 से भी ज्यादा महिलाओं ने इस लीग्स के माध्यम से पार्टिसिपेशन किया है। और इन्हीं लीग्स के माध्यम से आज साई के सेंटर या स्टेट एक्सेलेंस जो सेंटर है हमारे स्पोर्ट्स के, उनमें इनका सिलेक्शन किया जाता है और जिससे ज्यादा से ज्यादा महिलाएं स्पोर्ट्स में आज आगे आते हुए दिखाई दे रही है, मेडल तक पहुंच रही है। और उसके साथ ही हमारे जितने भी साई के सेंटर है, स्टेट के साथ भी हम बात कर रहे हैं कि कोचेस, जो महिलाओं की संख्या है कोचेस में, उनका भी प्रावधान ज्यादा से ज्यादा बढ़े कि जिसके माध्यम से एक अच्छा माहौल हम सभी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में महिलाओं खिलाड़ी के लिए दे पाए। धन्यवाद।
1: स्पोर्ट्स सप्लीमेंट्री श्रीमान उपेंद्र कुशवाहा जी।
2: हाल के वर्षों में हम अपने राज्य बिहार में देखते हैं कि सूखा नशा की प्रवृत्ति युवाओं में ज्यादा बढ़ी है। क्या सरकार इस बात से सहमत है? सरकार ने कोई स्टडी वहाँ इस विषय को ध्यान में रखकर कराया है? अगर नहीं कराया है तो सरकार कराएगी। एक दूसरा, लोगों के बीच इसके कारण को ढूंढते हुए विमर्श के रूप में बिहार में जो शराबबंदी कानून लागू है उससे भी कुछ लोग संबंध इसका जोड़कर देखते हैं कि क्योंकि शराबबंदी कानून लागू है इसलिए ड्रग लेने की प्रवृत्ति नशा के रूप में वहां के युवाओं में ज्यादा बढ़ी है। तो क्या शराब कानून लागू होने से भी कोई इसका संबंध है? इस दृष्टि से भी कोई स्टडी कराना चाहेंगे?
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
3: माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बात सार्वजनिक स्वीकार करने योग्य है कि नशा तो युवाओं में बढ़ रहा है और उसका समाधान करने के लिए हमें सामूहिक अभियान चलाना है, जिस उल्लेख में लास्ट क्वेश्चंस के रिप्लाई में कर चुका हूँ। लेकिन जो पहले नशा था और बदलते समय में हेरोइन, सरस, उसके अलावा सिंथेटिक ड्रग्स, ये बहुत खतरनाक है, उसका उपयोग भी न्यू जनरेशन में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नहीं, ऐसे कई टाइप की स्टडी ने ही ये बताया है और हम सार्वजनिक जीवन में देख भी रहे हैं कि उसको न्यू जनरेशन में स्कूल कॉलेज में भी उसका प्रवेश हो चुका है। चौराहे पर पान मसाला बेचने वाले शॉप पर भी ये चीजें जब हम खड़ा रहते हैं तब हमें पता चलता है। उसका समाधान कैसे करा जाए, उनके लिए दो ही रास्ता है। एक, कानूनी प्रावधान तो बहुत कुछ है और बदलते समय के साथ पब्लिक अवेयरनेस और काउंसलिंग, कई समस्या, उसके लिए हम कोई एक कारण को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। माननीय सदस्य ने कहा कि क्या कारण है कि नशा बढ़ता जा रहा है, कई कारण है। आज बच्चे, उसकी स्थिति, उसका ट्रेस, उसकी जीवन शैली, ये सब एनवायरनमेंट जो आज वर्तमान सोशल मीडिया में दुनिया के साथ संपर्क में रहना और वहां जो कुछ हो रहा है उसकी इफेक्ट उसके मन मस्तिष्क में भी हो रही है। इसलिए ये सब स्थिति का एनालिसिस करके हमें आगे बढ़ना होगा। लेकिन एक खतरा हमारे सामने है, उसका समाधान जितना हो सके इतना करने की कोशिश करी है और आने वाले दिनों में सामूहिक चिंतन के आधार पर, सामूहिक रिसर्च के आधार पर, सतत उसके पर अध्ययन के आधार पर रास्ता तय करना होगा।
1: नाउ क्वेश्चन नंबर 125, डॉक्टर ज्योति नाथनाथ वाकमारे।
4: क्वेश्चन नंबर 125,
5: ऑनरेबल चेयरमैन सर। प्रश्न संख्या 125, क्या श्रम और रोजगार मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत 31.5 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों में महिलाओं की संख्या रिकॉर्ड 54% से अधिक हो जाने के उपरांत उन्हें वन टॉप सॉल्यूशन के माध्यम से केंद्रित सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सरकार की क्या योजना है? ख, क्या सरकार महाराष्ट्र सहित देश भर की कृषि, घरेलू कार्य तथा निर्माण क्षेत्रों में कार्यरत असंगठित महिला श्रमिकों को पालना योजना तथा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जैसी पेंशन योजना से जोड़कर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT सुनिश्चित कर रही है? और ग, मंत्रालय द्वारा ऐसी महिला श्रमिकों के लिए कौशल विकास, मातृत्व लाभ, तथा सुरक्षित कार्य वातावरण, जल सफाई एवं स्वच्छता अवसंरचना सुनिश्चित करने हेतु क्या विशेष बजटीय प्रावधान किए गए।

0: हैं।
1: फर्स्ट सप्लीमेंट्री यू कैन गो स्ट्रेट अवे।
2: आदरणीय सभापति महोदय, देश के निर्माण और अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमारी असंगठित क्षेत्र की महिला श्रमिक हैं, जो कठिन परिस्थितियों में भी राष्ट्र के विकास में अपना अभूतपूर्व योगदान देती है। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री महोदय से ये पूछना चाहूंगी कि असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले महिला श्रमिकों का शोषण न हो, उन्हें सुनिश्चित वेतन मिले, काम की जगह पर उन्हें सुरक्षा मिले, उनकी मैटरनल और मेंस्ट्रुअल हेल्थ की केयर हो, उनका ख्याल रखा जाए और महिला कामगारों के बच्चों के लिए पालना योजना अनिवार्य की जाए और सरकार के सभी योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर खड़ी महिला श्रमिकों तक पहुंचाने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
0: शोभा कारंदलाजे, श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री।
3: माननीय चेयरमैन सर, पहली बार देश में 29 एक्ट को हम बदल के 4 कोड में लाए हैं, महिला का सुरक्षा इसी में है। ये 4 कोड में महिला के लिए हम एम्प्लॉयर्स कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं सर। महिला एंड पुरुष को एक साथ लेके जाना यानी एक ही पगार देना, जेंडर डिस्क्रिमिनेट को इसी में हम नकार है। ऐसे ही महिला वो बच्चे का बात किया, वर्किंग जगह में क्रेश रखने के लिए ऐसे ही हम मैटरनिटी लीव पहले 8 महीने तक, अभी 26 वीक तक हम बढ़ाए हैं। एंड कोई पोस्ट मैटरनिटी में घर से काम करना चाहते हैं वो घर से भी काम कर सकते हैं। एंड 2 वीक का बीच में वो मैटरनिटी मेडिकल ब्रेक भी ले सकती है। ऐसे भी हम 3500 मैटरनल बेनिफिट भी उसको दे रहे हैं सर। एंड अभी फैमिली बोले तो केवल महिला नहीं है, कौन बच्चा पैदा करते हैं वो फैमिली को हमें एक्सटेंशन किया है वुमेन एम्प्लॉय के साथ, इसका इन-लॉज भी वो फैमिली में अभी आ रहे हैं। महिला को महिला का एम्प्लॉयमेंट कितना है देश में, हर साल महिला का अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है सर। अभी बार बार बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहे हैं, मगर देश का सामने में एक आंकड़ा रखना चाहती हूँ। ऑल इंडिया लेवल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इट इज डिक्रीज फ्रॉम 3.6% टू 3.1% इन इंडिया हमारे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में। ऐसे ही यूथ का एम्प्लॉयमेंट भी अभी बढ़ रहा है, महिला का एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है एंड वर्कफोर्स पॉपुलेशन भी बढ़ रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज फ्रॉम 54% इन 2022, इसका पहले का आंकड़ी नहीं है सर। हमारे देश में कोई आंकड़ी नहीं रखा है कितना एम्प्लॉयमेंट हमारे देश में हम दे रहे हैं। पहली बार हम आंकड़ लेने को शुरू किया, अभी वो बढ़कर 57.4% हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है सर। एंड एम्प्लॉयमेंट फॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, उसको आंकर किधर मिलता है? हमारा फॉर्मलाइजेशन करने के लिए भारत सरकार अभी तैयार किया, इसके कारण ईपीएफओ में 2007 to 2025 में ये केवल 8 साल के अंदर 8.23 करोड़ लोग सब्सक्राइब नए सब्सक्राइबर ईपीएफओ में बढ़ा है। नया सब्सक्राइबर पिछले साल लास्ट ईयर में वो नंबर था 1.69, लाइक इतना बड़ा रेट में हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। इसके कारण है अलग अलग सर, हमें एमएसएमई को मदद दे रहे हैं। अभी एमएसएमई में उद्यम पोर्टल खोला हम, 9 करोड़ उद्यम पोर्टल में एंटरप्राइजेस जुड़े हैं, वो लोग बताया हम 39 करोड़ लोगों के लिए काम दिया है, एम्प्लॉयमेंट दिया है। इसी में 40% महिला है सर, हमको बोलने के लिए खुश होता है 40% इसी में महिला है। अभी एंटरप्रेन्योर्स ज्यादा हो रहे हैं, महिला का ज्यादा हो रहे हैं। ऐसे ही स्टार्टअप्स केवल हम गिनती करते थे हाथ में, मगर अभी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2 लाख स्टार्टअप्स के लिए भारत सरकार मदद दिया, इसके कारण नए बच्चे नए नौजवान युवती ये स्टार्टअप खोलने के लिए कर रहे हैं सर। मुद्रा में हम प्रधानमंत्री जी एक योजना शुरू किया, प्रधानमंत्री जी मुद्रा योजना, इसी में 3.8 करोड़ लोगों को हम जॉब दिया है एंड एंटरप्रेन्योर्स बनाया है। पीएमईजीपी में सर 97 लाख लोगों को

0: पीएमईजीपी में हमें एम्प्लॉयमेंट दिया है सर, इतना बड़ा नंबर में भारत सरकार एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए अभी अभी एक योजना शुरू किया। अभी लास्ट महीने में प्रधानमंत्री जी पहले क्रंच का पैसा लोग एंटरप्रेन्योर्स एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज को दिया, वो योजना है प्रधानमंत्री जी विकसित भारत रोजगार योजना, इसी में हम 1 लाख करोड़ लगा रहे हैं। एंड किसके लिए? एम्प्लॉयर्स को भी मदद देना, एंड नया एम्प्लॉय जुड़ा तो उसको भी मदद देने के लिए। इसीलिए मैंने बताना चाहती हूँ पूरा देश में महिला को एंटरप्रेन्योर्स बनाने के लिए, जॉब दिलाने के लिए एंड सरकार में जॉब दिलाने के लिए 19 क्रेंचर्स सरकार का जॉब दिलाने का रोजगार महिला हम बनाए, इसमें 11 लाख लोगों को सरकारी नौकरी भारत सरकार ने दिया है।
1: सेकेंड सप्लीमेंट्री श्रीमती सीमा द्विवेदी जी।
2: माननीय सभापति महोदय, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 अधिनियमित किया गया है जो 21 नवंबर 2025 से प्रवृत्त हुई है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि जो इस अधिनियम में इसको प्रवृत्त किया गया है, इसमें महिलाओं को क्या क्या सुविधा दी जा रही है, इसके बारे में माननीय मंत्री जानना चाहती हूँ।
0: माननीय चेयरमैन सर, मैं अभी बताई 29 कानूनों को हम निकाल के, तो ब्रिटिश का समय का कानून था, हमारा देश वाले नहीं बनाए थे वो कानून, हम ऐसे रखे थे, उसको हम पूरे निकाल के अभी 4 कोड में लाया है। इसी में बहुत बड़ा एंड अच्छा कोड है सोशल सिक्योरिटी कोड। सोशल सिक्योरिटी कोड में महिलाओं के लिए हम पहले क्वेश्चन का आंसर में भी बताया सर, वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं कर सकते नया कोड में। एंड एक काम के लिए इक्वल वर्क फॉर इक्वल वेजेस, एंड इक्वल वेजेस देना इक्वल वर्क के लिए, ऐसा हम किया है सर। ऐसे कोई भी बोर्ड हो, सरकार कुछ भी बोर्ड गठित करे और यानी इंडस्ट्री कुछ भी बोर्ड गठित करे, इसी में 1/3 उसी में बोर्ड में मेंबर्स महिला होना चाहिए, महिला का समस्या महिला ही जानती है, इसलिए महिला होना चाहिए, ऐसे ही प्रोविजन इसी में रखा है सर। मैटरनिटी लीव 26 वीक तक हम बढ़ाए हैं सर, वर्क फ्रॉम होम का प्रोविजन हम रखे हैं सर। ऐसे ही महिला को कहीं इंडस्ट्री में काम करने के लिए प्रोविजन नहीं था, पहली बार महिला किसी भी इंडस्ट्री में काम कर सकती है, नई ड्यूटी भी कर सकती है, मगर उसका सुरक्षित का कायम रखना एंड उसका सुरक्षा के लिए ध्यान रखना, ऐसा भी प्रोविजन हम रखे हैं सर। मेडिकल बोनस हम 3500 दे रहे हैं, नर्सिंग ब्रेक्स हम दे रहे हैं, ऐसे महिला का बच्चे के लिए क्रेश फैसिलिटी भी इंडस्ट्री के तहत और वर्किंग प्लेस में हम दे रही है। ऐसे ही सर हम ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स ऑफ होम अरेंजमेंट्स फॉर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वुमेन वर्कर्स सेक्टर में स्टैंडिंग कमिटी बनाने के लिए हम इसी में रखा है सर। एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल, महिला के लिए अलग से ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल रखना चाहिए, ऐसे हम नया कोड में सोशल सिक्योरिटी कोड में महिला के लिए हम लाए हैं सर।
1: थर्ड सप्लीमेंट्री डॉक्टर धर्मशील गुप्ता जी।
3: माननीय सभापति महोदय, आपका धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि बिहार की बहुत बड़ी आबादी महिलाएं काम करती हैं, रोजगार करती हैं, तो क्या बिहार में कितनी महिलाएं रोजगार कर रही हैं, या माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कितने रोजगार को बढ़ाया गया है, ये मैं जानना चाहती हूँ आदरणीय मंत्री जी से।
0: चेयरमैन सर, बिहार में ईश्रम पोर्टल में 3.2 करोड़ लोग जुड़े हैं, इसी में अलग अलग तरीके का लोग हैं। ईश्रम पोर्टल में जुड़ने वाले एग्रीकल्चर लेबरर्स से सर, विश्वकर्मी से, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स है, ऐसे ही सर्विस सेक्टर में कौन कौन काम करते वो है, ऑटोमोबाइल एंड ट्रांसपोर्टेशन इसी में काम करने वाले डोमेस्टिक वर्कर्स है, ऐसे अलग अलग तरीके का लोग बिहार में 3.23 करोड़ लोग जुड़े हैं।
1: फोर्थ सप्लीमेंट्री डॉक्टर कविता पटीदार जी।
4: धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूंगी कि लेबर कोर्ट में महिलाओं के लिए क्या प्रोविजन रखा है।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
0: कर दिया है, पहली बार महिला कोड में हम महिला के लिए प्रोविजन रखा है। महिला कोड देश का इतिहास में वो पहले बहुत साल से मांग था, लेबर कोड आना चाहिए, लेबर कोड आना चाहिए। 2020 से प्रधानमंत्री जी का

0: नेतृत्व में प्रयत्न किया मगर नहीं हो पाया। पहली बार हमारा सरकार पिछले साल नवंबर 21 को पूरा देश में लेबर कोड को लागू किया। ये लेबर कोड में 4 कोड में महिला का विशेष प्रावधान रखा है सर, एंड महिला का सिक्योरिटी करने के लिए एंड इक्वल काम के लिए इक्वल वेजेस देने के लिए इसी में सब प्रोविजन है। मैंने पिछले आंसर में इसका सदन के नजर में लाया सर। थैंक यू।
1: थैंक यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 126 श्रीमान उज्जवल देवराव निकाम जी।
2: क्वेश्चन नंबर 126 सर।
3: प्रश्न संख्या 126, क्या विधि और न्याय मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क गत 3 वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से विधिक सहायता तथा विधिक परामर्श प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी कितनी है। ख आज की स्थिति के अनुसार देश के जिलों में स्थापित तथा कार्यरत विधिक सहायता बचाव परामर्श कार्यालयों की राज्यवार संख्या कितनी कितनी है। ग उक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्गत निधि तथा तत्संबंधी उपयोग का ब्यौरा क्या है। और घ उक्त अवधि के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से संवितरित मुआवजे सहित अपराध के पीड़ितों के लिए विधिक सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर
3: श्री अर्जुन राम मेघवाल, विधि एवं न्याय राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार।
4: चेयरमैन सर, उत्तर सभा पटल पर रख दिया। थैंक यू।
1: द फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमान उज्जवल देवराव निकाम जी।
2: थैंक यू सर। Honorable Minister, while reply indicates that the number of beneficiaries, it does not indicate the quality of the legal assistance provided. So my pinpoint question to you, has the government undertaken any independent evaluation of the effectiveness of legal aid, including success rate, client satisfaction, or quality of representation provided to the beneficiaries?
1: Honorable Minister.
4: धन्यवाद सभापति जी। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी से संबंधित है और इसमें कितना खर्चावार कितने लोग लाभार्थी हुए ये जवाब इनको दे दिया गया है। मैं इस स्कीम के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि समाज के गरीब और वंचित वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत एक नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का गठन कर रखा है। ये जिलों में भी काम करते हैं, स्टेट में भी करते हैं। जब नेशनल लेवल पे करते हैं तो नालसा कहलाते हैं, जब राज्य स्तर पे करते हैं तो वो उस स्टेट का नाम से साथ उसको लीगल सर्विस अथॉरिटी से जोड़ देते हैं, डिस्ट्रिक्ट में वो डालसा कहलाते हैं, तालुका में भी काम करते हैं। जो संख्या ये पूछना चाह रहे हैं विगत 3 सालों में, तो 2023 और इसमें हमने 15.5 लाख इसमें लाभार्थी रहे, 24-25 में 16.5 लाख लाभार्थी रहे और 25-26 में 20 लाख लाभार्थी रहे। ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है। ये जो पूछना चाह रहे हैं कि क्या कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी से भी कोई आपने इवोल्यूशन करवाया है क्या, मैं ये इनको कहना चाहता हूं कि हर जगह सीएससी है, कॉमन सर्विस सेंटर, वहां पे न्याय बंधु प्रो बोनो जो गरीब हैं, दूर स्थानों पे रहते हैं, वकील कर नहीं सकते, उनको सरकार निःशुल्क ये विधिक सहायता देती है और उसमें एक कंसेप्ट है, हक हमारा भी है, उसके तहत हम काम करते हैं और इसका इवोल्यूशन भी हम कराते हैं। इतने लाभार्थी इसमें लाभान्वित हुए हैं और ये बहुत अच्छी योजना है गरीबों को न्याय के द्वार तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद।
1: सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान सुभाषिस कुंदिया जी।
5: थैंक यू चेयरमैन सर। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं उड़ीसा के ट्राइबल क्षेत्रों के में स्थानीय भाषा में लीगल एड और लीगल अवेयरनेस सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं।
1: ऑनरेबल मिनिस्टर।
4: सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वो जो रीजनल लैंग्वेजेज हैं, अभी भाषिणी टूल हमारे बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। जितने भी हमारी भाषाएं हैं, जैसे 22 भाषाएं संविधान में मान्यता प्राप्त है, तो संविधान भी हमने सभी भाषाओं में अनुवाद किया है और रीजनल जो भाषाएं हैं उनका भी भाषिणी टूल के माध्यम से आप भाषाओं का अनुवाद जान सकते हैं। लोकसभा में भी राज्यसभा में भी आपने देखा होगा कि अनुवाद जो है ज्यादा भाषाओं में हो रहा है। ये जो विषय आपने रखा है ये विषय जस्टिस से संबंधित ही है कि जो भाषा नहीं जानता है, जैसे अंग्रेजी में अधिकतर हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में लोग बहस करते हैं, जो भाषा नहीं जानते हैं उनके लिए क्या भाषिणी टूल उसका एक सबसे महत्वपूर्ण उपाय है और इस दिशा में नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आने के बाद तेजी से काम हुआ है। भाषा हमारी संस्कृति का हिस्सा है, इसलिए हम संस्कृति का विकास भी करेंगे विरासत को भी बचाएंगे। धन्यवाद।
1: The House stands adjourned to meet at

0: खुफिया।
1: अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू आर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इस विधेयक को मंजूरी दे दी। लोकसभा ने इसे कल ही पारित कर दिया था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि ये देश के हर नागरिक और विशेष रूप से युवाओं के भविष्य से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेपर लीक रोकने और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि देश में एम्स की संख्या 7 से बढ़कर 22 हो गई है और मेडिकल सीटों में भी वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। इससे पहले डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार लोक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि नए कानून के तहत दोषी को 10 साल तक की कैद, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। साथ ही मामलों की जांच 2 महीने और मुकदमे का निपटारा 3 महीने के भीतर करना होगा। चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस विधेयक का समर्थन करती है, लेकिन इसमें पेपर लीक रोकने के लिए और अधिक प्रभावी प्रावधान होने चाहिए थे। भाजपा के ब्रजलाल ने कहा कि इस विधेयक में फास्ट ट्रैक अदालतों और विशेष कार्यबल का प्रावधान है। डीएमके के तिरुचि शिवा और समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव ने नीट परीक्षा समाप्त करने की मांग की। चर्चा के बाद राज्यसभा ने विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ये विधेयक देश की सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। श्री राय ने कहा कि वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, बल्कि ये राष्ट्र की आत्मा की आवाज है।
1: यह विधेयक राष्ट्र गौरव का विधेयक है। यह किसी राज्य के खिलाफ नहीं है, किसी व्यक्ति या किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। और जब राष्ट्रगान हो तो उसके साथ साथ राष्ट्रगीत का भी गायन हो। अब

0: भारत श्रेष्ठ भारत के लिए संपूर्ण वंदे मातरम चाहिए।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए आज मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। उन्होंने नाविकों और उनके